0: और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
2: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा है, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
0: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं।
0: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
3: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: अब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान की। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
3: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और ये हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं। भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
3: सियासत में सियासी वार पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
1: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख भी मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया, सामने राहुल गांधी थे और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
8: My friend, how are you?
9: I am fine. How are you, Modi ji?
8: Great harassment.
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
8: माय फ्रेंड हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हरासमेंट गलगोटिया
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ।
1: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ।
1: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
10: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
11: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी हल तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
7: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
1: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
12: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
1: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
13: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
14: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
15: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो, चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: अब आता है आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की, और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
16: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे कैंपस में 22 साल के बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
3: अब आज मुंबई में हुए सड़क हादसे की, मुंबई BMW कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रहे हैं और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। उसमें से 4 सवार में से 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
1: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार 4 में से 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
17: उस गाड़ी में 4 लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
1: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
18: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
3: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चुनावी यूपी में योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व राष्ट्रपति ने दिया था बयान। उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, एसपी का भी पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। और देवरिया की रैली में ओपी राजभर का बड़ा बयान, आने वाले दिनों में चार हिस्सों में होगा प्रदेश का बंटवारा, पूर्वांचल राज्य का सीएम राजभर का बेटा होगा।

0: देख रहे हैं आज तक आपके साथ में हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हूं। शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। खबर हादसे से जुड़ी हुई है, देश की राजधानी से है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई ने भी घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस अब ये जांच कर रही है। सरिता विहार इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में लोगों की मौत हुई है। जो घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन इस हादसे में 4 लोग मारे गए हैं, 3 लोग घायल हुए। घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सरिता विहार का ये इलाका दिल्ली का, सरिता विहार जो कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, और उस इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है।
1: मेरे 2 भाई डेथ हो चुके हैं और तीसरे की हालत गंभीर है, और एक का नाम है प्रवीण कुमार और एक का नाम है अनुप कुमार। तो वो अभी अपोलो हॉस्पिटल में थे, 3 रात में लाए गए यहाँ पे, और इनके साथी भी हैं। रात में ये CCTV कैमरे लगा रहे थे, ट्रैफिक इनका ही काम कर रहे थे, क्या नाम है, ट्रैफिक पुलिस का ही काम है जो CCTV कैमरे लगा रहे थे, इनका काम कर रहे थे। लेकिन उनके लिए कोई सेफ्टी कवच, कोई भी वो चीज नहीं थी।
0: और हादसे की अगली खबर जो है वो तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के सूर्यापेट से बड़ी खबर ये कि सूर्यापेट खम्मम 365 नंबर हाईवे पर पिल्लामरी के पास एक तेज रफ्तार वोल्वो कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद वो आग की लपटों में घिर गई। हादसे के वक्त कार में खम्मम के ममता अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर कासाकुर्थी जगदीश के सवार थे। उनके इस गाड़ी में मौजूद होने की जानकारी सामने आई है और ये भी बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि डॉक्टर की जलकर मौत हो गई। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। जैसे ही कार हाईवे डिवाइडर से टकराई तुरंत गाड़ी आग की लपटों से घिर गई। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। CCTV फुटेज सामने आया जिसमें दिखाई दे रहा है कि कार को डिवाइडर से टकराते और फिर आग की चपेट में आते देखा जा सकता है। मामले की जांच कर रही है। एक जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर भी गाड़ी में उस समय मौजूद थे और कार जैसे ही डिवाइडर से टकराती है उसके बाद वो तुरंत आग की लपटों में घिर जाती है और इस आग में एक डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर तेलंगाना के, उनकी जान चली जाती है। देखिए ये है वो CCTV फुटेज और ये आपको पीछे कार दिखाई देती है। अचानक जोर से कार आई और उसके बाद ये देखिए संभवतः कार अपना संतुलन खो बैठी और काफी रफ्तार में थी और उसके बाद वो बिल्कुल सड़क के बाईं तरफ टकराती है। देखिए सबसे पहले धुआं धुआं हो जाती है गाड़ी और तुरंत उसके बाद आग की लपटों से घिर जाती है। चलिए अब बात करेंगे यूपी की चुनावी राजनीति की। रोजगार यहां बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब सीएम योगी का जेन जी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ का आयोजन किया। दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। अब सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव रोजगार पर ही बीजेपी की योगी सरकार को घेर रहे हैं।
2: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
3: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
2: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
4: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
2: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
3: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
2: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं।
3: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
2: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: सत्ताईस के चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, अब यह भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं तो दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है।
2: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया। हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
5: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
2: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
6: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही हैं पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
2: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: बात करेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान की। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में यह चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडीविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा था।
7: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स, द डेंजर टू इंडिया, मार्क यू, इट इज नॉट कम्युनिज्म, इट इज हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म।
0: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के सीएम योगी ने भी पलटवार किया। सुनिए योगी ने क्या कहा।

0: देश के अंदर संपन्न किया। उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें। लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
1: अब इस तरह के बयान सियासत में सियासी वार पलटवार आपने खूब देखे होंगे, लेकिन छात्रों के मंच पर जब सियासत का अंदाज सवालों के घेरे में आए तो बहस लाजमी हो जाती है। इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई और अब उस मिमिक्री पर भी जबरदस्त हंगामा बरपा है।
2: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से, और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
3: My friend, how are you?
4: I am fine. How are you, Modi ji?
3: Great harassment.
2: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
3: My friend, how are you?
4: I am fine. How are you, Modi ji?
3: Great harassment. Galgotia.
4: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
3: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी, नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
4: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
3: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
5: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
6: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
2: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच

0: क्या
1: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
0: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
2: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
0: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
3: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
0: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
4: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
0: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
5: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
0: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत और इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
7: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के IIT बॉम्बे कैंपस में 22 साल के BTech छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया।
8: पुलिस स्टेशन
7: माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
6: और अब बात करेंगे मुंबई में हुए सड़क हादसे की। मुंबई बीएमडब्ल्यू कार हादसे के रोंगटे खड़े करने वाली सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में कार ब्रिज से नीचे गिरते दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी, उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई।
0: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। बीएमडब्ल्यू कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। सीसीटीवी में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
9: उस गाड़ी में चार लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
0: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
10: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
6: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
12: हाथ में तिल होने पर आदमी बहुत धनवान होता है क्या? नाक के ऊपर तिल होने से जीवन में मुश्किलें बहुत होती हैं। पैर के तलवे में अगर तिल है तो इसका क्या अर्थ है? क्या है शरीर के अलग अलग तिलों का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

यूपी में अपना समीकरण साधने में जुटी पार्टियां आज मेरठ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और सीएम योगी। अखिलेश ने कसी कमर, ओवैसी ने गठबंधन के लिए 2 अक्टूबर तक दिया वक्त। यूपी के देवरिया की रैली में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान, आने वाले दिनों में 4 हिस्सों में होगा उत्तर प्रदेश का बंटवारा, पूर्वांचल राज्य का सीएम राजभर का बेटा होगा। दिल्ली में एसआईआर के दौरान दिखी अफरा तफरी, विदेश मंत्री जयशंकर, लालकृष्ण आडवाणी, धनखड़ समेत कई दिग्गजों को नोटिस, पूर्व सेना प्रमुख सीबीआई निदेशक भी दायरे में।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक सुबह के 6:30 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 अन्य घायल हो गए। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। हादसा इतना भयानक था कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई, 3 घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई ने घटना को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। हादसों के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। तमाम वो लोग थे जो सीसीटीवी कैमरा लगाते थे इस इलाके में। ट्रैफिक पुलिस के लिए इस इलाके में सीसीटीवी लगाने का काम कर रहे थे। और हादसे में जो गाड़ियां हताहत हुई देखे, उनमें एक ये ऑटो रिक्शा भी था। और उसके बाद जैसे ही, हालांकि हादसा कैसे हुआ पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। सरिता विहार का इलाका था, ये गाड़ियां जो है आपस में टकराई और उसके बाद 4 लोगों की इसमें मौत, 3 घायल। संख्या बताती है कि हादसा कितना भयानक था। हादसे में शामिल वो ट्रक, वो 2 गाड़ियां जो आपस में टकराई और उसके बाद एक ऑटो पूरी तरह आप देखें वो भी चकनाचूर हुई। और इसी वजह से ये माना जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा।
1: मेरे 2 भाई डेथ हो चुके हैं और तीसरे की हालत गंभीर है। और एक का नाम है प्रवीण कुमार और एक का नाम है अनूप कुमार। तो वो अभी अपोलो हॉस्पिटल में ही थे, 3 रात में लाए गए यहाँ पे। और इनके साथी भी हैं, रात में ये सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे, ट्रैफिक इनका ही काम कर रहे थे। क्या नाम है, ट्रैफिक पुलिस का ही काम है ये, जो सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे इनका काम कर रहे थे। लेकिन उनके लिए कोई सेफ्टी कवच, कोई भी वो चीज़ नहीं थी।
0: तेलंगाना के सूर्यापेट से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। सूर्यापेट खम्भम 365 हाईवे पर पिल्ला मरने के पास एक तेज रफ्तार वोल्वो कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद वो गाड़ी पूरी आग की लपटों में घिर जाती है। इस हादसे के दौरान कार में खम्भम के ममता अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर कासाकुर्थी जगदीश भी सवार थे, उनके भी इस गाड़ी में सवार होने की जानकारी आ रही है। देखिए सीसीटीवी आ रहा है उस घटना का। यह हादसा इतना भीषण था कि डॉक्टर की जलकर मौत हो गई, मौके पर अफरा तफरी मची। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि गाड़ी अचानक आती है, तेज रफ्तार से डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद सबसे पहले धुआं और फिर आग की लपटों में ये गाड़ी घिर जाती है। इसके पहले लोग संभल पाते, बचाने की कोशिश करते, आग गाड़ी की लपटों में घिर गई। ये देखिए आग ने कैसे गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। और वहां लोग पहुंचे, सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है लोग पहुंच रहे हैं गाड़ी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो कुछ कोशिश कर पाते धुआं और आग ने गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। जो डॉक्टर थे वो भी इस गाड़ी में थे, इससे पहले उन्हें बाहर निकाला जा सकता तब तक ये हादसा बड़ा हो चुका था। मामले की जांच जारी है। देखिए ये है सीसीटीवी फुटेज, तेज रफ्तार गाड़ी आती है और अचानक अपनी बाईं तरफ डिवाइडर से टकरा जाती है। चलिए बात करेंगे यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब सीएम योगी ने जेन जी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन भी जारी किया। तो योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव भी रोजगार के मुद्दे पर ही योगी सरकार को घेर रहे हैं।
2: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जनजी वाला दांव है। सीएम योगी का जनजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
3: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
2: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
4: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
2: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
3: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
2: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
3: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
2: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी मुखिया मायावती के परिवार का झगड़ा तो मानो खत्म ही नहीं हो रहा है।
2: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है, कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
5: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
2: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
6: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि मान्यवर कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही हैं पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
2: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: बात करेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान की। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में यह चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडीविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा था।
7: जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स, द डेंजर टू इंडिया, मार्क यू, इट इज नॉट कम्युनिज्म, इट इज हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म।
0: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के सीएम योगी ने भी पलटवार किया है। सुनिए योगी क्या कह रहे हैं।
8: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: सियासत में सियासी वार पलटवार तो खूब देखे होंगे आपने, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी हो जाती है। इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्रों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई और अब उसी मिमिक्री पर जबरदस्त सियासी हंगामा बरपा है।
2: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी ने और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
9: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
10: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
9: ग्रेट हैरेसमेंट।
2: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
9: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
10: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
9: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
10: और बताइए,
9: हाँ
10: और बताइए थोड़ा।
9: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ।
2: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
10: और बताइए, और बताइए थोड़ा,
9: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ।
2: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
11: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
12: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
2: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
8: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
2: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
13: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
2: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
14: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
2: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
15: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
2: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
16: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो, चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
2: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे मुंबई में हुए सड़क हादसे की। मुंबई बीएमडब्ल्यू कार हादसे की रोंगटे खड़े करने वाली सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में कार ब्रिज से नीचे गिरते दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी, उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई।
2: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। बीएमडब्ल्यू कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। सीसीटीवी में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
17: उस गाड़ी में चार लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
2: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
18: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे, साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही हुई है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: हाथ में तिल होने पर आदमी बहुत धनवान होता है, क्या नाक के ऊपर तिल होने से जीवन में मुश्किलें बहुत होती हैं? पैर के तलवे में अगर तिल है तो इसका क्या अर्थ है? क्या है शरीर के अलग अलग तिलों का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
4: There is a very famous quote ki history repeat itself.
5: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
6: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
5: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bichara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर सीएम योगी का पलटवार, कहा भारत और भारतीयता के लिए डरावने हैं उनके विचार, देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। यूपी में अपने अपने समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, मेरठ में आज कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और सीएम योगी, अखिलेश ने भी कसी कमर, ओबीसी ने गठबंधन के लिए 2 अक्टूबर तक दिया वक्त। यूपी के देवरिया की रैली में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान, आने वाले दिनों में 4 हिस्सों में होगा उत्तर प्रदेश का बंटवारा, पूर्वांचल राज्य का सीएम राजभर का बेटा होगा। दिल्ली में एसआईआर के दौरान दिखी अफरा तफरी, विदेश मंत्री जयशंकर, लालकृष्ण आडवाणी, धनखड़ समेत कई दिग्गजों को नोटिस, पूर्व सेना प्रमुख सीबीआई निदेशक भी दायरे में। और रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को, तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे ज्योतिष में लक्षण विज्ञान की और लक्षणों में महत्वपूर्ण होता है तिल। तिल का आपके भाग्य से, आपके जीवन से क्या संबंध है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8 बजे तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:15 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम ज्योतिष में लक्षण विज्ञान की बात कर रहे हैं और लक्षण विज्ञान में शरीर के अलग अलग चिन्हों का अर्थ बताया जाता है। तो शरीर पर जो तिल पाए जाते हैं उनका क्या असर पड़ता है? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में लक्षण विज्ञान में शरीर के चिन्ह और लक्षणों के अर्थ की चर्चा की गई है। ये बताया गया है कि शरीर पर पाए जाने वाले अलग अलग चिन्हों का प्रभाव क्या है। इन चिन्हों में तिल, मत्स्य और अन्य विशेष आकृतियां आती हैं। आपके शरीर पर, चेहरे पर, पैर में, पेट पर, अलग अलग हिस्सों में जो तिल होते हैं, इनके माध्यम से बड़ी आसानी से काफी बातों को जाना और समझा जा सकता है। आपके जीवन में आपका मन, आपका स्वभाव और आपकी स्थिति, इसको आपके शरीर के तिलों के माध्यम से जाना जा सकता है। शरीर के तिलों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

रहेगी, धन का लाभ होगा, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सबसे जो प्रोमिनेंट तिल होता है, जो तुरंत दिखाई देता है, वो दरअसल आपके चेहरे पर का तिल होता है। तो चेहरे पर जो अलग अलग जगहों पर तिल पाए जाते हैं, इसका अर्थ क्या है वो जानते हैं। चेहरे पर तिल के अलग अलग अर्थ होते हैं और चेहरे के तिल का संबंध सीधा आपके भाग्य से होता है। अगर आपके गालों पर या गाल पर तिल है तो ये आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है और ऐसे लोग सामान्यतः जीवन में धनवान होते हैं। नाक के ऊपर अगर तिल है तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा अनुशासित बना देता है और जीवन में संघर्ष बढ़ाता है। जिन लोगों के नाक पर तिल होता है, ऐसे लोगों को जीवन में चीजों को पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नाक के नीचे अगर तिल हो तो ऐसे लोगों के बहुत सारे चाहने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम लोगों के साथ जीवन में जुड़ते हैं। अगर आपके माथे पर ललाट पर तिल है तो आप शुरुआत में बहुत संघर्ष करेंगे, थक जाएंगे, मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन बाद में आप धनवान होंगे। अगर आपके होंठों पर तिल है तो जिसके भी होंठ पर तिल होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव के होते हैं और ऐसे लोगों को रोज रोज प्रेम होता रहता है। प्रेम बहुत होता है लेकिन प्रेम के मामले में गंभीर नहीं होते हैं। तिल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक समस्या दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अंशुल ने हमें लिखा है और अंशुल हमें मेल लिखते हैं जयपुर राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1993। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है जयपुर। अंशुल

ऐसा रहेगा। अंशुल, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी भी थोड़ा विलंब है आपके विवाह में। 2027 के सेकेंड हाफ में, जून से दिसंबर 2027 में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा के अनुसार। वैवाहिक जीवन आपका बेहतर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2028 में आप जयपुर छोड़ करके किसी और जगह स्विच करेंगे। स्थान परिवर्तन की संभावना आपके लिए बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शरीर के अन्य स्थानों पर भी तिल होता है, उनके बारे में भी अब जानने का प्रयास करते हैं। हाथ में अगर बीचों बीच में तिल है, किसी पर्वत पर नहीं है, तो ये हाथ के बीचों बीच का तिल सामान्यतः जीवन में धन संपन्नता देता है। लेकिन अगर तिल किसी पर्वत पर हो या अंगुलियों पर हो तो ये ग्रह को खराब करता है, दुर्भाग्य का कारण बनता है। पैरों के तलवे में अगर तिल हो तो ऐसे लोग हमेशा घर से दूर जाते हैं, घर से दूर जाकर के बसते हैं और जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं। अगर आपके सीने पर, छाती पर तिल है तो ये बताता है कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पेट पर तिल है तो ये व्यक्ति को धन तो देता है, लेकिन जिन लोगों के पेट पर तिल होता है ऐसे लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः खराब होता है। कार्यक्रम में तिलों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, पुराने विवाद आपके हल होंगे, वाहन सावधानी से चलाइएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, भावनाओं में, इमोशंस में निर्णय मत लीजिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना

दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के शरीर पर काले तिल होते हैं और कभी कभी कुछ लोगों के शरीर पर लाल तिल भी होते हैं। लाल तिल का अर्थ क्या होता है? देखिए, लाल तिल वैसे शरीर पर कम पाया जाता है, लेकिन लाल तिल संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक है। अगर लाल तिल चेहरे पर है तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। चेहरे पर लाल तिल होना दो विवाह का या खराब पारिवारिक जीवन का कारण बनता है। अगर आपकी भुजाओं पर, बाहों पर लाल तिल है तो ये आर्थिक मजबूती लाता है। ऐसे लोग धन के मामले में संपन्न होते हैं। अगर ये सीने पर है, लाल तिल आपकी छाती पर है, तो व्यक्ति विदेश जाता है या अपने परिवार से, नेटिव प्लेस से दूर जाता है और जीवन में बहुत धन कमाता है। अगर पीठ पर लाल तिल हो तो सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों को युद्ध के दौरान या साहस दिखाते समय दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से, लेजर थेरेपी से अपने चेहरे के, हाथ के तिल निकलवा लेते हैं, लेकिन तिल निकलवा लेने से उसका लक्षण, उसका प्रभाव खत्म नहीं होता। जितना प्रभाव उसको जीवन में देना है उतना प्रभाव वो जरूर देगा, भले ही आप सर्जरी से, लेजर से उसको निकलवा लीजिए। जब तिल अपने आप आता है और अपने आप जाता है तभी उसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त होता है। आपके ऑपरेशन कराने से, लेजर थेरेपी कराने से आप तिल हटा सकते हैं, उसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

हल होगी, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हस्तरेखा दिखाते समय लड़कियों को बायां हाथ दिखाना चाहिए और लड़कों को दाहिना हाथ दिखाना चाहिए। क्या ऐसा उचित है? देखिए, जब भी हस्तरेखाओं का परीक्षण किया जाता है, हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, तो दोनों हाथ देखना चाहिए। जो बायां हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, ये बताता है कि आप प्रारब्ध में क्या ले करके आए हैं, और जो दाहिना हाथ है वो ये बताता है कि इस जीवन में आपको क्या मिलेगा और क्या मिल रहा है। दोनों हाथों को मिला करके ही देखना चाहिए, चाहे आप स्त्री का हाथ देख रहे हो या पुरुष का हाथ देख रहे हो। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में बदलाव होगा। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, कोई शुभ सूचना मिलेगी। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, करियर की समस्या हल होगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर।
अगला प्रश्न मनोरमा जी ने हमें लिखा है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। 24 मई 1968 का जन्म है, जन्म का समय है रात में 10 बजे और जन्म का स्थान है बलिया उत्तर प्रदेश। मनोरमा जी कह रही हैं कि मेरे पतिदेव का देहांत हो गया है और पेंशन के लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूं, क्योंकि मैं पेंशन की अधिकारी हूं, लाभार्थी हूं, लेकिन पेंशन मिलने में दिक्कतें हो रही हैं, तो मुझे पेंशन कब तक मिल सकेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। मनोरमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पति की तरफ से जो आपके अधिकार हैं वो आपको प्राप्त होंगे। मार्च 2027 के पहले आपका पेंशन वाला काम निश्चित रूप से हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, थोड़ा प्रयास करिए, सफलता मिलेगी आपको। ऐसा लग रहा है कि भविष्य में थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, इसलिए आप अपने डाइजेशन और अपनी आंखों का ध्यान बनाए रखिएगा। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार के दिन गुड़ का या मिठाई का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल अर्पित करने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

धनु राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। कन्या राशि के लोगों को बेवजह का तनाव, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। दशमी के दिन यम देवता की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है, इसलिए आज यम देवता की उपासना करें। उनके लिए एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने तेज की संगठनात्मक कवायद। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने दो दिन के दौरे पर नितिन नबीन मेरठ और सहारनपुर में करेंगे बैठकें। जयंत चौधरी के समर्थन में उतरे ओवैसी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल उठाकर बोले, ऐसी बयानबाजी गलत है। देवरिया की रैली में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया, जल्द चार हिस्सों में बंटेगा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल बना तो राजभर समाज का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, हामिद अंसारी के बयान को डरावना भी बताया, बोले ऐसे बयानों से भारत की छवि खराब होती है। दंगों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, देश में दंगे उपद्रव पूरी तरह बंद हो चुके हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सीएम योगी का बयान, बेटियों से छेड़छाड़ करने वाला अपनी मौत का वारंट खुद लिखेगा। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ऐलान, हर विधानसभा सीट पर सपा के वोट 27,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अम्बेडकर प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप पर अखिलेश का दावा, यूपी के 72 जिलों में 151 मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई हैं। अम्बेडकर प्रतिमाओं पर अखिलेश के आरोप पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा, सबसे ज्यादा तोड़फोड़ सपा सरकार में हुई है। अम्बेडकर प्रतिमाओं को लेकर के यूपी में सियासी घमासान मचा है, मंत्री अनिल राजभर का सपा पर हमला, उन्होंने कहा कि दलितों का आरक्षण छीनने के लिए सपा जिम्मेदार। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सियासी घमासान, सीएम योगी ने कहा, हिंदू परंपरा को अपमानित करने की कोशिश। हामिद अंसारी के हिंदू सांप्रदायिकता वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि शहनवाज हुसैन ने कहा, माफी मांगे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी के बयान पर वीएचपी ने हमला बोलते हुए विनोद बंसल ने कहा, नेहरूवादी और कट्टरपंथी सोच से बाहर आए हामिद अंसारी। हामिद अंसारी के बयान का ओवैसी ने बचाव किया, बोले असहमति हो सकती है लेकिन उनकी विद्वत्ता पर सवाल उठाना सही नहीं। पटना में लौकू सम्मान समारोह में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, सम्राट चौधरी ने दिया 5 पांडवों का मन। इंदौर में राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर के सियासी बवाल मचा है, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि राहुल पार्टी छोड़ दें और स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का नेता विपक्ष पर वार, उन्होंने कहा कि राहुल ने सनातन का अपमान करने और लगातार कमजोर करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कॉमेडियंस और जोकरों की पार्टी बनकर रह गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने भी राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पिछला रिकॉर्ड देखें तो वो जहां भी गए कांग्रेस पार्टी को बर्बादी का सामना करना पड़ा। दिल्ली एसआईआर की सूची में कई बड़े नामों को नोटिस जारी की गई है, लिस्ट में चुनाव आयुक्त एस एस संधू, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। एसआईआर के घेरे में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और पूर्व थल सेना प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी को भी परिवार समेत नोटिस मिला है। एसआईआर के दायरे में जज से लेकर के वरिष्ठ अफसरों तक को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई, विदेश सचिव विकास विक्रम मिश्री समेत कई बड़े नाम भी रिकॉर्ड की जांच में शामिल हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और परिवार को भी एसआईआर का नोटिस जारी किया गया। पुराने वोटर रिकॉर्ड से नाम नहीं जोड़ने और नाम में अंतर के चलते जारी किया गया है नोटिस। एसआईआर नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है। 29 अक्टूबर तक बीएलओ के पास दस्तावेज जमा कर सकेंगे मतदाता, 4 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, ऐसा कहना है चुनाव आयोग का। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के समापन से पहले दत्तात्रेय होसबोले का एकजुटता पर जोर, बोले समाज के अंदर भेदभाव मिटाना होगा। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत की तरक्की से पूरी मानवता को फायदा होगा, पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। टाटा विवाद में कोर्ट तक पहुंचने की नौबत पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जताया दुख, कहा शेयरधारकों के बुनियादी अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान प्रसाद स्थल पर मांस फेंकने का आरोप, पुलिस ने नॉनवेज सामग्री की बात कही, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। गणेश उत्सव के प्रसाद को लेकर के विवाद पर बीजेपी ने हमला, करुण सागर ने घटना को साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। सीएम भूपेंद्र पटेल की वडोदरा की करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट की सौगात, मुख्यमंत्री ने 1,297 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और शुभारंभ भी किया। गंभीरा ब्रिज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक का भी उद्घाटन किया गया। ब्रिज से वडोदरा और आनंद के बीच अब सीधा संपर्क बहाल हो गया है। 29 करोड़ की लागत से यह स्मारक तैयार किया गया है। इस विकास पैकेज में 593 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी शामिल है। सड़क, पुल, आवास, पानी और ड्रेनेज से जुड़े काम भी शामिल है। कटक में उड़ीसा प्रो T20 लीग का आगाज किया गया। सीएम मोहन चरण मांझी ने बारामती स्टेडियम में किया उद्घाटन। ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी समारोह में शामिल हुए। 6 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। 29 सितंबर तक खेला जाएगा यह टूर्नामेंट। यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में इंदौर के व्यापारियों का नो यूपीआई डे, 23 सितंबर को 2,000 से अधिक भुगतान नहीं लेंगे।
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बुलडोजर एक्शन, सड़क चौड़ीकरण की जद में आए 3 मकान ध्वस्त किए गए। तेलंगाना के जोगलम्बा, गढ़वाल और वनपथी जिले में सिंचाई पानी को लेकर के किसानों का गुस्सा फूटा। अधिकारियों ने विवाद के बाद खोले प्रियदर्शनी जुराल कैनाल के गेट। एमपी के आगर मालवा हादसे के बाद मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला, मां बगुला मुखी मंदिर में रात 8 बजे के बाद हवन पर रोक लगाई गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। मुंबई में शिवडी चराजा का भव्य अवतार, अंडर वाटर द्वारका की अद्भुत थीम, गणपति पंडाल की शानदार सजावट। शिवडी चराजा में पानी के अंदर सजी द्वारका नगरी, समुद्री जीव और रोशनी ने बढ़ाई भव्यता, होलोग्राफिक प्रस्तुति बनी खास आकर्षण। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लालबाग राजा के दरबार में लगाई हाजिरी, पत्नी रितिका सचदे के साथ बप्पा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। लालबाग चराजा के दरबार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर धवल कुलकर्णी, पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में लालबाग चराजा की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल, आस्था और भक्ति में सरोवर नजर आए गजानन के भक्त। पुणे में असम राइफल्स के डीजी विकास लखेड़ा ने गणपति की आरती की, भाव साहब रंगारी पंडाल में लिया बापा का आशीर्वाद। जालना में रामायण थीम पर अनोखा गणपति पंडाल देखने को मिला, रामायण का प्रसंग देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, अनोखी प्रस्तुति ने भी श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के ओजोन शील्ड की शुरुआत, पूर्व आईपीएस किरण बेदी और एमडी सुभाष सहगल ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए खास प्रदर्शनी सजी, द स्पेस इन बिटवीन आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग और मूर्तियों के बीच संवाद की शानदार प्रस्तुति। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवि चव्हाण के खास मौके पर केंद्र से महाराष्ट्र तक बीजेपी नेताओं की मौजूदगी, सरकार और संगठन के नेताओं ने पहुंचकर दी शुभकामनाएं। औली में चल रहे भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के साहसी और जांबाज मिलिट्री डॉग्स ने किया शानदार प्रदर्शन। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन से रविवार को भारतीय एयर चीफ मार्शल और जापान की सेना प्रमुख ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। दोनों एयर चीफ ने एयरफील्ड के ऊपर फ्लाई पास कर एयरबेस सुरक्षित लैंडिंग की। दोनों देशों के रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान। ऋषिकेश में रामझूला के पास नदी में फंसी महिला को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया, पहाड़ी से नीचे उतरते नदी के बहाव में फंस गई थी महिला। गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार में भारी बारिश से उफना नाला, झरने में फंसे 35 यात्रियों का सफल रेस्क्यू, दामोदर कुंड में बही बाई। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकरा कर वोल्वो कार में लगी आग, कार चालक डॉक्टर की जिंदा जलकर मौत हुई। हादसे का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, टक्कर लगते ही आग की चपेट में आई कार। मुंबई में फर्नीचर गोदाम में लगी भयंकर आग, पूरी कंपनी जलकर खाक हुई। पंजाब के मुक्तसर साहिब में कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान। गाजियाबाद के साहिबाबाद में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखी आग के लपटे और गुबार। कटरा के हेलीपैड टर्मिनल में लगी आग पर आगे घंटे में काबू पाया गया, लेकिन टिकट काउंटर के कंप्यूटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में कचरे में धमाका, घास काटने गए दो सगे भाई झुलस गए। लुधियाना में गृह प्रवेश की पार्टी में 25 से 30 राउंड तक फायरिंग की गई, दो युवक घायल हो गए, पहले क्रेन से तोड़ी दीवार फिर गोलियां बरसाई। सहरसा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, स्मैक के पैसों से विवाद में दोस्त ने दोस्त को गोली मारी थी। पैसों के लेन देन को लेकर के चार दोस्तों में पहले झड़प हुई, फिर विवाद बढ़ने पर अभिजीत की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी आर्यन को गिरफ्तार किया, दूसरे की दबिश जारी है। सहारनपुर नकली करेंसी कांड में एनआईए ने बड़ा एक्शन कर लेते हुए दो को गिरफ्तार किया, 18 करोड़ की जाली नोट की खंगाली जा रही है पूरी कड़ी। मुंगेर में गणेश पूजा में डांस के दौरान टी शर्ट फटने पर विवाद, लाठी पथराव में घायल मजदूर की मौत, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आसनसोल में उगाही के अधिकारों को लेकर किन्नरों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, चाकू लाठी से डंडे हमले का आरोप, 8 लोग गिरफ्तार। सूरत में गैस चोरी का बड़ा खुलासा, एचपीसीएल कर्मचारी की मिलीभगत से टैंकर चोरी कर सिलेंडर में भरते थे गैस, 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के राजगढ़ में पुलिस आरक्षक से मारपीट और वर्दी फाड़ने के आरोपियों को पुलिस ने सिखाया सबक, बाजार में जुलूस निकालकर कान पकड़कर लगवाई उठक बैठक। भोपाल में चलती मोटरसाइकिल पर पीछे से गोली मारकर युवक की हत्या, निशानपुरा में दोस्त गिरफ्तार। हरदोई में दोस्त से विवाद के बाद एक व्यक्ति को कार से बांधकर 2.5 किलोमीटर तक घसीटा गया, हिरासत में आरोपी। मेहसाणा में खाद्य विभाग और सीआईडी की छापेमारी में एक फैक्ट्री में सौंपा मिलावट का भंडाफोड़, करीब 5,000 किलो माल जब्त। मथुरा में वृंदावन यात्रा के दौरान यमुना में डूबा 18 साल का अग्निवीर, तलाशी अभियान जारी। बेतिया के नरकटियागंज में जमीन के 2 साल पुराने विवाद को लेकर के हिंसक झड़प, दो पक्षों में बहस के बाद लाठी डंडों से मारपीट, 6 लोग घायल। भोपाल में पत्नी को दूसरे आदमी के साथ देख भड़का पति, देर रात 20 सड़क पति ने मचाया भारी हंगामा, पति कर रहा तलाक की मांग। खगड़िया में छात्रों और ग्रामीणों के बीच झड़प से स्कूल बना अखाड़ा, जमकर चले लाठी थप्पड़ लात घूंसे, लड़ाई का वीडियो वायरल। चंदौली में गांजा तस्करी के लिए कंटेनर बने गुप्त चैंबर से 1.25 करोड़ का गांजा बरामद, एक गिरफ्तार। जालौन में 3 अवैध पिस्तौल, 12 कारतूस, 53,580 नगद के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार, नेपाल कनेक्शन की जांच जारी। भारतीय मेंस हॉकी टीम का एशियन गेम्स में धमाकेदार आगाज, इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। दिलप्रीत सिंह के 4 गोल की मदद से भारतीय मेंस हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 से दमदार जीत हासिल की। पूरे मैच में सुखजीत और दिलप्रीत ने बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिली, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में किया धमाकेदार आगाज।
47 मिनट में जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। एक ही मिनट बाद ही सुखजीत ने अपना दूसरा फील्ड गोल किया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। भारत कल श्रीलंका के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगा। इंडोनेशिया को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम के हौसले बुलंद हैं।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर उधर,
3: करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: पापा,
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ,
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
13: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
18: यार लोन भूल गया। मैरी,
19: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
18: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन्ड कार लोन, टू व्हीलर लोन।
2: There's nothing small about it.
18: Ujjivan, nothing small about us.
4: In association with Hint, ek hint to dete.
7: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: Vimal, bolo zubaan kesri.
6: There is a very famous quote ki history repeat itself.
9: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
14: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
9: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara cover mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: इंदौर में राहुल गांधी का मंच कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा रोजगार व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख भी मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से, और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
1: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
1: ग्रेट हैरेसमेंट।
0: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
1: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
1: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
2: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
1: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
0: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर। बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग माँ का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक माँ का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी। किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है। लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहाँ भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करी।
4: ये झूठ की गूंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मंच शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली में एसआईआर के दौरान दिखी अफरा तफरी। विदेश मंत्री जयशंकर, लालकृष्ण आडवाणी, धनखड़ समेत कई दिग्गजों को नोटिस। पूर्व सेना प्रमुख, सीबीआई निदेशक भी दायरे में। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा भारत और भारतीयता के लिए डरावने हैं उनके विचार, देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। यूपी में अपने अपने समीकरण साधने में जुटी सभी पार्टियां, आज मेरठ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और सीएम योगी। अखिलेश ने भी कसी कमर, ओवैसी ने गठबंधन के लिए 2 अक्टूबर तक का समय दिया। यूपी के देवरिया की रैली में मंत्री ओपी राजभर ने दिया बड़ा बयान, आने वाले दिनों में 4 हिस्सों में होगा उत्तर प्रदेश का बंटवारा, पूर्वांचल राज्य का सीएम राजभर का बेटा होगा। और रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को, तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह 8 बजे में आज की 8 बड़ी खबरों से आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। वो 8 बड़ी खबरें कौन सी होंगी? पहली खबर कि अंसारी के बयान पर घमासान मचा है, आखिर किस बात पर मचा है ये बवाल। दूसरी बड़ी खबर ये कि दिल्ली में SIR का जो असर दिखा है उसमें कैसे बड़े बड़े नामों को नोटिस मिल गई है और नोटिस मिलने के बाद अब हलचल बढ़ गई है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मिमिक्री पर बीजेपी क्यों खफा है, कांग्रेस पर क्यों बीजेपी के नेता बरस रहे हैं। तो अगली खबर यह भी कि यूपी में ओवैसी ने गठबंधन की डेडलाइन तय कर दी है, पूरी खबर यह भी बताएंगे आपको। और साथ ही आपको बताएंगे कि यूपी के बंटवारे पॉलिटिक्स पर आखिर आगे क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो आगे नितिन नवीन का यूपी दौरा, मेरठ से सहारनपुर तक बीजेपी का सियासी प्लान क्या है, हम आपको यह भी बताएंगे। ये भी खबर दिखाएंगे कि इटली के स्कूलों में बुरका नकाब पर बैन लगाने की तैयारी क्यों है, मेलोनी सरकार ने आखिर बड़ा फैसला क्यों लिया है। तो आपको यह भी खबर दिखाएंगे कि कैसे मॉस्को पर बीच चुनाव के दौरान रूस में यूक्रेन के सबसे बड़े हमले कैसे हुए हैं, इससे भी जुड़ी पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के 5 नगर निगमों में आज मेयर का चुनाव होना है। उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर, इन तमाम नगर निगम में मेयर के पद पर आज चुनाव होने हैं। सुबह 10 बजे से यहां पर पोलिंग होगी, दोपहर 2 बजे काउंटिंग होगी। तो राजस्थान के नगर निगम में मेयर का आज चुनाव होना है और मेयर के चुनाव इसके पहले जो शहरी निकाय चुनाव हुए थे बीजेपी को उसमें बड़ी जीत हासिल हुई थी। और अब 10 बजे जब वोटिंग होगी तब तमाम जो पार्षद चुने गए हैं वो नगर निगम में मेयर के लिए मतदान करेंगे और दोपहर 2 बजे से ही मतगणना यानी शाम होते होते पता लग जाएगा कि अजमेर, पाली, ये तमाम जो राजस्थान के नगर निगम में हैं आखिर वहां पर मेयर किसका होगा। तो अब देखिए, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर, ये 5 वो नगर निगम है जो बेहद बड़े शहर हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, इसके पहले जो परफॉर्मेंस थी उसमें बीजेपी ने किसी तरह आप देखे कि अच्छी संख्या जुटाई, अब मेयर का चुनाव होना है। मेयर के चुनाव के पहले तो हमने रात को ये भी देख लिया कि हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा कि भाई गिरफ्तारियां ना करिए, लोगों को वोट डालने दीजिए। क्या कुछ हो रहा है? शरद, आवाज मिल रही है आपको हमारी? ठीक है, शरद का रुख दोबारा कर लेते हैं। जब तक वो लौटेंगे तब तक आपको एक बार फिर बता दें, 5 नगर निगम मेयर का चुनाव होना है। इसके पहले जो निकाय चुनाव थे शहरी निकाय चुनाव, उसमें वार्ड के जो सदस्य होते हैं वो चुने गए, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर। अब यहां पर जब निकाय चुनाव होंगे तो 10 बजे वोटिंग शुरू होगी। जितने सभासद चुने गए यानी जो वार्ड के मेंबर चुने गए हैं वो वोटिंग करेंगे मेयर के लिए। अब मेयर कौन होगा इसी पर नजर होगी। अब आपको पता है मेयर के जब जो पार्षद चुने गए थे उनको अलग अलग होटलों में रखा गया था, एक जगह चित रखा गया था, खूब ड्रामा जो हुआ था आपने वो तस्वीरें देखी थी। अब उस सारी कवायद मशक्कत के बाद 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे 4 घंटे जब वोटिंग होगी तो राजस्थान के 5 नगर निगमों में मेयर कौन होगा इसका भी फैसला हो जाएगा। अब ये मेयर का चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो महापौर होता है वो फैसला लेता है, वो मुखिया होगा उस सभा का, उस शहर का जो निकाय संस्था है, और इसीलिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। वो भी तब जब इस तरह की वोटिंग हुई, इस वोटिंग के बाद सभासद चुने गए, खूब ड्रामा हुआ था बीती रात। तो अचानक जब एक सभासद की गिरफ्तारी की बात हुई तो वहां पर अदालत को भी कहना पड़ा कि भाई वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो एक बार शरद कुमार लगता हमारे साथ जुड़ गए। शरद, क्या कुछ हो रहा है? 10 बजे तो वोटिंग शुरू हो जाएगी लेकिन सभासदों के चुनाव से लेकर के अदालत तक का दरवाजा, गिरफ्तारियां, बाड़े बंदी और उन सब के बाद आज मेयर पद के लिए वोटिंग होनी है।
1: बिल्कुल आशुतोष, से यहाँ पर अभूतपूर्व घटनाक्रम चला। अब 9 और 11 सितंबर के मतदान के बाद आज 273 निकायों में चुनाव है, बाकी में करीब 32 निकायों में निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिसमें से 7 नगर निगम भी हैं जहाँ पर आज चुनाव होंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में 25 सितंबर को चुनाव होंगे, जबकि अजमेर, पाली, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, इन जगहों पर जो भरतपुर, भिलवाड़ा, इन जगहों पर आज चुनाव होंगे। हालांकि अजमेर, पाली और बीकानेर को लेकर सबकी नजरें लगी हुई है क्योंकि यहां पर बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत है, फिर भी तोड़फोड़ की आशंका है। पाली में कांग्रेस ज्यादा है उसके बावजूद भी वहां बगावत हो गई है, और अजमेर के पार्षद देर रात कर्नाटक से जयपुर पहुंचे, वहां पर अशोक गहलोत से मिले और सुबह वहां पहुंचे हैं अजमेर, और आज 10 बजे वोट डालेंगे। करीब 32 नगर निकायों में निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिसकी वजह से 273 में यहाँ चुनाव हो रहा है, इसमें से 41 नगर परिषद है।
0: शरद, आप नजर बनाए रखें, लगातार इससे जुड़ी अपडेट भी अपने तमाम दर्शकों को देते रहे। अब सोचिए कहां पर विधानसभा चुनाव में ही तोड़फोड़ होती थी, अब तो निकाय चुनाव में भी इसकी नौबत आने लगी। रुक करते हैं अगली खबर का, जापान से आ रही बड़ी खबर, जहां एशियन गेम्स में भारत को एक और मेडल मिल गया है। देखिए सप्ताह का पहला दिन शुरुआत अच्छी खबरों के साथ। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा ने भारत ने रजत पदक जीता है। रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लो और पार्थ माने के तिकड़ी ने ये सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। आज भी कई इवेंट्स हैं जिनमें टेनिस, हॉकी, स्विमिंग, जहां भारत को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन एशियन गेम शूटिंग में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ये जो सिल्वर मेडल मिला है भारत के खिलाड़ियों की, ये बड़ी कामयाबी। 25 में SIR के दौरान आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी, सुनी, देखी होंगी ना। आइए अब बात करते हैं दिल्ली में SIR की। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर के हलचल तेज है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली SIR में कई दिग्गजों को नोटिस मिला है। नाम सुन लीजिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, चुनाव आयुक्त SS संधु, देखिए जो चुनाव करवाते हैं, चुनाव आयुक्त SS संधु, पूर्व सेना प्रमुख, इन सब के बड़े नामों को वोटर रिकॉर्ड में गड़बड़ी या पुराने रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं होने पर नोटिस मिले हैं। चुनाव आयोग के जो कार्यालय है उन्हें सफाई दी है। सफाई सुनिएगा, नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूरे परिवार को नोटिस मिला है। उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नोटिस मिला है। तो आप सोचे कि SIR में ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में आया है, कुछ तो वो हैं जो चुनाव करवाते हैं। अब आप सोचिए कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सेना प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व उप प्रधानमंत्री एस जयशंकर, देश के विदेश मंत्री SS संधु, चुनाव आयुक्त जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पूर्व सेना प्रमुख प्रवीण सूद, CBI निदेशक, इन सब को SIR में नाम मिल गया है। अब कपिल सिब्बल कल कह रहे थे कि हमें तो नोटिस भी नहीं मिला, मुझे तो प्रेस को पता चला। भी देखिए, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके और पूरे परिवार, मीर सिसोदिया माता पिता, क्या दलील है, इनके नाम में गड़बड़ी है, तो इनको नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद क्या इन सबको कागज देना पड़ेगा? क्यों मिला नोटिस, कारण भी देख लीजिए। चुनाव आयोग की ओर से जब लिस्ट में नाम आया उसमें कहा गया है कि SIR के रिकॉर्ड में जांच है, यानी पिछला जो SIR होगा उससे मैच कर रहे हैं। डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है, एक बड़ी है कि नाम में गड़बड़ी है, और नाम में गड़बड़ी के चलते डिस्क्रिपेंसी की लिस्ट में इनका नाम आ गया है, यानी इनको भी माता पिता के नाम में भी गड़बड़ी है। अब ये सोचिए, ये पूरी प्रक्रिया है। अब क्या है, नोटिस मिलने का मतलब क्या है? लग रहा होगा ना कि बंगाल में बहुत कुछ हुआ था, यहां क्या होगा? इसमें क्या है, प्रक्रिया के तहत जब आपको नोटिस मिला है आपको जवाब देना होगा। हाँ, BLO को बुलाइए, मिलिए, कुछ भी कीजिए, आपको जवाब देना होगा। जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। अब आपको एक और सरदर्दी है, जिनका नाम आया है अपने कागज उठाइए, ERO के सामने जाइए, सुनवाई कीजिए, ERO वहां जांच करेगा, आपको अपने दस्तावेज जानेंगे। सारा काम धाम छोड़िए, पहले इसमें लगिए, बिना सुनवाई नाम डिलीट नहीं होंगे, ऐसा फिलहाल चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, 29 अक्टूबर तक नोटिस का निपटारा करना होगा। तो जिनका नाम मिला है, क्या आम क्या खास, कागज उठाइए, ERO के सामने जाइए, पूरी प्रक्रिया से जूझिए। जरा देखिए रिपोर्ट।
2: दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान डेटा वेरिफिकेशन को लेकर कई बड़े नामों को नोटिस मिले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चुनाव आयुक्त SS संधु, पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CBI निदेशक प्रवीण सूद के रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आए हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CA मनीष सिसोदिया और उनके परिवार को भी नोटिस मिला है। उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के रिकॉर्ड में सेल्फ नेम मिसमैच, जबकि बेटे मीर सिसोदिया के रिकॉर्ड में पेरेंट नेम मिसमैच दर्ज किया गया है। वहीं एस जयशंकर और उनकी पत्नी समेत कई लोगों के रिकॉर्ड अनमैप्ड विथ लास्ट SIR कैटेगरी में है, यानी मौजूदा रिकॉर्ड को 2002 की पिछली SIR वाली वोटर लिस्ट से लिंक नहीं किया जा सका। आडवाणी परिवार के भी 3 सदस्यों को इसी तरह का नोटिस मिला है। कई मौजूदा और पूर्व नौकरशाहों के रिकॉर्ड में भी पुराने डेटा से लिंक न होने या नाम और पारिवारिक विवरण में अंतर पाया गया है। लेकिन चुनाव कार्यालय ने साफ किया है कि ये नोटिस महज डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है। नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है, मतदाताओं को जवाब देने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का मौका मिलेगा, बिना सुनवाई के नाम डिलीट नहीं किया जाएगा। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO के सामने जवाब और जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसके बाद अधिकारी मामले की जांच कर आदेश जारी करेंगे। नोटिस के निपटारे की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, जबकि दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होनी है। यानी फिलहाल एसआईआर के तहत सामने आए ये नोटिस मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का अंतिम फैसला नहीं है। असली तस्वीर जवाब, दस्तावेजों की जांच और ईआरओ के आदेश के बाद साफ होगी। इसी प्रक्रिया और सामने आई विसंगतियों को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की राय भी अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अब सोचिए, अगर खास लोगों का नाम इस तरह लिस्ट में आया, उनको भी जाकर के चक्कर लगाने होंगे, कागज देने होंगे, तो आम लोगों के साथ क्या कुछ होता होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय यूपी दौरा आज से शुरू हो रहा है। मेरठ से इस दौरे की शुरुआत होगी, जहां नितिन नवीन युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पश्चिम यूपी के शक्ति केंद्रों की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। मंगलवार को मेरठ के बाद उनका सहारनपुर जाने का भी कार्यक्रम है, जहां प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। नितिन नवीन के साथ इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आखिर यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव, पश्चिम यूपी अपने आप में सबसे बड़ा इलाका, तो किस तरह की तैयारियां होंगी। अब 2 दिन का दौरा है तो मेरठ के बाद सहारनपुर, यूपी में चुनावी माहौल बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान, लेकिन उसके पहले ये देखिए कि नितिन नवीन के 2 दिवसीय यूपी दौरे में आखिर क्या होना है। युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। जेन जी अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टारगेट है, तो युवा सम्मेलन, इसी के साथ पश्चिम यूपी के शक्ति केंद्रों की बैठक, ताकि रणनीति जो हो वो रणनीति में आगे वो क्या करेंगे उस पर भी काम होगा। पूर्व पदाधिकारी जो बीजेपी के रहे हैं, नई टीम और पुरानी टीम के बीच समन्वय हो, इसी के साथ प्रबुद्ध और विशिष्ट लोगों के साथ भी संवाद होगा। यानी संगठन को जोड़ना नए पुराने वोटर के साथ। और मेरठ के बाद फिर नितिन नवीन का एक कार्यक्रम सहारनपुर में होगा। इस कार्यक्रम में उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, मेरठ के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी देंगे। तो यूपी में कुल अब खाका खिंच रहा है, तो शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो रही है, लेकिन सियासत वहां दूसरी तरफ भी करवट ले रही है क्योंकि यूपी में चुनावी माहौल बन चुका है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कानपुर की एक रैली में कहा कि बीजेपी को हराना है तो विपक्ष वाले मुझे भी गठबंधन में शामिल कर लें। इसके पहले भी आपको याद होगा, ओवैसी ने एक बार फिर एक चुनाव में कहा था कि उन्हें विपक्ष का हिस्सा होना है। ओवैसी ने चेतावनी कहा कि 2 अक्टूबर तक समय है, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो मुझे मत कहना कि बीजेपी दोबारा क्यों आ गई सत्ता में। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव से गठबंधन करने की बात की इच्छा जताई है, लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल भाव नहीं दे रहे हैं। तो सुनिए ओवैसी ने क्या कहा।
3: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद

0: अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: तो ओवैसी ने डेडलाइन दे दी है, अखिलेश यादव इस पर क्या जवाब देंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ओवैसी समाजवादी पार्टी पर हमलावर भी है। ओवैसी ने जयंत चौधरी के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जयंत चौधरी के परिवार निजी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए तो ये उनका अपना फैसला है, लेकिन उन पर निजी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब क्या है, सपा और जयंत चौधरी के बीच जो बात विवाद चल रहा है उसको लेकर के ओवैसी ने ये जवाब दिया है।
2: जयंत चौधरी को और उनकी वाइफ को, जो मेरी बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बीजेपी में है, मैं उनके खिलाफ हूँ, मगर किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि इस तरह से बिल्कुल ही लो काइंड ऑफ अ लैंग्वेज में और इस तरह से उनके बारे में बात करें। वो आपके साथ थे, हम भी जयंत चौधरी से मिलते हैं पार्लियामेंट में, उनको हम बोलते हैं कि चौधरी साहब आपने गलत किया, वो हमारा हाथ पकड़ते, बैठते, बात करते, वो बोलते हमारी पार्टी का फैसला है। मगर जो कुछ भी उनके बारे में कहा गया उससे ना सिर्फ जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह, उनकी बिरादरी को तकलीफ हुई होगी, बल्कि वो एक्सपोज करता है उस तरह की शख्स के इस वाहियात बयान को भी कि कितना उनमें, बोलते ना कि सेल्फ एंटाइटलमेंट का गुरूर है कि मैं जिसको चाहूंगा बना दूंगा, जिसको चाहो खत्म कर दूंगा। देखिए, लोकशाही में, डेमोक्रेसी में जनता हमको कामयाब करती है ऊपर वाले के कर्म से, और ऊपर वाला इज्जत देता है। अगर कोई इंसान ये समझेगा कि मैं किसी को ये करूंगा वो करूंगा तो उसका अहंकार है, वो बहुत गलत बात है।
1: उधर उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से सियासत गर्मा सकती है। दरअसल देवरिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सामाजिक समरसता रैली में राजभर ने दावा कर दिया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो राजभर समाज का बेटा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। देवरिया में ओम प्रकाश राजभर की इस बयान पर बवाल।
3: मेरी मंशा है आने वाले दिनों में प्रदेश का बंटवारा होगा, प्रदेश का 4 भागों में बंटवारा होगा। जिस दिन पूर्वांचल राज्य अलग होगा, सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री कोई जाति का होगा तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री पूर्वांचल का होगा। इसको ध्यान में रख करके काम करना, किसी के बहकावे में आकर के कि सपा में चले जाओ, बसपा में चले जाओ, कांग्रेस में चले जाओ, तो 60 साल तो कांग्रेस ने शासन किया, 4 बार बसपा ने, 4 बार सपा ने शासन किया, हमको आपको दिया क्या? कुछ दिया हो तो बताओ।
1: उधर एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के सांप्रदायिकता के लिए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने अंसारी के बयान को भारत, भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा के खिलाफ बताया। बीजेपी और वीएचपी ने भी अंसारी पर निशाना साधा है।
4: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग।
5: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान ने सियासी बहस को गर्मा दिया है। एजे नूरानी मेमोरियल लेक्चर में अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था।
4: जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया, एंड आई कोट दोज वर्ड्स, द डेंजर to India. Mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism.
5: इसके बाद बीजेपी ने अंसारी के बयान पर मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इस बयान के जरिए सनातन और हिंदू परंपरा को निशाना बनाया गया है।
6: और सचमुच डरावने वक्तव्य है, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत

0: भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
1: वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े मौलाना साजिद राशिदी ने भी हामिद अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
2: जब आप पद पर थे, आप मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते थे, उस वक्त तो आपने किया नहीं। अब आपको कोई पूछ नहीं रहा है तो जानबूझकर आप अपने आप को जनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी अभी जिंदा हूँ, मैं भी अभी हयात हूँ, मेरे बारे में भी सोचो।
1: उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी अंसारी के बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।
3: अरे हामिद अंसारी जी, जिस थाली में खाते उसमें छेद करना बंद करिए। ऐसा बोलने से पहले कम से कम आपने शीशे में अपना चेहरा तो देख लिया होता।
4: अगले वर इटली से, जहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही हर कक्षा में विदेशी छात्रों की संख्या तय करने की भी योजना है। मेलोनी ने कहा है कि इन प्रस्तावों को जल्दी ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक स्कूलों में ऐसा कोई भी चेहरा ढकने वाला परिधान पहनने की अनुमति नहीं होगी जिसमें चेहरा पूरी तरह छिप जाए। मेलोनी ने कहा कि स्कूल में चेहरा खुला होना चाहिए और किसी परंपरा के नाम पर किसी लड़की को अपना चेहरा छिपाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सरकार हर कक्षा में विदेशी छात्रों की अधिकतम संख्या तय करने पर भी विचार कर रही है। मेलोनी का कहना है कि अगर बड़ी संख्या में ऐसे छात्र एक ही कक्षा में हों जिन्हें इतालवी भाषा समझने में परेशानी हो तो उनके लिए भाषा सीखना और स्कूल में घुलना मिलना मुश्किल हो सकता है। उधर नवी मुंबई में भीषण आग लग गई। नवी मुंबई के दिघा इलाके में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी है। आग के चलते पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया है। बड़ी खबर आ रही है नवी मुंबई से। लकड़ी के सामान की वजह से यह आग और लगातार फैलती गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मशक्कत करना पड़ा आग पर काबू पाने के लिए। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन ये तस्वीरें सामने आ रही। देखिए जैसे लकड़ी का गोदाम था और जब आग लगी तो लकड़ी के चलते आग लगातार फैलती रही। पूरा का पूरा फर्नीचर गोदाम आग की चपेट में आ गया। लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। दीघा का इलाका है नवी मुंबई का, जहां पर गोदाम में आग लगी। आग भीषण थी और ऐसे में आग बुझाने के लिए फायर टेंडर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और आइए अब देखते हैं फटाफट खबरें सुपरहिट में। लुधियाना में हाउस वार्मिंग पार्टी में 25 से 30 राउंड फायरिंग, दीवार तोड़कर हथियारबंद लोगों के घुसने का आरोप, दो घायल, जमीन विवाद से जुड़ा मामला। मेहसाणा में फैक्ट्री पर छापे में 4,898 किलो मिलावटी सौंप जब्त, खाद्य विभाग सीआईडी की कार्यवाही, 2,47,000 रुपए का माल बरामद, 17 किलो हरा रंग बरामद किया गया। हरदोई में दोस्त से विवाद के बाद कार से 2.5 किलोमीटर घसीटने का आरोप, बबलू गंभीर हालत में मिला, बेटे से लूटपाट का आरोप, आरोपी हिरासत में। भोपाल में चलती बाइक पर पीछे से युवक को गोली मारी गई, मौत निषादपुरा में वारदात, परिवार का आरोप, आलिम गिरफ्तार, सीसीटीवी से जांच जारी। आसनसोल में कलेक्शन के विवाद में दो ट्रांसजेंडर गुटों में हिंसक झड़प, 8 लोग घायल, 4 हिरासत में गिरफ्तार, कमान को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन। बेतिया में 2 साल पुराने जमीन विवाद में हिंसक झड़प, आधा दर्जन लोग घायल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में कंटेनर के गुप्त चैंबर से 251 किलो गांजा बरामद, करीब 1.25 करोड़ रुपए की खेप जब्त, एक गिरफ्तार, बोकारो से वाराणसी ले जाया जा रहा था। हैदराबाद में गणेश कार्यक्रम के दौरान सातवीं मंजिल से मांस फेंकने का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, आयोजकों की शिकायत पर आगे की कार्यवाही जारी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक
2: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ,
5: ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
17: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
18: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB One App, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
19: PNB One App, बैंकिंग का कैप्टन।
14: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
4: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
4: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
2: Okay.
4: Ujjivan, nothing small about us.
5: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
11: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roongta steel TMT se bana.
13: Roongta nahi, to ghar strong nahi. Roongta steel TMT bar, ekdam solid.
17: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: दिल्ली में SIR की कवायद में दिग्गजों को नोटिस, विदेश मंत्री जयशंकर, लालकृष्ण आडवाणी, धनखड़ समेत कई बड़े चेहरों से जवाब तलब, पूर्व सेना अध्यक्ष, पूर्व CBI निदेशक भी जांच के दायरे में। हामिद अंसारी के दक्षिणपंथ सांप्रदायिकता बयान को वामपंथ से बड़ा खतरा बताने पर घमासान, सीएम योगी का पलटवार, कहा भारत और भारतीयता के लिए डरावने हैं उनके विचार, देश की छवि खराब करने का आरोप। यूपी में समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, आज मेरठ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और सीएम योगी, अखिलेश ने भी कसी कमर, वैसे ने गठबंधन के लिए 2 अक्टूबर तक समय दिया। यूपी के देवरिया के रैली में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा आने वाले दिनों में 4 हिस्सों में होगा उत्तर प्रदेश का बंटवारा, पूर्वांचल राज्य का सीएम राजभर का बेटा होगा। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को, तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: राजस्थान में 273 निकाय में आज अध्यक्ष पद के चुनाव, 5 नगर निगमों में मेयर और 41 नगर परिषदों में सभापति चुने जाएंगे। उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर में आज मेयर पद का चुनाव, 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन चुने जाएंगे। राजस्थान निकाय चुनाव में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा, वोटिंग खत्म होते ही शुरू होगी मतगणना। 32 निकायों में निर्विरोध चुनाव पहले ही हो चुका है, 30 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। 25 सितंबर को होंगे जयपुर, जोधपुर, कोटा के नगर निगम के चुनाव, तीनों में बीजेपी के पास बहुमत है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने तेज की संगठनात्मक कवायद, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर नितिन नवीन मेरठ और सहारनपुर में करेंगे बैठकें। जयंत चौधरी के समर्थन में उतरे ओवैसी, अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल उठाकर बोले ऐसी बयानबाजी गलत है। देवरिया की रैली में ओमप्रकाश राजभर का दावा, जल्द 4 हिस्सों में बटेगा उत्तर प्रदेश, और अगर पूर्वांचल बना तो राजभर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला, हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, बोले ऐसे बयानों से भारत की छवि खराब होती है। दंगों का जिक्र करते हुए योगी ने कहा देश में दंगे और उपद्रव पूरी तरह बंद हो चुके हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सीएम योगी ने बयान देते हुए कहा बेटियों से छेड़छाड़ करने वाला अपनी मौत का वारंट खुद लिखेगा। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ऐलान, हर विधानसभा सीट पर सपा के वोट 27,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य। अम्बेडकर प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप पर अखिलेश का दावा, यूपी के 72 जिलों में 151 मूर्तियां क्षतिग्रस्त। अम्बेडकर प्रतिमाओं पर अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा सबसे ज्यादा तोड़फोड़ सपा सरकार में हुई। अम्बेडकर प्रतिमाओं को लेकर के यूपी में सियासी घमासान, मंत्री अनिल राजभर का सपा पर हमला, दलितों का आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। हामिद अंसारी के बयान पर सियासी घमासान, सीएम योगी ने कहा हिंदू परंपरा को अपमानित करने की कोशिश की गई। हामिद अंसारी के हिंदू सांप्रदायिकता वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा शहनवाज हुसैन ने कहा माफी मांगे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी के बयान पर बीएसपी ने भी हमला बोला, विनोद बंसल ने कहा नेहरूवादी और कट्टरपंथी सोच से बाहर आए। हामिद अंसारी के बयान का ओवैसी ने बचाव करते हुए कहा कि सहमति हो सकती है लेकिन उनकी विद्वत्ता पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। पटना में लवकुश सम्मान समारोह में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, सबराज चौधरी ने दिया 5 पांडवों का मंत्र। इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पीएम मोदी की मिमक्री को लेकर के सियासी बवाल मच गया है, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि राहुल गांधी पार्टी छोड़ दें और स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेता विपक्ष पर वार, उन्होंने कहा कि राहुल ने सनातन का अपमान करने और लगातार कमजोर करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कॉमेडियंस और जोकरों की पार्टी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पिछला रिकॉर्ड देखें तो वो जहां भी गए कांग्रेस पार्टी को बर्बादी का सामना करना पड़ा। एसआईआर की सूची में कई बड़े नामों को नोटिस मिला है। निर्लिस्ट में चुनाव आयुक्त एसएस संधू, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। एसआईआर के घेरे में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और पूर्व थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को भी परिवार समेत नोटिस मिला है। एसआईआर के दायरे में जज से लेकर वरिष्ठ अफसरों तक को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री समेत कई बड़े नाम भी रिकॉर्ड की जांच में शामिल हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया और परिवार को भी एसआईआर का नोटिस मिला है। पुराने वोटर रिकॉर्ड से नाम नहीं जुड़ने और नाम में अंतर के चलते ये नोटिस जारी किया गया है। एसआईआर नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा है। 29 अक्टूबर तक बीएलओ के पास जाकर दस्तावेज जमा कर सकेंगे मतदाता। 4 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। बंगाल एसआईआर पर ईसीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, वोट डिलीट होने से चुनाव नतीजों पर असर के दावे को खारिज किया। एसआईआर पर ईसीआई ने विपक्ष के दावे को बताया गलत और अटकलों पर आधारित, ज्यादा एसआईआर ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की। बंगाल में एसआईआर के तहत अब तक 38,03,000 अपील, 1,26,00,000 मामलों पर ट्रिब्यूनल का फैसला, 1,13,000 नाम वोटर लिस्ट से वापस जुड़े। कटक में उड़ीसा प्रो टी20 लीग का आगाज, सीएम मोहन चरण मांझी ने बारामती स्टेडियम से किया उद्घाटन। ओपनिंग सेरेमनी कलाकारों ने प्रस्तुति से समा बांधा। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी समारोह में शामिल हुए। 6 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। 29 सितंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के समारोह से पहले दत्तात्रेय होसबोले ने एकजुटता पर जोर दिया, कहा समाज के अंदर भेदभाव मिटाना होगा। आरएसएस महासचिव ने कहा कि भारत की तरक्की से पूरी मानवता को फायदा होगा। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। टाटा विवाद में कोर्ट तक पहुंचने की नौबत पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जताया दुख, कहा शेयरधारकों के बुनियादी अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान प्रसाद स्थल पर मांस फेंकने का आरोप, पुलिस ने नॉनवेज सामग्री की बात कही, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। गणेश उत्सव के प्रसाद को लेकर विवाद पर बीजेपी का हमला, करुणा सागर ने घटना को साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में इंदौर के व्यापारियों का नो यूपीआई डे, 23 सितंबर को 2,000 से अधिक के भुगतान नहीं लेंगे व्यापारी। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, सड़क चौड़ीकरण की जद में आए 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तेलंगाना के जोगलम्बा, गढ़वाल और वनपर्थी जिले में सिंचाई पानी को लेकर के किसानों का गुट सब फूटा है। अधिकारियों से विवाद के बाद खुद प्रियदर्शनी जुराल कैनाल के गेट खोल दिए। एमपी के हागर मालवा हादसे के बाद मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला, मां बगलामुखी मंदिर में रात 8 बजे के बाद हवन पर रोक लगाई गई, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। मुंबई में शिवडीचा राजा का भव्य अवतार देखने को मिला। अंडरवाटर द्वारका के अद्भुत थीम, गणपति पंडाल की शानदार सजावट, शिवडीचा राजा गणपति पंडाल के 75 साल पूरा होने पर जश्न मनाया गया। शिवडीचा राजा पंडाल में पानी के अंदर सजी द्वारका की नगरी, समुद्री जीव रोशनी ने दिव्यता बढ़ाई, होलोग्राफिक प्रस्तुति खास आकर्षण का केंद्र बनी। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लालबागचा राजा के दरबार में हाजिरी लगाई, पत्नी रितिका सजदे के साथ बप्पा के दर्शन किए। लालबाग राजा के दरबार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर धवल कुलकर्णी, पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में लालबाग चौराहे की तर्ज पर गणपति पंडाल सजाया गया, आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आएगा जानन के भक्त। पुणे में असम राइफल्स के डीजे विकास लखेड़ा ने की गणपति की आरती, भाव साहब रंगारी पंडाल में लिया बापा का आशीर्वाद। जालना में रामायण थीम पर अनोखा गणपति पंडाल देखने को मिला, रामायण का प्रसंग देखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अनोखी प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। गोरखपुर की गीता वाटिका में दधिकात उत्सव, राधा रानी प्राकट्य महोत्सव के समापन पर भव्य आयोजन हुआ, दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु उमड़े थे। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए खास प्रदर्शनी लगाई गई, द स्पेस इन बिटवीन आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग और मूर्तियों के बीच संवाद की शानदार प्रस्तुति। डिजिटल हेल्थ की दिशा में नई पहल, अपॉर्चुनिटी ग्लोबल इंफोटेक ने लॉन्च किया कॉर्डलिया प्लेटफॉर्म, मेडिकल रिकॉर्ड से अस्पताल प्रशासन तक डिजिटल सिस्टम का दावा। हाली में चल रहे भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के साथ ही जांबाज मिलिट्री डॉग्स ने किया शानदार प्रदर्शन। जोधपुर के एफओ स्टेशन से रविवार को भारतीय एयर चीफ मार्शल और जापान के सेना प्रमुखों ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। दोनों एयर चीफ ने एयरफील्ड के ऊपर फ्लाईपास कर एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। दोनों देशों के रिश्तों को इससे नई उड़ान मिलेगी। ऋषिकेश में रामझूला के पास नदी में फंसी महिला को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया, पहाड़ी से नीचे उतरते हुए नदी के बहाव में महिला फंस गई थी। गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार में भारी बारिश से नाला उफना, झरने में फंसे 35 यात्रियों का सफल रेस्क्यू हुआ। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हाईवे पर भीषण हादसा हुआ, डिवाइडर से टकराकर वोल्वो कार में आग लगी, गाड़ी में एक डॉक्टर की जिंदा जलकर मौत हुई। तेलंगाना हादसे का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई थी। नवी मुंबई में फर्नीचर गोदाम में भयानक आग लग गई, पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में कपड़ों की दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान। दिल्ली के संगम विहार में घर में बड़ी चोरी हुई, घर के ताले तोड़कर लाखों का सामान गायब, जांच में पुलिस जुटी। कटरा के हेलीपैड टर्मिनल में लगी आग पर आधे घंटे में काबू पाएगा, लेकिन टिकट काउंटर के कंप्यूटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बिजनौर में फटाका फैक्ट्री के कचरे में धमाका हुआ, घास काटने गए 2 सगे भाई इसमें झुलस गए। लुधियाना में गृह प्रवेश की पार्टी में 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई, दो युवक घायल हो गए। पहले क्रेन से दीवार तोड़ी, फिर दनादन गोलियां बरसाई। सहरसा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, स्मैक के पैसों के विवाद में दोस्त ने ही दोस्त को गोली मारी थी। पैसों के लेन देन को लेकर के चार दोस्तों में पहले झड़प हुई, फिर विवाद बढ़ने पर अभिजीत की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी आर्यन को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरे की दबिश भी जारी है। सहारनपुर नकली करेंसी कार्ड में एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ है, दो और आरोपी गिरफ्तार, करीब 18 करोड़ रुपए के जाली नोटों की खंगाली जा रही है पूरी कड़ी। मुंगेर में गणेश पूजा में डांस के दौरान टी शर्ट फटने पर विवाद, लाठी पथराव में घायल मजदूर की मौत, चार आरोपी गिरफ्तार। आसनसोल में उगाही के अधिकारियों को लेकर किन्नरों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, चाकू लाठी से हमले का आरोप, 8 लोग घायल। सूरत में गैस चोरी का बड़ा खुलासा, एचपीसीएल कर्मचारी की मिलीभगत से टैंकर से चोरी कर सिलेंडर में भरते थे गैस, 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के राजगढ़ में पुलिस आरक्षक से मारपीट और वर्दी फाड़ने के आरोपियों को पुलिस ने सबक सिखाया, बाजार में जुलूस निकालकर कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। भोपाल में चलती मोटरसाइकिल पर पीछे से गोली मारकर युवक की हत्या की गई, निषादपुरा में दोस्त को गिरफ्तार किया गया। हरदोई में दोस्त से विवाद के बाद एक व्यक्ति को कार से बांधकर 2.5 किलोमीटर तक घसीटा गया, हिरासत में आरोपी। मेहसाणा में खाद्य विभाग और सीआईडी की छापेमारी में एक फैक्ट्री में सौंफ में मिलावट का भंडाफोड़, करीब 5,000 किलो माल जब्त। मथुरा में वृंदावन यात्रा के दौरान यमुना में डूबा 18 साल का अग्निवीर, तलाशी अभियान जारी है। बेतिया के नरकटियागंज में जमीन के 2 साल पुराने विवाद को लेकर के हिंसक झड़प हुई, दो पक्षों में बहस के बाद लाठी डंडों से मारपीट, 6 लोग घायल हुए। भोपाल में पत्नी को दूसरे आदमी के साथ देखकर भड़का पति, देर रात दी सड़क, पति ने मचाया भारी हंगामा, पति तलाक की मांग कर रहा है। खगड़िया में छात्रों और ग्रामीणों के बीच झड़प से स्कूल बन गया अखाड़ा, जमकर चले लाठी थप्पड़ और लात घूंसे। चंदौली में गांजा तस्करी के लिए कंटेनर में बने गुप्त चैंबर से 1.25 करोड़ का गांजा बरामद किया गया, एक को गिरफ्तार किया गया। जालौन में 3 अवैध पिस्तल, 12 कारतूस, 53,580 नगद के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, नेपाल कनेक्शन की भी जांच जारी है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8 बजे तक, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:15 तक, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

होगा, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

मानसिक समस्या दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, पुराने विवाद आपके हल होंगे, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, भावनाओं में इमोशंस में निर्णय मत लीजिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रीन।

रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

बड़ा लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool.

0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है।
1: एमपी के इंदौर में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था के बहाने राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी पर बात की और छात्रों के सवाल पूछने की आदत को मौजूदा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया।
0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।
1: छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सवाल किया कि आखिर स्कूल कॉलेजों की हालत खराब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश में शिक्षा व्यवस्था का बजट लगातार क्यों घटाया जा रहा है।
0: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है।
1: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी तो बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दे की समझ ही नहीं।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद से सभी पार्टियां लगातार छात्रों को साधने में लगी हैं। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस अभियान की कड़ी है, जिसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ती रही है। अब इंदौर के कार्यक्रम के बाद भी वार पलटवार तेज हो गया है। इंदौर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं। नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं। जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उनका भी वो अपमान करते हैं।
5: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है, और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। और ये सेलगोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से, बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नोटिस, विदेश मंत्री अजय शंकर, लाल किशन आडवाणी, धनगर समेत कई बड़े चेहरों को से जवाब तलब, पूर्व सेना अध्यक्ष, पूर्व सीबीआई निदेशक की भी जांच के दायरे में।

कहा कि भारत और भारतीयता के लिए डरावने हैं उनके विचार, देश की छवि खराब करने का आरोप। उत्तर प्रदेश में समीकरण साधने में जुटी हैं पार्टियां। आज मेरठ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और सीएम योगी। अखिलेश ने की भी कसी कमर, ओबीसी से गठबंधन के लिए 2 अक्टूबर तक का मांगा वक्त। उत्तर प्रदेश के देवरिया की में रैली में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा कि आने वाले दिनों में 4 हिस्सों में होगा उत्तर प्रदेश का बंटवारा, पूर्वांचल राज्य का सीएम राजभर का बेटा होगा।

राजस्थान के 5 नगर निगमों में मेयर का चुनाव, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर में वोटिंग, 24 नगर परिषद और 244 नगर पालिकाओं के प्रमुख की आज होंगे तय।

0: सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हफ्ते भर का पहला दिन है और नए दिन की शुरुआत के साथ बिना ब्रेक के खबरों का बुलेटिन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होंगी और विस्तार से भी होंगी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे दिल्ली से जुड़ी या फिर एक महत्वपूर्ण खबर। बड़े बड़े नामों को लेकर बड़े बड़े नाम वाले लोगों को चुनाव आयोग का ऐसा या नोटिस भेजा गया है, और आखिर क्यों भेजे गए हैं ये नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। इसके बाद रुख करेंगे राजस्थान का। राजस्थान के 5 नगर निगमों का चुनाव और उनके मेयर का चुनाव आज हो जाएगा, उनको नए मेयर मिल जाएंगे। जयपुर से दिखाएंगे सीधी रिपोर्ट। उसके बाद रुख करेंगे तेलंगाना का। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। हादसे में एक शख्स की कार के अंदर जलकर मौत हो गई है, ये भी खबर आपको बताएंगे। और आधे घंटे बाद यानी 9:30 बजे आपको बताएंगे 100 शहर 100 खबरें, यानी आपके तमाम बड़े शहरों से सीधी खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो आज सुर्खियों में बनी रहने वाली है। हम आपको बताते हैं कि आज की बड़ी खबर है दिल्ली में बड़े बड़े लोगों को चुनाव आयोग से नोटिस मिला है। ये नोटिस SIR प्रक्रिया से जुड़ी है और जिन लोगों को नोटिस मिला है उनके दिल्ली के CM से लेकर केंद्रीय मंत्री तक नाम शामिल है। सबसे पहले आपको विस्तार से बताएंगे आखिरकार किन किन लोगों के नाम शामिल है। विदेश मंत्री जयशंकर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल किश अडवाणी, चुनाव आयुक्त SS संधू और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नाम भी इसमें शामिल है। ये नोटिस रिकॉर्ड में मैपिंग नहीं होने और नामों में अंतर को लेकर दिए गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन बड़ी शख्सियतों को नोटिस मिल चुके हैं। पूर्व डिप्टी CM, डिप्टी PM माफ कीजिएगा कि LK अडवाणी, इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिश्री और चुनाव आयुक्त SS संधु को भी ये नोटिस मिला है। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर, उनकी पत्नी, पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, उनकी पत्नी और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई के साथ साथ उनके पति, बेटे और बेटी को भी ये नोटिस दिया गया है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली BJP के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी ये नोटिस मिला है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा और बेटे मीर को भी ये नोटिस दिया गया है। CBI निर्देशक प्रवीण सूद, उनकी पत्नी मां को भी ये नोटिस मिला है। BJP के ही अमित मालवीय और उनकी पत्नी को भी नोटिस मिला है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को भी SIR का नोटिस मिला है। इस तमाम घमासान के बीच आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या नोटिस का मतलब वोटर लिस्ट से नाम कटना है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचक अधिकारी का मतलब कि मतदाता सूची के SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। CEO कार्यालय ने कहा है कि मतदाताओं को जारी किए जा रहे नोटिस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक नोटिस का मकसद इलेक्शन कमीशन INET में मतदाताओं के डेटा को दुरुस्त करना है। इसके अलावा CEO कार्यालय ने यह भी कहा कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के अवसर दिए मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और इस पर और जानकारी के लिए हम चुनाव आयोग कवर करने वाले अपने संवाददाता संजय शर्मा के पास भी आपको ले चलते हैं, लेकिन पहले आपको SIR नोटिस पर 2 बयान भी दिखा देते हैं। कपिल सिब्बल और शाजिया अल्मीन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
1: ये BLO को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहां और BLO के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
2: SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं, क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है, जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है।
0: और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा का भी। संजय एक बात बताइए, मतदाता सूची यानी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से यह जाहिर होता है कि व्यापक स्तर पर मतदाता सूची का पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा, फिर कैसे कमी रह गई कि अब बड़े बड़े नामों को भी ये नोटिस दिए जा रहे हैं?
3: इसमें सुमित मुझे लगता है कि कमी जैसी कोई बात नहीं है, अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी है तो उसे नोटिस देकर उसको दुरुस्त किया जा सकता है। नाम के स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, उम्र में गड़बड़ी है, अगर मान लीजिए तो जैसा कपिल सिब्बल जी बता रहे थे मैंने देखा, लेकिन मुझे कई बार लगता है, मेरा अपना मानना है कि वो BLO स्तर का ही अधिकारी है, वो कोई वकील नहीं है, वो इस तरह से नहीं देख पाता जो कंप्यूटर देख पाता है। और बाद में जब कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है, वो दस्तखत तो BLO ने किए हैं सही है, लेकिन जब कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है तो कंप्यूटर बताता है कि डिस्क्रिपेंसी क्या है। और अगर BLO जैसे लोग जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वही अगर सारा कुछ कर लेंगे तो वो वकालत ना कर लेंगे। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि नोटिस आना कोई नॉन वेलेबल वारंट नहीं है कि आपको जेल में जाना ही पड़ेगा। निर्वाचन आयोग का कहना है कि नोटिस आने का मतलब है कि ये डिस्क्रिपेंसी है, आप इसको दस्तावेजी सबूत दिखाकर इसे दुरुस्त करवा लें, नहीं तो आगे तक मुश्किल होगी और भविष्य में कभी अगर SIR हुआ तो आपके बच्चों को मुश्किलें आएंगी, उस समय आप दुरुस्त करने को हो या ना हो। तो ऐसे में ये एक मौका है, मौका दिया जाता है। और जहां तक बंगाल की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में ही निर्वाचन आयोग ने ये हलफनामा दिया है जिसमें कहा है कि जितनी अपीलें हुई हैं, जितनी अपीलों का निपटारा हुआ है, उन निपटारे में से 93% से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, यानी बिना किसी त्रुटि के। अब इसके बाद भी नोटिस आने के बाद और ट्राइब्यूनल में आने के बाद भी अगर त्रुटि रह जाती है फिर तो भगवान ही मालिक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा। देखिए हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि कैसे ये उन चीजों को, उन त्रुटियों को या फिर उन चीजों को दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें कई लोगों के नाम हो, उनके एड्रेस हो, कई ऐसी चीजें रह जाती है जिनको दोबारा से इलेक्शन कमीशन दुरुस्त करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब दूसरी खबर का रुख करते हैं जो राजस्थान के 5 नगर निगमों में आज मेयर का चुनाव होना है। उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम में मेयर पद पर चुनाव आज होंगे। सुबह 10 बजे से पोलिंग होगी और दोपहर 2 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी आपको बताएं एक बार फिर से कि आज 5 नगर निगमों के मेयर के चुनाव में सुबह 10 बजे से पोलिंग होगी और दोपहर 2 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद कुमार जुड़े हुए हैं। शरद, आप तो इन नगर निगम चुनावों को लंबे समय से कवर करते आए हैं, वहां की राजनीति को समझते हैं। आज की वोटिंग में कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जिन जिनके नाम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो और कब तक रिजल्ट आने की आशंका है, संभावना है?
4: देखिए सुमित, 273 निकायों में चुनाव हो रहा है। कुल 309 निकाय थे जिसमें से 32 जो है निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो 273 में जो महत्वपूर्ण है वो 10 बड़े शहर हैं। 10 बड़े शहरों में भरतपुर और भिलवाड़ा में निर्विरोध बीजेपी जीत गई है और जोधपुर, कोटा और जयपुर में जहां पर बीजेपी को बहुमत है 25 सितंबर को चुनाव होंगे। बाकी ये 5 बचे उसमें से सबसे की नजरें जो लगी हुई है वो लगी हुई है अजमेर में और पाली में, जहां पर बीजेपी कम है पार्षद और कांग्रेस ज्यादा है, और बीकानेर एक ऐसा नगर निगम है जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत है। तो पूर्ण बहुमत में भी डरी हुई है कांग्रेस, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कल रात को 12 बजे हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट गठित किया गया, रात 2 बजे तक सुनवाई हुई है छुट्टी के दिन, और वहां पर कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनको गिरफ्तारी से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। तो वहां जहां पर बोर्ड बहुमत में नहीं है बीजेपी का, वहां कोशिश कर रही है बीजेपी बनाने के लिए, तो सबकी नजरें पाली और अजमेर पर लगी हुई है और बीकानेर पर। बाकी जो ये दो हैं, उदयपुर हैं, यहां पर भी कंफर्टेबल है बीजेपी और दूसरी जगह फिर अलवर में भी बीजेपी कंफर्टेबल है, तो वहां ज्यादा विवाद नहीं है। कुल तीन नगर निगमों पर विवाद है और सबसे ज्यादा मारामारी जो चल रही है हनुमानगढ़ नगर परिषद को लेकर। हनुमानगढ़ नगर परिषद में निर्दलीय विधायक जो हैं वहां के, वो अपने 34 निर्दलीय पार्षद जिता लिए थे, उनको कल अरेस्ट कर लिया गया है और अभी अभी कोर्ट में पेश किया गया, 25 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। अब खबर आ रही है कि उनके सारे के सारे जो पार्षद हैं वो तैयार हो गए हैं एक ही बीजेपी के साथ मिलकर बोर्ड बनाने पर। ऐसी खबरें आ रही है, एक बांसुरी सिंबल मिला है जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है और दूसरा कुचेरा नगर पालिका है जहां पर देर रात गिरफ्तारी की कोशिश की जाती रही, 5 दिन से पुलिस पड़ी रही कांग्रेस के बाड़ेबंदी के बाहर। तो ये दो एक नगर पालिका कुचेरा और एक हनुमानगढ़ संघर्ष का केंद्र बना हुआ है और तीन नगर निगम, बाकी जगह ज्यादातर जगहों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, निर्दलियों ने समर्थन दे दिया है।
5: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद। देखिए हम तक ये जानकारी पहुंचाने, शरद बता रहे थे तीन जगहों पर ऐसी है जो उन्होंने बताया कि जहां पे कांटे की टक्कर है, जहां पे लगातार चीजों का बदलना या फिर उनके रुझानों को नतीजों में तब्दील होने में वक्त लगेगा, लेकिन तीन बाकी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही। चलिए अब आगे खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी के छात्रों की गूंज प्रोग्राम को लेकर। दरअसल इस प्रोग्राम को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया। मंच पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर चौतरफा वार जारी है। इस बीच राहुल गांधी पर एक नया आरोप भी लगाया गया। आरोप ये कि उन्होंने छात्रों की गूंज में आम छात्र बताकर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ताओं से बात की है।
6: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
7: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
6: ग्रेट हैरेसमेंट। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
8: इंदौर में 2 दिन पहले राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ। मंच से शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठा, सिस्टम पर तीखे सवाल हुए, लेकिन इस आयोजन के बीच विवादों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थम ही नहीं रहा है। पहले मंच से पीएम मोदी की मिमिक्री पर जबरदस्त उबाल दिखा, पीएम की मां के अपमान के आरोपों पर संग्राम छिड़ा और अब इस कार्यक्रम पर नई तनातनी शुरू हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने आम छात्रों से नहीं बल्कि सिर्फ NSUI कार्यकर्ताओं से ही बात की।
9: NSUI के पदाधिकारियों को छात्र बनाकर जिस तरह से जनता के सामने पेश किया गया, अलग अलग बातें बताई गई, ये अपने आप में पूरे देश के छात्रों के सामने आ चुका है।
8: बीजेपी के आरोपों के बीच आज तक ने एक छात्र तनय शर्मा से बात की जो भोपाल की माखनलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। छात्रों के गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने उसे मंच पर बुलाकर बात भी की थी। बीजेपी के आरोपों के बीच तनय ने अपनी बात रखी।
10: मैं चाहता हूं कि NSUI छात्रों का संगठन है। क्या NSUI में रहने वाला व्यक्ति छात्र

0: स्कोर शीट जो मैंने मांगी थी वो रिवील नहीं की है। ये सारे मुद्दों पे वीसी को जवाब देना चाहिए, विजय मनोहर तिवारी जी को जवाब देना चाहिए और भाजपा को जवाब देना चाहिए।
1: उधर छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे पर पहले से तनातनी बढ़ी हुई है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह मुद्दा उठाकर राहुल पर हमला बोला तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नैतिक पतन की पराकाष्ठा बता दिया तो कांग्रेस ने इस हमले का जवाब दिया।
2: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: ये पहला मौका नहीं है जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किसी विवाद का शोर सुनाई दिया हो। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के दौरान जॉर्जिया मेलोनी के बहाने पीएम को टारगेट करने पर भारी हंगामा मचा था। अब इंदौर के कार्यक्रम पर नई सियासी लड़ाई छिड़ी है जिस पर जंग लगातार बढ़ती जा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। दरअसल क्या बीजेपी को रोकने के लिए ओबीसी से हाथ मिलाएंगे अखिलेश यादव? ओबीसी ने कल खुलकर ऑफर भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं वो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी दी है।
4: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है। यूपी में चुनावी अभियान का आगाज कर चुके ओवैसी लगातार विपक्ष के साथ आने की बात कह रहे हैं। ओवैसी समाजवादी पार्टी से गठजोड़ की कोशिश की बात खुले तौर पर पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने न केवल बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए SP से साथ आने अपील की, साथ ही किसी भी गठबंधन पर मुहर के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया।
5: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं हम।
6: तो मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं। अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
4: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों से साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए SP सीधे सीधे निशाने पर है।
6: लोग पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था। अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है और हम दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
4: रणनीति साफ है, समाजवादी पार्टी साथ आई तो चुनावी लड़ाई साथ होगी, वरना मुस्लिम वोटों को बंटवारे का खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और इस दाम के बीच अब ओवैसी ने जयंत चौधरी का जिक्र करके भी अखिलेश को घेरने का प्रयास किया है।
7: जयंत चौधरी को और उनकी वाइफ को, जो मेरी बहन है, मैं जानता हूँ, वो बीजेपी में है,

दिल्ली में एसआईआर की कवायद में दिग्गजों को नोटिस, विदेश मंत्री अजय शंकर, लाल कृष्ण आडवाणी, धनगर समेत कई बड़े चेहरों से जवाब तलब, पूर्व सेना अध्यक्ष, पूर्व सीबीआई निदेशक की भी जांच के दायरे में। आमिर अंसारी के दक्षिणी पंथ सांप्रदायिकता को वामपंथ से बड़ा खतरा बताने पर घमासान, सीएम योगी का पलटवार, कहा कि भारत और भारतीयता के लिए डरावने हैं उनके विचार, देश की छवि खराब करने का आरोप। उत्तर प्रदेश में समीकरण साधने में जुटी है पार्टियां, आज मेरठ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और सीएम योगी, अखिलेश ने भी कसी कमर, समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर ओबीसी का बड़ा अल्टीमेटम, कहा कि 2 अक्टूबर तक करेंगे इंतजार, हम नहीं चाहते तीसरी बार यूपी में बने योगी की सरकार, बीजेपी की बी टीम बताकर समाजवादी पार्टी का पलटवार। राजस्थान के 5 नगर निगमों में मेयर का चुनाव, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर में वोटिंग, 24 नगर परिषद, 244 नगर पालिकाओं के मुख्य की आज होंगे तय।

0: मथुरा में चलती कार में लगी भीषण आग, 81 बोतल विदेशी शराब हुई बरामद, तस्कर फरार। अकोला में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में झड़प, गाड़ियों में तोड़फोड़, लोगों ने जमकर किया पथराव। ऐसे में स्लीपर बस और डंपर में जोरदार टक्कर, बस कटर से काटकर चालक को निकाला गया बाहर, 9 यात्री घायल। पटना में नशे की हालत में बेटे ने अपनी मां को जिंदा जलाया, गिरफ्तार कर गई पुलिस के साथ भी की मारपीट। वैशाली में एक बार फिर से वर्दी पर उठे सवाल, नशे के सौदागरों से साठगांठ कर रखने वाले थानाध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर वॉल्वो कार में लगी आग, कार चालक ड्राइवर डॉक्टर की जिंदा जलकर हुई मौत। तेलंगाना हादसे में खौफनाक सीसीटीवी वीडियो आया सामने, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, टक्कर लगते ही कार की चपेट में आ गई कार। नवी मुंबई में फर्नीचर गोदाम में लगी भयानक आग, पूरी कंपनी जलकर हुई खाक। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली के संगम विहार में एक घर में हुई बड़ी चोरी, घर के ताला तोड़कर लाखों का सामान गायब, जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में 10 रुपए के विवाद में ऑटो ड्राइवर को उतारकर मौत का खाट उतार दिया गया, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हैदराबाद में लिफ्ट और दीवार के बीच फंसा शख्स 90 मिनट तक के बाद उसे रेस्क्यू किया गया, बाल बाल बचे शख्स की जान। बेतिया में गर्भवती की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने अवैध हॉस्पिटल को किया सील। कटरा के हेलीपैड टर्मिनल में लगी आग पर आधे घंटे में पाया गया काबू, लेकिन टिकट काउंटर के कंप्यूटर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। पटाखा फैक्ट्री में कचरे में घमासान, घास काटने गए 2 सगे भाई झुलसे। दिल्ली में एसआईआर सूची में बड़े नामों को नोटिस जारी किया गया, लिस्ट में चुनाव आयुक्त एसएस संधू, विदेश मंत्री अजय शंकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकेश अडवाणी समेत कई बड़े लोगों के नाम शामिल है। एसआईआर के घेरे में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और पूर्व थेला सेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी का परिवार भी है, उनको भी नोटिस जारी किया गया। एसआईआर के दायरे में जज से लेकर वरिष्ठ अफसर तक भी को नोटिस जारी किए गए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना देसाई, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री समेत कई बड़े नाम रिकॉर्ड की जांच में शामिल किए गए। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और परिवार को भी नोटिस जारी किया गया, पुराने वोटर रिकॉर्ड में नाम नहीं जुड़ने और नाम में अंतर चलते ये नोटिस जारी किए गए। एसआईआर नोटिस का मतलब नाम काटना नहीं है, 29 अक्टूबर को बीएलओ के पास दस्तावेज जमा करा सकेंगे मतदाता, 4 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। राजस्थान के 273 निकायों में आज अध्यक्ष पद के चुनाव, 5 नगर निगमों में मेयर और 41 नगर परिषदों में सभापति चुने जाएंगे। उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर में आज मेयर का पद का चुनाव होगा, 262 नगर पालिकाओं के चेयरमैन चुने जाएंगे। राजस्थान निकाय चुनाव सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होंगे, वोटिंग खत्म होने के बाद शुरू होगी मतगणना। 32 निकायों में निर्विरोध चुनाव पहले से ही हो चुका है, 30 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 25 सितंबर को होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम के चुनाव, 3 में बीजेपी के पास बहुमत है। 2027 यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में बीजेपी ने तेज कर दी अपनी संगठनात्मक कवायद, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर नितिन नवीन मेरठ में, सहारनपुर में भी करेंगे बैठक। जयंत चौधरी के समर्थन में उतरे ओबीसी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल उठाकर बोले, ऐसी बयानबाजी गलत है। देवरिया के रैली में ओम प्रकाश राजभर का दावा, जल्द 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल बना तो राजभर समाज का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 4th एडिशन 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन। निर्यात निवेश और सीएम योगी का फोकस, बोले यूपी में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निर्यात हुआ है, 15 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा है। महिलाओं की सुरक्षा पर सीएम योगी का बयान, बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले अपनी मौत का वारंट खुद लिखेंगे। 2027 चुनावों से पहले अखिलेश यादव का ऐलान, हर विधानसभा सीट पर सपा के वोट 27,000 बढ़ाने का लक्ष्य है। अंबेडकर प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर अखिलेश का दावा, यूपी में 72 जिलों में 151 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है। अंबेडकर प्रतिमाओं पर अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा कि सबसे ज्यादा तोड़फोड़ सपा सरकार में हुई थी। अंबेडकर प्रतिमाओं को लेकर यूपी में सियासी घमासान तेज है, मंत्री अनिल राजभर का सपा पर हमला, दलितों का आरक्षण छीनने का आरोप भी उन पर लगाया। हामिद अंसारी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। सीएम योगी ने बोले हैं कि हिंदू परंपरा को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। हामिद अंसारी के हिंदू सांप्रदायिकता वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, शाहनवाज हुसैन बोले माफी मांगी। हामिद अंसारी के बयान पर बीएचपी का भी हमला, विनोद बंसल बोले नेहरूवादी और कट्टरपंथी सोच से बाहर आए। हामिद अंसारी के बयान पर ओबीसी ने भी बचाव किया, बोले कि असहमति हो सकती है लेकिन उनकी विद्वानता पर सवाल नहीं है। पटना में लवकुश सम्मान समारोह, उपेंद्र कुशवाहा बोले कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे समा, सम्राट चौधरी ने दिया 5 पांडवों का मंत्र। इंदौर में राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री को लेकर सियासी बवाल मच चुका है, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि वो राहुल गांधी पार्टी छोड़ दे और स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए। उत्तराखंड सीएम धामी का नेता विपक्ष पर वार किया है, बोले कि राहुल ने सनातन का अपमान करने और लगातार कमजोर करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस कॉमेडियन और जोकरो की पार्टी है। छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि कहा है उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए, वो जहां भी गए हैं कांग्रेस पार्टी को बर्बादी का सामना करना पड़ा है। पंजाला सैयार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, वोट डिलीट होने से चुनाव नतीजों पर असर के दावों को खारिज किया। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विपक्ष के दावों को बताया गलत और अटकलों पर आधारित, ज्यादातर एसआईआर ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत अब तक 38.3 लाख अपील आई है, 1.26 लाख मामलों पर ट्रिब्यूनल का फैसला है, 1.13 लाख नाम वोटर लिस्ट में वापस जोड़े गए हैं। रजीनगर उपचुनावों से पहले हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, पुलिस पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का लगाया आरोप, कहा कि अब नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। कटक में ओडिशा प्रो T20 लीग का आगाज हो गया, सीएम मोहन चरण मांझी ने बारामती स्टेडियम में किया है उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति भी दी है। तमिलनाडु सीएम विजय की लंदन यात्रा पर अन्नामलाई का तंज, बोले कि विजय की लंदन यात्रा गैर जरूरी, निवेश के लिए यूके की अर्थव्यवस्था में दम नहीं। अन्नामलाई ने कहा कि लंदन की जगह मुदेरे और कोयम्बटूर जाते सीएम विजय अजीत और त्रिशा की तस्वीरों पर भी अन्नामलाई का बयान आया। केशोभा रेड्डी बोली है कि मेरे मुद्दे को राजनीतिक रंग ना दिया जाए, किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, महिला ने मुद्दा उठाया तो उसकी परेशानी की गंभीरता देखी जाए। केरल में आज कोट्टयम, अलपुझा और त्रिशूर में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, प्रशासन ने जारी किया एडवाइस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पीएमएलए कोर्ट ने आज सुनवाई की जाएगी। यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में इंदौर में व्यापारियों का नो यूपीआई डे, 23 सितंबर से 2000 से अधिक के भुगतान नहीं देंगे। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बुलडोजर एक्शन हुआ, सड़क चौड़ीकरण के जद में आए 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तेलंगाना के चोगुबुलंदा, गदवाल और वनपंथी जिले में सिंचाई पानी को लेकर किसानों का फूटा है गुस्सा, अधिकारियों से विवाद के बाद खुद प्रदर्शनकारियों ने गेट खोले। मुंबई के GW मैरिट रेस्टोरेंट में टेबल पर मिला कॉकरोच, डिनर के दौरान टेबल पर घूमता दिखा कॉकरोच, वीडियो हो रहा है वायरल। जोधपुर में लॉरेंस और आरजू बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं, AGTF ने और जोधपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई, होटल में दबोचे गए हैं शूटर्स। पारसिस के शताब्दी वर्ष में समापन में पहले दत्तात्रेय हसबोले का एकजुटता पर जोर, समाज के अंदर के भेदभाव को मिटाने पर बात की। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय हसबोले ने भारत की तरक्की की पूरी मानवता की होगा फायदा, पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर बढ़ाया देश का गौरव। टाटा विवाद कोर्ट तक पहुंचने की नौबत पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जताया दुख, कहा कि शेयरधारकों के बुनियादी अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान प्रसाद स्थल पर मांस फेंकने का आरोप, पुलिस ने नॉनवेज सामग्री की बात कही है, 3 लोग हिरासत में ले गए। गणेशोत्सव के प्रसाद को लेकर विवाद पर बीजेपी का हमला, करुणा सागर के घटना को साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सहारनपुर नकली करेंसी कांड में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए, करीब 18 करोड़ रुपए के जाली नोटों को खंगाला जा रहा है। मुंगेर में गणेश पूजा में डांस के दौरान टी शर्ट फटने का पर विवाद हो गया, लाठी पथराव के घायल मजदूरों की मौत हो गई है, 3 चालू गिरफ्तार। आसनसोल में अगुवाई के अधिकारियों को लेकर किन्नरों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, चाकू लाठी से हमले का आरोप भी लगाया गया, 8 लोग घायल हुए। सूरत में गैस चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। एचपीसीएल कर्मचारियों की मिलीभगत से टैंकर से चोरी कर सिलेंडर से भरते थे गैस। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के रायगढ़ पे पुलिस आरक्षण से मारपीट और वर्दी फाड़ने के आरोपों को पुलिस ने सिखाया सबक। बाजार में जुलूस निकालकर कान पकड़कर लगवाया उठक बैठक। भोपाल में चलती मोटरसाइकिल पर पीछे से गोली मारकर युवक की हत्या। निशांतपुरा में दोस्त को गिरफ्तार किया गया। हरदोई में दोस्त के विवाद पर के बाद एक व्यक्ति को कार में बांधकर 2.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। हिरासत में आरोपी। महसाना में खाद्य विभाग और सीआईडी की छापेमारी में एक फैक्ट्री जिसमें सौंफ से मिलावट का भंडाफोड़ किया गया। करीब 5,000 किलो माल जब्त किया गया। मथुरा से में वृंदावन यात्रा के दौरान यमुना में डूबा 18 साल का अग्निवीर। तलाशी अभियान जारी। बेतिया के नरकाटीरा गंज में जमीन के 2 साल पुराने विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। 2 पक्षों में बहस के बाद लाठी डंडे भी। 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल में पत्नी को दूसरे आदमी के साथ देख भड़का पति। देर रात बीच सड़क पर पति ने मचाया भारी हंगामा। पति कर रहा था तालाब की मांग। खगड़िया में छात्रों और ग्रामीणों के बीच झड़प के स्कूल बना अखाड़ा। जमकर चले लाठी थप्पड़ और लात घूसे। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर। चंदौली में गांजा तस्करी के लिए कंटेनर में बने गुप्त चैम्बर में 1.25 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया। जालौन में 3 अवैध पिस्तौल 12 कारतूस और 53,580 नकद के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। भारतीय मिस हॉकी टीम का एशियन गेम्स में धमाकेदार आगाज हुआ। इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। दिलप्रीत सिंह के 4 गोल के मदद से भारतीय मेंस हॉकी टीम में इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 से दमदार जीत हासिल की है। पूरे मैच में सुखजीत और दिलप्रीत ने बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिली है। इस बीच जीत के साथ ही भारतीय टीम में एशिया गेम्स में किया है धमाकेदार आगाज। 47वें मिनट में जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल में बदला और 1 मिनट बाद ही सुखजीत ने अपना दूसरा फील्ड गोल किया और भारत की जीत सुनिश्चित की। भारत कल श्रीलंका में खेलेगा अपना अगला मैच। इंडोनेशिया को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम के हौसले बुलंद है। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। मॉस्को के तेल और लॉजिस्टिक ठिकानों पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का बड़ा बयान कहा है कि ईरान के खिलाफ से हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। सऊदी पर हूतियों के लगातार हमलों के बीच तुर्की के विदेश मंत्री का बयान आया कि उन्होंने कहा कि मक्का समझौते के तहत हम सऊदी की सैन्य मदद के लिए तैयार हैं। उत्तर कोरिया के एक बार फिर से दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने इसकी पुष्टि की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से का स्वागत किया। दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को लेकर मजबूत करने की बात की गई। इटली के स्कूलों में बुरका और नकाब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में प्रधानमंत्री मेलोनी। कक्षाओं में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने पर भी प्रस्ताव रखने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान लाहौर में गिरफ्तार कर ली गई है। इमरान खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन तैयारी कर रही थी। जर्मनी में राजधानी बर्लिन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। रूसी दूतावास के बाहर बैनर पोस्टर लगाया गया। स्पेन के बार्सिलोना में हवाई अड्डे के विस्तार के विरोध में लोगों का विरोध प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लिए बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। अलेक्जेंडर जेवरेज ने क्रोएशिया के डिनप्रो प्रेजिमिक को 6-2, 6-4 से हराकर जर्मनी को दिलाई यह जीत। डेविस कप में फाइनल में 8 में पहुंची जर्मनी। सौ शहर 100 खबरों के बाद अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। जी हां, अफगानिस्तान के जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया। अफगानिस्तान के पक्तिया और कुनार प्रांत में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किए। कुनार में हुए हमले में 3 लोग मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। वहीं पंक्तिया में भी भारी नुकसान की खबरें। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये हमला सुबह करीब 4 बजे किया गया। और चले वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: एक तो एक

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: पापा
6: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया
6: है
7: हां
6: ओ ला भाई मेरा बैट
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू
6: बिलोटे चार्ज हुआ यार
8: ओला बैट किसका है
9: टाटा AIG है तो भरोसा है
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
12: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता
13: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
14: लायन डेट नट बाइट्स
15: और वही कहाँ गए थे घूमने
16: जीके मैक्स
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
17: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट
17: जेके मैक्स
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
12: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया
18: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी
12: असली शहद असली स्वाद
19: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
20: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे
19: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस
21: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील TMT से बना
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड
0: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
24: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम
25: AU
26: सोच बदलो और बैंक भी
27: इन एसोसिएशन विद हिंट एक हिंट तो देते
28: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
27: विमल बोलो जुबां केसरी
29: There is a very famous quote ki history repeat itself.
30: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
31: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
30: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: इंदौर में राहुल गांधी का मंच कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख भी मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से, और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया, जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी? ग्रेट हैरेसमेंट।
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
3: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
2: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी, नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखी, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर। बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद माँ तक पहुंच गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग माँ का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक माँ का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी। किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है। लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
4: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहाँ भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करी।
5: ये झूठ की गूंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मंच शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली में एसआईआर की कवायद में दिग्गजों को नोटिस। विदेश मंत्री एस जयशंकर, लाल कृष्णा आडवाणी, धनखड़ समेत कई बड़े चेहरों से जवाब तलब। पूर्व सेना अध्यक्ष, पूर्व सीबीआई निदेशक भी जांच के दायरे में। हामिद अंसारी के दक्षिणपंथ सांप्रदायिकता को वामपंथ से बड़ा खतरा बताने पर घमासान। सीएम योगी का पलटवार, कहा भारत और भारतीयता के लिए डरावने हैं उनके विचार, देश की छवि खराब करने का आरोप। यूपी में समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, आज मेरठ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और सीएम योगी। अखिलेश ने भी कसी कमर, समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। यूपी में गठबंधन पर ओवैसी का बड़ा अल्टीमेटम, कहा 2 अक्टूबर तक करेंगे इंतजार, हम नहीं चाहते तीसरी बार यूपी में बने योगी की सरकार। बीजेपी की बी टीम बताकर समाजवादी पार्टी का पलटवार। राजस्थान के 5 नगर निगमों में मेयर का चुनाव, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर में वोटिंग। 24 नगर परिषद, 244 नगर पालिकाओं के प्रमुख भी आज होंगे तय।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आज कई राज्यों में चुनावी हलचल है, उससे जुड़ी अहम खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के निकाय चुनाव के रण की, जहां आज 5 मेयर पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कैसा है समीकरण, कहां फंसा है पेच, पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही बात करेंगे यूपी के चुनावी संग्राम की। पश्चिमी यूपी में बीजेपी और आरएलडी वाली सियासत कैसे तेज हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ कैसे बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तीनों खबरों पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान निकाय चुनाव में आज अहम दिन है। वहां 273 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष के चुनाव शुरू हो गए हैं। आज उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम के मेयर पद पर चुनाव हो रहे हैं, तो 41 नगर परिषदों में सभापति और 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन भी चुने जाने हैं। इसके लिए मतदान शुरू हो चुका है। दोपहर 2 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। 32 निकायों में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 30 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस काबिज हुई है, जबकि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के चुनाव 25 सितंबर को होने हैं। तीनों में बीजेपी के पास बहुमत है। तो राजस्थान में जिन 5 नगर निगमों में वोट डाले जा रहे हैं, आपको वहां की गणित समझाने की कोशिश करते हैं। उनमें से पहला है उदयपुर। वहां बीजेपी 53 पार्षदों के साथ कंफर्ट जोन में बताई जा रही है। उदयपुर में कांग्रेस के 23 पार्षद हैं, जबकि निर्दलीय 3 हैं और सीपीएम के पास 1 पार्षद है। यहां मेयर पद के लिए 41 का बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी उस जादुई आंकड़े से काफी आगे है। उदयपुर में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, ये तो साफ है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है बीकानेर, जहां कांग्रेस में 42 पार्षद हैं, बीजेपी के 27 और 10 आपको बता दें कि निर्दलीय और हैं और 1 आरएलपी का है, इसलिए अन्य हम आपको दिखा रहे हैं कि 11 है। तो 41 के बहुमत आंकड़े से कांग्रेस 1 सीट आगे है और यहां कांग्रेस के अनिल कल्ला का मुकाबला बीजेपी सुरेंद्र सिंह से है। अब बात कर लेते हैं अलवर की, जहां बीजेपी 28, कांग्रेस 23, निर्दलीय 13 और बीएसपी का आंकड़ा है, आपको बता रहे मिला करके तो अन्य हो जाता है 14, क्योंकि बीएसपी का 1। तो अलवर में बहुमत का आंकड़ा 33 है। बीजेपी यहां बहुमत से 5 और कांग्रेस 10 सीट दूर है। ऐसे में निर्दलीय पार्षद जो अन्य भी हैं साथ में, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बीजेपी की सुमनलता अग्रवाल और कांग्रेस के कमलेश शर्मा आमने सामने हैं। अब चलते हैं पाली, जहां कांग्रेस के 29 और बीजेपी के 21 और निर्दलीय 15 पार्षद हैं। मेयर पद के लिए यहां पर 33 का जादुई आंकड़ा चाहिए, लेकिन कांग्रेस बहुमत से 4 और बीजेपी 12 सीट दूर है। यहां भी निर्दलीय पार्षदों पर सबकी नजर लगातार टिकी हुई है। और आज हो रहे मेयर चुनाव की 5वीं सीट है अजमेर की। अजमेर में कांग्रेस के 37 पार्षद हैं और बीजेपी के, जैसा कि आप देख सकते हैं, 32 और 11 यहां पर निर्दलीय पार्षद हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा है 41, जिससे कांग्रेस 4 की दूरी बनाए हुए है। तो बीजेपी को भी बहुमत के लिए 9 पार्षदों की ही जरूरत है। ऐसे में अजमेर में भी निर्दलियों पर दोनों दलों की नजर टिकी हुई है। कांग्रेस की किरण गहरवाल है और बीजेपी की अनामिका शर्मा, ये आमने सामने हैं इस मेयर पद की लड़ाई के लिए। तो ये हम उन शहरों के बारे में बता रहे थे जहां पर खास तौर पर गुत्थम गुत्था देखने को मिलेगी, क्योंकि मेयर पद के चुनाव है। शरद कुमार का सीधा रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं स्थिति कैसी है। शरद, लगातार जो राजस्थान के निकाय चुनाव है उन पर सबकी नजर रही है, क्योंकि ये जो चुनाव रहे हैं इसमें गहमा गहमी जो देखी उससे मुख्यमंत्री की भी छवि पर भी असर पड़ता है और साथ में कांग्रेस पर भी कई सवाल उठे। लेकिन आज का जो मेयर पद का चुनाव रहेगा उसमें निर्दलियों की क्या रोल रहने वाला, क्या भूमिका रहने वाली है, खास तौर पे बताएं।
1: अंजलि, इतने सालों से हम ये स्थानीय निकाय के चुनाव कवर कर रहे हैं, इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा जहां बीजेपी किसी भी सूरत में वोट बनाना चाह रही है। 273 निकायों में कम से कम 200 के ऊपर का आंकड़ा छूना चाह रही है और जिसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम में जहां तक आपने पूछा, उदयपुर में बीजेपी का बोर्ड स्पष्ट बन रहा है क्योंकि वहां पर तोड़फोड़ नहीं हुई है। अलवर में निर्दलीय बीजेपी के पास आ गए इसलिए बीजेपी का बोर्ड बन रहा है। बीकानेर में कांग्रेस के पास बहुमत होते हुए भी बीजेपी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है। रात को 10 बजे कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची थी, उसके बाद स्पेशल कोर्ट गठित की गई और रात को 2 बजे तक सुनवाई हुई और निर्दलीय पार्षदों को राहत मिली। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव। अजमेर में कर्नाटक में थे ये सारे, वहां मैसूर से कल रात को पहुंचे हैं जयपुर और आज बस के द्वारा अजमेर पहुंचे हैं कांग्रेस के पार्षद। बीजेपी भीतरघात करवाना चाहती है और ऐसे में अजमेर में बोर्ड बनाना चाहती है। पाली में बीजेपी के साथ खेल हो गया है, वहां पर एक कांग्रेस के साथ खेल हो गया, कांग्रेस का ही बागी खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया है राजबाला हिंगड़, जिसकी वजह से वहां पर पाली में पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस दो भागों में वहां विभाजित हो गई है। तीन कुल नगर निगम जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं, अजमेर, पाली और बीकानेर। यहां पर अलवर में और उदयपुर में कोई परेशानी नहीं है बीजेपी को। और जो 25 सितंबर को चुनाव होने हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों जगह बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है। केवल तीन की लड़ाई है, ना कि पाली, बीकानेर और अजमेर। बीकानेर में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी बीजेपी नाक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन असल जो लड़ाई चल रही है वो जिला परिषद, वो नगर परिषदों में चल रही है और नगर पालिकाओं में। अब देखिए, खैरथल तिजारा के जो कांग्रेस के पार्षद थे वो हरियाणा में थे, शिमला में थे और शिमला से लौट रहे थे, अभी पंचकूला थाने में है जबकि यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है खैरथल तिजारा जिले के। उसी तरह से हनुमानगढ़ जिला परिषद में निर्दलीय विधायक हैं गणेश बंसल, वो 34 निर्दलीय जीता लाए, वो अरेस्ट हो गए हैं और 25 तारीख तक वो उनकी पुलिस रिमांड हो गई है और बाकी सब कहा जा रहा है कि वहां पर अब निर्दलीय सिंबल पर सब एक साथ तैयार हो गए हैं बीजेपी के साथ लड़ने के लिए, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसी तरह कुचेरा नगर पालिका में रात को 10 बजे सुनवाई हुई, संडे के दिन का, संडे थी के दिन दो दो बार राजस्थान हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दो दो बार कोर्ट का गठन हुआ। आप समझिए कितनी नाक की लड़ाई यहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने इस स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बना लिया है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि 309 में से कम 200 का आंकड़ा 200 से ऊपर ले जाए, जो आज तक किसी भी दल ने ये उपलब्धि हासिल नहीं की है। भजन लाल शर्मा वो उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए पूरी बीजेपी जी जान लगाए हुए है, हर नेता हर तरफ।
0: जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो निकाय चुनाव, लेकिन फिर भी सियासी हथकंडे पूरे। अब बात करते हैं पंजाब की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की, जो इस वक्त आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी और मान सरकार के खिलाफ बोला है हमला। पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक के जहरीला पदार्थ खाने के बाद वीडियो किया गया है जारी। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा है कि अगर नशे के खिलाफ बोलने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो बदलाव की बात आखिर कैसे होगी। सचिन पायलट के मुताबिक नामोल गांव के रहने वाले जग्गा सिंह ने डीसी कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया, क्योंकि जग्गा सिंह को नशे के खिलाफ वीडियो पोस्ट किया गया था और उसके बाद उन्होंने जब ये वीडियो पोस्ट किया तो उन्हें धमकियां और कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने एक मामला देखा था जिसमें खुदकुशी तक की नौबत आ गई थी और इसके बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई थी।
2: एक मिनट भाई, नाम की है
3: लगा लगी।
2: केड़ा पिंडा?
3: भाई
2: असल चक्कर की है कि क्यों तुसी ये एक्शन क्यों
3: लिया? जट्टे दी वीडियो पा दी थी मैं नेट पे, मैं तो सरपंच ने धमकी ना, मैं जद ने डिलीट करवा दी है।
2: सरपंच दा की नाम भाई?
3: सुखी पूरी आई।
2: थोनू की किन्ना क तंग करया की के उन्होंने
3: बोल लिया जद ने दिखाउंदा सी की रात
2: गोली? फिर ऐसे एक्शन क्यों लिया तुसी? ये तो गलत है जेड़ा तुसी आत्महत्या करने की कोशिश करी है।
3: साडी सुनवाई नहीं हुई है, मेरे घरे आके कैमरे बनते जी, वीडियो बनी हुई है जी।
2: डिलीट
3: करवा दी है।
2: सरपंच दा की नाम भाई?
3: सुखी पूरी आई।
2: थोनू की किन्ना क तंग करया की के उन्होंने
3: बोल लिया जद ने दिखाउंदा सी रात गोली?
2: फिर ऐसे एक्शन क्यों लिया तुसी? ये तो गलत है जेड़ा तुसी आत्महत्या करने की कोशिश करी है।
3: साडी सुनवाई नहीं हुई है, मेरे घरे आके कैमरे बनते जी, वीडियो बनी हुई है जी।
2: पुलिस नु कंप्लेंट करी है तुसी?
3: करी है जी।
2: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨੀ ਸੁਣੀ?
3: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਡੀਵੀਆਰ।
2: ਪਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਭਾਜੀ,
3: ਉਹ ਸਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਮੇਰਾ।
0: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी कमल जी संधुका। कमल जी, ये बात सियासत की नहीं है, भले ही पोस्ट सचिन पायलट ने किया हो, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब हम देख रहे हैं कि किसी ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई हो और उसके साथ ये हुआ हो।
4: गुलजार सिंह के आत्महत्या के बाद ये दूसरा बड़ा मामला आया है, जब जग्गा सिंह ने डीसी ऑफिस के बाहर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खा के आत्महत्या करने की कोशिश की है। और उसका कहना है कि भाई उसने एक वीडियो डाला था जहां पे नशा बेचते हुए पाया गया, उसके बाद सरपंच ने और बाकी लोगों ने उसे डराया धमकाया है। यानी ये दूसरा इस तरह का मामला है जहां पे पोजिशन और पावर दिखाई गई है, जिसकी वजह से आत्महत्या तक लेने की बात आ गई है। और इसी वजह से हमने देखा है कि चाहे सचिन पायलट हो, चाहे केवल सिंह ढिल्लन हो जो कि बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष हैं, या फिर हम बात करें तमाम नेता हैं, दर्जन भर नेता हैं, हमने देखा विक्रम मजीठिया, सुबीर बादल है, तमाम नेताओं ने सवालिया निशान आम आदमी पार्टी पे उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि आप नशा मुक्त पंजाब की बात करते हैं, लेकिन जो लोग पोल खोल रहे हैं, जो लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, उनके ऊपर ही प्रेशर बनाया जा रहा है। और खास तौर पर इस तरह की घटनाएं खास तौर पर जहां पर संगरूर में हो रही है, आपको बता दें संगरूर वही क्षेत्र है जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था भगवंत माना, तो वो धूरी से लड़ते हैं लेकिन संगरूर उनका जनरल एरिया पड़ता है। और इसी तरह से अब बैक टू बैक दो ऐसी घटनाएं हो गई हैं जहां पे अब विपक्षी पार्टियां, आपको बता दें चंद महीने रह चुके हैं और युद्ध नशे विरुद्ध एक बड़ा कैंपेन आम आदमी पार्टी ने चलाया और उनका कहना है कि बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो सवाल यही उठते हैं कि क्या आम आदमी बोल नहीं सकता है, और यही सवाल अब विपक्षी पार्टी लगातार उठा रही है जिससे मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें इनका कैंपेन है लेकिन बीजेपी का भी अब नशे विरुद्ध कैंपेन चल रहा है, नशा मुक्त भारत के तहत वो नशा मुक्त पंजाब की बात कर रहे हैं। और आप देखें कि आज शिवराज चौहान है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो भी आए हुए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें 18 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई है और 30 तारीख को अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर आएंगे जलंधर में। और इसी वजह से ड्रग्स का जो इशू है वो एक बड़ा इशू है खासतौर पर पंजाब में, और क्योंकि इस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं तो वाले निशान सीधा आम आदमी पार्टी पे लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे जो आम आदमी है उन्होंने कहा है, पलटवार किया और कहा है कि जो ड्रग्स हैं वो बीजेपी स्टेट से आ रहे हैं, चाहे हम मुंद्रा पोर्ट की बात करें, चाहे यूपी राजस्थान की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। लेकिन आपको बता दें कि रूलिंग पार्टी होते के नाते उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और खासतौर पर यहां पर जहां पर बोला जा रहा है कि सरपंच का नाम पहले बाजार के मामले पर भी आया था और अब जग्गा सिंह के मामले पे भी,
0: तो जवाबदेही तो सरकार की ही बनेगी और यही सवाल हम भी उठा रहे हैं। शुक्रिया आपका कमल जी इस पूरी जानकारी के लिए। अब खबर आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी सियासी हलचल की। आज दो राज्यों में हलचल है, यूपी में नितिन नवीन का दौरा है तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के दौरे पर है, जैसा कि हमारी सहयोगी भी बता रही थी। दोनों राज्यों में होने वाले

0: बात करते हैं यूपी की। यूपी में मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आज से 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। पश्चिमी यूपी में पार्टी संगठन की नब्ज टटोलेंगे और चुनावी तैयारियों की थालेंगे। वे आज मेरठ और 22 सितंबर को सहारनपुर में पार्टी की बैठकों में शामिल होंगे। इन 2 दिनों में नितिन नवीन पार्टी नेताओं, शक्ति केंद्र प्रभारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संवाद भी करेंगे। मेरठ में आज सीएम योगी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले मेरठ में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सुभारती विश्वविद्यालय में होने वाले युवा सम्मेलन को और इसके बाद शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करके चुनावी तैयारियों का फीडबैक भी लेंगे। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को भी वे मेरठ में प्रबुद्ध जनों और समाज के विशिष्ट जनों से संवाद करेंगे। नितिन नवीन कल दोपहर बाद सहारनपुर पहुंचेंगे, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर भोजन करेंगे। इसके बाद सहारनपुर में भी पूर्व पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, जिला स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। समर्थ, तैयारी तो खूब है, नितिन नवीन का कार्यक्रम भी काफी बिजी दिख रहा है, कोशिश क्या है यहां पर बीजेपी की?
1: अंजलि, देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि कैसे विनोद तावड़े ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, खासकर पूर्वांचल की उन सीट्स पर उनकी नजर रही। अब जो है बारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और खुद नितिन नवीन जो है बारीकियों को परखने आ रहे हैं। संगठनात्मक बैठकें तो करेंगे ही, जो बूथ प्रभारी हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो पार्टी के पुराने सांसद विधायक हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। यानी कि जो फीडबैक है, देखिए जो पावर में है, जो करंट विधायक सांसद होता है वो एक पक्ष बता पाता है, लेकिन जिसके नाम के सामने पूर्व लग जाता है वो उस क्षेत्र या उस विधानसभा के बारे में जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या जो कमियां होती हैं उनके बारे में भी बता पाता है। और नितिन नवीन का एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी आज कुछ बैठकों में नितिन नवीन के साथ शामिल हो सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी नितिन नवीन चुनाव के मद्देनजर फीडबैक ले सकते हैं। इसके अलावा नितिन नवीन का यह दौरा कहीं ना कहीं जेंजी को लेकर भी है, यानी कि युवा सम्मेलन जो है उसमें वो शामिल हो रहे हैं जिसके जरिए जेंजी को साधा जा सके। नितिन नवीन जो है जेंजी के बीच में जाएंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, सम्मेलन के जरिए बीजेपी का जो मैसेज है वो दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचाएंगे। देखिए कुछ दिन पहले पूर्वांचल को बीजेपी ने साधने की कोशिश की थी, लखनऊ द्वारा भी शुरुआत में हालांकि हो चुका है, लेकिन अब बताया जा रहा है जब से विनोद तावड़े ने उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया उसके बाद से जो बीजेपी की इंजीनियरिंग है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी रथ यात्रा रायबरेली से निकालने जा रही है, तो वहीं आज का नितिन नवीन का दौरा यानी कि 2 दिवसीय दौरा, केवल मेरठ नहीं सहारनपुर और मेरठ दोनों जिलों को आज से कल में साधेंगे। बूथ प्रभारियों के साथ बैठक बहुत अहम है। जो वोट्स का लॉस हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अगर वो उनको लगता है तो उसको भी टटोलेंगे कि कैसे वोट बढ़ाया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव ने 27,000 वोट पर विधानसभा बढ़ाने की बात की है, तो बीजेपी इसका भी आकलन अपने अपने क्षेत्र में करेगी। जी
0: जी, बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह की रणनीति यहाँ पर लगातार कार्यरत रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं, बीजेपी अध्यक्ष पश्चिमी यूपी दौरे पर है तो वहीं दूसरी ओर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और क्रिकेटर मोहम्मद शमी मुलाकात करते हैं। इसके साथ ही सियासी कयासबाजी का दौर भी शुरू हो जाता है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दिल्ली से लेकर अमरोहा तक राजनीति गर्मा गई है। दरअसल यूपी चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद शमी से राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर अमरोहा से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा जा सकता है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है। इसके बाद अमरोहा में मोहम्मद शमी या उनके परिवार की सियासी पारी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि शमी या राष्ट्रीय लोक दल की ओर से चुनाव लड़ने या पार्टी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। तो यही एक बात नहीं है, यूपी की राजनीति की एक और दिलचस्प बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से भी सियासत गरमा गई है। देवरिया में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सामाजिक समरसता रैली में राज

0: पर ने दावा किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा यही मेरी मंशा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो राजभर समाज का बेटा ही उसका मुख्यमंत्री बनेगा।
1: मेरी मंशा है आने वाले दिनों में प्रदेश का बंटवारा होगा, प्रदेश का 4 भागों में बंटवारा होगा। जिस दिन पूर्वांचल राज्य अलग होगा, सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री कोई जाति का होगा तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री पूर्वांचल का होगा। इसको ध्यान में रख करके काम करना, किसी के बहकावे में आकर के कि सपा में चले जाओ, बसपा में चले जाओ, कांग्रेस में चले जाओ, तो 60 साल तो कांग्रेस ने शासन किया, 4 बार बसपा ने, 4 बार सपा ने शासन किया, हमको आपको दिया क्या? कुछ दिया हो तो बताओ।
0: तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: एक तो एक

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, H current account business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
2: Okay.
3: Oh, Jeevan, nothing small about us.
4: Papa.
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ।
7: टाटा ए आई जी है तो भरोसा है।
8: बहुत टायर्ड हो गई।
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
10: लायन डेट नट बाइट्स।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
17: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट।
19: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
21: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
23: इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: Wait, lifestyle ke liye 10 alag pages kyu follow karna? Health, fitness, yoga, mental wellness, sab kuch ek hi jagah. FitTak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on FitTak YouTube.
4: There is a very famous quote ki history repeat itself.
5: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
6: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
5: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara cover mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
7: हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं, क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
8: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना और जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहां एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और इसलिए वहां कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: दिल्ली में एसआईआर की कवायद में दिग्गजों को नोटिस। विदेश मंत्री एस जयशंकर, लालकृष्ण आडवाणी, धनखड़ समेत कई बड़े चेहरों पर जवाब तलब। पूर्व सेनाध्यक्ष, पूर्व सीबीआई निदेशक भी दायरे में। यूपी में समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, आज मेरठ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और सीएम योगी। अखिलेश ने भी कसी कमर, समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रताड़ना। संगरूर में डीसी दफ्तर के बाहर एक शख्स के जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश, सचिन पायलट ने जारी किया वीडियो। बिहार के जमुई में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। नाबालिग लड़का लड़की से भीड़ ने किया दुर्व्यवहार, मामला दर्ज। विपक्ष ने सम्राट सरकार पर उठाए सवाल। और राजस्थान के 5 नगर निगम में मेयर का चुनाव, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर में वोटिंग। 24 नगर परिषद, 244 नगर पालिकाओं के प्रमुख भी आज होंगे तय।

और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के जमुई से आ रही है, जहां नाबालिग लड़के और लड़की से दुर्व्यवहार का संगीन मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है, उसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जमुई के SP ने वीडियो और घटना की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। SP के मुताबिक पुलिस ने पीड़ित लड़के और लड़की से बातचीत की है और उनके बयान के आधार पर आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस मामले में 6 से 7 आरोपी हो सकते हैं और पुलिस उनकी पहचान और भूमिका की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार घटना 19 सितंबर की शाम करीब 6 से 7 बजे की बीच की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान, घटना की पूरी वजह और वायरल वीडियो से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

0: जमुई में जो घटना हुई है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरह की हृदय विदारक घटना, इस तरह की मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शासन और प्रशासन पंगू हो चुका है। जमुई में जिस तरह की घटनाएं सामने आई है और जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से अपराधियों ने चिलहरम की कार्रवाई कहीं ना कहीं करने की कोशिश की और जिस तरह से सरेआम मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, ये जमुई के शासन और प्रशासन के संबंध में स्पष्ट रूप से सामने आता है कि सरकार और सरकार के स्तर से कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को पंगु बना दिया गया है।
1: एक शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना लखीसराय जमुई के आसपास कहीं की बताई जा रही है और इस पे संज्ञान लिया जा चुका है। आईपी एड्रेस इन सबसे खंगाला जा रहा है, फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों तत्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है। ट्राइंग टू आउटरेज द मोलेस्टी जैसे संज्ञेय अपराधों में इस पे कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी हैं बहुत जल्द कानून की सलाखों के पीछे होंगे और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आगे से इस तरह की शर्मसार घटना किसी के जहन में भी नहीं आए।
2: देखिए, बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है और बिहार में मॉब जस्टिस नहीं चलता है। जो भी लोग कानून हाथ में लेते हैं उन पर कानून अपना हाथ डालती है। यह वीडियो प्रकाश में आया है, पुलिस मामले की त्वरित जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शशि भूषण का। शशि, जिस तरह की तस्वीर है उससे साफ पता चलता है कुछ ने तो अपने मुंह भी ढके हुए हैं, तो ये आरोपी जो हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये किसी तरह के क्रिमिनल ही लगते हैं। पुलिस क्या कह रही है?
4: देखिए, पुलिस का ये कहना है अंजलि कि इस मामले में जो भी पीड़ित लड़का और लड़की हैं उन दोनों के बयानों के आधार पे जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं इस पूरे मामले में, उनकी पहचान की जा रही है। लगातार उस एरिया का जो मोबाइल डंप डाटा होता है वो भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये घटना जो घटी है वो किसी सुनसान जगह पे घटी है, एक ऐसी सड़क पे घटी है जहां पर बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पर पब्लिक की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन हाँ, जो घटना घटी है वो और बड़ी हो सकती थी अगर वहां से कुछ लोग जो उसमें खड़े थे भीड़ में, अगर वो ये नहीं कहते कि इनको जाने दो। लेकिन हाँ, 19 सितंबर की ये घटना है, कल शाम से ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे और उसके बाद जमुई पुलिस ने भी इस पर संज्ञान लिया है। जमुई पुलिस, जमुई के जो एसपी हैं उनका कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है, जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी पुलिस सुनिश्चित करेगी। लेकिन अपने आप में बेहद शर्मनाक भी कह सकते हैं और बेहद चौंकाने वाली घटना है कि एक युवक और युवती जिस तरह से जा रहे हैं टू व्हीलर से और उनको घेर करके निशाना बनाते हैं कुछ लोग, और मॉब की जो शक्ल देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के भी जो स्थिति है उस पर सवाल खड़े करती है। और ऐसा जो विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और प्रशासन जो है वो पंगु बन चुका है, तो विपक्ष को एक मौका भी मिला है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। हालांकि सत्ता पक्ष का जो बयान हमने देखा अंजलि, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में जल्द दोषियों के ऊपर एक्शन होगा।
3: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, भारी हंगामा हो रहा है। बीजेपी विधायकों ने बिजली की दरें बढ़ाने और नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों समेत कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के मुद्दे पर उमर सरकार को घेर लिया है, प्रदर्शन किया है। विरोध जताते हुए उन्होंने बैनर और पोस्टर भी उठाए। ये तस्वीरें हम आपके लिए जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर की लेकर आ रहे हैं जब ये पूरा हंगामा हुआ है। उमर सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी थी और इसी का विरोध करते हुए बीजेपी के विधायकों ने वहां आवाज उठाई है। तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां पर बीजेपी के विधायकों ने वेल में घुसकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। उनका आरोप है उमर सरकार पर, जिसने बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है। और पोस्टर और बैनर उठाकर जो बीजेपी के विधायक हैं वो वेल में पहुंच गए और आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में कागज हैं जो कि वो दिखा रहे हैं, तख्ती है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो अपनी। सरकार के लिए एक चुनौती इस वक्त नजर आ रही है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि उमर सरकार ने कोशिश की है थोड़ा समन्वय बिठाने की केंद्र सरकार के साथ, लेकिन यहां बीजेपी नाराज रुख में नजर आ रही है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, आइए सीधा रुख करते हैं उन्हीं का। सुनील, किस तरह की नाराजगी है ये? क्या सिर्फ बिजली की दरों में बढ़ोतरी है या कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर यह गुस्सा फूट रहा है?
5: जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि इस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो है सत्र आज से शुरू हुआ है। ये 7 दिन का सत्र है, लेकिन पहले ही दिन यहाँ पर काफी हंगामा देखा जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जो है आज यहाँ पर असेंबली में जो है काफी प्रदर्शन किए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ मुद्दे उठा रही है, वो कह रही है कि जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर की जनता को कोई राहत नहीं मिली और जो हाल ही में जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो बिजली दरों में जो बढ़ोतरी की है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और साथ ही में जम्मू कश्मीर में हजारों की संख्या में जो है डेली वेजर्स हैं और जो अस्थायी तौर पर जो लोग कार्य कर रहे हैं अलग अलग विभागों में, तो उनकी काफी समय से मांग रही है कि उनकी सेवाएं जो स्थायी की जाए और उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनके लिए जो है कोई नीति लाई जाएगी और उमर अब्दुल्ला सरकार ने बाद में जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से ये होगा, रेगुलराइजेशन होगा, लेकिन बीजेपी जो है फिलहाल उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने में लग गई और पहले ही दिन, सत्र के पहले ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला सरकार का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जो विधानसभा का सत्र है उसमें विघ्न डाल रही है और कार्रवाई ठीक से चलने नहीं दे रही है और उमर अब्दुल्ला सरकार का आरोप है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सुर्खियां बटोरने में लगी हुई है। जी अंजलि
3: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील जी। और आइए अब सीधा रुख करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों का, जिसमें खास तौर पर यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया उसकी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे।

रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे, साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन से हमला किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
2: इन एसोसिएशन विद
9: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं, जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया उनका भी वो अपमान करते हैं।
10: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। और ये सेल्फ गोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।

0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है।
1: एमपी के इंदौर में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था के बहाने राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी पर बात की और छात्रों के सवाल पूछने की आदत को मौजूदा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया।
0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।
1: छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सवाल किया कि आखिर स्कूल कॉलेजों की हालत खराब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश में शिक्षा व्यवस्था का बजट लगातार क्यों घटाया जा रहा है।
0: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है।
1: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी तो बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दे की समझ ही नहीं।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद से सभी पार्टियां लगातार छात्रों को साधने में लगी हैं। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस अभियान की कड़ी है, जिसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ती रही है। अब इंदौर के कार्यक्रम के बाद भी वार पलटवार तेज हो गया है। इंदौर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: Sorry.

ऑनलाइन शॉपिंग में किसी प्रोडक्ट पर 50%, 60% या 70% डिस्काउंट देकर अगर आप खरीदारी का फैसला करते हैं तो नए साल से पहले थोड़ा ठहरना सही रहेगा। दरअसल 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका बदलने वाला है। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिनके मुताबिक डिस्काउंट में मौजूदा कीमत के साथ पिछली कीमत बतानी होगी। पिछली कीमत का मतलब पिछले 30 दिनों का सबसे कम दाम होगा। मतलब बड़ा डिस्काउंट दिखाने का खेल आने वाले साल में आसान नहीं होगा। मान लीजिए किसी सामान की पुरानी कीमत 10,000 रुपए थी और सेल से कुछ दिन पहले कंपनी ने कीमत घटाकर 8,000 रुपए कर दी। अब सेल में अगर वो सामान 6,000 रुपए का है तो डिस्काउंट 25% ही माना जाएगा। साथ ही पिछले 30 दिनों में सबसे कम कीमत 8,000 रुपए थी, इसकी जानकारी भी देना जरूरी होगा। ऑनलाइन खरीदारी में कीमत के साथ एक और चीज ग्राहक के फैसले को प्रभावित करती है और वो है सर्च रिजल्ट। इसी को देखकर भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं, जिनके मुताबिक कंपनियां सर्च रिजल्ट को इस तरह नहीं बदल सकेंगी जिससे ग्राहक गुमराह हो जाए। वहीं पैसे देकर ऊपर दिखाए गए प्रोडक्ट को प्रायोजित लिस्टिंग के तौर पर साफ बताना होगा, जिससे ग्राहक को ऑर्गेनिक और पेड लिस्टिंग का फर्क समझ आ जाए। यानी आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करें और ऊपर दिखने वाला सामान किसी कंपनी ने पैसे देकर हाईलाइट कराया है तो इसकी जानकारी ग्राहक से छिपाई नहीं जा सकेगी। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार वेबसाइट या ऐप का डिजाइन ही ग्राहक को फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है, जो वो शायद सामान्य स्थिति में नहीं लेता। इसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। नए नियमों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। वहीं कंपनियों को हर साल सेल्फ ऑडिट करना होगा, साथ ही नियमों के पालन का सर्टिफिकेट प्रमुखता से दिखाना होगा और ग्राहक के डेटा के इस्तेमाल के लिए तय मामलों में उसकी साफ सहमति जरूरी होगी। सरकार ने ग्राहक की शिकायतों को लेकर भी नियम सख्त किए हैं। नए नियमों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की शिकायत व्यवस्था से भी जुड़ना होगा। शिकायत दर्ज कराने वाले ग्राहक को कंपनी के शिकायत अधिकारी के पास दर्ज शिकायत की कॉपी भी देनी होगी। ऑनलाइन खरीदारी में प्रोडक्ट की जानकारी को लेकर भी कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। सामान की वापसी और रिफंड, वारंटी, डिलीवरी, भुगतान और इस्तेमाल की आखिरी तारीख जैसी जरूरी जानकारी ग्राहक को देनी होगी। आयातित सामान के मामले में इंपोर्टर की जानकारी और सामान किस देश में बना है ये भी बताना होगा। मतलब 1 जनवरी 2027 में ऑनलाइन सेल में केवल बड़ी छूट देकर खरीदारी करने की जगह ग्राहक के पास कीमत और प्रोडक्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी होगी। आदित्य राणा, आज तक।

0: में एसआईआर की खपत में दिग्गजों को नोटिस, विदेश मंत्री एस जयशंकर, लालकृष्ण आडवाणी, धनखड़ समेत कई बड़े चेहरों से जवाब तलब, पूर्व सेना अध्यक्ष, पूर्व सीबीआई निदेशक भी दायरे में।
1: यूपी में समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, आज मेरठ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश ने भी कसी कमर, समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक।

0: कोशिश की। सचिन पायलट ने जारी किया वीडियो।
1: बिहार के जमुई में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां, नाबालिग लड़का लड़की से भीड़ ने किया दुर्व्यवहार, मामला दर्ज, विपक्ष ने सम्राट सरकार पर उठाए सवाल।
0: और राजस्थान के 5 नगर निगमों में मेयर का चुनाव, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर में वोटिंग, 24 नगर परिषद, 244 नगर पालिकाओं के प्रमुख भी आज होंगे तय।

0: बिहार के जमुई में नाबालिग लड़के लड़की के साथ भीड़ ने की बदसलूकी, घटना की तस्वीरें आई सामने। वायरल वीडियो के आधार पर जमुई पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जमुई मामले पर सियासत गरमाई, भीड़ के बर्ताव पर JDU का प्रवक्ता नवल शर्मा बोले, बिहार में मॉब जस्टिस नहीं चल सकता। जमुई में प्रेमी जोड़े के साथ भीड़ के बर्ताव पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कुंतल कृष्ण ने घटना को बताया शर्मनाक, कहा जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। जमुई की घटना पर RJD की प्रतिक्रिया, प्रवक्ता एजाज अहमद बोले, मानवता को शर्मसार करने वाली है घटना, शासन प्रशासन पंगु बन चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों का उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बिजली दरों में बढ़ोतरी का किया विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने उठाई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की मांग, विरोध के दौरान विधायकों में धक्का मुक्की। NHM कर्मचारियों की को नियमित करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों का सदन में विरोध प्रदर्शन, बैनर और पोस्टर लेकर विधानसभा में पहुंचे बीजेपी विधायक, बिजली दरों और कर्मचारियों के मुद्दे पर जताया विरोध।
1: दिल्ली SIR की सूची में कई बड़े नामों को नोटिस जारी, लिस्ट में चुनाव आयुक्त SS संधू, विदेश मंत्री SJ शंकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नेता शामिल। SIR के घेरे में CBI निदेशक प्रवीण, थलसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को परिवार समेत नोटिस मिला है। SIR के दायरे में जज से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना देसाई, विदेश सचिव विक्रम मिश्री समेत कई बड़े नाम रिकॉर्ड जो है जांच में शामिल है। पूर्व डिप्टी CM सिसोदिया और परिवार को भी SIR का नोटिस, पुराने वोटर रिकॉर्ड में नाम नहीं जुड़ने और नाम में अंतर के चलते नोटिस किया गया जा रहा है। SIR नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है, 29 अक्टूबर तक BLO के पास में दस्तावेज जमा कर सकेंगे मतदाता, 4 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। 2027 UP विधानसभा चुनावों की तैयारियों में बीजेपी ने संगठनात्मक कवायद की तेज, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने 2 दिन के दौरे पर नितिन नवीन मेरठ और सहारनपुर में करेंगे बैठक। जयंत चौधरी के समर्थन में उतरे ओवैसी, अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल उठाकर बोले ऐसी बयानबाजी गलत। देवरिया की रैली में ओम प्रकाश राजभर का दावा, जल्द ही 4 हिस्सों में बटेगा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल बना तो राजभर समाज का बेटा बनेगा CM। UP इंटरनेशनल ट्रेड शो का 4th एडिशन 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन। निर्यात और निवेश पर CM योगी का फोकस, बोले यूपी से 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निर्यात और 15 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतर गया।
0: महिलाओं की सुरक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, बेटियों से छेड़छाड़ करने वाला अपनी मौत का वारंट खुद लिखेगा। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ऐलान, हर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के वोट 27,000 बढ़ाने का लक्ष्य। अंबेडकर प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप पर अखिलेश का दावा, यूपी के 72 जिलों में 151 मूर्तियां क्षतिग्रस्त। अंबेडकर प्रतिमाओं पर अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा सबसे ज्यादा तोड़फोड़ समाजवादी पार्टी सरकार में हुई। अंबेडकर प्रतिमाओं को लेकर यूपी में सियासी घमासान, मंत्री अनिल राजभर का समाजवादी पार्टी पर हमला, दलितों का आरक्षण छीनने का लगाया आरोप। राजस्थान में 273 निकायों में आज अध्यक्ष पद के चुनाव, 5 नगर निगम में मेयर और 41 नगर परिषदों में सभापति चुने जाएंगे। उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर में आज मेयर पद का चुनाव, 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन चुने जाएंगे। राजस्थान निकाय चुनाव के मतदान की शुरुआत, वोटिंग खत्म होते ही शुरू होगी मतगणना। 32 निकायों में निर्विरोध चुनाव पहले ही हो चुका, 30 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। 25 सितंबर को होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम के चुनाव, 3 में बीजेपी के पास बहुमत।
1: अमित अंसारी के बयान पर सियासी घमासान, मुख्यमंत्री योगी बोले हिंदू परंपरा को अपमानित करने की कोशिश। हामिद अंसारी के हिंदू सांप्रदायिकता वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, शहनवाज हुसैन बोले माफी मांग। हामिद अंसारी के बयान पर BHP का हमला, विनोद बंसल बोले कि नेहरूवादी और कट्टरपंथी सोच से बाहर आए। हामिद अंसारी के बयान का ओवैसी ने किया बचाव, बोले असहमति हो सकती है लेकिन उनकी विद्वता पर सवाल ही नहीं। पटना में लवकुश सम्मान समारोह, उपेंद्र कुशवाहा बोले हम एक हैं तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। सम्राट चौधरी ने 5 पांडवों का मंत्र दिया। इंदौर में राहुल के छात्रों की कूच कार्यक्रम में पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के लिए यह बेहतर होगा कि राहुल पार्टी छोड़ दें और स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेता विपक्ष पर किया आभार, बोले राहुल ने सनातन का अपमान करने और लगातार कमजोर करने का उसे फैसला किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस कॉमेडियंस और जोकरों की पार्टी है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने राहुल पर साधा निशाना, कहा कि उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए, वो जहां भी गए कांग्रेस पार्टी को बर्बादी का सामना करना पड़ा।
0: बंगाल एसआईआर पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, वोट डिलीट होने से चुनाव नतीजों पर असर के दावे को खारिज किया। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावे को बताया गलत और अटकलों पर आधारित, ज्यादा एसआईआर ट्राइब्यूनल बनाने की मांग। बंगाल में एसआईआर के तहत अब तक 38 लाख से ज्यादा अपील, करीब 1,26,000 मामलों में ट्रिब्यूनल पर का फैसला और 1 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट में वापस जुड़ चुके हैं। रेजी नगर उपचुनाव से पहले हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, पुलिस पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का लगाया आरोप, कहा अब नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। कटक में उड़ीसा प्रो T20 लीग का आगाज, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बारावती स्टेडियम में किया उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की लंदन यात्रा में अन्नामलाई का थैंस, बोले कि विजय की लंदन यात्रा गैर जरूरी निवेश के लिए, यूके की अर्थव्यवस्था में दम नहीं। अन्नामलाई ने कहा कि लंदन की जगह मदुरई और कोयम्बटूर जाते मुख्यमंत्री विजय अजीत और त्रिशा की तस्वीर पर अन्नामलाई का बयान। के शोभा रेड्डी बोले कि मेरे मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए, किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं, महिला ने मुद्दा उठाया है तो उनकी परेशानी की गंभीरता देखी जाए। केरल में आज कोट्टायम, अलप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर में बारिश का रेड अलर्ट है, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई है आज। हनुमानगढ़ राजस्थान निर्दलीय विधायक गणेश राज को पुलिस रिमांड, 25 सितंबर तक पुलिसिया रिमांड मिले। यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में इंदौर के व्यापारियों ने नो यूपीआई डे, 23 सितंबर को 2,000 से ज्यादा का भुगतान नहीं लेंगे। मुंबई के JW मैरियट रेस्टोरेंट में टेबल पर मिला कॉकरोच, डिनर के दौरान टेबल पर एक घूमता दिखा कॉकरोच, वीडियो वायरल। जोधपुर में लॉरेंस और आरजू बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, AGTF और जोधपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, होटल से ये शूटर्स दबोचे गए।
0: मधेपुरा में चलती कार में लगी भीषण आग, 81 बोतल विदेशी शराब हुई बरामद, तस्कर फरार। अकोला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झड़प, गाड़ियों में तोड़फोड़, लोगों ने जमकर किया पथराव। रायसेन में स्लीपर बस और डंपर की जोरदार टक्कर, बस कटर से काट कर चालक को निकाला बाहर, 9 यात्री घायल। पटना में नशे की हालत में बेटे ने अपनी मां को जिंदा जलाया, गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ पी की मारपीट। वैशाली में एक बार फिर वर्दी पर उठे सवाल, नशे के सौदागरों ने से साठ गांठ रखने वाले थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित। तेलंगाना के सूर्यपेट जिले में हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर वॉल्वो कार में लगी आग, कार चालक डॉक्टर की जिंदा जलकर हुई मौत। तेलंगाना हादसे का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो आया सामने, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, टक्कर लगते ही आग की चपेट में आ गई कार। नवी मुंबई में फर्नीचर गोदाम में लगी भयंकर आग, पूरी कंपनी जलकर खाक। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान। दिल्ली के संगम विहार में एक घर में हुई बड़ी चोरी, घर के ताले तोड़कर लाखों का सामान गायब, जांच में जुटी पुलिस।
1: हैदराबाद में 10 रुपए के विवाद में ऑटो ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया गया, इलाज के दौरान दम तोड़ा। हैदराबाद में लिफ्ट और दीवार के बीच फंसा शख्स 90 मिनट तक बाद रेस्क्यू हुआ और बाल बाल बची उसकी जान। बेतिया में गर्भवती की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने अवैध हॉस्पिटल को सील किया। कटरा के हेलीपैड टर्मिनल में लगी आग से आधे घंटे बाद इस पर पाया गया काबू, लेकिन टिकट काउंटर के कंप्यूटर्स पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में कचरे में धमाका, घास काटने गए दो सगे भाई झुलस गए।

0: और अब आपको सीधा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी संबोधित कर रहे हैं।
1: अमेरिकी राजदूत से बातचीत में यह कहा कि लश्करे तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरा उनके लिए हिंदू अपराइजिंग नजर आ रही है, यानी जो नेहरू की सोच थी वही राहुल गांधी की सोच है। और इतना ही नहीं, यह सोच किस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त है कि सुशील कुमार शिंदे जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जनवरी 2013 में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में कहा कि आरएसएस वाले शिविर चलाते हैं देश में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए। और जब सुषमा स्वराज जी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष पूछा तो भारत के इतिहास का कितना विचित्र और निंदनीय उदाहरण है कि सुशील कुमार शिंदे, जो उन्होंने कहा आप गृहमंत्री हैं, आपने किस आधार पर बोला, सदन के पटल पर साफ करिए, तो उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापस लेता हूं, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। यानी यह दर्शाता है कि इनकी बातें तथ्य पर आधारित नहीं होती हैं और यह पूरी तरीके से कपोल कल्पना पर आधारित होती हैं। अब कांग्रेसियों के लिए परम आदरणीय और सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका उल्लेख उनके लिए सेक्युलरिज्म के सरताज हामिद अंसारी साहब ने किया है, तो मैं नेहरू जी की के मनोभावों को मैं व्यक्त करना चाहता हूं उन्हीं की जवानी। नेहरू जी ने 17 मार्च 1959 को आकाशवाणी के साथ एक कार्यक्रम में, जिसमें कि वो भारत के म्यूजियम का उद्घाटन कर रहे थे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर भी थे, वो क्या कहते हैं मैं कोट कर रहा हूं। मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ, वेल दे आर वेरी ब्यूटिफुल, सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द साउथ हाउएवर रिपेल मी इन स्पाइट ऑफ देयर ब्यूटी, आई कैन नॉट स्टैंड, व्हाई डू आई डू नॉट नो, आई फील सप्रेस्ड। यानी जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के मंदिर जिनकी हुमायूं कबीर तारीफ कर रहे हैं, वो अपने शानदार स्थापत्य के बावजूद मुझे रिपेल करते हैं, मुझे उनसे एक विपरीत प्रभाव महसूस होता है और मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। एंड हाउ एवर, जब मैं ताजमहल इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स एनी वेयर इन द डिलाइट टू द आई एंड स्पिरिट टू सी, ताजमहल देखकर मेरी आंखों को सुकून मिलता है। अब सुनिए, ताजमहल संगमरमर से बनी इमारत है और वही जवाहरलाल नेहरू 1962 में क्या कहते हैं, मंदिरों में संग, अच्छा ये जो मैंने बोला है इसमें भी कांग्रेसियों के सुलभ संज्ञान के लिए, चाचा जी के चाहतों वालों के लिए मैं बोल देना चाहता हूं, द सोर्सेज स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 17th of March 1959, सोर्सेज सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 इन द फर्स्ट एडिशन फ्रॉम पेज नंबर 401 to 406। अब आइए साहब, वो संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को कितना अच्छा लगता है, मगर वही बोलते हैं मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना ज्यादा यूज होता है कि मुझे गुसलखाने की याद आती है, बाथरूम की याद आ रही है। इसका सोर्स है सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 74 इन द ओरिजिनल एडिशन पेज नंबर 181। आप फितरत देखिए, मंदिर में डिप्रेशन,

0: और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि संगमरमर के पत्थर से चाहे जितनी अच्छी भी मूर्तियां बना दी जाएं, मगर मुझे उसमें से गुसल खाना ही याद आता है, बनारस के लोगों को भले ही बुरा लग रहा हो, यानी बुरा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, नेहरू जी ने वंदे मातरम के लिए क्या कहा वो सबको पता है। अब जो इन्होंने कोट किया है वही नेहरू जो कि ये कहते हैं विदेशी आक्रांताओं के लिए, वही नेहरू छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लिखते हैं लूट ऑफ सूरत, और जब उसका विरोध होता है तो 1936 में वो विड्रॉ करते हैं और रिग्रेट व्यक्त करते हैं। मगर वही नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जहां महमूद गजनी का वर्णन है वहां कहते हैं गजनी वॉज फार मोर ए वॉरियर, ही हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। और इस कदर छुपाते हैं कि मथुरा में जो गजनी के आने का उल्लेख होता है उसमें वो कहता है अरे इतने सुंदर इमारतें, मुझे लगता है इनको बनाने में तो 200 साल लगे होंगे, फरिश्तों ने बनाया होगा। और वहीं पर नेहरू जी रुक जाते हैं, कहते देखिए वो कितना बड़ा कला का पारखी था, जबकि उनके साथ आए हुए जो इतिहासकार थे जिसमें उतबी हैं, फरिश्ता हैं, मिनहाजुस सिराज हैं, वो लिखते हैं कि ये कहने के बाद गजनी ने कहा सारे मंदिरों को तोड़ दो, आग लगा दो, नेफ्था लगा के आग लगा दो। मगर देखिए कैसे वो छुपाते हैं, ये उनके दिल की हकीकत है। और अब मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे श्री एनवी गाडगिल के लिए, उनके इन्हीं कारणों की वजह से वो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय हिंसा बढ़ी, द स्पीचेस ऑफ नेहरू ऑन द मुस्लिम प्रॉब्लम इंसाइटेड देम एंड इन्फ्यूरिएटेड द हिंदूज, द डिफरेंस बिटवीन नेहरू एंड पटेल एंड हाउ टू डील विद मुस्लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो, द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ द नेहरूज स्पीच इज गेटिंग टेंसर एंड टेंसर एंड इट इज क्रिएटिंग रिस्क टू गांधी जीज लाइफ। एनवी गाडगिल हु वाज़ द मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट इन हिज बुक फ्रॉम इनसाइड द गवर्नमेंट इन द ओरिजिनल एडिशन ऑन पेज नंबर 147 to 148। इसीलिए हामिद अंसारी जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े नहीं हैं, उन मुर्दों में जान फूंक दी है। जो लोग भूल गए थे उनको भी वो सारी की सारी चीजें उन्होंने याद दिला दी हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आज अंसारी साहब ने अपने बयान से साबित कर दिया है कि कांग्रेस जिस प्रकार के मुस्लिम्स को आगे बढ़ाती है उनके अंदर वही लीगी भावना होती है जो कांग्रेस के अंदर आज पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। और इसलिए हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि नेहरू जी ही, एक और बात कोट कर दूं, 1935 में ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट द हिंदू नेशनलिज्म एज डिस्क्राइब्ड बाय स्वामी विवेकानंद, यानी 1934 में यह लिख रहे हैं। और जैसे 1937 में जिन्ना कहता वंदे मातरम का विरोध करो खड़ाक से सरेंडर, 6 अप्रैल 1938 को वो लेटर लिखते हैं, नहीं नहीं हम सब बंद छोड़ने को तैयार हैं, सब काटने फाटने को तैयार हैं, 1944 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख देते हैं। यानी जो गलती कांग्रेस ने 100 साल पहले की थी वही आज कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हामिद अंसारी साहब ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, नेहरू जी को एक्सपोज किया और यह साबित किया कि वामपंथ एक खतरा है, उसके लिए उससे अब एकदम साफ हो गया कि कांग्रेस के चेहरे का मास्क हट गया है और वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस वालों को नेहरू जी को कोट करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि उनकी किताबों में जो कुछ लिखा है शायद उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा है। और राहुल गांधी जो ऐसे नेता हैं, आपने पढ़ा लिखा दो शब्द सुने होंगे ना, वो सिर्फ लिखे हैं पढ़े नहीं है, खटाखट ट्विटर पर लिखते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा नेहरू जी और गांधी ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़िए और याद रखिए, बैठे हैं वो दिल में इतने राज छुपाए, यानी जो उनका साहित्य है वो बैठा है दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा एक पन्ना उठे तो तुम्हारा दिल डगमगाए। धन्यवाद।
1: तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by

0: पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर गया।
4: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
10: यार लोन भूल गया। मैरी
11: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
12: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
10: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
12: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
13: There's nothing small about
10: us. Ujjivan, nothing small about us.
14: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
15: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
16: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
17: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
18: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
17: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
5: इन एसोसिएशन वे हिंट, एक हिंट तो देते।
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: विमल बोलो जुबां केसरी।
7: There is a very famous quote ki history repeat itself.
8: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
9: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
8: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।
10: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर, सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा।
11: नंदीग्राम पोस्ट के हमारे डिसीजन जो कांग्रेस के सपोर्ट कांग्रेस ने भी करा किया छोरा जे कोनो शर्ते हमारे साथ जे कोनो व्यापारे हमारे साथ हेल्प करा जनो राजी हमरा तो सपोर्ट दिछी।
10: लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल। दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक,

0: हामिद अंसारी के दक्षिण पंथ सांप्रदायिकता को वामपंथ से बड़ा खतरा बताने पर घमासान। बीजेपी ने किए हमलों की बौछार, कहा पूरी तरह मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस।
1: यूपी में समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बुलडोजर वाला स्वागत, योगी के साथ कई बड़े कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की भी बैठक।
0: पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रताड़ना, संगरूर में डीसी दफ्तर के बाद एक शख्स ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की, सचिन पायलट ने जारी किया वीडियो।
1: बिहार के जमुई में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां, नाबालिग लड़का लड़की से भीड़ ने किया दुर्व्यवहार, मामला दर्ज, विपक्ष ने सम्राट सरकार पर उठाए सवाल।
0: और राजस्थान के 5 नगर निगमों में मेयर का चुनाव, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर में वोटिंग, 24 नगर परिषदों, 244 नगर पालिकाओं के प्रमुख भी आज होंगे तय।

0: और अब बुलेटिन में हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी हुई, जिसमें कई दिग्गजों को नोटिस मिला है और नोटिस मिलने के बाद से सियासत शुरू हो गई है। और उसके साथ ही बुलेटिन में हम यूपी की राजनीति की बात भी करेंगे, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिनों के पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंच चुके हैं।
1: इसके साथ ही बात एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के समाजवादी पार्टी को दिए नए ऑफर की भी करेंगे। अब ओवैसी ने विपक्षी दलों को साथ आने का ऑफर देने के साथ डेडलाइन भी दे दी है। साथ ही बताएंगे कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर कैसी सियासी जंग अब छिड़ गई है।
0: लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के संगरूर की, क्योंकि संगरूर में एक बार फिर नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर एक शख्स को धमकियां और प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। संगरूर के जग्गा सिंह ने डीसी ऑफिस के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की।
1: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जग्गा सिंह का वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर जग्गा सिंह को धमकियां दी गई और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया।
0: वहीं से पहले संगरूर में गुलजार सिंह नाम के शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। गुलजार सिंह ने भी नशे के खिलाफ शिकायत के बाद धमकियां मिलने का गंभीर आरोप लगाया था।
2: असल चक्कर की है, क्यों तुसी ये एक्शन क्यों लिया?
3: एक्शन जट्टे दी वीडियो पा दी थी मैं नेट ते, मैं तो सरपंच ने धमकी ना मैं जद डिलीट करवा दी है।
2: सरपंच दा की नो भाई
3: सुक्की पूरी आई
2: थोनू की बना बन के कितना तंग करे की के उन्होंने
3: बोल लिया जद दिखाउंदा थी
1: और आइए सीधा रुक करते हमारी सहयोगी कमलजीत संधू का। कमलजीत, अब क्या कह रही है सरकार, क्योंकि पहले जब वीडियो आया था एक मौत का उसके बाद कई उनके जवाब थे, अब क्या कहती है सरकार, कोई जिम्मेवारी है इनकी?
4: गुलजार सिंह मामले में पहले से ही घिरी आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें तब बड़ी हैं जब एक और शख्स हैं जिसका नाम जसवीर एलियस जग्गा है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। अब विपक्षी पार्टियां उनका घेराव कर रही हैं और कह रही हैं कि जो भी ड्रग्स के मामले में, नशे के मामले पे खुलासा करता है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त श्रीमणी अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक के बाद एक संगरूर में ही, जो कि भगवंत मान का एरिया बताया जाता है, वहां पर इस तरह का मामला आना, किस तरह से देखते हैं?
5: देखो, ये होम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर का होम डिस्ट्रिक्ट है और ये जितनी तीन इंसिडेंट हुए हैं वो नंबर वन इन कैबिनेट चीफ मिनिस्टर, नंबर टू इन कैबिनेट हरपाल चीमा, नंबर थ्री इन कैबिनेट एंड आम आदमी पार्टी का प्रधान अमन अरोड़ा का ये एरिया। जो ये लेटेस्ट इंसिडेंट है ये नमोल विलेज है जग्गा सिंह का, जो सुनाम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट की है। इससे पहले गुलजार का हुआ था जो फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमे की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उससे पहले शेरों विलेज में हुआ था जो इट हैपन्स टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अमन अरोड़ा, होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर भगवंत मान।
4: तो बात यही आ रही है कि बड़े नामों के साथ जुड़ रहा है, लेकिन इसमें आपका कितना मानना है कि पुलिस का है, क्योंकि सरपंच पे अब आरोप लग रहे हैं, पंजाब पुलिस पे बोला जा रहा है कि ये कंप्लेंट लेके भी पहुंचा था कि ड्रग्स का वीडियो जब उसने सोशल मीडिया पे पाला तो उसके बाद ही दबाव बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि जो खुलासा करता,
5: जो मैं बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर चीफ मिनिस्टर के होम डिस्ट्रिक्ट में ये हालात हैं, द पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट, द वन एंड टू एंड थ्री इन द कैबिनेट, अगर वो ये हालात हैं तो आप कैन यू इमेजिन द प्लाइट एंड सिचुएशन इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्या हालात बने होंगे। और लगा कौन रहा है ये एसएसपी उस एरिया में, पुलिस की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, फ्रॉम राइट फ्रॉम द एसएचओ राइट टिल द एसएसपी अप टू द डीजीपी, चीफ मिनिस्टर साहब आप चूज कर रहे हैं या इनके मिनिस्टर चूज कर रहे हैं? अब जो वहां पे
0: बिल्कुल कमल जी, तो ऑपोजिशन के निशाने पर अब आ गई है आम आदमी पार्टी की सरकार, और इस बीच में रवनीत बिट्टू वो भी हमलावर दिखाए दिए हैं। हमारे संवाददाता पीयूष ने उनसे खास बातचीत की है।
6: बिट्टू साहब, लगातार पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, पहले गुलजार सिंह का केस सामने आया, अब जग्गा सिंह का सामने आ रहा है। और एक सबसे डराने वाली बात यह पिटू साहब कि एक गवर्नमेंट ऑफिस के सामने एक शख्स जहर खा लेता है और उसकी वीडियो सामने आ जाती है। जो घटनाएं लगातार पंजाब में हो रही है उसको आप किस तरह देखते हैं?
7: पीयूष करे क्या कोई जब हर आदमी जो कोई कोशिश कर रहा है, ये जो आदमी है जग्गा सिंह है, जो ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, जो सीएम का खुद का डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं सब कुछ ये हो रहा है। ये पिंड नमोल गांव है और संगरूर डीसी के सामने वो गया था कि मुझे मेरे गांव का सरपंच जो आम आदमी का है, पंचायत है, मैं भी 2 साल पहले ये आदमी खुद नशे में लिप्त था, लेकिन ये इसने नशा छोड़ा, इस नशे को त्यागा और ये स्ट्रीमलाइन मेन स्ट्रीमलाइन में आ गया। तो अब इसे, क्योंकि इसने उसकी वीडियो डाल दी गांव की, इसे बोला गया भी इसे डिलीट कर, डिलीट करवाया गया। अब इसके ऊपर केस एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि ये ड्रग जो है सारे गांव में बेच रहा है, ये अनाम मिल रहा है कोई, अगर क्योंकि ये बीजेपी की यात्रा शुरू हो चुकी है और लोग आगे आके हिम्मत करके लोग का बताने लगे हैं भी किस गांव में कौन नशा बेच रहा है, कर रहे हैं। लेकिन सरकार, आम आदमी पार्टी एक नेक्सस है, जो आज गैंगस्टर जो ये नशा बेचते हैं और आम आदमी पार्टी का, ये नया एक कॉम्बो बना है, नया कॉम्बो काम कर रहा है। ये आम आदमी पार्टी नहीं रही, ये आम पार्टी गैंगस्टर की पार्टी बन चुकी।
1: और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। लगातार चुनावी समीकरणों पर मंथन हो रहा है, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इन्हीं तैयारियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक बार फिर यूपी के दौरे पर पहुंच गए हैं।
0: इस बार नितिन नवीन का फोकस पश्चिमी यूपी पर है। नितिन नवीन मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर है, जहां पर वो इस क्षेत्र की 71 विधानसभा सीटों पर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे।
1: विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार जीत की रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच चुनाव से पहले गठजोड़ को लेकर यूपी में सियासत तेज होती नजर आ रही है।
0: दर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी को साथ आने का ऑफर दे रहे हैं और अब उन्होंने यूपी में किसी भी गठबंधन के लिए डेडलाइन भी तय करके गेंद समाजवादी पार्टी के पाले में डाल दी है। उधर सूबे की चुनावी हलचल ओपी राजभर के ताजा बयान से भी बड़ी है। अपने बयान में राजभर ने दावा किया है कि जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश का 4 हिस्सों में बंटवारा होना तय है।
1: और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पश्चिमी यूपी दौरे की, जिसे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के पहले दिन नितिन नवीन पश्चिमी यूपी के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
0: अब इस दौरान नितिन नवीन चुनावी तैयारियों पर मंथन करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश देंगे और साथ ही बैठक में चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और आगामी अभियानों पर चर्चा भी करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा, और उसमें सबसे खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर, ये जो गन्ना बेल्ट है, उस गन्ना बेल्ट में नितिन नवीन का दौरा, जिसमें विधायकों के साथ, जिसमें सांसदों के साथ, जिसमें पदाधिकारियों के साथ चिंतन मंथन करने वाले हैं, बूथ प्रबंधन, बूथ मैनेजमेंट करने वाले हैं
1: जी। और 2 दिन का दौरा है, मेरठ भी रहेंगे, सहारनपुर भी जाएंगे, युवाओं से भी बातचीत करेंगे। तो कई तहें हैं, कई कोशिशें हैं जो कि बीजेपी यहां पर साधने की कोशिश कर रही है, कई लक्ष्यों को, जिसमें न सिर्फ जात है बल्कि युवा भी हैं जिनके साथ संवाद किया जाएगा। और ये तस्वीरें हम उनके स्वागत की आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नितिन नवीन जब पहुंच रहे हैं मेरठ, तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, यहां पर देखिए बुलडोजर जेसीबी भी मौजूद है। तो साफ एक संदेश देने की कोशिश, जो बुलडोजर जिसे बार बार दूसरी विपक्षी पार्टियां निशाने पर लाती रहती हैं, उसे काफी गर्व के साथ वहां पे खड़ा किया गया है।
0: तो ये आज स्वागत की तस्वीरें आप देखेंगे कि ढोल ताशे इनके साथ उनका स्वागत, और बुलडोजर जो कि बुलडोजर पर ही खड़े होकर देखेंगे आपकी ये वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। दरअसल एक प्रतीक बनाया गया है राज्य सरकार की तरफ से इनडायरेक्टली अघोषित कि लॉ एंड ऑर्डर इससे मजबूत हुआ है।
1: और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें एक जेसीबी भी नजर आ रही है और काफी प्रोमिनेंटली उसे सामने रख दिया गया है, तो नितिन नवीन के स्वागत के जरिए क्या राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है?
8: देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है वो पश्चिम में ऐसे भी हावी रहती है और सरकार ने एक तरीके से इसको शोकेस भी किया, सरकार ना कहें पार्टी ने इसे शोकेस भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही माना जाता है, वोटिंग के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश समृद्ध है। नितिन नवीन का 2 दिनों का दौरा है लेकिन मेरठ से शुरुआत कर रहे हैं, और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोनों कुछ देर बाद जो पहली बैठक होगी वो जेनजी के साथ होगी। तो जेनजी में 2000 युवाओं को बुलाया गया है और एक होटल में इस बैठक को रखा गया है। निश्चित तौर पर जो पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, सांसद, कार्यकर्ता, नेता हैं वो अलग हैं, लेकिन एक जो संकेत है, एक जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो यंग वोटर्स के लिए है। तो खुद भी यंग है नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यंग मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए 2000 युवाओं को पहली मुलाकात में बुलाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से ये एक तरीके से शंखनाद है 2027 की शुरुआत का, चुनाव की शुरुआत का, और दोनों चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं तो एक मैसेज दिया जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि बीजेपी देखो कितनी तैयार है, और मुद्दों के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा होगा ही।
0: बिल्कुल कुमार अभिषेक, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एसआईआर की। राजधानी दिल्ली में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर सियासत गरमाए हुए। दरअसल दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई बड़े बड़े दिग्गजों को नोटिस मिला है। अब इन दिग्गजों में लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चुनाव आयुक्त एस एस बंधु समेत कई बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है।
1: अब इन नोटिस पर तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से हमला बोला जा रहा है, आरोप एसआईआर प्रक्रिया के जरिए कई वोटरों का नाम काटने की साजिश का लग रहा है।
0: ये वो बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनको नोटिस मिला है, और हालांकि अभी जो अंतिम फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो आना बाकी है, इसमें जो भी करेक्शन के नोटिस दिए गए हैं वो ठीक करने होंगे, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, एक बार फिर से उनका नाम लिया जाएगा।
1: तो दिल्ली के एसआईआर के बीच दिग्गजों को नोटिस मिलने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने आज तक से बातचीत में प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि घुसपैठियों का हवाला देकर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, अब बड़े नामों का नोटिस भेजा जा रहा है।
9: सर, एसआईआर का जो ड्राफ्ट रोल सामने आया है उसमें कुछ लोग जो मिसिंग है या कुछ लोग जिनके नामों के सामने डिस्क्रिपेंसीज है वो बहुत शॉकिंग। सबसे शॉकिंग नाम है इलेक्शन कमिश्नर एसएस संधु का, जिनको एक एसआईआर का नोटिस जा चुका है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको और उनकी फैमिली को भी एसआईआर का नोटिस जा चुका है। तो इस समय लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि अगर वीवीआईपीज को छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज के चक्कर में अगर एसआईआर का नोटिस जा रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा।
10: सारी एक्सरसाइज घुसपैठियों के नाम से शुरू की थी बिहार में, कितने पकड़े घुसपैठिए आज तक क्यों नहीं बताया, आज बता दो। घुसपैठिए तो पकड़े नहीं, वो तो इधर उधर हो गए, जो कुछ भी हुआ चंद्रचूड़ साहब पकड़े गए, संधु साहब पकड़े गए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर करंट, दिल्ली के पुराने चीफ मिनिस्टर आडवाणी जी, यू नो इमेजिन, इन लोगों से पूछा जा रहा है कि ये आपके नाम में डिस्क्रिपेंसी है, अगर वो इस पे चुप रहे जवाब न दें तो आप उनको काट देंगे, क्या करेंगे कि दौड़ दौड़ के उनको तो नाम फटाफट एक हफ्ते में रिस्टोर हो जाएंगे, लेकिन करोड़ों गरीबों का क्या होगा, वो तो नहीं, उनके पास तो रसूख नहीं है, तो बेचारे वो तो उनके तो नाम कट जाएंगे, और नाम कटने के बाद आपने और धमकियां दे रखी हैं कि उसके बाद अब आपकी सिटीजनशिप भी ले लेंगे, आपके जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं वो सारे भी ले लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे। तो ये इतना बड़ा केओटिक एक्सरसाइज जिसका गार्डियन सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टी इनकी मदद कर दी, उनकी देखरेख में ये सारे एट्रोसिटी देश पे हो गई, और अब मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं कि रोऊं, इतनी ये जो आज की हालत है ये देख के हंसी भी आ रही है। तो ये देखिए, इसको नोटिस, उसको नोटिस, उसको नोटिस, इसको नोटिस, ये क्या मजाक हुआ है।
0: इस वह खुरशे से मजाक बता रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता राहुल गौतम जुड़ गए। राहुल, कैसे प्रक्रिया इस समय दिल्ली में चल रही है कि इतने बड़े बड़े नामों को नोटिस जा रहा है, क्या ये हैरान कर रहा है या प्रक्रिया का हिस्सा है?
11: देखिए, इलेक्शन कमीशन की माने तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस के तहत पहले नोटिस जाते हैं, उसके बाद तमाम लोग अपने जवाब देते हैं और जिन जो लोगों के जो जवाब सेटिस्फैक्ट्री होते हैं उनको वापस ऐड कर लिया जाता है। इसमें कतई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है और खासतौर पर जो कांग्रेस है वो बहुत हमलावर, उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आ रहे हैं, वो तो अपना जो नाम है वो वापस जुड़वा लेंगे आप कह सकते हैं वोटर लिस्ट के अंदर, लेकिन जो गरीब है या जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को क्या होगा, उनको लगातार धक्के खाने पड़ेंगे ताकि वो अपने नाम जुड़वा पाए। एक खौफ है ऑलरेडी कि जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यानी जो राशन है, जो तमाम जो या पेंशन है, वो भी आपसे छीन लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कम से कम कांग्रेस है
1: जी। बिल्कुल राहुल, चिंताएं कुछ लोगों की इस पूरे मुद्दे को लेकर बढ़ सकती हैं। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: हेलो, इंदौर में राहुल गांधी का मंच कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा रोजगार व्यवस्था के सवाल, राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा। लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया, सामने राहुल गांधी थे और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
17: My friend, how are you?
18: I am fine. How are you, Modi ji?
17: Great harassment.
16: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
17: My friend, how are you?
18: I am fine. How are you, Modi ji?
17: Great harassment. Galgotia.
18: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
17: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
16: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर। बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद माँ तक पहुँच गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी। किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है। लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करेगी।
1: ये झूठ की गूंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मंच शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।
2: अगले महीने की 15 तारीख से 2000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करना फ्री नहीं रहेगा। हालांकि इसका असर पेमेंट सिस्टम में मर्चेंट साइट पर पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक से ये चार्ज नहीं लिया जाएगा। दरअसल एनपीसीआई ने 2000 रुपए से ऊपर के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR तय कर दिया है। इसने MDR फ्रेमवर्क के तहत 75,000 या उससे ज्यादा पर अधिकतम 300 रुपए MDR लगेगा, और पर्सन टू पर्सन यानी P2P पेमेंट पर कोई MDR नहीं लगेगा। इस MDR को ग्राहक से वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
3: P2P पे कोई चार्ज नहीं है, जो हम आपस में एक दूसरे से लेन पैसे ट्रांसफर करते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब आते हैं P2M में। P2M में भी आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, 86% जो UPI में P2M ट्रांजेक्शन होती है वो 500 रुपए से कम होती है, और 96% जो ट्रांजेक्शन है वो 2000 से कम होती है। सो जो आप अपने छोटे छोटे दुकानदार और Tier 1 Tier 2 सिटीज में जितने लोग हैं जिनको हम पैसे दे रहे हैं रेडी पटरी, और इनपे कोई चार्ज नहीं है। और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत क्लियरली ये बोल दिया गया है कि इस पे कोई चार्ज, कोई ऐप या कोई बैंक, कोई मर्चेंट इस पे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा।
2: हालांकि हर 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट पर एक जैसा MDR नहीं होगा। कुछ सेक्टर के लिए अलग रेट तय किए गए हैं, जैसे रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और एग्रीकल्चर इनपुट से जुड़े पेमेंट पर फ्लैट 5 रुपए MDR लगेगा। वहीं कैपिटल मार्केट से जुड़े पेमेंट के लिए अलग व्यवस्था है। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े ट्रांजेक्शन पर 0.02% MDR होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन है। नए MDR फ्रेमवर्क में छोटे दुकानदारों को भी राहत दी गई है। UPI QR के जरिए महीने में 1,00,000 रुपए तक पेमेंट पाने वाले छोटे मर्चेंट के लिए 0 MDR की व्यवस्था जारी रहेगी। इसमें स्ट्रीट वेंडर, मोहल्ले की दुकान और दूसरे छोटे कारोबार शामिल हैं। सरकार के मुताबिक नए फ्रेमवर्क का असर मर्चेंट पेमेंट के एक छोटे हिस्से पर ही पड़ेगा। करीब 96% P2M ट्रांजेक्शन अप्रभावित रहेंगे। इनमें 2000 रुपए तक के पेमेंट और 0 MDR वाले छोटे मर्चेंट के ट्रांजेक्शन शामिल हैं। MDR पेमेंट इकोसिस्टम के भीतर बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप प्रोवाइडर्स के बीच शेयर होने वाला चार्ज है। बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मर्चेंट MDR की लागत ग्राहक पर ट्रांसफर न की जाए। UPI ऐप प्रोवाइडर्स को भी प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए चार्ज लगाने की अनुमति नहीं है। यानी 15 अक्टूबर से UPI के पेमेंट इकोसिस्टम में MDR की नई व्यवस्था शुरू होगी, लेकिन इसका सीधा चार्ज आम UPI यूजर्स पर नहीं पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हामिद अंसारी के दक्षिण पंथ सांप्रदायिकता वाले बयान पर लगातार घमासान। बीजेपी ने की हमलों की बौछार, कहा पूरी तरह मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस। यूपी में समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बुलडोजर वाला स्वागत, योगी के साथ कई बड़े कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की भी बैठक। पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रताड़ना, संगरूर में डीसी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की, सचिन पायलट ने जारी किया वीडियो। बिहार के जमुई में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां, नाबालिग लड़का लड़की से भीड़ ने किया दुर्व्यवहार, मामला दर्ज, विपक्ष ने सम्राट सरकार पर उठाए सवाल। और राजस्थान के 5 नगर निगमों में मेयर का चुनाव, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर में वोटिंग, 24 नगर परिषद, 244 नगर पालिकाओं के प्रमुख भी आज होंगे तय।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: से पहले रिपोर्ट आपको बिहार के जमुई से देंगे। जमुई में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर नाबालिग लड़की से सरेआम छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यह घटना 19 सितंबर की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं। जमुई के एसपी ने इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुष्टि भी कर दी है घटना की। उन्होंने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
1: बिहार के जमुई जिले में कुछ मंचलों के द्वारा एक नाबालिग छात्र और छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के एसपी ने अब इस पूरे वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 19 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच घटी, जब ये नाबालिग छात्र और छात्रा कहीं घूम रहे थे और उसी दौरान 6 से 7 की संख्या में मंचलों ने इन्हें घेरा और फिर इनके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया। अब पुलिस पीड़ित छात्र और छात्रा का बयान ले रही है और उन बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।
0: जमुई की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है और आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
2: जमुई में जो घटना हुई है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरह की हृदय विदारक घटना, इस तरह की मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शासन और प्रशासन पंगू हो चुका है। जमुई में जिस तरह की घटनाएं सामने आई है और जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से अपराधियों ने चिन्हरण की कार्रवाई कहीं ना कहीं करने की कोशिश की और जिस तरह से सरेआम मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, ये जमुई के शासन और प्रशासन के संबंध में स्पष्ट रूप से सामने आता है कि सरकार और सरकार के स्तर से कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को पंगु बना दिया गया है।
3: एक शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना लखीसराय जमुई के आसपास कहीं की बताई जा रही है और इस पे संज्ञान लिया जा चुका है। आईपी एड्रेस इन सबसे खंगाला जा रहा है, फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों तत्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है। ट्राइंग टू आउटरेज द मोलेस्टी जैसे संज्ञेय अपराधों में इस पे कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी हैं बहुत जल्द कानून की सलाखों के पीछे होंगे और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आगे से इस तरह की शर्मसार घटना किसी के जहन में भी नहीं आए।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टों में अगले रिपोर्ट पंजाब से है। खबर है कि पंजाब के संगरूर में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक वीडियो जारी करके यह आरोप लगाया है। सचिन पायलट के मुताबिक नामोल गांव के रहने वाले जग्गा सिंह ने डीसी कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया, क्योंकि जग्गा सिंह को नशे के खिलाफ वीडियो पोस्ट उन्होंने किया था। उसके बाद से लगातार उनको धमकियां मिल रही थी, कथित तौर पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था।
4: उड़ता पंजाब और एक और शिकार। अब बात कर रहे हैं जग्गा सिंह की, जिसने 20 सितंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया डीसी दफ्तर के सामने संगरूर में। नामोल का रहने वाला जग्गा सिंह, उसकी बात अब सारी विपक्षी पार्टी लगातार उठा रही है। सचिन पायलट ने कहा कि जो उजागर कर रहे हैं इस तरह के मामले, जो विसल ब्लोअर हैं, उनके ऊपर सरकार दबाव बना रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी हो, जो कि चौथा अब एक लेग जो कि नशा विरुद्ध कैंपेन चला रही है, नशा मुक्त पंजाब की बात कर रही है, उन्होंने भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। और दूसरी ओर सुखबीर बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया, तो यानी तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि किस तरह से ड्रग्स बेतहाशा पंजाब में फिलहाल जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने पलटवार किया है भाजपा सरकार का और कहा है कि आसपास के प्रदेशों से ही नशा पंजाब में आ रहा है। लेकिन एक के बाद एक दो ऐसे मामले, यानी गुलजार के बाद जग्गा सिंह का मामला और इससे बढ़ता विवाद, इससे आम आदमी पार्टी घिरता हुआ नजर आ रहा है।
0: अब बात राजस्थान की। राजस्थान के 5 नगर निगमों में आज मेयर का चुनाव हो रहा है। उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम के मेयर पद पर चुनाव हो रहा है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक मतगणना होगी। उदयपुर में बीजेपी को बहुमत मिला है जबकि बीकानेर में कांग्रेस को। बाकी 3 नगर निगम अलवर, पाली और अजमेर में त्रिशंकु स्थिति इस समय है। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शरद, इस समय की क्या तस्वीर है?
5: देखिए, अभी तस्वीर जो सामने आई है उसमें अलवर में सभी जो बीजेपी के हैं वो बस में अभी आए हैं, उनके साथ निर्दलीय भी है। तो वहां पर दावा कर रही है बीजेपी की हम वहां पर जीत रहे हैं। पाली में खेला हो गया है कांग्रेस के साथ। जो बस में भरकर आए उसमें से 20 पार्षद, यानी कि 27 में से 20 पार्षद बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के बागी और निष्कासित प्रत्याशी राजबाला के समर्थन में वोट दिया है। तो कांग्रेस के साथ वहां खेला हो गया दिखाई दे रहा है। अब वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के निष्कासित बागी राजबाला के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है, यानी कि पाली कांग्रेस के हाथ से अब ज्यादा वोट जीतने के बाद भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अजमेर में जो बीजेपी वाले हैं वो वोट वोट डाल के जा चुके हैं, अभी भी उनके पास 4 पार्षदों की कमी है। कांग्रेस की बस 12 बजे पहुंचने वाली है नगर निगम अजमेर में वोट डालने के लिए। बीजेपी इस बात पर भरोसा किए बैठी है कि हम कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग कराएंगे। कई जगह कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग सदस्यों की खबर आ रही है, कई जगह बीजेपी के भी क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। जैसे फतेहपुर में 1 सदस्य बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग किया है, कई जगह हजाजपुर में कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग किया है। लेकिन कई जगह से हिंसा की खबरें भी आ रही है, जैसे कि श्रीगंगानगर के विजयनगर पालिका के जो सदस्य थे वो पार्षद थे, वो पंजाब में बाड़ेबंदी से लौट कर आ रहे थे वोट डालने के लिए। बाजूवाला में उत्तराखंड गाड़ी के नंबर से 5-6 गाड़ियों ने घेर लिया, फायरिंग करके 3 पार्षदों का अपहरण कर लिया। वहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो विजयनगर नगर पालिका में ये स्थिति है। अभी भिवाड़ी के लिए स्थान हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि पूरी रिपोर्ट सौंपे चुनाव आयोग को, जो वहां पर चुनाव अधिकारी है, कि आज चुनाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद गायब हैं। कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे पार्षद ही गायब कर दिए गए हैं। तो 273 में से जो ताजा आंकड़ा है वो बता दूं आपको कि 16 से 17 बीजेपी जीत चुकी है और 3 से 4 कांग्रेस जीत चुकी है। 273 में से ये आंकड़ा अब तक आ गया है। 3 बजे तक पूरी तस्वीर मुकम्मल हो पाएगी।
0: बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब 12 बजे 12 रिपोर्ट में जो अगली रिपोर्ट है वो दिल्ली से। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के SIR को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं उन सवालों के बीच में स्पष्टीकरण जारी कर दिया। CEO कार्यालय ने कहा है कि मतदाताओं को जारी किए जा रहे नोटिस का मतलब ये नहीं है कि उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक नोटिस का मकसद इलेक्शन कमीशन में मतदाताओं के डेटा को दुरुस्त करना है। आपको ये बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, चुनाव आयुक्त SS संधु, इसके साथ साथ सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है और उनको नोटिस मिला है।
6: दिल्ली में लगभग 30 लाख लोगों को नोटिस गया है जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा चुनाव आयुक्त SS संधु, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं जिनको ये नोटिस गया है। निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि नोटिस आना कोई ऐसा नहीं है कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, बल्कि नोटिस आने का मतलब है कि जो डिस्क्रिपेंसी है, जो विसंगति है, उसे दूर कर दिया जाए ताकि वोटर लिस्ट पूरी तरह से शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, और इसके लिए नोटिस गया है। लिहाजा नोटिस आने से लोग घबराएं ना, नोटिस आने से पैनिक ना करें, बल्कि जो जानकारियां मांगी गई हैं उन जानकारियों को निर्वाचन आयोग को मुहैया कराया जाए ताकि वोटर लिस्ट को पूरी तरह से शुद्ध किया जा सके। इसमें बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ BLO ने भी लापरवाही की है और दूसरी तरफ जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, उस सिस्टम में भी कहीं ना कहीं, जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है SIR की प्रक्रिया पूरी करने को, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, जिस खामी को निर्वाचन आयोग को दुरुस्त करना चाहिए इससे पहले कि रायता और ज्यादा फैले।
0: बात अब उत्तर प्रदेश की सियासत की करेंगे, जहां पर क्या बीजेपी को रोकने के लिए ओवैसी से अखिलेश हाथ मिलाएंगे, बड़ा सवाल है। दरअसल ओवैसी ने कल खुला ऑफर दिया, उन्होंने कहा कि 2027 में जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं वो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी दी।
7: असदुद्दीन ओवैसी अब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में नाम भर के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन 2027 चुनाव में वो बड़े खिलाड़ी बनने का ख्वाब देख भी रहे हैं, और ख्वाब इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि बिहार के बाद अब नंबर उत्तर प्रदेश का है। जिस तरीके से 2 अक्टूबर को लेकर एक अल्टीमेटम उन्होंने इंडिया ब्लॉक के पार्टियों को दिया है कि मुझे भी गठबंधन में लो, और वक्त 2 अक्टूबर तक का है, अगर 2 अक्टूबर तक मुझे इस कांग्रेस सपा अलायंस में और खास करके समाजवादी पार्टी ने अपने अलायंस में नहीं लिया तो उसके बाद हम अपने गठबंधन को फ्री होंगे। यानी कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि ओवैसी अब अपना गठबंधन लेकर भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य किसी गठबंधन में जाएं। हालांकि इसका ऐलान उन्होंने नहीं किया है, लेकिन 2 अक्टूबर तक का एक डेडलाइन उन्होंने अखिलेश यादव के लिए सेट किया है।
0: सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का ऑफर क्या है।
8: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं, हम साथ देंगे आपका।
0: यूपी की राजनीति से घटनाक्रम लगातार तेज है, और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुलाकात हुई है। जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, बताने समर्थ श्रीवास्तव।
9: क्रिकेट की 22 गज की पिच पर अपनी स्विंग और तेज गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़ने वाले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी अब यूपी की सियासत वाली पिच में क्या स्विंग डालने की तैयारी में है। ये बात ऐसे ही नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली में कल हुई आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के साथ उनकी हुई मुलाकात और उस तस्वीर के बाद होनी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जयंत चौधरी खुद या अपने भाई को अमरोहा सदर की सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अमरोहा सदर उनका गृह जनपद है और अपनी सियासी पारी की शुरुआत शमी वहीं से करना चाहते हैं, जिसको लेकर कल उनकी जयंत चौधरी के साथ मुलाकात हुई है। चर्चा इस बात की है कि ये सीट आरएलडी के पाले में जा सकती है। ऐसे में अगर आरएलडी शमी को चुनाव लड़वाते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी का वोट घटेगा, या फिर शमी अहमद की पॉपुलैरिटी समाजवादी पार्टी को हरा पाएगी, या फिर महबूब अली लगातार एक और बार विधायकी जीतेंगे, ये वक्त बताएगा।
0: 12:12 रिपोर्ट। हम अगली रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से, जहां पर उपचुनाव से पहले ही हुमायूं कबीर ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए रेजी नगर उपचुनाव में प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर बता रहे संवाददाता अनुपम मिश्रा।
10: आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने रेजी नगर उपचुनाव में चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला किया है। हुमायूं कबीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको और उनके जो समर्थक हैं उनको पुलिस बहुत परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, और वो जहां जहां जिस जिस जगह सभा करने जा रहे हैं वहां पर कार्यकर्ताओं को पुलिस बुला रही है, परेशान कर रही है। ऐसे में उन्होंने फैसला लिया है कि वो रेजी नगर उपचुनाव में कोई भी चुनाव प्रचार अब नहीं करेंगे। यहां पर उनके लड़के आम जनता उन्नयन पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उनके चुनाव प्रचार न करने से एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर का कहना है कि जो परिस्थिति आ गई है, पुलिस जिस तरीके से बर्ताव कर रही है बीजेपी के कैडर की तरह, वैसे में यहां चुनाव प्रचार करना संभव नहीं है।
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ और बीजेपी के विधायकों ने बिजली की दरें बढ़ाने, नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों समेत कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के मुद्दे पर उमर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जताते हुए उन्होंने बैनर पोस्टर्स भी उठाए, जमकर नारेबाजी भी हुई।
11: जम्मू कश्मीर विधानसभा के ऑटम सेशन का आज पहला दिन था, और हर साल और हर सेशन की तरह इस बार भी शुरुआत जो है शोर शराबे से भरी रही। बीजेपी एमएलए पहले से ही नियत करके आए थे, तैयारी करके आए थे कि सरकार को घेरेंगे, और जैसे ही आज सुबह सेशन शुरू हुआ बीजेपी एमएलएज अपनी सीटों से खड़े हो गए, बैनर उठाए हुए थे और उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनके मुद्दे थे कि एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज हैं उनके साथ इंसाफ हो, पावर टैरिफ यानी कि बिजली की दरों में जो इजाफा हुआ है बढ़ाई है उनको जो है रोल बैक किया जाए, और उसके अलावा अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। सेशन का जो बिजनेस था जो ऑलरेडी तय था वो नहीं हो पाया, ऑब्विचरी सेशन भी इंटरप्ट हुआ, उसके बाद क्वेश्चन आर भी इंटरप्ट हुआ, और फिर जब शोर शराबा रुकने का नाम उसने नहीं लिया, बीजेपी एमएलएज और अपोजिशन ने वेल में आने की कोशिश की तो मार्शल्स को तैनात कर दिया गया, और फाइनली जो स्पीकर है उन्होंने आज की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया, और अब कल सुबह जो है दोबारा सेशन शुरू होगा।
0: अब आज पटना के पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में एनडीए गठबंधन को पांच पांडव का है, पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता शशि भूषण।
12: विधानसभा चुनाव भले ही उत्तर प्रदेश में अगले साल होने हैं, लेकिन बिहार एनडीए की तरफ से जातीय गुलबंदी वाला मैसेज दिया जा रहा है। दरअसल पटना में लौकुश सम्मेलन का आयोजन किया गया, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम कुर्मी और कुशवाहा समाज के नेता इसमें शामिल हुए। मैसेज साफ दिया गया कि आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि अगर हम बटेंगे तो फिर कटेंगे। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार एनडीए के पांच पांडव जब तक एकजुट रहेंगे तब तक हमारा प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा।
0: आइए अब आपको दिखाते हैं सम्राट चौधरी का पांच पांडव वाला बयान।
13: 2020 के बाद 2025 का चुनाव हुआ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, ये पांचों पांडव जब मिल गए तो फिर बिहार में 200 पार आपने कराने का काम किया साथी।

0: वीडियो जिसमें डॉक्टर अशोक सेठ ने मुंबई के एक 5-स्टार होटल के रेस्टोरेंट का एक वीडियो पोस्ट किया है। वो टेबल पर थे और टेबल पर कॉकरोच नजर आ रहा है।
1: JW मैरियट रेस्टोरेंट मुंबई में जो कॉकरोच मिलने का वीडियो सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र FDA अब एक्शन मोड पर आते हुए दिख रही है। आपको बता दें, पिछले 3 महीनों में कई 100 रेस्टोरेंट्स पर महाराष्ट्र FDA ने सर्च किए हैं, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, लेकिन अभी तक 5-स्टार 7-स्टार होटल पर किसी तरह की रेड नहीं हुई थी। लेकिन अब डॉक्टर अशोक का जो वीडियो सामने आया JW मैरियट मुंबई के रोचि रेस्टोरेंट से, तो लगता है कहीं ना कहीं FDA को इस बात पे भी नजर डालनी पड़ेगी कि जो 7-स्टार 5-स्टार होटल जिनको एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन और क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, क्या उनके किचन में सही में वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो पा रहा है या नहीं। कई बार इम्प्रूवमेंट नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कई बार अगर फूड के किचन का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जाएगा तो जो होटल है जिसमें गेस्ट रुकते हैं उनकी इन रूम डाइनिंग भी बंद हो सकती है। तो आने वाले समय में ये जो कॉकरोच का वीडियो JW मैरियट मुंबई से सामने आ रहा है उसमें क्या होता है देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल JW मैरियट ने जो डॉक्टर अशोक है उनकी डिटेल्स बाकी है बुकिंग की और इस इंसिडेंट की वो तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा बताया है।
0: और अब रिपोर्ट इटली की, जहां मेलोनी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकारी स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने की उन्होंने तैयारियां कर ली है। प्रस्ताव के मुताबिक स्कूलों में ऐसा कोई भी चेहरा ढकने वाला परिधान पहनने की अनुमति नहीं होगी जिसमें चेहरा पूरी तरह छिप जाए। मेलोनी ने कहा कि स्कूल में चेहरा खुला होना चाहिए, किसी परंपरा के नाम पर किसी लड़की को अपना चेहरा छिपाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
2: इटली में आए इस नए कानून के बाद से ही बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री ये साफ कर चुकी हैं कि ये नए कानून ना सिर्फ महिलाओं के राइट्स को बचाने के लिए हैं बल्कि इटली के इंटीग्रेशन या फिर उसकी सभ्यता को, सिविलाइजेशन को बचाने के लिए भी। इससे ना सिर्फ महिलाओं को स्कूल कॉलेज में जाने के दौरान उनको अपना फेस हिजाब और नकाब से नहीं कवर करना पड़ेगा बल्कि ये भी कहा गया है कि अब फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर भी कैपिंग की जाएगी। कैपिंग यानी अब कोई एक तय संख्या के तहत ही किसी क्लासरूम में फॉरेन नेशनल्स उसके पार्ट हो सकेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है, इटली का मानना यह है कि इटली के लगातार बढ़ते या बदलते स्वरूप को लेकर ये बड़े कदम उठाए गए।
0: अब बात करेंगे अफगानिस्तान के, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमला किया है अफगानिस्तान के पख्त का, और कुनार प्रांत में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किए। कुनार में हुए हमले में 3 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं पक्तिका में भी भारी नुकसान की खबर है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह हमला सुबह लगभग 4 बजे किया गया।
3: पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान में एक बार फिर एरियल स्ट्राइक्स की हैं। दरअसल तनाव दोनों देशों के बीच चरम पर है। इस तनाव की शुरुआत फरवरी में इसी साल हुई थी जब पाकिस्तान ने काबुल सहित कई ठिकानों पर तालिबान के हवाई हमले किए थे। लेकिन ताज़ा विवाद शुक्रवार को तब शुरू हुआ जब तहरीकी तालिबान ने एक आत्मघाती आतंकी हमले में एक पुलिस परिसर को, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पर 25 लोगों की जान ली जिनमें कई पुलिसकर्मी और उनके परिवारजन शामिल थे।
0: अब बात रूस यूक्रेन जंग के, जहां पर यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला बोला है। रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के क्रामाटोस्क में इवैक्यूएशन सेंटर पर हमला बोल दिया, और पूरी रिपोर्ट बता रहे संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
4: एक 1000 यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की सबसे बड़ी ऑयल सिटी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस कदर बमबारी की कि तस्वीरें बेहद भयानक थी। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन तस्वीरों को साझा किया, जिसके बाद रूस ने ठाना कि वो पलटवार जरूर करेगा। जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क में ट्रंप से मिलेंगे, डिप्लोमेसी का रास्ता अख्तियार करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के जो ऊर्जा संसाधन है उस पर हमला ना हो। लेकिन जिस तरह का हमला रूस पर यूक्रेन ने किया वो इन हालिया सालों में अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों को निशाना बनाया और यूक्रेन की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की। 4.5 साल का समय बीत चुका है, न रूस मानने को तैयार है न यूक्रेन मानने को तैयार है। लेकिन इन 4.5 सालों में अब यूक्रेन के हमले घातक हो रहे हैं तो रूस की जो पलटवार, जो जवाबी कार्रवाई है, वो भी खतरनाक हो रही है। निर्णायक मोड़ यह जंग ले नहीं रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते एस्केलेशन के चलते वैश्विक संकट जरूर खड़ा हो रहा है। ऊपर से जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका उनकी मदद

0: मदद करे। अब न तो अमेरिका न यूरोप खुल करके यूक्रेन की मदद कर पा रहे हैं, ऊपर से रूस की जवाबी कार्रवाई अब पूरे यूरोप को महंगी पड़ सकती है।
1: अब बात एशियन गेम्स के, जहां पर आज भारत के प्रदर्शन के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
2: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है, जहां पहले दिन शूटर्स ने हमें 2 मेडल दिलवाए थे, वही क्रम आज भी जारी रहा, यानी कि दूसरे दिन भी हमारे शूटर्स ने मेडल्स पर कब्जा किया। पहले टीम इवेंट यानी कि 10 मीटर एयर राइफल के टीम इवेंट में हमारी टीम को सिल्वर मेडल हासिल हुआ, वहीं दूसरी तरफ 10 मीटर एयर राइफल के इंडिविजुअल कैटेगरी में भी शूटर्स को मेडल हासिल हुए, जहां एक तरफ हिमांशु ढिल्लन सिल्वर मेडल पर कब्जा करने में कामयाब हुए, वहीं रुद्रांश पाटिल को ब्रॉन्ज मेडल मिला। एमएमए में भी इस बार भारतीय खिलाड़ी को मेडल हासिल हुआ है, सुचिका तरियाल जो कि इस बार पहली बार रिप्रेजेंट कर रही थी भारत को, उनको ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। इसके अलावा क्रिकेट में भी हमारी विमेंस टीम ऑलरेडी फाइनल पहुंच चुकी है, इसका मतलब ये कि वहां पर भी एक मेडल पक्का है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस बार पिछली बार से बेहतर हमारी टीम इस एशियन गेम्स में करते हुए नजर आएगी। पिछली बार 106 मेडल आए थे, उम्मीद है कि इस बार ये मेडलों की संख्या और आगे बढ़ेगी।
1: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
6: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
5: स्मॉल बैंक,
6: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege rd, everything, there's nothing small about them.
5: Okay.
6: Ujjivan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
5: There is a very famous quote ki history repeat itself.
6: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
7: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
6: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: यूपी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज, बीजेपी ने तेज के संगठनात्मक कवायद। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय मेरठ सहारनपुर दौरा। नितिन नवीन के दौरे में आज पहला दिन, मेरठ में शक्ति केंद्र प्रभारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे। नितिन नवीन मेरठ में संगठनात्मक बैठक करेंगे, पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने जयंत चौधरी से की मुलाकात, तस्वीर आई सामने। मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला, पीडीए रथ के भगवा रंग पर उठाए सवाल, बोले कि वोटों के स्वार्थ में लगातार रंग बदल रही है सपा। देवरिया की रैली में ओम प्रकाश राजभर का दावा, जल चार हिस्सों में बंटेगा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल बना तो राजभर समाज का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। राजभर पर बरसे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील सार्जन, बोले बीजेपी कर रही है बंटवारे की राजनीति, मायावती पर कहा किसके दबाव में फैसले बदल रहे हैं बहन जी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 4th edition 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन। निर्यात और निवेश पर सीएम योगी का फोकस, बोले यूपी में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निर्यात, 15 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा। जयंत चौधरी के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उठाए सवाल, बोले ऐसी बयानबाजी गलत। कानपुर में ओवैसी का बड़ा बयान, बोले कि यूपी में बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं बनने देना, सभी दल AIMIM के साथ हाथ मिला लें। ओवैसी ने गठबंधन पर कहा 2 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे, जिसके साथ गठबंधन होगा उसी दिन ऐलान करेंगे और यूपी चुनाव साथ लड़ेंगे। यूपी में अगले 6 महीने हर हफ्ते बटेंगे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, सीएम योगी का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार भी लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी महासचिव इंद्रजीत सरोज का बयान, बोले 2027 में सरकार बनी तो मंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यूपी में प्रशासनिक स्तर पर हुआ बड़ा फेरबदल, सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला। 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर लखनऊ में सपा की बैठक, अखिलेश यादव के सामने ही नेता बैठ गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तीखी बहस के बाद एटा और कासगंज के जिला कार्यकारिणी समिति भंग कर दी गई और बैठक में 250 वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आजाद समाज पार्टी की संगठनात्मक तैयारियां और विधानसभा स्तर पर प्रभारियों की नियुक्तियां हुई। चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर आजाद समाज पार्टी ने विधानसभा प्रभारियों की दूसरी सूची जारी की, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर। मऊ की घोसी विधानसभा सीट से BSP ने अजय जायसवाल को बनाया प्रभारी और प्रत्याशी भी, 1 महीने पहले बीजेपी छोड़कर BSP में शामिल हुए थे। झांसी में एक हत्याकांड में 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में कचरे में धमाका हुआ, घास काटने गए 2 सगे भाई झुलस गए। सहारनपुर नकली करेंसी कांड में NIA का एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार, लगभग 18 करोड़ रुपए के जाली नोटों की पूरी कड़ी खंगाली जा रही। हरदोई में दोस्त से विवाद के बाद से व्यक्ति की कार से बांधकर 2.5 किलोमीटर तक घसीटा गया, आरोपी हिरासत में।

0: यूपी की सियासत में बीजेपी की चुनावी रणनीति का बड़ा जोर इस बार पश्चिमी यूपी में दिख रहा है। मिशन 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिमी यूपी का दौरा बेहद अहम है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से दो दिनों के मेरठ सहारनपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी भी इस दौरे में उनके साथ शक्ति केंद्रों की बैठक में शामिल होंगे।
1: गाजियाबाद, शामली, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर यही दो इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था और अब उसे पूरा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिन के दौरे पर पश्चिमी यूपी पहुंच चुके हैं। जिसमें सीएम योगी से लेकर नितिन नवीन तक की कोशिश पश्चिमी यूपी में बीजेपी की चुनावी बुनियाद के साथ युवाओं को जोड़ने की दिख रही है। युवा संवाद से जेन जी कनेक्ट। पश्चिमी यूपी की सियासत जहां जाट मुसलमान किसान के फॉर्मूले पर चलती रही है, वहां इस बार बीजेपी की नजर जेन जी पर है। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद पहला कार्यक्रम मेरठ के स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में युवाओं के बीच है। वैसे तो पूरी यूपी में इस बार युवा मतदाताओं के रुझान का असर चुनाव नतीजों पर पड़ने वाला है, लेकिन पश्चिमी यूपी की 111 सीटों की बात करें तो यहां 45 लाख से ज्यादा युवा वोटर हैं। 2024 में मिले वोटों के अनुमान के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के लगभग 39% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इसमें आरएनडी को जोड़ दिया जाए तो करीब 44.46% युवा वोट एनडीए को मिले थे, जो करीब 18 लाख से 22 लाख होते हैं। और इस बार देखा जाए तो 18 साल वाले 17,63,000 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। बीजेपी की कोशिश इसी युवा वोटर वर्ग को रिझाने की है, जिसमें युवा संवाद जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी जेन जी की राय जैसे कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी का शक्ति केंद्र सम्मेलन। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति का केंद्र बूथ है और इन्हीं बूथों को शक्ति केंद्र के रूप में बीजेपी तैयार करती है। दरअसल बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र बनता है। इसमें पश्चिमी यूपी के करीब 4800 से 5000 शक्ति केंद्र संयोजकों और मंडल अध्यक्षों के साथ नितिन नवीन और सीएम योगी बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी अकेले नहीं बल्कि एनडीए के तौर पर भी फुल प्रूफ प्लान बनाकर चल रही है, जिसमें विकास और जन कल्याण की योजनाओं की झड़ी से लेकर नौकरी और कर्मचारियों के लिए योजनाएं हैं, तो तीसरी तरफ कानून व्यवस्था बुलडोजर से लेकर मथुरा वृंदावन तक हिंदुत्व की राजनीति भी है। एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रोहिलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बने हैं। पश्चिमी यूपी की अपनी रैलियों कार्यक्रमों में सीएम योगी अक्सर 2017 से पहले के हालात, दंगे, माफिया राज और अपराध को लेकर विपक्ष को निशाने पर लेते रहे हैं। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी यूपी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13 और आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाए, जबकि 11 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिमी यूपी में अभी सियासी सुगबुगाहट और भी ज्यादा चल रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की नीति फॉर्मूला वो आना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच में एक तस्वीर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गए हैं और ये तस्वीर है आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुलाकात की। हालांकि इस तस्वीर को लेकर जयंत चौधरी या मोहम्मद शमी की ओर से कुछ बताया नहीं गया है, आरएलडी की ओर से इसे गैर राजनीतिक मुलाकात बताया जा रहा है। लेकिन इस मुलाकात को लेकर जिस अमरोहा सीट की सियासत गर्म हुई है, वो सीट फिलहाल 24 साल से समाजवादी पार्टी का किला बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के महबूब अली सीट से 2002 से लगातार जीत रहे हैं। 2002 में पहली बार महबूब अली को डीपी यादव के राष्ट्रीय परिवर्तन दल से इस सीट का उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद से लगातार बतौर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वो जीत रहे हैं। 2022 में सीट पर बीजेपी के राम सिंह 71,000 वोटों से हार चुके हैं, लेकिन महबूब अली को 1,28,735 वोट मिले थे। अब इस लिहाज से ये जो सीट है बीजेपी के लिए, इस पर जो है लोहे के चने चबाना जो है कि जैसा ही है, ऐसा ही नजर आ रहा है, तो संभव है कि यह सीट जयंत चौधरी के खाते में जाए। पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बहुत बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है और इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिख रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं और अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी उन्होंने फिक्स कर दी है।
2: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
3: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं हम।
4: तो मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
2: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों से साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए एसपी सीधे सीधे निशाने पर है।
5: जयंत चौधरी को और उनकी वाइफ को, जो मेरी बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो बीजेपी में है, मैं उनके खिलाफ हूं, मगर किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि इस तरह से बिल्कुल ही लो काइंड ऑफ अ लैंग्वेज में और इस तरह से उनके बारे में बात करें।
2: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
6: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना तय गया है, समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है।
2: ओवैसी की गठबंधन की डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी की सियासत में नया समीकरण बनेगा और अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा।
7: ओवैसी ने बिहार चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि कैसे सीमांचल चुनाव के पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन करने की बात की थी, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया और समाजवादी पार्टी ने उल्टा 3-4 मुस्लिम सांसद वहां से खड़े कर दिए। लेकिन उसके बाद भी उनकी पार्टी के 5 से ज्यादा विधायक जीत के आए। ऐसे में उनके गठबंधन के इस ऑफर को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। अब देखना यह है कि ओवैसी के इस ऑफर के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण किस तरह बदलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: अब बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी वैसे तो चुनाव प्रचार में मैदान में नजर नहीं आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव दैनिक रूप से प्रेस वार्ताएं जरूर करते हैं। यूपी और केंद्र की सरकार की नीतियों की आलोचना से लेकर विकास के दावों पर सवाल लगातार उठाते रहते हैं, और इसी दौरान कभी कभी अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं के करतूतों से भी परेशान नजर आते हैं, क्योंकि कभी उनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सामने ही भिड़ जा रहे हैं, तो कभी कोई 2027 में जीतने के बाद मंत्री बनने के दावे पेश करके अवैध खनन की बातें कर रहे हैं, तो कहीं पर सांसद पर ही SC ST एक्ट में मुकदमा हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं जब पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव के भतीजे मंजीत यादव एटा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव के साथ उनकी जुबानी जंग हुई, तब अखिलेश यादव ने क्या कहा।
8: और क्या नाम है दूसरे इनके भैया चाचा, क्या नाम है, ये सब बड़े नेता है, इन लोगों से सुझाव मांग लिया है, जाइए अपना जो करना से करो जाके। जब आदमी पार्टी का कहना नहीं मान रहा, व्यवहार खराब है, हम किससे सर मारे, कोई बात नहीं, क्योंकि सब होता है, ये सब पैसे की गर्मी है। हाँ और क्या, पैसा देखिए एक याद रखना, जिसपे ज्यादा पैसा हो जाएगा वो आपको छोड़ चला जाएगा।
0: दोनों ही जिलों के 250 से ज्यादा नेताओं की मौजूदगी में जब इस तरह से अखिलेश यादव के सामने झगड़ा हुआ तो फौरन कार्रवाई भी हुई। अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने एटा और कासगंज के जिला अध्यक्ष और जिला संगठन को भंग करने के साथ साथ पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में भी शामिल एटा और कासगंज के सदस्यों को हटा दिया। आपको यह बता दें कि पिछले चुनाव में एटा की चारों ही विधानसभा में बीजेपी और कासगंज की 3 विधानसभा में बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी जीती थी, और अब अखिलेश यादव ने यह एक्शन लिया है। तो अखिलेश यादव के सामने लड़ झगड़ कर दोनों ही नेताओं ने अपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी तो मार ही ली। ऐसे में एक और बड़बोले नेता जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो चुनाव में पहले ही अवैध उत्खनन का प्लान बना रहे, सबसे पहले आपको उनकी बात सुननी चाहिए।
9: हमें कोई मंत्री बनने से रोक पाए तो बताइए, जब हम पूरे जिलों के साथ ही हैं तो बड़े मंत्री हम भी बनेंगे, काम करेंगे, कल आपको नौकरियां मिलेंगे, इस जिले का विकास होगा, जेसीबी वाले डॉक्टर वाले खूब पटवे वालों को बेचे बेचे भाई, कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे ना, बताइए तभी तो काम होगा ना, मतलब जो।
0: तो अभी तो चुनाव हुए नहीं है, नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन अवैध खनन का प्लान अभी से चालू है, और बीजेपी इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी को लगातार घेर रही है। और हमले की एक और खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसमें संत कबीरनगर जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए तेज डीजे बजाने को लेकर पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली थी। विरोध में लोग सड़क पर उतरकर धरना देने लगे थे, और आपको बता दें कि तभी खलीलाबाद से लौट रहे SP सांसद लक्ष्मीकांत निषाद के वाहन को घेरकर तोड़फोड़ कर दी गए। SP सांसद के कार के शीशे तोड़ डाले गए। इसके बाद दोनों ही तरफ से थाने में शिकायत दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा हो गया।
10: एक पूर्व नेता हूं, उन्होंने गलत सरकार के दबाव में SP के दबाव में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जांच हो, किसी CBI से जांच हो, पूर्व न्यायाधीश की कमेटी बना करके जांच हो।
0: लक्ष्मीकांत का कहना है कि वो स्पीकर से इस बात की शिकायत करेंगे कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा किया गया है, और वो आगे इस मामले को उठाएंगे भी। तो यूपी की सियासत में एक और चर्चा हो रही है, ओम प्रकाश राजभर के बयान की। मंत्री राजभर ने दावा किया है कि यूपी में जल्द ही वो 4 हिस्सों में बंटेगा, और पूर्वांचल के मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि राजभर समाज का बेटा होगा।
11: ओम प्रकाश जी आपकी बात जायज है, लेकिन कुछ लोग विरोध, मेरी मंशा है आने वाले दिनों में प्रदेश का बंटवारा होगा, प्रदेश का 4 भागों में बंटवारा होगा, जिस दिन पूर्वांचल राज्य अलग होगा सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री कोई जाति का होगा तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री पूर्वांचल का होगा। इसको ध्यान में रख करके काम करना, किसी के बहकावे में आकर के कि सपा में चले जाओ, बसपा में चले जाओ, कांग्रेस में चले जाओ, तो 60 साल तो कांग्रेस ने शासन किया, चार बार बसपा ने, चार बार सपा ने शासन किया, हमको आपको दिया क्या? कुछ दिया हो तो बताओ।
0: अब ओम प्रकाश राजभर ने बयान क्या दिया, वो समाजवादी पार्टी के निशाने पर आ गए। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, सुनील यादव का बयान है, सुनिए।
12: सुनील जी, राजभर साहब ने कल देवरिया में कहा कि भाई यूपी के आने वाले वक्त में चार हिस्से होंगे, पूर्वांचल अलग जिला होगा, अलग राज्य होगा, और पहला मुख्यमंत्री जो होगा वो राजभर का बेटा होगा। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं?
13: अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में महंगाई पे बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रही है, गिरते धसते एक्सप्रेसवे पे बात नहीं कर रही है। तो आप सोचिए ना कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार के लोग अब किस पर बात कर रहे हैं, अब बंटवारे की बात करने लगे। क्या बीजेपी डर गई? बीजेपी ने महसूस कर लिया कि वो सरकार से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री का यह बयान कि यूपी के चार हिस्से हो रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी से यूपी नहीं संभाल रहा है।
12: मुख्यमंत्री राजभर होगा, ये भी उन्होंने कहा।
13: इसका मतलब बीजेपी से उत्तर प्रदेश नहीं संभाल रहा है। ठीक है, हम लोग ले लेंगे।
0: और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं। नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं, जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया उनका भी वो अपमान करते हैं।
1: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। और ये सेल्फ गोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है।
2: एमपी के इंदौर में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था के बहाने राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी पर बात की और छात्रों के सवाल पूछने की आदत को मौजूदा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया।
1: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।
2: छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सवाल किया कि आखिर स्कूल कॉलेजों की हालत खराब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश में शिक्षा व्यवस्था का बजट लगातार क्यों घटाया जा रहा है।
1: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है।
2: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी तो बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दे की समझ ही नहीं।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
4: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
3: ग्रेट हैरेसमेंट।
2: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद से सभी पार्टियां लगातार छात्रों को साधने में लगी हैं। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस अभियान की कड़ी है, जिसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ती रही है। अब इंदौर के कार्यक्रम के बाद भी वार पलटवार तेज हो गया है। इंदौर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आमिर अंसारी के दक्षिण पंथ सांप्रदायिकता को वामपंथ से बड़ा खतरा बताने पर घमासान। बीजेपी ने की हमलों की बौछार, कहा पूरी तरह मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस। यूपी में समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बुलडोजर वाला स्वागत, योगी के साथ कई बड़े कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की भी बैठक। पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रताड़ना, संगरूर में डीसी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने की जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश, सचिन पायलट ने जारी किया वीडियो। बिहार के जमुई में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां, नाबालिग लड़का लड़की से भीड़ ने किया दुर्व्यवहार, मामला दर्ज, विपक्ष ने सम्राट सरकार पर उठाए सवाल। और राजस्थान के 5 नगर निगम में मेयर का चुनाव, बीजेपी के लिए पहली खुशखबरी, पाली में बीजेपी ने मारी बाजी, उदयपुर बीकानेर अलवर अजमेर में वोटिंग जारी।

0: में वक्त है नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है उस पर। आईआईटी बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले में अब बड़ी कार्रवाई की खबर है। डीन पद से सस्पेंड हुए प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला, खबर आ रही है कि डीनशिप से उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। ये दरअसल मामला एक छात्र 20 साल के छात्र साहिल वाकोड़े की आत्महत्या का है, जिसके बाद बवाल मचा था, कई विरोध प्रदर्शन देखे गए थे छात्रों की तरफ से, और इस बीच अब प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। साहिल वाकोड़े सुसाइड केस को लेकर आईआईटी बॉम्बे ने माफी भी मांगी है, सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और कहा है कि साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में हमारे पिछले संदेश में कही गई बातों के लिए हम माफी मांगते हैं। तो इस बड़ी खबर पर आगे हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त पहले नजर डाल लेते हैं नॉनस्टॉप 100 पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आईआईटी बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को किया गया सस्पेंड। आईआईटी बॉम्बे में छात्र के सुसाइड के बाद प्रदर्शन, साहिल वाकुड़े की आत्महत्या के बाद मचे बवाल के बीच कार्रवाई, प्रोफेसर दुल्ला को सिर्फ डीन पद से हटाया गया। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों का प्रदर्शन के दौरान का वीडियो आया सामने, वीडियो में डायरेक्टर मांगों पर सहमति जताकर हस्ताक्षर करते हुए दिखे। डीएससी 2025 में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन, विजयवाड़ा में फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आरोप लगाकर वाईएसआरसीपी ने सरकार को घेरा, सीबीआई जांच की मांग। वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी, चोकड़ फ्लैश फ्लड प्रभावित इलाके का करेंगी दौरा। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने तेज की संगठनात्मक कवायद, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दो दिवसीय मेरठ दौरा। नितिन नवीन के दौरे का आज पहला दिन, मेरठ में शक्ति केंद्र प्रभारियों और कार्यकर्ताओं से लेंगे चुनावी तैयारियों का फीडबैक। मेरठ में नितिन नवीन की संगठनात्मक बैठकें, पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से करेंगे चुनावी रणनीति पर चर्चा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने जयंत चौधरी से की मुलाकात, तस्वीर आई सामने। मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला, पीडीए रथ के भगवा रंग पर उठाए सवाल, बोली वोटों के स्वाट में लगातार रंग बदल रही है समाजवादी पार्टी। देवरिया की रैली में ओम प्रकाश राजभर का दावा, जल्द चार हिस्सों में बटेगा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल बना तो राजभर समाज का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। राजभर पर बरसे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन, बोले बीजेपी कर रही बंटवारे की राजनीति, मायावती पर कहा किसके दबाव में फैसले बदल रही हैं बहन जी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा एडिशन 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन। निर्यात और निवेश पर सीएम योगी का फोकस, बोले यूपी से 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निर्यात, 15 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा। जयंत चौधरी के समर्थन में उतरे ओवैसी, अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल उठाकर बोले ऐसी बयानबाजी गलत। कानपुर में ओवैसी का बड़ा बयान, बोले यूपी में बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं बनने देंगे, सभी दल एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाए। ओवैसी ने गठबंधन पर कहा 2 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे, जिसके साथ गठबंधन होगा उसी दिन ऐलान करेंगे और यूपी चुनाव साथ लड़ेंगे। यूपी में अगले 6 महीने हर हफ्ते बटेंगे सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र, सीएम योगी का ऐलान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का दिया आश्वासन। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी महासचिव इंद्रजीत सरोज का बयान, बोले 2027 में सरकार बनी तो मंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले यूपीएसएससी से जुड़े छात्रों की समस्याओं पर चर्चा की, जल्द समाधान के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों का उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बिजली दरों में बढ़ोतरी का किया विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने उठाई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की मांग, विरोध के दौरान विधायकों में धक्का मुक्की। बैनर और पोस्टर लेकर विधानसभा में पहुंचे बीजेपी विधायक, बिजली दरों और कर्मचारियों के मुद्दे पर जताया विरोध। तेलंगाना के एमएलए डी नागेंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दायर की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की लंदन यात्रा पर अन्नमलाई का तंज, बोले विजय की लंदन यात्रा गैर जरूरी, निवेश के लिए यूके की अर्थव्यवस्था में दम नहीं। अन्नमलाई ने कहा लंदन की जगह मदुरई और कोयम्बटूर जाते सीएम विजय, विजय अजीत और त्रिशा की तस्वीर पर भी अन्नमलाई का बयान। के शोभा रेड्डी बोली मेरे मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए, किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं, महिला ने उठाया मुद्दा तो उसकी परेशानी की गंभीरता देखी जाए। केरल में आज कोट्टयम, आलपुरा, अर्नाकुलम और त्रिशूर में बारिश का रेड अलर्ट, प्रशासन ने जारी की है एडवाइजरी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। पंजाब के संगरूर में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकी और प्रताड़ना का आरोप, जगत सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जगत सिंह का वीडियो जारी किया, नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकी और प्रताड़ना का लगाया आरोप। पंजाब में नशे के मद्देनजर इस मुद्दे पर मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप, बोले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ड्रग माफिया को पूरा समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और नितिन नवीन पर तंज, बोले नशे के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत पंजाब से नहीं मुंद्रा पोर्ट से होनी चाहिए। नशा मुक्ति यात्रा के से पहले श्री दमदमा साहिब पहुंचे बीजेपी पंजाब प्रभारी सतीश पुनिया, कहा बीजेपी के डेडलाइन सिर्फ पंजाब नहीं पूरे देश से नशे का खात्मा करना। राजस्थान में 273 निकायों में आज अध्यक्ष पद के चुनाव, 5 नगर निगमों में मेयर और 41 नगर परिषदों में सभापति चुने जाएंगे। उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर में आज मेयर पद का चुनाव, 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन चुने जाएंगे। राजस्थान निकाय चुनाव में मतदान की शुरुआत, वोटिंग खत्म होते ही शुरू हो जाएगी मतगणना। 32 निकायों में निर्विरोध चुनाव पहले ही हो चुका है, 30 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। 25 सितंबर को होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम के चुनाव, 3 में बीजेपी के पास बहुमत। बंगाल एसआईआर पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, वोट डिलीट होने से चुनाव नतीजों पर असर के दावे को खारिज किया। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावे को बताया गलत और अटकलों पर आधारित, ज्यादा एसआईआर ट्राइब्यूनल बनाने की मांग। बंगाल में एसआईआर के तहत अब तक 38 लाख से ज्यादा अपील, 2,26,000 मामलों पर ट्राइब्यूनल का फैसला और 1,00,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट में वापस जुड़े। विजयनगर उपचुनाव से पहले हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, पुलिस पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का लगाया आरोप, कहा अब नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। कटक में ओडिशा प्रो T20 लीग का आगाज, सीएम मोहन चरण मांझी ने बाराबती स्टेडियम में किया उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। बिहार में जमुई में नाबालिग लड़के लड़की के साथ भीड़ ने किया बदसलूकी वाला बर्ताव, घटना की तस्वीरें आई सामने। वायरल वीडियो के आधार पर जमुई पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जमुई मामले पर सियासत गरमाई, भीड़ के बर्ताव पर जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा बोले बिहार में मॉब जस्टिस नहीं चल सकता। जमुई में प्रेमी जोड़े के साथ भीड़ के बर्ताव पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कुंतल कृष्ण ने घटना को बताया शर्मनाक, कहा जो भी दोषी होंगे उन पर एक्शन होगा। जमुई की घटना पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई, प्रवक्ता एजाज अहमद बोले मानवता को शर्मसार करने वाली है घटना, शासन प्रशासन पंगु बन चुका है। दिल्ली एसआईआर की सूची में कई बड़े नामों को नोटिस जारी, लिस्ट में चुनाव आयुक्त एसएस संधू, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नाम शामिल। एसआईआर के घेरे में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और पूर्व थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को भी परिवार समेत मिला नोटिस। एसआईआर के दायरे में जज से लेकर वरिष्ठ अफसरों तक को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई, विदेश सचिव विक्रम मिश्री समेत कई बड़े नाम रिकॉर्ड की जांच के दायरे में। एसआईआर नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है, 29 अक्टूबर तक बीएलओ के पास दस्तावेज जमा कर सकेंगे मतदाता, 4 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर टली सुनवाई, 30 सितंबर को होगी अब सुनवाई। हनुमानगढ़ राजस्थान निर्दलीय विधायक गणेश राज को पुलिस रिमांड, 25 सितंबर तक मिली पुलिस रिमांड। कौशाम्बी में अतीक अहमद के बेटे अली के काफिले की तलाशी, अजम से पूछताछ के बाद छोड़ा गया।
यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में इंदौर के व्यापारियों का नो यूपीआई डे 23 सितंबर को 2000 से अधिक के भुगतान नहीं लेंगे। मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट में रेस्टोरेंट की टेबल पर मिला एक कॉकरोच, डिनर के दौरान टेबल पर घूमता दिखा कॉकरोच, वीडियो हो रहा है वायरल। जोधपुर में लॉरेंस और आरजू बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर गिरफ्तार, एजीटीएफ और जोधपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, होटल से दबोचे गए ये शूटर। मधेपुरा में चलती कार में लगी भीषण आग, 81 बोतल विदेशी शराब की हुई बरामद, तस्कर फरार। अकोला में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में झड़प, गाड़ियों में तोड़फोड़, लोगों ने जमकर किया पथराव। रायसेन में स्लीपर बस और डंपर की जोरदार टक्कर, बस कट्टर से काटकर चालक को निकाला गया बाहर, 9 यात्री भी घायल। पटना में नशे की हालत में बेटे ने अपनी मां को जिंदा जलाया, गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ भी की मारपीट। वैशाली में एक बार फिर वर्दी पर उठे सवाल, नशे के सौदागरों से सांठगांठ रखने वाले थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित। हैदराबाद में 10 रुपए के विवाद में ऑटो ड्राइवर को उतारा मौत के घाट, इलाज के दौरान दम तोड़ा। हैदराबाद में लिफ्ट और दीवार के बीच फंसा शख्स, 90 मिनट बाद रेस्क्यू, बाल बाल बची शख्स की जान। बेतिया में गर्भवती की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने अवैध हॉस्पिटल को किया सील। कटरा के हेलीपैड टर्मिनल में लगी आग पर आधे घंटे में पाया काबू, लेकिन टिकट काउंटर के कंप्यूटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री के कचरे में धमाका, घास काटने गए दो सगे भाई झूल से। गुजरात के अमरेली में कच्चा तेल से भरा टैंकर अचानक पलटा, हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग तेल भरने के लिए पहुंचे। गढ़वा में पहले बाइक लूट, फिर एमपी में ज्वेलरी शॉप पर डकैती, गढ़वा से एमपी और यूपी तक अपराधियों का नेटवर्क, पुलिस का खुलासा। अंकलेश्वर में नशीले इंजेक्शन के बाद 4 में से 2 युवक की मौत से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। झांसी के एक हत्याकांड में 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक सभी 12 आरोपियों की गिरफ्तारी। सहारनपुर नकली करेंसी कांड में एनआईए का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार, करीब 18 करोड़ रुपए के जाली नोटों की खंगाली जा रही है पूरी कड़ी। आईएनएस सहायद्री और आईएनएस कुलिश फिलीपींस पहुंचे, दोनों युद्धपोत एडीएमएम प्लस ज्वाइंट कोऑपरेशन एक्टिविटी में लेंगे हिस्सा। संयुक्त अभ्यास में आसियान देशों के साथ 8 अन्य देशों की नौसेनाएं होंगी शामिल, समुद्री सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाना है अभ्यास का मकसद। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अभ्यास में ले रहा है हिस्सा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर है जोर। आईएनएस सहाद्री और आईएनएस कुलिश की यात्रा से भारत फिलीपींस समुद्री संबंध भी होंगे मजबूत, नौसेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग बढ़ाने का मिलेगा मौका। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, पोखरण में KAL ड्रोन का सफल परीक्षण, 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। एशियन गेम्स 2026 का आज दूसरा दिन, पहले दिन भारत के हिस्से में आए 2 मेडल, आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत को एशियन गेम्स 2026 में तीसरा मेडल हुआ हासिल, मेंसन 10 मीटर एयर राइफल में मिला सिल्वर। मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि एमएमए में भी भारत को मिला मेडल, 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में सुचिका तरियाल ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्रांश को ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत का 10वां स्थान, अब तक भारत के खाते में 6 मेडल। भारतीय मेंस हॉकी टीम का एशियन गेम्स में धमाकेदार आगाज, इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। दिलप्रीत सिंह के 4 गोल की मदद से भारत मेंस हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 से दमदार जीत हासिल की। पूरे मैच में सुखजीत और दिलप्रीत में बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिली, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के एशियन गेम्स में धमाकेदार आगाज की शुरुआत। 47वें मिनट में जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और 1 मिनट बाद ही सुखजीत ने अपना दूसरा फील्ड गोल किया और भारत की जीत सुनिश्चित की।
भारत कल श्रीलंका के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगा। इंडोनेशिया को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम के हौसले बुलंद। अगले हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका का दौरा करेंगे। 24 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप से हो सकती है उनकी मुलाकात, चीनी विदेश मंत्री ने दी जानकारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात, कहा हम न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमत हुए हैं, यह मुलाकात बहुत कुछ बदल सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले के बाद लगी भीषण आग, रूसी ड्रोन ने वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स को बनाया निशाना। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने संसदीय चुनावों के शुरुआती नतीजे घोषित किए। राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया 57% वोटों से ज्यादा के साथ आगे। ईरानी संसद के स्पीकर गलिबाफ ने कहा उनके देश ने एक साथ लड़ने और बातचीत का रास्ता चुना है।

0: होने से कुछ विस्तार प्रोजेक्ट्स में देरी, जरूरी उपकरण देश नहीं पहुंच पाए। सीरिया में एलेपो प्रांत के अल एस शहर में कई धमाके, सीरिया रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक हथियार डिपो में विस्फोट, कई लोगों के घायल होने की खबर। कनाडा और फ्रांस अंतरिक्ष रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत, दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर बनी सहमति। अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए अभियान चला रहे इमिग्रेशन एजेंटों ने एक और शख्स को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। दक्षिण अफ्रीका के तस्वाने से डिफेंस में हुआ एक डिफेंस शो, देश में बने मिलिट्री एयरक्राफ्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी, लड़ाकू विमान हैरत अंगेज करतब करते हुए देखे गए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: और अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। आईआईटी बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, डीन पद से प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को सस्पेंड कर दिया गया है, डीनशिप से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। छात्र साहिल वाकुड़े, जो कि 20 साल के छात्र थे, उनकी आत्महत्या के बाद वहां पर लगातार बवाल था, विरोध प्रदर्शन भी छात्रों के तरफ से किए गए थे, और इस बीच प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकुड़े की सुसाइड केस में प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला पर आरोप लगे थे। आपको बता दें कि साहिल वाकुड़े जो थे वो सेकेंड ईयर बीटेक के छात्र थे, और उन्होंने अपने, माना जा रहा है कि अपने कमरे में उन्होंने सुसाइड की थी। ये मामला जो है इसकी लगातार जांच चल रही थी, और इस वक्त हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आईआईटी बॉम्बे में ही मौजूद हैं। मुस्तफा, क्या पता चल रहा है इस जांच के बारे में, और बड़ा कदम उठाया गया है अभी, न सिर्फ सस्पेंड किया गया है डीनशिप से बल्कि माफी भी मांगी गई है सोशल मीडिया पर?
3: जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि जो प्रोफेसर फैकल्टी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला कह के कि जो प्रोफेसर है उनकी,
0: जी जी
3: ऑडियो चेक,
0: जी जी
3: मंदा ऑडियो,
0: जी
3: जी, तो मैं ये कह रहा था कि बॉम्बे आईआईटी की तरफ से फैकल्टी ने एक स्टेटमेंट निकाला था, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि जो प्रोफेसर है उनके खिलाफ उन्होंने किसी भी तरीके का गलत कदम नहीं उठाया बल्कि प्रोसीजर फॉलो किया है। तो उस स्टेटमेंट को वापस लेकर बॉम्बे आईआईटी ने माफी मांगी है, ये कहकर कि पुलिस ने एफआईआर की है और इन्वेस्टिगेट कर रही है कि एग्जाम्स में जब वो कॉपी करते हुए पकड़े गए थे साहिल, उसके बाद जो चीजें हुई है उसकी तफ्तीश हो रही है। लेकिन डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी जो है वो प्रोफेसर थे और उन्हें इस पद से निकाला गया है, ना किसी तरह से डिमोशन जो है वो किया गया, लेकिन अभी भी वो बॉम्बे आईआईटी के प्रोफेसर पद पे कायम है। तो आगे पुलिस जानकारी के बाद शायद बॉम्बे आईआईटी बाकी के कदम उठा सकती है। फिलहाल बॉम्बे आईआईटी के प्रोफेसर्स की एक मीटिंग चल रही है, स्टूडेंट्स की जो डिमांड है कि उन्हें आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मेंटल ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए, किसी से चीजों से डिस्कस करने का, प्रोफेसर से डिस्कस करने का टाइम मिलना चाहिए, या फिर जो एग्जाम्स का प्रेशर है वो कम होना चाहिए। तो इन सभी मांगों को लेकर एक मीटिंग जो है ये बॉम्बे आईआईटी में हो रही है।
0: मुस्तफा, आप हमारे साथ बने रहे, इस मामले में एक और बड़ी खबर ये है कि आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो ये कि आईआईटी बॉम्बे ने अब माफी मांगी है, सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में हमारे पिछले संदेश में कही गई बातों के लिए हम माफी मांगते हैं, इस घटना से जुड़ी जानकारी और हालात की जांच अब संबंधित अधिकारियों द्वारा की जानी बाकी है, चल रही जांच को देखते हुए उनकी मौत से पहले हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देना या उनके बारे में कोई राय बनाना सही नहीं था, क्योंकि अभी तक जांच की सही प्रक्रिया से ये बात पूरी तरह साबित नहीं हुई थी। तो मुस्तफा के पास एक बार फिर से वापस चलते हैं। मुस्तफा, सोशल मीडिया पर ये जो माफी मांगी गई है, क्या वजह रही इस माफी को मांगने के पीछे?
3: जी बिल्कुल, तो जैसे हम लोग पहले इस बात को बता रहे थे कि जो प्रोफेसर है सूर्य नारायण दुल्ला वो एक एग्जाम में एग्जामिनर थे जब साहिल वाकुड़े पकड़े गए थे चैट जीपीटी से अपने मोबाइल पर कॉपी करते हुए। उसके बाद जब कॉलेज ने ये कहा कि साहिल पर किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन 18 सितंबर को साहिल ने सुसाइड कर लिया, उनके पेरेंट्स ने आरोप लगाया।

0: प्रोफेसर डुला पे कि ये एक तरह से हैरेसमेंट कर रहे थे पिछले तीन महीनों से जातिवाद को लेकर के उनके ऊपर बातें कही जा रही थी, उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच को दी गई है। अब फैकल्टी बॉम्बे आईटी का स्टेटमेंट ये निकला कि उन्होंने जो प्रोफेसर डुला ने जो प्रोसीजर फॉलो किए हैं उसमें हमें कुछ भी गलत नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को वापस लेकर बॉम्बे आईटी ने बाद में माफी मांगी है कि अगर किसी तरीके की तहकीकात चल रही है क्राइम को लेकर के तो उस पर पहले कमेंट करना सही बात नहीं है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच तहकीकात कर रही है, जो मुंबई क्राइम ब्रांच तहकीकात करेगी उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे।
1: जी मुस्तफा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आगे आगे उधर करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: यार लोन भूल गया मैरी। सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
11: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
10: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
11: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
12: There's nothing small about
10: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.
13: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
14: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
15: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
16: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी।
4: There is a very famous quote ki history repeat itself.
5: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
6: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
5: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।

0: मायावती के मन में क्या चल रहा है, 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं, चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं, ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है, कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है। कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है। सवाल ये है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर, सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हामिद अंसारी के दक्षिण पंथ सांप्रदायिकता को वामपंथ से बड़ा खतरा बताने पर घमासान, बीजेपी ने की हमलों की बौछार, कहा पूरी तरह मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस। यूपी में समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बुलडोजर वाला स्वागत, योगी के साथ कई बड़े कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की भी बैठक। आईआईटी मुंबई में सुसाइड केस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, डीन पद से हटाए गए प्रोफेसर दुल्ला, कैंपस में छात्रों का आज भी प्रदर्शन, पुराने बयान पर भी प्रशासन ने मांगी माफी। बिहार के जमुई में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां, नाबालिग लड़का और लड़की से भीड़ ने किया दुर्व्यवहार, मामला दर्ज, विपक्ष ने सम्राट सरकार पर उठाए सवाल। और राजस्थान के मेयर चुनाव में बीजेपी की बढ़त, 5 में से 2 पदों पर कब्जा, पाली उदयपुर में मारी बाजी, 3 निगम में नतीजों का इंतजार।

0: बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे बिहार की। बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। जमुई के SP ने वीडियो और घटना की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है और आरोपियों की तलाश हो रही है। उधर ये घटना सामने आने के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। RJD कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर अब सरकार को घेर रहा है।
1: ये बिहार है, सम्राट चौधरी का बिहार, जहां बेटियां एकदम सुरक्षित हैं। इतनी सुरक्षित कि शाम ढलते ही अपराधी गिरोह बनाकर बेटी पर टूट पड़ते हैं। ये वही बिहार है जहां मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन हकीकत देखिए कैसे ये दरिंदे बेटी की मर्यादा भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी का बिहार है जहां शाम को बेटियां बाहर ना निकलें, नहीं तो कोई गिरोह उन्हें घेर सकता है, उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले लड़की कुछ समझ पाती, ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि नीचता भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार दरिंदों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा और कुछ दूर पर उसे रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। ना पुलिस ना कानून, कुछ नहीं, सड़क पर खूंखार जीव खुलेआम घूम रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: जमुई में जो हुआ उसने बिहार में कानून व्यवस्था के सारे दावों की हवा निकाल दी है। दावा तो ये होता है कि अपराधी बिहार छोड़ के भाग गए हैं। अगर भाग गए हैं तो फिर जमुई में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? और आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता देते हैं कि जमुई में ये जो मामला है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी कही जा रही है कि हो चुकी है। तो ये जो शर्मनाक तस्वीर सामने आई थी 19 सितंबर का, ये वीडियो जो वारदात का वायरल हुआ था, जो अभी अभी हमने आपको दिखाया भी, उसमें कहा जा रहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कौन है ये लोग, इनकी जानकारी आगे आपको देंगे, लेकिन कुछ एक्शन अब आखिरकार होता हुआ नजर आया है। SP ने जमुई के इस बात को माना था कि ये वीडियो भी सही है, ये वारदात भी सही है और इसको लेकर FIR दर्ज की गई थी। लोगों की निशानदेही की जा रही थी इस वीडियो के मदद से और अब खबर आ रही है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 7 लोगों पर रेप का, माफ कीजिएगा, 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

0: बिहार के जमुई में बेटी के साथ सरेराह जो हुआ उसने सबको झकझोर के रख दिया है। इस घटना ने बिहार सरकार के हर दावे की हवाल निकाल दी है। जो इस घटना के पीड़ित है वो दोनों नाबालिग हैं। दोनों 10वीं क्लास के छात्र हैं, जमुई शहर में रहते हैं, लेकिन शनिवार को जमुई के मड़वा पहाड़ घूमने गए थे।
1: जमुई के वायरल वीडियो मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों युवक और युवती एक कोचिंग में पढ़ाई करते थे। शनिवार का दिन था, लिहाजा छुट्टी होने के बाद वो घूमने के लिए जमुई के मड़वा पहाड़ इलाके में चले गए और यहीं पर मनचलों ने उन्हें निशाना बनाया। स्कूटी सवार युवक और युवती को वहां रोका गया और उनके साथ जिस घटना को अंजाम दिया गया वह वाकई शर्मसार करने वाला है।
0: जमुई में लड़की के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। जमुई पुलिस ने सबसे पहले उन छात्रों से संपर्क किया जो पीड़ित हैं। पीड़ितों से बातचीत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। ये घटना 19 सितंबर की है। शाम से 6 से 7 बजे के बीच दोनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि 6 से 7 लोग इस घटना में शामिल थे। अब जमुई पुलिस आरोपियों की तलाश में है।
2: विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जिससे पता चला कि ये घटना जो है 19 तारीख को शाम में 7 बजे के आसपास की घटना है जिसमें कुछ युवक जो है गांव के युवक जो है छेड़खानी करते हुए दिख रहे हैं।
3: कितने लोग थे सर इसमें?
2: जो वीडियो के फ्रेम में जो दिख रहे हैं वो 6-7 लोग दिख रहे हैं। बाकी हम लोग कुछ का पहचान उसमें हो गया है। पहचान के बाद विधिवत कार्रवाई होगी तब और भी कौन कौन लोग थे उसमें ये पता चल सकता।
0: घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में कानून का इकबाल कहाँ है? क्या बेटियों को बाहर निकलना मना है? क्यों लड़का और लड़की एक साथ एक स्कूटी पर नहीं चल सकते? जमुई की इस घटना के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर है।
4: जमुई में जो घटना हुई है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरह की हृदय विदारक घटना, इस तरह की मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शासन और प्रशासन पंगु हो चुका है।
0: विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा तो बीजेपी और जेडीयू ने सरकार का बचाव किया और दावा किया कि सम्राट चौधरी की सरकार दोषियों को छोड़ेगी नहीं।
5: ट्राइंग टू आउटरेज द मोलेस्टी जैसे संज्ञेय अपराधों में इस पे कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है बहुत जल्द कानून की सलाखों के पीछे होंगे और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आगे से इस तरह की शर्मसार घटना किसी के जहन में भी नहीं आए।
6: बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है और बिहार में मॉब जस्टिस नहीं चलता है। जो भी लोग कानून हाथ में लेते हैं उन पर कानून अपना हाथ डालती है। यह वीडियो प्रकाश में आया है, पुलिस मामले की त्वरित जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
7: तो बड़ी खबर ये आ रही कि जमुई छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तारियां अब हुई हैं। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मामले में। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शशि भूषण का। शशि, कौन है ये लोग और किस तरह के मामले दर्ज किए जाएंगे इन पर? और लोग तो कई थे, अब तक सिर्फ 3 ही गिरफ्तारियां?
8: अंजलि, देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है वो 19 सितंबर का है और जो जानकारी सामने आई, पुलिस ने भी जानकारी दी, उसके मुताबिक ये दोनों एक युवती और जो छात्रा है और छात्र दोनों कोचिंग में पढ़ने जाते थे और शनिवार का दिन चूंकि छुट्टी हुआ तो उसके बाद ये घूमने के लिए जमुई में एक पहाड़ का इलाका है वहां चले गए थे और वहीं से लौटते समय इनके साथ ये घटना हुई। अब पुलिस ने कार्रवाई की है, 7 लोगों की शिनाख्त पुलिस ने की है जो इस घटना में शामिल थे, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही दूसरे गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी, लेकिन सबसे आम बात यह है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ जो संसार करता है एक सभ्य समाज को, उस घटनाक्रम से ज्यादा कोई बड़ी आपराधिक घटना हो सकती थी संयोग रहा कि वैसी घटना नहीं हुई है। पर जो जमुई के एसपी हैं उन्होंने बजाता जानकारी दी है कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जो भी धाराएं हैं उपयुक्त होती हैं ऐसे मामलों में वो तमाम धाराएं लगाई गई हैं, और बाकी जो चार आरोपी जिनकी पुलिस ने पहचान की है इस मामले में उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है।
7: जी आप हमारे साथ बने रहे शशि, क्योंकि अब इस घटना पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि बिहार के जमुई का वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है, इन लोगों को ऐसी बदतमीजी करने का हक किसने दिया, ये संस्कृति नहीं है, ये पेट्रियार्की है, ये सोच कि किसी भी पुरुष का किसी लड़की के शरीर, उसके आने जाने और उसकी पसंद नापसंद पर उनका नियंत्रण है। जब नियंत्रण को ही संस्कृति मानकर अंधभक्त ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है। राहुल गांधी लिखते हैं कि उस वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उन अपराधियों पर पॉक्सो के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। जमुई की घटना के बाद विपक्ष हमलावर है।
9: देखिए ये विजुअल इतना डरावना है, इतना डराने वाला है कि मतलब जो कोई भी नागरिक इस वीडियो को देखेगा वो सरकार पे सिर्फ और सिर्फ लानत भेजेगा, इससे कम कुछ भी नहीं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि राह चलती एक देश की बेटी को, एक बिटिया को गुंडे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और गुंडे जिस तरह की वेशभूषा में है, वेशभूषा देख के समझ में आ जाता है कि वो किस पार्टी के समर्थक होंगे। सरकार क्या कर रही है, ये जमुई तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसे मणिपुर दोहराया जा रहा हो। पूरे देश में इस वीडियो पर बहुत गुस्सा है लोगों में, और जरा जरा सी बात पे कॉमेडियन के वीडियो देख करके भावनाएं आहत करने वाले, नारियों का अपमान बताने वाले लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों में किस तरह से महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो शायद आदम युग में कभी ना होता रहा हो। जो सभ्यताएं, जो पुरानी सभ्यताएं थी, बर्बर सभ्यताएं रही होंगी, उसमें भी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं ना होती रही होंगी जिस तरह से मणिपुर से लेकर के जमुई तक भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं।
7: तो बिहार में पंचायत आज तक का मंच भी सजा था, तब बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी आए थे, कानून व्यवस्था को लेकर उनसे सवाल भी किया गया था, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
10: कानून व्यवस्था को आप अपना स्ट्रेंथ बताते हैं, ये कहा जाता है कि अब जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल क्राइम सब तरह के अपराध के लिए बिहार में है, पर जो कुछ इंसिडेंट्स एक सेना के जवान को लेकर जो मामला अभी आया, इस तरह की चीजों को लेकर आप कैसे हैंडल, क्या हैंडल करना चाहते हैं, सम्राट चौधरी का क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर क्या?
11: मेरा मानना है कि कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए। सुशासन तभी स्थापित होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, अपराधी को सजा दिलाया जाए, और यदि कोई जघन अपराध है उस पर तुरंत अपराध पर कार्रवाई हो और उसको सजा एक टाइम फ्रेम में हो। हम लोगों ने इसके लिए गुंडा एक्ट में पूरा प्रावधान किया, अभी आप कह रही थी ना परीक्षा सुधार के, हमने कहा है कि 1 से 2 बार यदि कोई व्यक्ति चार्जशीटेड हो इस परीक्षा के हेर फेर करने में, उसको एकदम गुंडा एक्ट में बंद करके 1.5 साल रखना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे कई चीज हैं जो कानूनी तौर पर अपराध को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई।
12: आजकल एक सेकंड रोहित, जल्दी से एक सवाल इसी टॉपिक पे चुकी मन में आया, कहते हैं आजकल 3 सीएम में रेस लगी हुई है, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी।
11: नहीं नहीं, मैं तो रेस में ही नहीं,
12: बुलडोजर एनकाउंटर,
11: मैं तो रेस में ही नहीं हूँ कहाँ अंजना जी आप हमको
12: बुलडोजर एनकाउंटर का बोलबाला, माफिया का अंत करना है, पुलिस एकदम ट्रिगर हैप्पी हो जाए तो हो जाए।
11: नहीं, अपराध अपराध अपराध के खिलाफ होना चाहिए। मैं ना, मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, कहाँ मैं इस चक्कर में पड़ूं। मेरा काम है शासन को ठीक से चलाना, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड छोड़ देना।
7: और अब रुक करते हैं आईआईटी बॉम्बे का, जहां से अगली बड़ी खबर आ रही है। आईआईटी बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीन पद से सस्पेंड कर दिया गया है प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को। आपको बता दें कि उन्हें डीनशिप से सस्पेंड किया जा चुका है। 20 साल के छात्र साहिल वाकुड़े की आत्महत्या के बाद मचे बवाल के बीच प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकुड़े की सुसाइड केस में प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला पर कई आरोप लगे थे और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और आइए सीधा रुक करते हैं मुस्तफा शेख का, जो इस वक्त आईआईटी बॉम्बे में ही मौजूद है। मुस्तफा, कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर तो आ रहा है वहां का प्रशासन, लेकिन जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में बताएं, और साथ में किस तरह के आरोप भी लगे थे परिवार और वहां पे छात्रों की तरफ से डीन के खिलाफ या पूर्व डीन के खिलाफ।
13: जी बिल्कुल, ये बात बराबर है कि पहले जो मामला सामने आया उसमें सुसाइड होने के बाद जब परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ जातिवाद को लेकर के छेड़छाड़ हुई है, तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है एबेटमेंट टू सुसाइड का और एट्रोसिटी एक्ट के तहत। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो कार्रवाई शुरू हुई उसमें एक स्टेटमेंट आया प्रोफेसर की तरफ से आईआईटी की कि प्रोफेसर दुल्ला ने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो भी है प्रोसेस फॉलो किया है। लेकिन उसके बाद अब ये स्टेटमेंट उनको वापस लेके आईआईटी को माफी मांगनी पड़ी कि पुलिस जांच करेगी कि जो भी हुआ है उसमें सही क्या है गलत क्या है। अभी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है, किसी तरह का सुसाइड नोट मिला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा था पढ़ाई के टेंशन को कम करने का, उनकी काउंसलिंग का, वो अब जातिवाद उसमें बदलता हुआ भी दिख रहा है। इस वक्त बॉम्बे आईआईटी के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जहां पर कुछ दलित संगठनाएं आई हुई हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रही है साहिल वाकोड़े की सुसाइड को लेकर के। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। सर, आप लोग कहाँ से हैं, क्या मांग रहे हैं?
14: अमित भीमराव सेनेचा संघटनेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिंदी ना। आईआईटी में जिस तरह से जातिवाद चल रहा है और हमारे जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई करते हैं उनके साथ में जो जातिवाद और उसके खिलाफ वो बेचारे ने सुसाइड किया है, हमारी ये मांग है कि जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, जिनके ऊपर गुना दाखिल, उसको अरेस्ट किया जाए और उनके फैमिली से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। और जो यहाँ पे प्रकार चल रहा है जिस तरह से जातिवाद के ऊपर, वो रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे रेहूत वेमुला का भी इस तरह से हत्या हुई है। और यहाँ का ये जो सरकार है ये मनुवादी विचारों की सरकार है, इसके लिए ये सब सर लोग इस तरह से डरते हैं।
13: प्रोफेसर दुल्ला है उनकी, वो भी ओबीसी है ये बताया जा रहा है, तो इसे फिर कैसे?
14: ओबीसी है लेकिन उसका जो सोच है वो मनुवादी सोच है, वो ब्राह्मणवादी सोच है, इसके लिए वो उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उसका अरेस्ट होना चाहिए।
7: अगर अरेस्ट जी, तो आप साथ बने रहे, क्योंकि इसमें एक और बड़ी खबर ये है कि सुसाइड केस में आईआईटी बॉम्बे ने माफी भी मांगी है। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में हमारे पिछले संदेश में कही गई बातों के लिए हम, यानी कि आईआईटी बॉम्बे, माफी मांगते हैं। इस घटना से जुड़ी जानकारी और हालात की जांच अभी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जानी बाकी है और चल रही जांच को देखते हुए उनकी मौत से पहले घटनाओं के बारे में जानकारी देना या उनके बारे में कोई राय बनाना सही नहीं था, क्योंकि अभी भी जांच की सही प्रक्रिया में बात पूरी तरह साबित नहीं हुई थी। तो प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि पिछले एक साल में 3 दलित छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। आशिक ने आयशा से जुड़ी मुंबई यूनिवर्सिटी की छात्रा सना सलीम से इस बारे में बात की है।
15: The immediate demand is resignation. हमें जितने भी professors involved थे उन सबके resignation चाहिए, जो director है, जो dean है, हमें उनके resignation चाहिए। हमें accountability चाहिए कि आपने ऐसा किया है, आपने क्या ऐसा किया है कि 3 दलित students ने पिछले एक साल में suicide कर लिया। आपके यहाँ पर ऐसा क्या arrangement है academia का कि लोग इतना pressure में है, इतने pressure में कि लोग ये सारे इतने tragic और इतने irreversible choices कर रहे हैं। तो हमारा सबसे immediate resignation ही हमारा goal है। एंड उसके बाद से there needs to be an independent student body under जो which talks about the students, which talks on the behalf of the students mental health के लिए किसी को यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, because यहाँ पर students की mental health के साथ teachers को भी ये समझना चाहिए कि students की mental health is very important, especially when they are studying in such a competitive, in such an intense, cutthroat organization.
7: तो कथित तौर पर नकल से रोकने पर खुदकुशी या जातिगत उत्पीड़न की वजह से छात्र ने दी जान। आईआईटी छात्र साहिल वाकुड़े की खुदकुशी का मामला गर्म है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
16: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए।
7: उधर बीजेपी के राम कदम का कहना है कि किंतु परंतु छोड़कर सभी दल को पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहिए।
17: वही के आईआईटी में वहां के छात्र ने खुदकुशी की और खुदकुशी का मामला सामने आने के बाद परिवार ने कुछ बिंदु पर शक जताया। सरकार ने पूरी जांच पुलिस को करने के लिए निर्देश दे दिए, अब पुलिस जांच कर रही है। पर दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, मां ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
7: अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
21: सोच बदलो और बैंक भी।
22: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहाँ भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करे।
23: ये झूठ की गूंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में। और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मंच शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया? मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान डेटा वेरिफिकेशन को लेकर कई बड़े नामों को नोटिस मिले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चुनाव आयुक्त SS संधू, पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CBI निदेशक प्रवीण सूद के रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आए हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और उनके परिवार को भी नोटिस मिला है। उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के रिकॉर्ड में सेल्फ नेम मिसमैच, जबकि बेटे मीर सिसोदिया के रिकॉर्ड में पेरेंट नेम मिसमैच दर्ज किया गया है। वहीं एस जयशंकर और उनकी पत्नी समेत कई लोगों के रिकॉर्ड अनमैप्ड विथ लास्ट SIR कैटेगरी में है, यानी मौजूदा रिकॉर्ड को 2002 की पिछली SIR वाली वोटर लिस्ट से लिंक नहीं किया जा सका। आडवाणी परिवार के भी 3 सदस्यों को इसी तरह का नोटिस मिला है। कई मौजूदा और पूर्व नौकरशाहों के रिकॉर्ड में भी पुराने डेटा से लिंक न होने या नाम और पारिवारिक विवरण में अंतर पाया गया है, लेकिन चुनाव कार्यालय ने साफ किया है कि ये नोटिस महज डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है। नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं है, मतदाताओं को जवाब देने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का मौका मिलेगा। बिना सुनवाई के नाम डिलीट नहीं किया जाएगा। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO के सामने जवाब और जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसके बाद अधिकारी मामले की जांच कर आदेश जारी करेंगे। नोटिस के निपटारे की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, जबकि दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होनी है। यानी फिलहाल SIR के तहत सामने आए ये नोटिस मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का अंतिम फैसला नहीं है। असली तस्वीर जवाब दस्तावेजों की जांच और ERO के आदेश के बाद साफ होगी। इसी प्रक्रिया और सामने आई विसंगतियों को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की राय भी अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

हामिद अंसारी के दक्षिणी पंथ सांप्रदायिकता को वामपंथ से बड़ा खतरा बताने पर घमासान। बीजेपी ने की हमलों की बौछार का पूरी तरह मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस। यूपी में चुनावी तैयारियों में पकड़ी रफ्तार। मेरठ में नितिन नवीन, सीएम योगी का मंथन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक। अखिलेश यादव का ताजा आरोप, कहा बीजेपी राज में अंबेडकर की 151 मूर्तियां तोड़ी गई।

सदुल्ला कैंपस में छात्रों का आज भी प्रदर्शन, पुराने बयान पर भी प्रशासन ने माफी मांगी। बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की वारदात पर पुलिस का एक्शन, 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले, वीडियो बेचैन करने वाला, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। राजस्थान के मेयर चुनावों में बीजेपी की बढ़त, 5 में से 3 पदों पर कब्जा। पाली, उदयपुर, अलवर में बीजेपी ने मारी बाजी, कांग्रेस के खाते में गई बीकानेर की सीट।

0: आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। न्यूज रूम लाइव में तमाम बड़ी खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन कुछ मुख्य खबरें हैं जिनके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन सी खबरें रहने वाली है। सबसे पहले बात हम करेंगे राजस्थान के नगर निकाय चुनावों को लेकर, जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, उसको लेकर भी विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खासतौर पर दूसरी सबसे बड़ी बात होगी, खबर क्या होगी, वो होगी वेस्टर्न यूपी के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष का, उन्होंने मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर और लगातार उसको लेकर तैयारियां चल रही है। तीसरी बड़ी खबर होगी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ताजा बयानों को लेकर, कैसे घमासान मचा हुआ है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर होगी आईआईटी बॉम्बे को लेकर, जहां पर जो प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा था उस पर क्या बड़ा अपडेट मिला है ये भी आपको बताएगा। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जो है राजस्थान से। जी हां, राजस्थान में नगर निकाय चुनावों को लेकर नतीजे आने शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर इसको लेकर जो बढ़त है वो बीजेपी ने बनाई हुई। आपको बता दें कि राजस्थान में 5 मेयर पद के चुनावों में से 4 के रिजल्ट आ चुके हैं, और आपको बताएं कि इन चुनावों के नतीजे में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। राजस्थान के 5 मेयर पदों में चुनाव में से 4 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। पाली, उदयपुर, अलवर में बीजेपी की जीत दर्ज की गई है। हालांकि देखिए, कहा जा रहा है कि बीकानेर जो है उस पर कांग्रेस की बढ़त है, कांग्रेस को उसमें जीत हासिल हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर भी किस तरीके के रुझान है ये हम आपको बता रहे हैं। कई जगहों पर, खासतौर पर पाली नगर में बीजेपी का कब्जा हो चुका है, बाकी सीटों पर भी लगातार बीजेपी का प्रदर्शन ठीक रहा है।
1: आप सभापति बन चुकी हैं, क्या लगता है पहली सभापति बनेंगे आप, कैसा खुशी लग रही है और क्या मेन काम
2: रहेगा? सभी पब्लिक की खुशियों को देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये मौका दिया है, इसे हम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे।
1: 5 प्रायोरिटी आपकी क्या रहेंगी शहर के अंदर जितने हालात है, क्योंकि रोल मॉडल हमेशा से रहा है कि कुछ पेश करेंगे, कुछ नया होगा?
2: देखिए, मेन सफाई का रहेगा, शहर को कचरा मुक्त बनाना, सुंदर बनाना, और लाइट की पूरे प्रॉपर व्यवस्था करना। पानी के सबसे ज्यादा दिक्कत है शहर में, उसको सॉल्व करेंगे, और आवारा पशुओं का रहेगा।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़े। शरद, अब तक क्या नतीजे आए हैं, किस तरीके के रुझान है, और अभी कौन कौन सी सीटों पर जो फैसले हैं फिर नतीजे आने शुरू हो गए हैं?
3: असम में 273 पे आज चुनाव होने थे, 273 में से 179 के नतीजे आ गए हैं। 179 में 122 जो है 122 बीजेपी ने जीती है, और 53 कांग्रेस ने जीती है, और एक अभी निर्दलीय के पास गया है। 273 में से 179 का ये आंकड़ा, 122 बीजेपी, 53 कांग्रेस, एक निर्दलीय बोर्ड बना हुआ है। जहां तक नगर निगम की बात करें तो 2 नगर निगम पहले ही निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, भिलवाड़ा और भरतपुर, और 5 पर आज चुनाव थे, जिसमें से 3 पर उदयपुर, पाली और अलवर, 3 पर बीजेपी जीती है, 1 बीकानेर में कांग्रेस जीती है। अजमेर में अभी नतीजे आने बाकी हैं, अभी आधे घंटे में नतीजे अजमेर के आ जाएंगे, जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और 3 नगर निगम के चुनाव 25 सितंबर को है, जहां पर बीजेपी की बहुमत है, यानी कि यह फैसला 8-2 या 9-1 से होना है, जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई दिखाई दे रही है।
0: बिल्कुल, और कौन कौन से पद हैं, खासतौर पर मेयर हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन और कौन कौन सी पद हैं जिनके ऊपर ये फैसला आएगा? और एक और बात शरद, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो मार्जिन ऑफ वोट शेयर है वो बहुत कम था, 1% का मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन फिर भी जो फैसले हैं या फिर जो अभी नतीजे आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप हम देखने को मिल रहा है।
3: हाँ, ये भजनलाल शर्मा ने सुमित मैनेज किया है कि आप जो निर्दलीय जीते हैं इस बार 28-30% तक निर्दलीय जीते थे, और उन निर्दलियों को ज्यादातर को भजनलाल शर्मा ने पुश करके अपने बीजेपी के खेमे में लेकर आए हैं, और निर्दलियों के बल पर ये सारे वोट बन रहे हैं, जिसमें 10 तो नगर निगम में है जहां पर मेयर बनेंगे, उसके बाद 47 नगर परिषद है, मतलब बड़े शहरों से थोड़ा सा छोटा शहर, वहां पर नगर परिषद में सभापति बनेंगे, चेयरमैन, और छोटे शहर नगर पालिका है वहां पर पालिका अध्यक्ष बनेंगे। बीजेपी ने बेहतर रणनीति अपनाते हुए ज्यादातर निर्दलियों को अपने साथ लेकर ज्यादा वोट बना लिए हैं, कांग्रेस बिखरी हुई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि दुगने से पीछे है अभी तक।
0: बिल्कुल शरद, एक और बात, क्योंकि हम अक्सर ही बात कर रहे थे कि आपने भी, आपसे जब पहले डिस्कस किया था कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान अंदरूनी कलह का हुआ है, लगातार आपसी खींचतान का हुआ, और शायद यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बढ़त थी, सबसे बड़ा उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट था।
3: बिल्कुल सुमित, देखिए ना, पाली में 29 सीट जो है कांग्रेस जीती थी और 21 पर बीजेपी थी, और फाइनल नतीजे में वोट कितना मिला है कांग्रेस को, 3, यानी 29 में से 3 मिले हैं और बाकी सारे भाग गए कांग्रेस के जो निष्कासित पार्षद जीती थी, जो विद्रोह करके खड़ी थी उनके पास, और कुछ क्रॉस वोट कर गए। तो इतने अच्छे रिजल्ट लाने के बाद भी पार्टी गायब हो गई पाली से, तो ये तो हर जगह हुआ है। केसी वेणुगोपाल आए हुए हैं इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर राजस्थान में, थोड़ी दूर में कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस पिछड़ी क्यों है। अब जिस कोटा में राहुल गांधी अपना छात्रों की गुंज प्रोग्राम करके गए, उस कोटा में पूरे कोटा और बूंदी में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। तो जेएनजी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उसका असर वहां नहीं दिखाई दिया जहां राहुल गांधी ने पहला प्रोग्राम किया था छात्रों की गुंज का, तो उसी को देखते हुए।
0: और शरद, मुझे लगता है कि ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि डूसू के चुनावों में भी उसकी एक झलक देखने को मिल गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरद हमारे देखे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि भले ही कांग्रेस जेएनजी को लेकर बड़े आप कह सकते हैं आप छात्रों की गुंज प्रोग्राम कर रही हो, लेकिन नतीजे जो आ रहे हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट या फिर कांग्रेस के फेवर में नहीं आ रहे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश है। दरअसल उत्तर प्रदेश 2027 मिशन के ऊपर अब बीजेपी ने उसका आगाज कर दिया। 2 दिन के दौरे पर होंगे जो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में मेरठ सहारनपुर का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि आज वो मेरठ में है जहां पर योगी आदित्यनाथ यानी सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, और वहीं उसके बाद वो सहारनपुर जाएंगे जहां पर वो कार्यकर्ता के घर पर भोजन करेंगे और उसके बाद कई पदाधिकारियों से कई लोगों से उनकी मुलाकात भी होने। 2 दिन के दौरे पर नितिन नवीन इस समय आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूपी में है, और इस समय ना सिर्फ उनका पूरा फोकस होगा वहां पर पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने का, बल्कि इसके अलावा वो लगातार वहां पर संगठन में कई बदलाव, कई बड़ी आप कह सकते हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि आज नितिन नवीन मेरठ में, उसके बाद वो सहारनपुर जाएंगे जहां पर वो पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं पार्टी की, और शाम को वो एक कार्यकर्ता के घर पर भोजन करेंगे। उसके बाद कल सुबह कहा जा रहा है कि कई पदाधिकारियों के साथ सहारनपुर में वो मुलाकात करेंगे, उनसे बैठक करेंगे, उनसे समीक्षा देखेंगे, और चुनावों को लेकर वेस्टर्न यूपी में खासतौर पर बीजेपी की क्या रणनीति होगी इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अब आपको मेरठ की तस्वीर है जहां पर आज आपको बता दें कि नितिन नवीन के साथ साथ खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मेरठ में मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो वेस्टर्न यूपी के अंदर खासतौर पर इन इलाकों के अंदर अपनी बढ़त बनाए। मेरठ, सहारनपुर और ये तमाम इलाके वो हैं जहां पर आज नितिन नवीन अगले 2 दिनों के लिए यानी आज और कल वहां का दौरा करेंगे, बैठकें करेंगे। और देखिए खासतौर पे ऐसा नहीं है बीजेपी अपनी रणनीति पे काम कर रही है, आरएलडी ने भी अभी से काम करना शुरू कर दिया। आरएलडी को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि आरएलडी प्रमुख यानी जयंत चौधरी के साथ क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुलाकात हुई है, इसकी तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक बात नहीं की गई है। लेकिन आकलन ये कहा जा रहा है, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद शमी आरएलडी में शामिल हो सकते हैं या फिर उनकी टिकट पर लड़ सकते हैं अमरोहा से, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई औपचारिक बयान, कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस तस्वीर के आ जाने के बाद से ही अटकलें ज्यादा तेज हो गई है, कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जयंत चौधरी ने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसके बाद से ही कई बात सामने आने लगी।
4: मोहम्मद शमी और माननीय जयंत चौधरी जी की मुलाकात को लेकर कई अटकलें चल रही हैं, परंतु मोहम्मद शमी जी स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने भारत के परिश्रम को विश्व स्तर पर लहराने का काम किया, और माननीय जयंत चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मोहम्मद शमी जी के गृह जनपद में माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी सांसद निधि से 1.5 करोड़ रुपए से स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप करने का काम किया है, और माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी 100% निधि को खेल के लिए डेडिकेट किया हुआ है। मोहम्मद शमी जी उसी के लिए धन्यवाद करने आए थे माननीय जयंत चौधरी जी का, परंतु उसके राजनीतिक मायने निकालना ये मुझे लगता है कि गलत है, परंतु मोहम्मद शमी जी भी भारत के नागरिक हैं, अगर वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं तो इसके अंदर लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, तकलीफ क्यों हो रही है, हमें समझ के परे।
0: और देखिए बीजेपी और आरएलडी के बाद अब बात करते हैं ओबीसी की। दरअसल ओबीसी भी लगातार 2027 के चुनावों में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, वहां पर लगातार सक्रिय हैं। और इसी बीच देखिए उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया और ये कहा जा रहा है कि ओबीसी की तरफ से अखिलेश यादव को ऑफर दिया गया है और कहा ओबीसी की तरफ से कहा गया कि वो कोई भी आप कैसे गठबंधन करना चाहे, जो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए या फिर बीजेपी को यूपी में रोकने के लिए जो भी पार्टी उनके साथ गठबंधन करना चाहती है वो उसके लिए उन्होंने समय सीमा भी तय कर दिया है, 2 अक्टूबर तक उन्होंने इंतजार करने की बात कही है।
5: यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
0: और देखिए ओबीसी के इन बयानों के बाद लगातार हमारे सहयोगी राहुल गौतम ने बात की है सहारनपुर से नेता के साथ, आपको दिखाते हैं।
6: असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं MIM के, उनका ये कहना है कि हम चुनावों के अंदर बिल्कुल उतरेंगे, पूरी मजबूती से उतरेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गठबंधन हो जाए। आप देंगे उनको न्योता गठबंधन का या फिर आप नहीं चाहेंगे कि वो हिस्सा ना बने?
7: ओवैसी साहब के उतरने से सिर्फ इतना होगा कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, चूंकि बीजेपी अपने गोल के ऊपर लगी हुई है। बिहार में क्या हुआ, 6 MLA जीत गए, 7 जीत गए, 8 जीत गए, यहां 10 जीत जाएंगे। सरकार बीजेपी के बन जाए तो 10 MLA किसी काम के भी नहीं है। बिहार में क्या कर पाए, वो कुछ कर पाए बिहार में क्या?
6: बिहार में भी वो कह रहे थे कि आप गठबंधन कर लीजिए।
7: बिहार में कुछ देखिए, उनके गठबंधन का मतलब दूसरा भी है, मुसलमान मुसलमान से राजनीति नहीं होगी। मोदी जी ने मुसलमानों का मुगालता दूर कर दिया कि तुम्हारे बिना सरकार नहीं बनती, वो तुम्हारे बिना ही सरकार बना रहे हैं, तो इसलिए इस मुगालते को दूर कर दो। हमें दूसरे साथियों को आगे रख करके मुसलमान को खामोशी के साथ पीछे चलना चाहिए। और भैया इनसे मुक्ति पाओ, इनसे मुक्ति नहीं पाएंगे तो हमारी मस्जिदें टूटेंगी, हमारे ही डंडे चलेंगे, हमारी गोली लगेंगी। और किस पे तशद्दुद हो रहा है, सबसे ज्यादा तो हम पर होता है, फिर दलितों पर होता है।
0: और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं राजभर के उस बयान को लेकर जिसने पूरे यूपी की सियासत में घमासान मचा दिया। दरअसल देवरिया के एक इवेंट में उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से होंगे और जब भी ये 4 हिस्से होंगे उसमें मुख्य रूप से जो दूसरा हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा होगा, उसका मुख्यमंत्री राजभर का या फिर आप कह सकते हैं निषाद पार्टी से ही होगा।
8: मंशा है आने वाले दिनों में प्रदेश का बंटवारा होगा, प्रदेश का 4 भागों में बंटवारा होगा। जिस दिन पूर्वांचल राज्य अलग होगा, सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री कोई जाति का होगा तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री पूर्वांचल का होगा। इसको ध्यान में रख करके काम करना, किसी के बहकावे में आकर के कि सपा में चले जाओ, बसपा में चले जाओ, कांग्रेस में चले जाओ, तो 60 साल तो कांग्रेस ने शासन किया, 4 बार बसपा ने, 4 बार सपा ने शासन किया, हमको आपको दिया क्या? कुछ दिया हो तो बताओ।
0: और देखिए यूपी की सियासत गर्म होती जा रही है, इसको लेकर बयानबाजी भी लगातार आ रही है। अब इसी के बीच एक कई बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आए, आइए आपको सुनाते हैं।
9: हमें कोई मंत्री बनने से रोक पाएगा? बताइए, हम पूरे जिलों के साथी हैं तो बड़े मंत्री हम भी बनेंगे, काम करेंगे, कल आपको नौकरियां मिलेंगी, ये जिले का विकास होगा, जेसीबी वाले डॉक्टर वाले खूब पटवे वाले बेचे लगातार बेचे हो जाए भाई, कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे ना, बताइए तभी तो काम होगा, मैं नहीं कहा मतलब।
0: और देखिए इस बयान के ऊपर खासतौर पे यूपी के मंत्रियों के भी बयान आने शुरू हो गए हैं, दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
10: देखिए समाजवादी पार्टी के सोच को पहले से ही उजागर कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जब बनेगी तो लूट खसोट, डकैती, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होगी। माननीय जोगी जी ने 2017 से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त एक उन्होंने शासन दिया है। ये लोग आप देखिए, बनने से पहले ये लोग इस तरह के जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है कि ये लोग सत्ता में आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, इसलिए इन लोगों को सत्ता अब कभी नसीब नहीं होने वाली, क्योंकि प्रदेश की जनता यहाँ पर अमन चैन का वातावरण चाहती है, प्रदेश की जनता विकास चाहती है।
0: और चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे यूपी की सियासत में घमासान मच गया। खुद योगी आदित्यनाथ ने उनको लेकर बयान दिया, उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीयता पर लगातार उनको उनके बयानों को लेकर उन्हें खड़ा किया है गडकरे में। आइए आपको दिखाते।
11: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: और आइए अब आपको सुनाते हैं आखिरकार हामिद अंसारी ने नूरानी में

0: In an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words: "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
1: और देखिए, इस बयानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उमर इलियासी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
2: इमाम साहब, आपने भी वो बयान जरूर देखा होगा जिसमें हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि राइट विंग कम्युनिज्म देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप इसको किस तरह से देखते
3: हैं? देखिए, उनका कोई ये नया बयान नहीं है, उन्होंने पहले भी इस तरह के कंट्रोवर्सी बयान पहले भी दिए और उसके बाद अब इन्होंने फिर दोबारा से इस तरह का एक कंट्रोवर्सी बयान फिर दिया है। पहली बात तो यह है कि हम उनके इस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज उन्हें मुसलमान याद आ गया। जब वो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे तब वो सेकुलर थे, आज उन्हें मुसलमान याद आ गया। जिस तरह से उन्होंने ये जो बयान दिया है, अब मुसलमान उनकी या किसी की भी सियासत में बातों में आने वाला नहीं है। ये बयान भड़काने वाला बयान है, ये बयान गुमराह करने जैसा बयान है। आज जब उनके पास कोई मुसलमान मिलने तक नहीं जा रहा, तब उन्होंने ये सोचा कि फिर मुसलमानों पे सियासत की जाए।
2: क्या आपको लग रहा है कि सनातन परंपरा का ये अपमान है जिस तरह की बातें हामिद अंसारी कर रहे हैं? क्योंकि ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही।
3: इस्लाम का मानने वाला सनातन धर्म हो या किसी धर्म की बुराई कर ही नहीं सकता। इस्लाम कहता है लकुम दीन हुकुम वाले दीन, तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। सनातन को उन्हें पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है ना तो उन्होंने सनातन को समझा है। तो मेरी सलाह है हामिद अंसारी जी को कि एक बार जरा सनातन को पढ़ के देख लें, सनातन है क्या।
1: और चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और बात करते हैं दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ खबरों की, जिसको लेकर बवाल भी मचा हुआ और जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई बड़े लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस लगातार कई रेक्टिफिकेशन, कई चीजों की जानकारियों को दुरुस्त करने के लिए जारी किए गए थे, जिसमें कई लोगों के नाम शामिल है, जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी है मनीष सिसोदिया, इसके अलावा निर्देशक सीबीआई प्रवीण सूद है, अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता है, कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद है और कांग्रेस के नेता, इसके अलावा पूर्व सेनाध्यक्ष का भी इसमें नाम शामिल है, पूर्व डिप्टी पीएम लालकिश अडवाणी भी है, विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव है और कई ऐसे लोग हैं जिनके नामों को लेकर अब सवाल जवाब या फिर इसको लेकर घमासान मचा हुआ है।
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत हैं, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया? मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
5: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है।
1: चलिए, न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय

0: पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक
3: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: In association with
10: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
11: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
12: There is a very famous quote ki history repeat itself.
13: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
14: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
13: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
15: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
16: श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।

हामिद अंसारी के दक्षिणी पंथ सांप्रदायिकता को वामपंथ से बड़ा खतरा बताने वाले बयान पर घमासान। बीजेपी ने की हमलों की बौछार, कहा पूरी तरह मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस। गठबंधन पर ओबीसी को अखिलेश की दो टूक, 2 अक्टूबर वाले ओबीसी का अल्टीमेटम दरकिनार, बोले जो पूर्व में था वही रहेगा। मायावती पर कसा तंज, किसी को रथ का रंग लाल नहीं दिख रहा। राजस्थान के मेयर चुनावों में बीजेपी की बंपर विजय, 5 में से 4 पदों पर कब्जा। पाली, उदयपुर, अलवर, अजमेर में बीजेपी ने मारी बाजी, कांग्रेस के खाते में कई बीकानेर की सीट। आईटी मुंबई में सुसाइड केस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, डीन पद से हटाए गए प्रोफेसर दुल्ला। कैंपस में छात्रों का आज भी प्रदर्शन, पुराने बयानों पर भी प्रशासन ने माफी मांगी। बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की वारदात पर पुलिस का एक्शन, 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले वीडियो बेचैन करने वाला, पॉस्को एक्ट में कार्रवाई की मांग।

0: चलिए न्यूज रूम लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में भगवंत मान सरकार की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। बिजली को लेकर पहले घेरा गया और अब सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ड्रग्स, जहां जिसको लेकर मान सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आत्महत्या खुदकुशी की कई ऐसी घटनाएं सामने आई है या फिर कोशिशें करने का वीडियो ऐसा आया है जिसमें एक बार फिर से मान सरकार को घेर लिया है। हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मान सरकार के लिए दिक्कतें कैसी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ एक और फिर जग्गा सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद मान सरकार पर फिर सवाल खड़े हुए और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों मान सरकार या फिर आप सरकार के खिलाफ आक्रामक होती जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह कि आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक ऐसा केस आया था जिसमें एक शख्स ने अब खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद अब फिर से जग्गा सिंह का ये वीडियो सामने आया। खास बात यह है कि ये दोनों वीडियो संगरूर के हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह क्षेत्र भी है।
1: भाई नाम क्या थोड़ा?
2: जग्गा सिंह जी।
1: केड़ा पिंड दा?
2: नमोई।
1: भाई असल चक्कर की है कि क्यों तुसी ये एक्शन क्यों लिया?
2: एक्शन चिट्टे दी वीडियो पा दी थी जी मैं नेट पे। मैं तो सरपंच ने तां केड़ा मैं जद ने डिलीट करवा दिया।
1: सरपंच दा की नाम भाई?
2: ਸੁੱਕੀ ਬੂਣੀ ਆਈ
1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ
2: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ
1: ਫਿਰ ਇਹ ਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ।
2: ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣਦੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ।
1: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ?
2: ਕਰੀ ਆ ਜੀ।
1: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ?
2: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੀਬੀਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਡੀਬੀਆਰ।
1: ਪਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਭਾਜੀ।
2: ਉਹ ਸਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ
3: ਨੈਟ ਤੇ। ਇਹ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੌਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
4: 7 ਸਤੰਬਰ ਕੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ
3: ਮੇਰੀ ਬੌਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
5: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ?
3: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
4: 20 ਸਤੰਬਰ ਕੋ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋ ਮਾਮਲੇ ਏਕ ਜੈਸੇ ਹੈ।
2: ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆ।
4: गुलजार ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई और अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। जगसीर सिंह ने भी ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई और जहर खाकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं।
1: ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ?
2: ਸੁੱਕੀ ਬੂਣੀ ਆਈ।
1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ
2: ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਯਾਦਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਫਿਰ ਇਹ
4: कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है। नेता नगरी के लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। जगसीर सिंह का मामला भी ऐसा ही है। जगसीर सिंह पंजाब के संगरूर में रहते हैं। रविवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि ड्रग्स सिंडिकेट के लोग धमकाते हैं। जगसीर सिंह ड्रग्स सिंडिकेट के निशाने पर इसलिए आए क्योंकि ड्रग्स बेचते हुए कुछ लोग उनके घर के सीसीटीवी में कैद हो गए। जगसीर ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ड्रग्स माफिया ने जगसीर के घर पर हमला कर दिया, उसका सीसीटीवी तोड़ दिया, सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट करने के लिए धमकाया गया, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद जगसीर ने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
6: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
4: पंजाब में नशा तस्करी गंभीर विषय है। गुलजार सिंह ने भी नशे का मुद्दा पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था और फिर दबाव और धमकियों की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे। उनका बेटा नशे की लत में था, पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गईं, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, उसकी वानगी संगरूर की एक घटना है। गुलजार की जान चली गई और जगसीर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और देखिए, इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। अब इसको लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट भी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
7: मेरे पास जब ये हुआ था, मेरे पास 7 के 8 को मेरे पास पंचायत भी आई, मेरे पास जगह भी आया। मैंने लोकल पुलिस को बोल दिया कि जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक एज पर लॉ कार्रवाई करो, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करो। हमारा काम इतनी तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है।
8: ये डेट क्या है सर, जैसे बिना रेजोल्यूशन डाला?
7: ये डेट तो है जी 30/8/2026।
8: पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक ऑन स्लॉट है, जैसे आप बोल रहे हो कि ट्विटर पे भी ऑन स्लॉट है, आप कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक परसेप्शन वॉर भी चल रहा है इस वक्त पंजाब में।
7: नहीं, ये जेडे चुल्ले दे नाल सेकदे हो उसे चुल्ले दे नाल पंजाब नू किते अग ला बैठो। सो यह बहुत ही शर्मनाक कार है इन्हां सारियां पार्टियां ते इन्हां सारे लीडरां दा, जेड़े के ग्राउंड दे उपर पता कीते बगैर सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार नू, भगवंत मान सरकार नू, आम आदमी पार्टी दी सरकार नू, सानू लोकां नू बदनाम करन दे लई ट्वीट बैठे कर दिंदे ने, ते ग्राउंड रियलिटी जिहड़ी उहदे ऑपोजिट हुंदी है। मैं
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम बस्सी भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। असीम, एक बात बताइए, वैसे तो ड्रग्स का मुद्दा पंजाब में बहुत पुराने, बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसको लेकर सरकारों पे सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये देखिए मुद्दा ना सिर्फ संगरूर का है जो खुद सीएम का गृह क्षेत्र है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है ये भी एक बड़ा कंसर्न है।
9: हाँ डेफिनेटली, क्योंकि संगरूर जो है बेसिकली आम आदमी पार्टी उसको भी राजधानी कहती है पंजाब में, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और पहले मोहनजीत वाली घटना हुई जब उन्होंने काला झंडा दिखाया और उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाई कि पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया जब उन्होंने सीएम से काला झंडा दिखाया। उसके बाद गुलजार सिंह वाला केस हुआ जहां पर उन्होंने हरपाल चीमा से सवाल किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कुछ लोगों ने उनके ऊपर प्रेशराइज किया उनको, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कमिट किया। अब ये इंसिडेंट हुआ है गुलजार सिंह वाला, जिसमें पॉलिटिक्स दोबारा गर्म हो गई है पंजाब में, और अपोजिशन पार्टी लगातार कह रही है कि जो भी लोग नशे का मुद्दा उठाते हैं उनके उत्तराखी कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको पूरा डिफेंड कर रही है, वो कह रही है कि अपोजिशन पार्टी जो है बिना फैक्ट की जाँच किए पॉलिटिक्स कर रही है। अमन अरोड़ा जो कि पंजाब यूनिट आम आदमी पार्टी के प्रधान भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और जहाँ जग्गा सिंह जिस गाँव के रहने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव भी अमन अरोड़ा से है, तो लगातार कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी बिना फैक्ट जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज जो कि संगरूर के एसएसपी रघुवत गोरेवाल ने भी कहा कि जग्गा सिंह के ऊपर 9 FIRs जो हैं वो रजिस्टर हैं, यही बात अमन अरोड़ा ने भी दोहराई, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिना फैक्ट जाने जो है पूरा सरकार के ऊपर जो है ब्लेम थोप देती है, ट्वीट कर देती है और उसको ये कंडेम करते हैं। जी हाँ,
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे सहयोगी देखिए हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरकार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है इस वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश की गई, जग्गा सिंह को दबाव बनाने की कोशिश की गई, इसी वजह से लगातार अब आम आदमी पार्टी की सरकार, मान सरकार इस समय विपक्ष के निशाने पर है।
10: संगरूर में डीसी दफ्तर के सामने खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सियासत छिड़ते देर नहीं लगी। सचिन पायलट ने वीडियो साझा कर मान सरकार पर हमला बोला, बीजेपी ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
11: उनको उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो हैं, ये गिद्ध हैं, ये भारत की राजनीति के गिद्ध हैं और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए शाम तक चुप हो जाए।
10: आप प्रवक्ता का बयान विवादित है, लेकिन इस बयान से ये भी साफ है कि नशे के मुद्दे का असर पंजाब सरकार पर दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने मान सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार कर लिया है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है। वहीं बीते दिनों प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। पहले जगजीत सिंह की खुदकुशी और अब जग्गा सिंह के खुदकुशी के प्रयास के वीडियो पर सियासी विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब सरकार पर विरोधियों का हमला तेज हो गया।
12: संगरूर डीसी के सामने वो गया था कि मुझे मेरे गांव का सरपंच जो आम आदमी का है, पंचायत है, मैं भी 2 साल पहले ये आदमी खुद नशे में लिप्त था, लेकिन ये इसने नशा छोड़ा, इस नशे को त्यागा और ये स्ट्रीमलाइन मेन स्ट्रीमलाइन में आ गया। तो अब इसे, क्योंकि इसने उसकी वीडियो डाल दी गांव की, इसे बोला गया भी इसे डिलीट कर, डिलीट करवाया गया। अब इसके ऊपर केस FIR दर्ज कर रहे हैं भी, ये ड्रग जो है सारे गांव में बेच रहा है, ये अनाम मिल रहा है कोई अगर, क्योंकि ये बीजेपी की यात्रा शुरू हो चुकी है और लोग आगे आके हिम्मत करके लोग का बताने लगे हैं भी किस गांव में कौन नशा बेच रहा है, कर रहे हैं। लेकिन सरकार, आम आदमी पार्टी एक नेक्सस है जो आज गैंगस्टर जो ये नशा बेचते हैं और आम आदमी पार्टी का, ये नया एक कॉम्बो बना है, नया कॉम्बो काम कर रहा है, ये आम आदमी पार्टी नहीं रही।
13: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
0: और देखिए, पंजाब के बाद एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मेरठ में सीएम योगी खुद मौजूद हैं, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
14: और फिर ये होने लग गया कि साहब मेरा क्या, मेरा क्या, राजनीति में यह विषय एक महत्वपूर्ण हो गया राजनीतिक दलों के लिए, यह एक मुद्दा प्रासंगिक हो गया कि राजनीति में आने का मतलब अपना उल्लू सीधा करना है, अपने हितों को साधना है, उसके लिए एन केन प्रकारेण जो कुछ भी करना हो। अकेले भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र दल है जिसने कहा कि मुझे क्या नहीं, इस पर नहीं, मुद्दा इस पर होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं। व्यक्ति से बढ़कर दल और दल से बढ़कर के राष्ट्र, व्यक्ति से बढ़कर दल और दल से बढ़कर देश, एकमात्र दल है वह है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है नहीं मेरा सब कुछ देश के लिए होगा। और देश के लिए होने का परिणाम क्या होता है, जो लोग कहते थे कि मुझे क्या, मुझे क्या, ये मंथरा बुद्धि है। मंथरा बुद्धि का मतलब कोहो नृप होई मुझे कहानी, यानी कोई भी बने मुझे क्या हानि होगी, यानी यह बुद्धि क्या कराती है, यह बुद्धि आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती है। यह बुद्धि यहां से प्लान करवाती है, यह बुद्धि यहां के विकास को बाधित कराती है, यहां के अन्नदाता किसान को प्लान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है, और यह बुद्धि हमेशा ऐसी परिस्थितियां खड़ी करती है जहां पे लोगों के लिए घुटन पैदा होती है। याद करिए, मुझे क्या का जो भाव है, इसी भाव ने तो देश के पुण्य क्षति पहुंचाई थी। देश गुलाम हो गया था, देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। उन्होंने हर एक को उसी भाव के साथ देखने का प्रयास किया, लेकिन आपको परिवर्तन दिखा होगा 2014 में, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वे नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया था। एक नए भारत का दर्शन, एक नया भारत हम सबको देखने को मिलता है। एक भारत जो अपनी विरासत पर भी गर्व करता है और विकास के लिए जिसकी अपने की स्पीड है। एक ऐसा भारत जिस भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके चलता है, दुनिया के आंख से आंख मिलाकर के बात करता है, और अगर किसी ने भारत को चुनौती देने का दुस्साहस किया तो उसकी माद में घुस करके उसको मारना भी जानता है। ये नया भारत अब हम देख रहे हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था बॉटम फाइव से टॉप फाइव में आ गई है। दुनिया के अंदर टॉप फाइव में भारत है। पहले नीचे से पांचवें नंबर पर भारत आता था, पहचान का संकट होता था, लोग सब की निगाहों से देखते थे, हर और एक संकट का प्रश्न था। भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था। लेकिन अब नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह समाप्त करने की इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रहा है और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है, और उसकी परिणति हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और जो लोगों के लिए असंभव था वो मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण, मथुरा वृंदावन सज रहा संवर रहा है। और यही नहीं, हमने तो भागवत भूमि को भी सुख तीर्थ के भी पुनरुद्धार का जिम्मा लिया है, वहां पर भी हमारी कार्य योजना चल रही है। और यही नहीं, हमने विदुर कोटि के लिए भी धनराशि आवंटित की है। याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं, इन लोगों ने कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कांवड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कांवड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको यालुम है, मैं स्वयं आता हूं कांवड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता, और कोई मेरठ की क्रांति धारा को अपमानित भी नहीं कर सकता। अब कट्टार बंदूक की राजनीति यहां नहीं कर सकता कोई। हमारे युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां से एक घंटे की दूरी पर बन करके तैयार हो गया है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में यहां की बेटी पारुल चौधरी भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आती है।
0: सीएम योगी को आप सुन रहे थे। मेरठ में ना सिर्फ वो जेवर एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे बल्कि कई और चीजों के बारे में भी जिक्र करते थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं, जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया उनका भी वो अपमान करते हैं।
18: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है और ये सेल्फगोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। दरअसल 6 मेडल अपने नाम भारतीय खिलाड़ियों ने किए, जिसमें से 4 सिल्वर मेडल है। सबसे खास प्रदर्शन, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन शूटर्स ने किया। इसके बाद दूसरा प्रदर्शन या फिर अच्छा प्रदर्शन हमारे जो मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने किया। वहीं दूसरी तरफ जो महिला हॉकी टीम है उसने भी एक बड़ी बढ़त इंडोनेशिया को हराकर अपनी दर्ज की और अपना प्रदर्शन बरकरार रखा है। इसके अलावा कबड्डी में मेंस खिलाड़ियों ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया है।
15: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: पानी के बिना जिंदगी कैसी होगी, क्या कभी सोचा है? इसी देश में ऐसे गांव भी हैं जहां पानी भरने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज उसी गांव में बस टोटे घुमाइए और पानी बहने लगता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आजादी के 79 साल बाद लहुरिया द में हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंच चुका है। विंध्य की पहाड़ियों पर बसे करीब 1500 लोगों का ये गांव कभी पानी के लिए जंगल और पहाड़ नापता था, कभी रात रात भर लाइन लगानी पड़ती थी।
20: जेकर दिन करा तो दिन कठोले न रात भर झिन्ना में पावली भाई टोटी आज तब लगे न पावे लगा न झिन्ना में बसे डारी।
19: गर्मी में हालात इतने खराब हो जाते थे कि टैंकर से हर परिवार को सिर्फ 15 लीटर पानी मिलता था, लेकिन जल जीवन मिशन की हर घर नल योजना के तहत 31 अगस्त 2023 को पहली बार इस गांव में नल से पानी पहुंचा।
21: हम लोग पानी के दरी जाते हैं, झिन्ना जाते हैं, फिर वैसे उड़ जाते हैं, ले आते तो पीते हैं। 3 साल से पानी आवा थी, अब घरे टोटी चालू को भरी थी।
19: पानी पहुंचने से सबसे ज्यादा राहत गांव की महिलाओं को मिली। क्षमा देवी बताती हैं कि
21: अब हो गया सही है, पानी वानी आ रहा है ना।
19: दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के गांवों में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन लगाए गए। मार्च 2025 तक यूपी में 2,36,00,000 से ज्यादा घरों तक नल वाला पानी पहुंच चुका है। राज्य भर में करीब 5,07,479 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। जो गांव कभी प्यास की पहचान था, आज वहां हर घर में पानी की आवाज सुनाई देती है।

0: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधु, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिला है। और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में एसआईआर के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
1: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
0: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग के इस बयान के बाद भी सियासत तेज होती जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच दिग्गजों को नोटिस पर नई लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।

पश्चिमी यूपी से विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा हमला, बोले एसपी बीएसपी ने परिवारवाद को बढ़ाया, कांग्रेस ने जातिवाद की बीमारी दी, बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद प्रथम। गठबंधन पर ओवैसी को अखिलेश की दो टूक, 2 अक्टूबर वाले ओवैसी का अल्टीमेटम दरकिनार, बोले जो पूर्व में था वही रहेगा। मायावती पर कसा तंज, किसी को रथ का रंग लाल नहीं दिख रहा। राजस्थान के मेयर चुनाव में बीजेपी की बंपर विजय, 5 में से 4 पदों पर कब्जा पा ली। उदयपुर, अलवर, अजमेर में बीजेपी ने मारी बाजी, कांग्रेस के खाते में गई बीकानेर की सीट।

आज भी प्रदर्शन, पुराने बैन पर भी प्रशासन ने मांगी माफी। बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की वारदात पर पुलिस का एक्शन, 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले, वीडियो बेचैन करने वाला पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की मांग।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। अब शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में 100 शहर 100 खबर। आईआईटी बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला डीन पद से सस्पेंड। साहिल बाकुड़े की आत्महत्या के बाद आईआईटी बॉम्बे में प्रदर्शन। प्रोफेसर दुल्ला को सिर्फ डीन पद से हटाया गया। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के प्रदर्शन का वीडियो आया सामने। डायरेक्टर मांगों पर सहमति जताकर हस्ताक्षर करते दिखे। आईआईटी बॉम्बे केस में डायरेक्टर शिरीष केदारे ने छात्रों की 18 मांगे माने। साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट सबके सामने आया। आईआईटी छात्र की मौत पर बीजेपी विधायक राम कदम का बयान। बोले कि इस पर सियासत के मुद्दे से कैसे बनाया जा सकता है। सभी दलों को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। 2027 यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी में बीजेपी ने तेज की संगठनात्मक कवायद। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय मेरठ का दौरा। नितिन नवीन के दौरे में पहला दिन मेरठ में शक्ति केंद्र प्रभारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर लेंगे फीडबैक। मेरठ में नीति नवीन की संगठनात्मक बैठकें। पूर्व पदाधिकारियों सांसदों विधायकों से करेंगे चुनावी रणनीति पर चर्चा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने जयंत चौधरी से की मुलाकात। तस्वीर सामने आने के बाद कई तरह के कयास। मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला। पीडीए रथ के भगवा रंग पर उठाए सवाल। बोले कि वोटों के स्वार्थ में लगातार रंग बदल रही है सपा। केवड़िया की रैली में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। दावा कहा कि जल्दी 4 हिस्सों में बटेगा उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल बना तो राजभर समाज का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। राजभर पर बरसे सपा प्रवक्ता सुनील सार्जन। बोले बीजेपी बंटवारे की राजनीति कर रहे। मायावती ने कहा कि किसके दबाव में फैसले बदल रहे हैं बहन जी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 4th एडिशन 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन। निर्यात और निवेश पर सीएम योगी का फोकस। बोले यूपी से 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निर्यात, 15 लाख करोड़ का निवेश तो जमीन पर उतरा। जयंत चौधरी के समर्थन में उतरे ओवैसी। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल उठाकर बोले कि ऐसी बयानबाजी गलत। कानपुर में ओवैसी का बड़ा बयान। बोले कि यूपी में बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं बनने देना और सभी दल AIMIM के साथ हाथ मिलाएं। ओवैसी ने गठबंधन पर कहा 2 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। जिसके साथ गठबंधन होगा उसी दिन करेंगे ऐलान और यूपी चुनाव लड़ेंगे साथ। यूपी में अगले 6 महीने हर हफ्ते बटेंगे सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र। सीएम योगी का ऐलान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याएं सुने और आश्वासन भी मिला। समाजवादी पार्टी महासचिव इंद्रजीत सरोज का बयान। बोले 2027 में सरकार बनी तो मंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। संगरूर में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकी और प्रताड़ना का आरोप। जग्गा सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जग्गा सिंह का वीडियो किया जारी और कहा कि आवाज उठाने पर धमकियां मिल रही हैं और प्रताड़ना का आरोप। पंजाब में नशे के मुद्दे पर मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप। बोले कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ड्रग माफिया को पूरा समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और नितिन नवीन पर तंज। बोले कि नशे के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत पंजाब से नहीं बल्कि मुंद्रा पोर्ट से होनी चाहिए। नशा मुक्ति यात्रा से पहले श्री दमदमा साहिब पहुंचे। पंजाब प्रभारी बीजेपी के सतीश पूनिया कहा कि बीजेपी की डेडलाइन सिर्फ पंजाब नहीं पूरे देश से नशे का खात्मा करना है। डीडीसी ब्रजेश पाठक का बयान। बोले कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े छात्रों के समस्याओं पर चर्चा की गई, जल्दी समाधान का काम भी करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों का उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमित करने की मांग उठाई गई। विरोध के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। बिजली दरों और कर्मचारियों के मुद्दों पर जताया विरोध। तेलंगाना में एमएलए डी नागेंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की। तमिलनाडु के सीएम विजय की लंदन यात्रा पर अन्नमलाई का तंज। बोले कि लंदन यात्रा गैर जरूरी निवेश के लिए यूके की अर्थव्यवस्था में दम नहीं है। अन्नमलाई ने कहा कि लंदन की जगह मदुरई या कोयम्बटूर जाते सीएम। विजय अजीत और त्रिशा की तस्वीर पर भी उनका बयान। के शोभा रेड्डी बोले कि मेरे मुद्दे पर राजनीति रंग ना दिया जाए। किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। महिला ने मुद्दा उठाया है तो उसकी परेशानी की गंभीरता देखी जाए। केरल में आज कोटायम, अलापुझा, अर्नाकुलम और त्रिशूर में बारिश का रेड अलर्ट, प्रशासन के एडवाइस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई है आज। बिहार के जमुई में नाबालिग लड़के लड़की के साथ भीड़ ने की बदसलूकी की घटना की तस्वीरें आई सामने। जमुई मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने लिया संज्ञान। जमुई मामले पर गरमाई सियासत, भीड़ के बर्ताव पर जेडीयू का प्रवक्ता नवल शर्मा बोले कि बिहार में मॉब जस्टिस नहीं चल सकता। जम्मू में प्रेमी जोड़े के साथ भीड़ के बर्ताव पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कुंतल कृष्ण ने घटना को बताया शर्मनाक, कहा कि जो भी दोषी होगा एक्शन होगा। जम्मू की घटना पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, प्रवक्ता एजाज अहमद बोले कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, शासन प्रशासन पंगु बन चुका है। दिल्ली एसआईआर की सूची में कई बड़े नामों को नोटिस, इसमें चुनाव आयुक्त एस एस संधु, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नाम। एसआईआर के घेरे में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद, पूर्व थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के परिवार को भी मिला नोटिस। एसआईआर नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं होता, 29 अक्टूबर तक बीएलओ के पास दस्तावेज जमा करा सकते हैं मतदाता और 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाली, अब 30 सितंबर को सुनवाई। वायनाड पहुंचेंगे प्रियंका गांधी, चौकट फ्लैश फ्लड प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। हनुमानगढ़ राजस्थान निर्दलीय विधायक गणेश राज को पुलिस या रिमांड, 25 सितंबर तक पुलिस की रिमांड मिले। कौशाम्बी में अतीक अहमद के बेटे अली के काफिले में तलाशी और एजम के पूछताछ के बाद छोड़ा गया। यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में इंदौर में व्यापारियों का नो यूपीआई डे, 23 सितंबर से जो है 2000 से ज्यादा का भुगतान वो यूपीआई से नहीं लेंगे। मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट रेस्टोरेंट में टेबल पर मिला कॉकरोच, डिनर के दौरान टेबल पर घूमता दिखा कॉकरोच, वीडियो वायरल। जोधपुर में लॉरेंस और आरजू बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर गिरफ्तार, एजीटीएफ और जोधपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दबोचे गए। मधेपुरा में चलती कार में लगी भीषण आग, 81 बोतल विदेशी शराब इसमें से बरामद, आरोपी फरार। अकोला में पुराने रंजिश को लेकर दो गुटों में झड़प, गाड़ियों में तोड़फोड़, लोगों ने जमकर किया पथराव। रायसेन में स्लीपर बस और डंपर की जबरदस्त टक्कर, बस कटर से काटकर चालक को निकाला गया बाहर, 9 यात्री घायल। पटना में नशे की हालत में बेटे ने अपनी मां को जिंदा जलाया, गिरफ्तार करने के लिए गए पुलिस के साथ भी मारपीट। वैशाली में एक बार फिर से वर्दी पर उठे सवाल, नशे के सौदागरों से सांठगांठ रखने वाले थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हैदराबाद में 10 रुपए के विवाद में ऑटो ड्राइवर को उतारा गया मौत के घाट, इलाज के दौरान दौड़ा दम। हैदराबाद में लिफ्ट और दीवार के बीच में फंस गया शख्स, 90 मिनटों के बाद हुआ रेस्क्यू, बाल बाल बची जान। बेतिया में गर्भवती की मौत के बाद से बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने अवैध हॉस्पिटल को किया सील। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, कई घायल। बांकुरा में पुलिस ने 275 किलो गांजा बरामद किया, 1 गिरफ्तार, 1 फरार। बंगाल एसआईआर पर ईसीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, वोट डिलीट होने से चुनावी नतीजों पर असर के दावे को खारिज किया गया। एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन के दावे को गलत और अटकलों पर आधारित बताया, ज्यादा एसआईआर ट्रिब्यूनल बनाने की मांग। बंगाल में एसआईआर के तहत अब तक 38 लाख से ज्यादा अपील, लगभग 1.25 लाख मामलों पर ट्रिब्यूनल का फैसला, 1,13,000 नाम वोटर लिस्ट से वापस हुए। विजयनगर उपचुनाव से पहले हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, पुलिस पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप, कहा कि आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। डीएससी 2025 में कथित गड़बड़ी के खिलाफ वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन, विजयवाड़ा में फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आरोप लगाकर सरकार को घेरा, सीबीआई जांच की मांग। गुजरात के अमरेली में कच्चे तेल से भरा हुआ टैंकर अचानक पलटा, हादसे के बाद से बड़ी संख्या में लोग तेल भरने के लिए पहुंचे। गढ़वा में पहले बाइक लूट, फिर एमपी में ज्वेलरी शॉप पर डकैती, और गढ़वा में एमपी और यूपी तक अपराधियों का नेटवर्क, पुलिस का खुलासा। अलंकेश्वर में नशीले इंजेक्शन के बाद 4 में से 2 युवकों की मौत से हड़कंप, जांच कर रही पुलिस। झांसी में एक हत्याकांड में 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी। सहारनपुर नकली करेंसी कांड में एनआईए का बड़ा एक्शन, दो और आरोपी गिरफ्तार। लगभग 18 करोड़ रुपए के जाली नोटों की खंगाली जा रही कड़ी। आईएनएस एड्री और आईएनएस कुलिश फिलीपींस पहुंचे, दोनों ही युद्धपोत। एडीएमएम प्लस ज्वाइंट कोऑपरेटिव कनेक्टिविटी में लेंगे हिस्सा। संयुक्त अभ्यास में आसियान देशों के साथ 8 अन्य देशों की नौसेनाएं होंगे शामिल, समुद्री सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाना मकसद। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अभ्यास में ले रहा है भाग, समुद्री सुरक्षा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर। इस यात्रा से भारत फिलीपींस समुद्री संबंध भी मजबूत होंगे और नौसेनाओं के बीच में पेशेवर सहयोग बढ़ाने का मौका मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, पोखरण में केएल ड्रोन का सफल परीक्षण, 8 घंटे की उड़ान और 1000 किलोग्राम की मारक क्षमता। फिल्म हनुमान अंश की शानदार कमाई, 45वें दिन लगभग 14 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म हनुमान अंश ने 45वें दिन भारत में लगभग 272 करोड़ रुपए की कमाई की और दुनिया भर में लगभग 330 करोड़ रुपए तक ग्रॉस कलेक्शन। छोटे बजट में फिल्म बनी हनुमान अंश, लगभग 2 करोड़ रुपए का इसका बजट था। अली फजल, पंकज त्रिपाठी, स्टार अब मिर्जापुर ने भारत में 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा किया पार और 4 सितंबर को रिलीज हुई थी। रश्मिका मंदाना का नजर आया एक्शन अवतार, फिल्म मैसा का टीजर आया सामने, मचा धमाल। अगले हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका का करेंगे दौरा, 24 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप से हो सकती है मुलाकात, चीनी विदेश मंत्री ने दी जानकारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर की बात, कहा कि हम न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमत हुए हैं, ये मुलाकात बहुत कुछ बदल सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास में एक वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद लगी भीषण आग, रूसी ड्रोन ने वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने संसदीय चुनाव के शुरुआती नतीजे घोषित किए, राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया 57.54% वोटों के साथ सबसे आगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि उनके देश ने एक साथ लड़ने और बातचीत का रास्ता चुना है, दुश्मन को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है। कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही ठप होने के लिए कुछ विस्तार प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है और जरूरी उपकरण देश नहीं पहुंच पा रहे। सीरिया में अलेप्पो प्रांत में अल एस शहर में कई धमाके, सीरिया रक्षा मंत्रालय ने एक हथियार डिपो में विस्फोट की पुष्टि की। कनाडा और फ्रांस अंतरिक्ष रक्षा ऊर्जा और व्यापार में बढ़ाने पर सहमत हुए, दोनों देशों के बीच में रणनीतिक संबंध को और मजबूत करने पर सहमति। अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए अभियान पर इमिग्रेशन एजेंट्स ने एक और शख्स को गोली मार दी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दक्षिण अफ्रीका में डिफेंस शो, देश में बने हुए मिलिट्री एयरक्राफ्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी, लड़ाकू विमान हैरत अंगेज करतब दिखाते नजर आए। एशियन गेम्स 2026 का दूसरा दिन, आज पहले दिन भारत के हिस्से में 2 मेडल आए और आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत को एशियन गेम्स 2026 में 3 मेडल हुआ हासिल और मेंस 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मिला। मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मेडल मिला, 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में सुचिता तरियाल ब्रॉन्ज जीती। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर तो रुद्रांश को मिला ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स के पदक तालिका में फिलहाल भारत 10वें नंबर पर और अब तक भारत के खाते में 6 मेडल। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले की, उस मामले में कार्रवाई जा रही है और अब बड़ी खबर आपको ये दे दें कि डीन पद से प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला सस्पेंड हुए हैं, उनको डीनशिप से सस्पेंड किया गया है, तो डीन पद से ही सस्पेंड किया गया। और छात्र साहिल वाकुडे की हत्या के मामले में आत्महत्या के बाद से बवाल मचा हुआ था, इस बीच में प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की सुसाइड केस के बाद प्रोफेसर सूर्य नारायण पर कुछ इल्जाम लगे, आरोप लगे। जो छात्र का परिवार है, उनके माता पिता हैं, वो जातिवाद के आरोप, प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच में अब यह डीन पर एक्शन हुआ है, उनको उनकी डीनशिप चले गए, डीन पद से उनको हटा दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस में एक और बड़ी खबर है। सुसाइड केस में आईआईटी बॉम्बे ने माफी भी मांगी है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करके माफी मांगी गई है। साहिल की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में ये मौत हुई है। इस बारे में उन्होंने लिखा कि हमारे पिछले संदेशों में जो बातें कही गई उसके लिए हम माफी मांगते हैं और इस घटना से जुड़ी जानकारी और हालात की जांच अभी संबंधित अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और चल रही जांच को देखते हुए उसकी मौत से पहले हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देना या उसके बारे में कोई भी राय बनाना सही नहीं था, क्योंकि अभी तक जांच की सही प्रक्रिया में ये बातें पूरी तरह साबित नहीं हुई थी। ये आईआईटी बॉम्बे ने कहा। अब प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि पिछले एक साल में 3 दलित छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। आज तक ने आयशा से जुड़ी मुंबई यूनिवर्सिटी की छात्रा सना सलीम से बातचीत की।
1: The immediate demand is resignation. हमें जितने भी professors involved थे उन सबके resignation चाहिए। जो director है, जो dean है, हमें उनके resignation चाहिए। हमें accountability चाहिए कि आपने ऐसा किया है, आपने क्या ऐसा किया है कि 3 दलित students ने पिछले एक साल में suicide कर लिया। आपके यहाँ पर ऐसा क्या arrangement है academia का कि लोग इतना pressure में है, इतने pressure में कि लोग ये सारे इतने tragic और इतने इरिवर्सिबल choices कर रहे हैं। तो हमारा सबसे इमीडिएट रेजिग्नेशन ही हमारा गोल है। एंड उसके बाद से देयर नीड्स टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी अंदर जो विच टॉक्स अबाउट द स्टूडेंट्स, विच टॉक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। मेंटल हेल्थ के लिए किसी को यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के साथ टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वेन दे आर

0: खुदकुशी हुई या जातिगत उत्पीड़न की वजह से छात्र ने जान दी। आईआईटी छात्र साहिल वाकोड़े की खुदकुशी का मामला गर्म है। शिवसेना यूपीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।
1: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है। नकल भी नहीं होने देना है और किसी की आत्महत्या भी नहीं होने देनी है। दोनों को समान लेकर हमें चलना है, एक आदर्श भारत बनाना है, एक आदर्श शिक्षक और आदर्श विद्यार्थी बन के बनाना है। पता नहीं कौन लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। जब तक पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आता, किसी पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। हम तो उस मृत बच्चे के प्रति भी संवेदना प्रकट कर रहे हैं और उस शिक्षक और डायरेक्टर के प्रति भी कर रहे हैं कि जो इस समय एक प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दुर्भाग्य है।
0: द बीजेपी के नेता राम कदम का कहना है कि किंतु परंतु छोड़िए, सभी दलों को पीड़ित परिवार के साथ आना चाहिए।
2: आईआईटी में वहां के छात्र ने खुदकुशी की और खुदकुशी का मामला सामने आने के बाद परिवार ने कुछ बिंदु पर शक जताया। सरकार ने पूरी जांच पुलिस को करने के लिए निर्देश दे दिए। अब पुलिस जांच कर रही है, पर दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है। मां ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
3: वहां जो कुछ हादसा है उसकी मतलब जांच होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को भी अगर जो आईआईटी पे आए आगे चल के बनानी है, वो बच्चे अगर जाति पाति पे करते तो अगर उसकी जांच होनी चाहिए, उनको शिकारा चाहिए। ये नहीं चलेगा। हर एक को साथी हाथ बड़ा ना साथी रहे। एक अगर अपना नीचा हुआ एक लड़का है तो उसको हाथ देकर ऊपर लाना है।
0: और अब रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: GK Max.
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: GK Max. Best putty.
10: JK Wall Max.
8: Best paint.
11: JK Max.
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
13: आगे आगे.
14: अरे उधर
13: उधर किधर?
14: Correct correct.
15: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: यार लोन भूल गया। मैरी
17: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
18: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
16: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
18: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
19: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन। There's nothing small about it.
16: Ujjivan, nothing small about us.
20: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
21: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबा केसरी।
5: There is a very famous quote ki history repeat itself.
6: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that history is repeating.
7: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
6: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: का विपक्ष पर बड़ा वार, एसपी बीएसपी ने बढ़ाया परिवारवाद, कांग्रेस ने दिया जातिवाद, बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद प्रथम। गठबंधन पर अखिलेश यादव की ओवैसी को दो टूक, कहा जो पहले था वही रहेगा। मायावती पर भी कसा तंज, किसी को रथ का लाल रंग नहीं दिख रहा। राजस्थान मेयर चुनाव में बीजेपी की बंपर विजय, 5 में से 4 पर कब्जा, कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से करना पड़ा संतोष। आईआईटी मुंबई में सुइसाइड केस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, डीन पद से हटाए गए प्रोफेसर दुल्ला, कैंपस में छात्रों का आज भी प्रदर्शन, पुराने बयान पर भी प्रशासन ने मांगी माफी। बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की वारदात पर पुलिस का एक्शन, 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार, राहुल गांधी बोले वीडियो बेचैन करने वाला, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पहले पंजाब में नशे की समस्या के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुलजार सिंह ने खुदकुशी की, अब एक और शख्स जग्गा सिंह ने ऐसे ही विवाद के बीच जान देने की कोशिश की है। दावा किया जा रहा है कि जग्गा सिंह ने नशे की समस्या को लेकर वीडियो बनाया था जिसे दबाव बनाकर डिलीट करवाया गया, उन्हें धमकाया गया, जिसके बाद उन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही घटनाएं मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र संगरूर की हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर मान सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का दावा है कि पंजाब में नशे की समस्या उठाने वालों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।
2: सात सितंबर
3: को जगसीर सिंह, दोनों मामले एक जैसे हैं। गुलजार ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई और अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। जगसीर सिंह ने भी ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई और जहर खाकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है, नेता नगरी के लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना बुहाल हो गया है। जगसीर सिंह का मामला भी ऐसा ही है। जगसीर सिंह पंजाब के संगरूर में रहते हैं, रविवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि ड्रग सिंडिकेट के लोग धमकाते हैं।
2: करने की कोशिश करी,
4: राडी सुनवाई नहीं हुई है, मेरे करे आके कैमरे बनते ही वीडियो बनी हुई है। नहीं
2: पुलिस को कंप्लेंट करी है,
4: करी है जी।
2: पुलिस ने भी नहीं सुनी?
4: नहीं जी, डीबीआर भी लेके चक के ओदे च सारे सबूत दी गए, कहंदे खाली है डीबीआर।
2: पर जान देनी तां गल तां भाई जी,
4: ओए सर करी है की, मेरे मन तो लावा कोई, मेरे बच्चे भी मरन गए ने।
3: जगसीर सिंह ड्रग्स सिंडिकेट के निशाने पर इसलिए आए क्योंकि ड्रग्स बेचते हुए कुछ लोग उनके घर के सीसीटीवी में कैद हो गए। जगसीर ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ड्रग्स माफिया ने जगसीर के घर पर हमला कर दिया, उसका सीसीटीवी तोड़ दिया, सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट करने के लिए धमकाया गया, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद जगसीर ने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
5: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
3: पंजाब में नशा तस्करी गंभीर विषय है। गुलजार सिंह ने भी नशे का मुद्दा पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था और फिर दबाव और धमकियों की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे, उनका बेटा नशे की लत में था, पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गईं, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, उसकी वानगी संगरूर की एक घटना है। गुलजार की जान चली गई और जगसीर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: जग्गा सिंह के खुदकुशी के प्रयास का वीडियो सामने आते ही राज्य की सियासत भड़क उठी। चुनाव से पहले यह मुद्दा गर्माता दिख रहा है। भगवंत मान सरकार सीधा विरोधियों के निशाने पर है।
2: नाम की पता
4: लगा लेंगी
2: केड़ा पिंडा
4: मैं मोई
2: भाई असल चक्कर की है कि क्यों तुसी ये एक्शन क्यों दे
4: एक्शन जट्टे दी वीडियो पाती दी बना के ने
6: संगरूर में डीसी दफ्तर के सामने खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सियासत छिड़ते देर नहीं
4: लगी।
6: सचिन पायलट ने वीडियो साझा कर मान सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
7: उनको उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो हैं, ये गिद्ध हैं, ये भारत की राजनीति के गिद्ध हैं और लाश टूटते हैं। वो जग्गा सिंह लाश बना नहीं इसलिए शाम तक चुप हो जाए।
6: आप प्रवक्ता का बयान विवादित है, लेकिन इस बयान से ये भी साफ है कि नशे के मुद्दे का असर पंजाब सरकार पर दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने मान सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार कर लिया है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है। वहीं बीते दिनों प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। पहले जगजीत सिंह की खुदकुशी और अब जग्गा सिंह के खुदकुशी के प्रयास के वीडियो पर सियासी विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब सरकार पर विरोधियों का हमला तेज हो गया।
8: संगरूर डीसी के सामने वो गया था कि मुझे मेरे गांव का सरपंच जो आम आदमी का है, पंचायत है, मैं भी दो साल पहले ये आदमी खुद नशे में लिप्त था, लेकिन ये इसने नशा छोड़ा, इस नशे को त्यागा और ये स्ट्रीमलाइन मेन स्ट्रीमलाइन में आ गया। तो अब इसे क्योंकि इसने उसकी वीडियो डाल दी गांव की, इसे बोला गया भी इसे डिलीट कर, डिलीट करवाया गया। अब इसके ऊपर केस FIR दर्ज कर रहे हैं कि ये ड्रग जो है सारे गांव में बेच रहा है, ये अनाम मिल रहा है कोई, अगर क्योंकि ये बीजेपी की यात्रा शुरू हो चुकी है और लोग आगे आके हिम्मत करके लोग का बताने लगे हैं भी किस गांव में कौन नशा बेच रहा है, कर रहे हैं। लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी एक नेक्सस है, जो आज गैंगस्टर जो ये नशा बेचते हैं और आम आदमी पार्टी का ये नया एक कॉम्बो बना है, नया कॉम्बो काम कर रहा है, ये आम आदमी पार्टी नहीं रही।
9: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
6: घमासान बढ़ा हुआ है, सड़कों पर भी संग्राम दिख रहा है। अब विपक्ष का सीधा हमला मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हो रहा है।
10: नशे रोकने वास्ते विल पावर चाहिए, लत्तां विच जान चाहिए है ਔਰ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6: साफ है कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नशे की समस्या राजनीति का केंद्र बन गई है। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित करने के आरोपों पर राजनीति गर्मा गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है।
7: हाँ, विसल ब्लोअर जो है उनको कभी भी पार्टी नहीं कहती। 8 पर्चे उसके ऊपर दर्ज है NDPS, तो विसल ब्लोअर नहीं है वो।
6: पंजाब में नशे की समस्या का मुद्दा पहले भी उठता रहा है, अब चुनाव से पहले ये मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है, जो भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात बिहार के जमुई की, जहां एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। ये घटना 19 सितंबर की बताई जा रही है। वीडियो अब सामने है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो जब वायरल हुआ तब बिहार सरकार ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। जमुई मामले में 3 आरोपियों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
6: ये बिहार है, सम्राट चौधरी का बिहार, जहां बेटियां एकदम सुरक्षित हैं। इतनी सुरक्षित कि शाम ढलते ही अपराधी गिरोह बनाकर बेटी पर टूट पड़ते हैं। ये वही बिहार है जहां मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन हकीकत देखिए कैसे ये दरिंदे बेटी की मर्यादा भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी का बिहार है जहां शाम को बेटियां बाहर ना निकलें, नहीं तो कोई गिरोह उन्हें घेर सकता है, उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले लड़की कुछ समझ पाती, ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि नीचता भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहां नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार दरिंदों को दया कहां आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नते कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा और कुछ दूर पर उसे रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। ना पुलिस ना कानून, कुछ नहीं, सड़क पर खूंखार जीव खुलेआम घूम रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
0: हैरान करने वाली बात है कि दावा यह होता है कि सब कुछ सुरक्षित है, हर व्यक्ति सुरक्षित है, फिर भी ऐसा हुआ। उम्मीद अब यह की जा सकती है कि उन दरिंदों के साथ ऐसा न्याय हो जो नजीर बने।

0: बिहार के जमुई में बेटी के साथ सरेराह जो हुआ उसने सबको झकझोर के रख दिया है। इस घटना ने बिहार सरकार के हर दावे की हवा निकाल दी है। जो इस घटना के पीड़ित है वो दोनों नाबालिग हैं। दोनों 10वीं क्लास के छात्र हैं, जमुई शहर में रहते हैं, लेकिन शनिवार को जमुई के मड़वा पहाड़ घूमने गए थे।
1: जमुई के वायरल वीडियो मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों युवक और युवती एक कोचिंग में पढ़ाई करते थे। शनिवार का दिन था, लिहाजा छुट्टी होने के बाद वो घूमने के लिए जमुई के मड़वा पहाड़ इलाके में चले गए और यहीं पर मनचलों ने उन्हें निशाना बनाया। स्कूटी सवार युवक और युवती को वहां रोका गया और उनके साथ जिस घटना को अंजाम दिया गया वह वाकई शर्मसार करने वाला है।
0: जमुई में लड़की के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। जमुई पुलिस ने सबसे पहले उन छात्रों से संपर्क किया जो पीड़ित हैं। पीड़ितों से बातचीत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। ये घटना 19 सितंबर की है। शाम से 6 से 7 बजे के बीच दोनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि 6 से 7 लोग इस घटना में शामिल थे। अब जमुई पुलिस आरोपियों की तलाश में है।
2: विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जिससे पता चला कि ये घटना जो है 19 तारीख को शाम में 7 बजे के आसपास की घटना है जिसमें कुछ युवक जो है गांव के युवक जो है छेड़खानी करते हुए दिख रहे हैं।
3: कितने लोग थे सर इसमें?
2: जो वीडियो के फ्रेम में जो दिख रहे हैं वो 6-7 लोग दिख रहे हैं। बाकी हम लोग कुछ का पहचान उसमें हो गया है। पहचान के बाद विधिवत कार्रवाई होगी तब और भी कौन कौन लोग थे उसमें ये पता चल सकता।
0: घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में कानून का इकबाल कहाँ है? क्या बेटियों को बाहर निकलना मना है? क्यों लड़का और लड़की एक साथ एक स्कूटी पर नहीं चल सकते? जमुई की इस घटना के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर है।
4: जमुई में जो घटना हुई है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरह की हृदय विदारक घटना, इस तरह की मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शासन और प्रशासन पंगु हो चुका है।
0: विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा तो बीजेपी और जेडीयू ने सरकार का बचाव किया और दावा किया कि सम्राट चौधरी की सरकार दोषियों को छोड़ेगी नहीं।
5: ट्राइंग टू आउटरेज द मोलेस्टी जैसे संज्ञेय अपराधों में इस पे कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है बहुत जल्द कानून की सलाखों के पीछे होंगे और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आगे से इस तरह की शर्मसार घटना किसी के जहन में भी नहीं आए।
6: बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है और बिहार में मॉब जस्टिस नहीं चलता है। जो भी लोग कानून हाथ में लेते हैं उन पर कानून अपना हाथ डालती है। यह वीडियो प्रकाश में आया है, पुलिस मामले की त्वरित जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
7: इसी बीच खबर आ रही है कि जमुई घटना पर एक SIT का गठन किया गया है। पुलिस का दावा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान कर ली गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जमुई पुलिस ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उसको हटाने यानी टेकडाउन की कार्रवाई भी की जा रही है। इस समय हमारे संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, ये जो स्वयं घोषित ठेकेदार हैं समाज के, ये जितने भी लड़के हैं कुल कितनी संख्या बताई जा रही है, कितनों की पहचान की जा चुकी है? 3 की गिरफ्तारी की बात तो सामने आ रही है, लेकिन पुलिस इस मामले को जाहिर समझ रही होगी कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह की कार्रवाई, 10वीं में पढ़ने वाले लड़का लड़की, और उन लड़कों पर क्या कार्रवाई होगी जो इस वीडियो में दिख रहे हैं?
1: देखिए पुलिस ने इस मामले में जो एक्शन लिया है अब तक उसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो तीन लोग हैं वो उस घटना के समय वीडियो में मौजूद थे, मतलब वो उसी तरह का कृत्य कर रहे थे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। चार अन्य की गिरफ्तारी जिनकी पहचान जमुई पुलिस कर चुकी है, कुल सात लोगों में से तीन की गिरफ्तारी हुई है और चार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई इस मामले में उसमें मिथिलेश है एक शख्स, एक प्रमोद नाम का शख्स है और एक गोलू नाम का शख्स है। ये तीन ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया और एक कुकृत किया, जिस तरह से जो पूरा वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। खुद हमारी जो जिला प्रशासन के लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कि आज से मीडिया के मेन स्ट्रीम में ये खबरें चल रही हैं, लेकिन कल ही प्रशासन को इस बात की जानकारी लग गई थी, क्योंकि जो लोकल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पर ये वीडियो शेयर हो रहे थे और ये वीडियो शेयर होते होते पहुंचा जिला प्रशासन तक और उसके बाद जमुई पुलिस ने कल ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें आज तीन गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन बाकी के आरोपी कहां छिपे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, और सबसे बड़ी बात यह श्वेता कि जो आरोपी हैं उन पर कौन सी धाराएं लगती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि खुद जो जमुई के एसपी हैं वो कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना तो है। जिस तरह से दो नाबालिग युवक और युवती जो कोचिंग में पढ़ने के बाद शनिवार का दिन होने के कारण घूमने फिरने निकल गए थे मड़वा पहाड़ की तरफ, उनको निशाना बनाया गया, किस तरह से उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, और वहां अगर कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो इस मामले की संजीदगी देख करके उनको वहां से जाने नहीं देते तो संभव है कि कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। तस्वीर
7: और इस तरह के इलाके जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं वहां पर मौजूदगी भी होनी चाहिए पुलिस की, सीसीटीवी कैमरों की। बहुत शुक्रिया शशिभूषण इस पूरी बातचीत के लिए। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष पश्चिम यूपी के दौरे पर हैं, दूसरी ओर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुलाकात हुई है। इसके साथ ही सियासी कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी। दिल्ली से लेकर अमरोहा तक राजनीति गरमाई रही। दरअसल यूपी चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार हलचल तेज है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की। पार्टी का कहना है कि जयंत चौधरी और मोहम्मद शमी की मुलाकात के सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।
8: मोहम्मद शमी और माननीय जयंत चौधरी जी की मुलाकात को लेकर कई अटकलें चल रही हैं, परंतु मोहम्मद शमी जी स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने भारत के परिश्रम को विश्व स्तर पे लहराने का काम किया और माननीय जयंत चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मोहम्मद शमी जी के गृह जनपद में माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी सांसद निधि से 1.5 करोड़ रुपए से स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप करने का काम किया है और माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी 100% निधि को खेल के लिए डेडिकेट किया हुआ है। मोहम्मद शमी जी उसी के लिए धन्यवाद करने आए थे माननीय जयंत चौधरी जी का, परंतु उसके राजनीतिक मायने निकालना ये मुझे लगता है कि गलत है। परंतु मोहम्मद शमी जी भी भारत के नागरिक हैं, अगर वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं तो इसके अंदर लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, तकलीफ क्यों हो रही है, हमें समझ के परे।
7: और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की, बीजेपी को रोकने के लिए क्या अखिलेश यादव ओवैसी से हाथ मिलाएंगे? ओवैसी ने कल कहा था कि 2027 में जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं वो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, हालांकि इसके साथ ही 2 अक्टूबर की डेडलाइन उन्होंने दी थी।
9: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
7: ओवैसी के इस बयान को लेकर इमरान मसूद ने सवाल उठाए, उनसे बात की आज तक संवाददाता राहुल गौतम ने।
10: असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं MIM के, उनका ये कहना है कि हम चुनावों के अंदर बिल्कुल उतरेंगे, पूरी मजबूती से उतरेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गठबंधन हो जाए आप देंगे उनको न्योता गठबंधन का, या फिर आप नहीं चाहेंगे कि वो हिस्सा ना बने?
11: ओवैसी साहब के उतरने से सिर्फ इतना होगा कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने गोल के ऊपर लगी हुई है। बिहार में क्या हुआ, 6 MLA जीत गए, 7 जीत गए, 8 जीत गए, यहाँ 10 जीत जाएंगे। सरकार बीजेपी के बन जाए तो 10 MLA किसी काम के भी नहीं है। बिहार में क्या कर पाए, वो कुछ कर पाए बिहार में क्या?
10: बिहार में भी वो कह रहे थे कि आप गठबंधन कर लीजिए।
11: बिहार में कुछ देखिए, उनके गठबंधन का मतलब दूसरा भी है, मुसलमान मुसलमान से राजनीति नहीं होगी। मोदी जी ने मुसलमानों का मुगालता दूर कर दिया कि तुम्हारे बिना सरकार नहीं बनती, वो तुम्हारे बिना ही सरकार बना रहे हैं, तो इसलिए इस मुगालते का दूर कर दो। हमें दूसरे साथियों को आगे रख करके मुसलमान को खामोशी के साथ पीछे चलना चाहिए। और भैया इनसे मुक्ति पाओ, इनसे मुक्ति नहीं पाएंगे तो हमारी मस्जिदें टूटेंगी, हमारे ही डंडे चलेंगे, हमारी गोली लगेंगी। और किस पे तशद्दुद हो रहा है सबसे ज्यादा, तो हम पर होता है, फिर दलितों पर होता है।
7: इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
12: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
13: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: विमल बोलो जुबां केसरी।
17: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करी।
18: ये झूठ की गूंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मंच शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: पानी के बिना जिंदगी कैसी होगी, क्या कभी सोचा है? इसी देश में ऐसे गांव भी हैं जहां पानी भरने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज उसी गांव में बस टोटे घुमाइए और पानी बहने लगता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आजादी के 79 साल बाद लहुरिया द में हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंच चुका है। विंध्य की पहाड़ियों पर बसे करीब 1500 लोगों का ये गांव कभी पानी के लिए जंगल और पहाड़ नापता था, कभी रात रात भर लाइन लगानी पड़ती थी।
4: जेकर दिन करा तो दिन कर ढोले ना, रात भर झिन्ना में पावली भाई टोटी आज तब लगे न पावे लागा ना झिन्ना में बसे डारी।
3: गर्मी में हालात इतने खराब हो जाते थे कि टैंकर से हर परिवार को सिर्फ 15 लीटर पानी मिलता था, लेकिन जल जीवन मिशन की हर घर नल योजना के तहत 31 अगस्त 2023 को पहली बार इस गांव में नल से पानी पहुंचा।
5: हम लोग पानी के दरी जाते हैं, झिन्ना जाते हैं, फिर वैसे उड़ जाते हैं, ले आते तो पीते हैं। 3 साल से पानी आवा थी, अब घरे टोटी चालू को भरी थे।
3: पानी पहुंचने से सबसे ज्यादा राहत गांव की महिलाओं को मिली। क्षमा देवी बताती हैं कि
5: अब हो गया सही है, पानी वानी आ रहा है ना।
3: दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के गाँव में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन लगाए गए। मार्च 2025 तक यूपी में 2,36,00,000 से ज्यादा घरों तक नल वाला पानी पहुंच चुका है। राज्य भर में करीब 5,07,479 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। जो गांव कभी प्यास की पहचान था, आज वहां हर घर में पानी की आवाज सुनाई देती है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा वार, एसपी बीएसपी ने बढ़ाया परिवारवाद, कांग्रेस ने दिया जातिवाद, बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद सर्वप्रथम।

को चार्जशीट पर कानून के मुताबिक फैसला लेने का निर्देश। आईआईटी मुंबई सुइसाइड केस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, डीन पद से हटाए गए प्रोफेसर डुल्ला। कैंपस में छात्रों का आज भी प्रदर्शन, पुराने बयान पर भी प्रशासन ने मांगी माफी।

0: ईरान ने क्यों एक्टिवेट किया सबसे बड़े अलर्ट का कोड 100? ट्रंप वीकेंड की छुट्टी बीच में ही खत्म कर क्यों लौटे वॉशिंगटन? नेतन्याहू ने क्यों छोटा किया अमेरिका का दौरा? क्या मध्य पूर्व में बचने वाली बारूदी महातबाही? ईरान की खुफिया खबर, अमेरिकी बमबारी ढाएगी कहर। ट्रंप ने कहा दो ही रास्ते, ईरान की आर्थिक बर्बादी या मिटेगा नामोनिशान। प्रलय लाने वाले अमेरिकी बम वर्षकों ने ब्रिटेन से भरी उड़ान। मिडिल ईस्ट के आसमान में क्यों बढ़ी विमानों की हलचल? ईरान में मौजूद नागरिकों को अमेरिकी चेतावनी, निकलो वरना बंद होने वाला है मध्य पूर्व का आसमान। किसी भी वक्त छिड़ सकती है ईरान अमेरिका में आर पार की जंग। ईरान भी तैयार, जारी की अमेरिकी अड्डों पर दर्दनाक अंजाम की वार्निंग। भड़की सऊदी हूती की भी जंग, मिडिल ईस्ट में दोहरी जंग से दुनिया में हड़कंप।
1: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। आज 21 सितंबर है, पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस मनाती है। इसी रूप में 21 सितंबर मनाया जाता है। दुनिया की जो वर्तमान परिस्थिति है उसे देखते हुए आज का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आज ही का दिन एक बेहद गंभीर चेतावनी है। यह दिन याद दिलाता है कि मानव जाति के लिए अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शांति इस समय कितना जरूरी है। अगर आप 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में बात करें तो 1981 में विश्व शांति दिवस इसकी शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन यूनाइटेड नेशन ये अपील करता है कि कम से कम एक दिन के लिए सारे विश्व में युद्ध रुक जाए। लेकिन इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो है वो चरम पर है और युद्ध बढ़ता जा रहा है और अलग अलग मोर्चों पर युद्ध बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस समय आ रही है कि अमेरिका के बमवर्षक विमान इस समय हवा में है। ईरान ने कोड 100 यानी ईरान का उच्चतम स्तर का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और इस बीच मध्य पूर्व और खासकर दक्षिणी ईरान के पास अमेरिका की जो एयरफोर्स है USAF उसकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कम से कम 7 अमेरिकी मिड एयर रिफ्यूलर्स, जी हां, एक नहीं दो नहीं, 7 अमेरिकी मिड एयर रिफ्यूलर फारस की खाड़ी के ऊपर और आसपास है। कुछ घंटे पहले एक MQ-4C ट्राइटन यानी ये एक मानव रहित लड़ाकू विमान है जो टोही उड़ाने भी भरता है, जासूसी उड़ान करता है। तो ये इस विमान ने MQ-4C ट्राइटन ने एक खुफिया उड़ान भरी। ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास के ऊपर अज्ञात लड़ाकू विमान के होने की खबर औपचारिक तौर पर अपने चैनल पर दे दी है। हालांकि इस दावे की कोई स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं है, लेकिन ईरान का कहना है कि बंदर अब्बास के ऊपर अमेरिकी विमान देखे जा सकते हैं। यह गतिविधि ईरान के सेंट्रल मिलिट्री कमांड की उस चेतावनी के ठीक बाद है जिसमें अमेरिका के सेंटकॉम ने US सेंट्रल कमांड ने कहा था कि उनके पास खुफिया जानकारी है। अमेरिका, अगर उसके पास पुष्ट वो जानकारी हो जाती है तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमले कर सकता है। साथ ही उन्होंने पूरे क्षेत्र में जितने अमेरिका के बेसिस हैं, अमेरिकी ठिकानों और हितों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की चेतावनी भी दी है। यह आपको दिखाता है कि इस समय तनाव मध्य पूर्व में कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान ने अमेरिकी हमले को लेकर जो आशंका जताई है वो केवल हवाई बातें नहीं है, उसके पीछे ठोस जानकारियां हैं। क्या? सबसे पहली तस्वीर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो कैंप डेविड में थे। कैंप डेविड में अपनी छुट्टी बीच में खत्म करके यानी शनिवार को ही वो वॉशिंगटन DC लौट आए। पहले खबर यह थी कि वो रविवार की रात या सोमवार को लौटेंगे, लेकिन वो शनिवार को ही बीच में लौट आए। खबर यह है कि व्हाइट हाउस लौटते ही उन्होंने एक बड़ी सुरक्षा की सभा की है, एक सुरक्षा मीटिंग की है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर के बारे में बताता हूं। यह तस्वीर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है। बेंजामिन नेतन्याहू इस समय इजराइल में फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और तेजी से कर रहे हैं। उन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक के लिए 23 सितंबर को अमेरिका जाना था। 24 सितंबर को उनका वहां भाषण है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। उसके अगले ही दिन 25 सितंबर को उन्हें इजराइल लौटना था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि केवल स्पीच के लिए 24 सितंबर को वो अमेरिका जाएंगे। खबर यह भी थी कि वो टेक्सस जाएंगे, लेकिन अब टेक्सस भी नहीं जा रहे, कुछ ही घंटों बाद वो इजराइल वापस आ जाएंगे। उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक नहीं हो रही है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू एकाएक जल्दी जल्दी क्यों अपने देश में या वॉशिंगटन डीसी में लौट रहे हैं? तीसरी खबर यूनाइटेड किंगडम की है, इंग्लैंड की है। वहां का जो फेफोर्ड एयरबेस है ना, फेफोर्ड एयरबेस में उड़ान भरते B-1B जो लैंसर्स हैं, ये सबसे बड़े बमवर्षक विमान है। B-1B लैंसर्स, ये बमवर्षकों की विमान की तस्वीरें हैं। दो ऐसे बमवर्षक ने फेफोर्ड से उड़ान भरी फुल लोड के साथ, आफ्टर बर्नर्स के साथ, फुल लोड के साथ जब उड़ान भर रहे हैं तो उसका क्या मकसद है? चौथी तस्वीर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वर्तमान प्रमुख मोहसिन रिजाई की है, जो आशंका जता रहे हैं कि अमेरिका एक बड़ा हवाई हमला करने वाला है और इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका ने भी अभी कोई सस्पेंस नहीं बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि ईरान के सामने अब केवल सीमित विकल्प बचे हैं, बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस हैं ईरान के लिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनके पास ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह करने, बर्बाद करने या उसे जड़ से मिटा देने के ऐसे कई विकल्प खुले हैं, बशर्ते ईरान कोई नया समझौता करे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूथी विद्रोहियों के हमले के बाद दिया। ट्रंप कैंप डेविड में छुट्टी मनाकर लौटे, हालांकि वो इस छुट्टी को बीच में ही छोड़कर लौटे और कोई आधिकारिक सफाई इसकी नहीं दी गई। इसकी वजह क्या है यह नहीं बताया जा रहा है। बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को अब अलर्ट कर दिया है कि वो मध्य पूर्व छोड़ दे या वहां का दौरा अगर करने वाले हैं तो यह दौरा रद्द कर दे। अमेरिका ने कहा है कि मध्य पूर्व का जो एयर स्पेस है यह किसी भी वक्त बंद हो सकता है, इससे पहले वो मध्य पूर्व को छोड़ दे। वहीं फॉक्स न्यूज से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही कुछ बड़ी घटना होने वाली है और अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से बर्बाद करने या उसको मिटा देने के विकल्प पर इस समय विचार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के रियाद पर हूथी हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका यह मानना है कि ईरान की अनुमति के बिना हूथी विद्रोही रियाद पर और वो भी किंग खालिद एयरबेस पर अपने आप हमला नहीं कर सकते थे, ऐसा ईरान के इशारे पर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी पर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां ईरान की इस्लामी सेना यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अब अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस क्षेत्र में अमेरिका के सभी ठिकाने, चाहे वो किसी भी देश में अमेरिका के ठिकाने हो, उसके हितों को लगातार प्रभावी और दर्दनाक हमलों का शिकार बनाया जाएगा। यह ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी है। ईरान ने कहा है कि इस बार वो ऐसा पलटवार करेंगे कि किसी सीमा की चिंता नहीं करेंगे, किसी दायरे में अपने आप को सीमित नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये सऊदी अरब है या ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये कुवैत है या कतर है। पूरे के पूरे मध्य पूर्व में जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका के बेसिस पर और अमेरिका के हितों पर हमला करेगा। ईरान के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि कुछ हमले तो इतनी दूर जा सकते हैं कि हिंद महासागर में अमेरिका की नौसेना उनकी चपेट में आ सकती है। ईरान ने खाड़ी के देशों के नेताओं पर भी डबल डीलिंग का आरोप लगाया और कहा कि ये नेता अमेरिकी हमले को अंदर ही अंदर हरी झंडी दिखा रहे हैं। ईरान ने कहा अगर किसी भी खाड़ी देश की जमीन का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए हुआ तो वो देश भी ईरान के दुश्मन माने जाएंगे और उनसे भी वैसा ही लिया जाएगा बदला जैसा एक दुश्मन से बदला लिया जाता है ना। अब आप इन सब तस्वीरों को जब देखें तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? एक बड़ा युद्ध हो सकता है, इसका अंदेशा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं बड़ी तस्वीर को, बताता हूं कि इस समय मध्य पूर्व में जो हालत है वो इतने विस्फोटक क्यों बनते जा रहे हैं। दरअसल इसको आप जरा विस्तार से समझिए। कोड 100, ईरान ने कोड 100 जारी कर दिया है। इसका जो रहस्य है ना, ये इसी सीक्रेट कोड में छिपा है, कोड 100। कोड 100 ईरान में हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट, सर्वोच्च अलर्ट का कोड होता है। यानी इसके बाद किसी की कोई छुट्टी नहीं, सब अपने वॉर स्टेशन, बैटल स्टेशन पर आ जाते हैं। ईरान ने पिछले 40 साल के इतिहास में कोड 100 कभी एक्टिव नहीं किया, ना 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था, और ना ही 2024 में जब इजराइल ने सीधा मिसाइलों से हमला किया था, तब भी कोड 100 जारी नहीं हुआ था। इस समय कोड 100 जारी कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल से 40 दशक के दौरान लगातार तनाव और हालिया संघर्ष के दौरान ईरान ने अब तक, यानी इससे पहले, कोड 100 को कभी एक्टिवेट नहीं किया था। कोड 100 यानी सर्वोच्च स्तर का तनाव या युद्ध की तैयारी या अस्तित्व की लड़ाई की तैयारी। अब इसे एक्टिव किए जाने की जो खबर आई है, इससे पूरी दुनिया में और खासतौर पर मध्य पूर्व में हड़कंप मच गया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया? ईरान की खुफिया जानकारी ऐसी क्या है? ऐसा कौन सा संकट आने वाला है कि ईरान ने अब कोड 100 को सक्रिय कर दिया है? जो लोग इस युद्ध पर बहुत पैनी निगाह रखे हैं, जानकारों का मानना यह है कि ईरान इस विशिष्ट सर्वोच्च सैन्य अलर्ट कोड को जब पिछले 40 वर्षों से नहीं जारी कर रहा था, तो अब जो खतरा है, अमेरिका या कोई और बड़ी महाशक्ति या महाशक्तियां मिलकर, एक साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। भीषण युद्ध की स्थिति के लिए इस कोड को तैयार करके रखा था, यानी यह अब उसका हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट है। अब ईरान अपने सिर पर मंडराते भीषण युद्ध या किसी बड़े विदेशी हमले की तत्काल आशंका होने पर इसे लागू कर रहा है, और इसके सक्रिय होते ही ईरान की जो मुख्य सेना है, यानी IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जितने अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं वो सब वॉर अलर्ट पर आ जाते हैं, यानी बिल्कुल टॉप लेवल ऑफ रेडनेस पर आ जाते हैं, उस मोड में है अब ये। अब किसी भी समय ईरान पर हमला हो सकता है, इस तरह का रेडीनेस इस समय ईरान पर लागू कर दिया है। देश के जितने भी सैन्य कमांड हैं, जितने भी खुफिया नेटवर्क हैं, जितने भी गुप्तचर उनके प्रणालियां हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, अब सब 24 घंटे सक्रिय रहेंगी, कोई छुट्टी नहीं, लगातार अब काम होगा। और अब ईरान पर अमेरिका के हमले का जब चरम पर है वो हमला, तब तेहरान के आसमान में रात को एक चमकदार रंग बिरंगी रोशनी को ऑब्जर्व किया गया, और ये जो भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, इसका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को कई हैंडल ने एक साथ पोस्ट किया। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जो आवाजें आ रही हैं उसको भी सुनिए। वीडियो में रंग बिरंगी रोशनी वाला एक ऑब्जेक्ट घूमता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की सरकार से अभी तक इसकी औपचारिक ना पुष्टि की गई है, ना कोई बयान आया है कि दरअसल ये है क्या। लोग अंदाजा ये लगा रहे हैं कि ये कोई नए तरीके का या ड्रोन है, कोई विमान है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कोई नया तरह का UFO है। कुछ यूजर्स ने जांच के बाद कहा कि दरअसल ये केवल LED वाली पतंग है जिसको देखकर लोग डर गए हैं। अभी तक ईरान की सरकार की तरफ से या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन इसका नहीं आया है। वीडियो देखने से ये जो LED लाइट जैसी पतंग लग रही है, कैमरे पर यह बहुत ड्रामेटिक सा नजर आ रहा है, और इसीलिए इसको देखकर वहां हड़कंप मच गया। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि या तो यह पतंग है या टोह लेने का प्रयास है। अब ईरान को न केवल अमेरिका के भीषण हमले की आशंका सता रही है, बल्कि अब ईरान ने सीधा आरोप लगा दिया है कि कुछ खाड़ी के देश भी ऐसे हैं जो अमेरिका के हमले को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। ईरान ने अपने आरोपों के लिए एक सीक्रेट मीटिंग का हवाला दिया, ये मीटिंग जर्मनी के एक एकांतस्की रिसोर्ट में हुई। बैठक का आयोजन अमेरिका के सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 7 अरब देशों के सैन्य प्रमुखों के साथ साथ इसराइल के आर्मी चीफ भी जमीन पर मौजूद थे। यह बैठक 8 से 12 सितंबर के बीच हुई थी। किसी भी देश ने औपचारिक और आधिकारिक तौर पर न केवल इसका ऐलान किया था न इसकी पुष्टि की थी। लेकिन इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से सबसे पहले इस खबर का हवाला दिया। चौंकाने वाली बात यह कि इस गुप्त बैठक में हिस्सा लेने वाले कई अरब देशों के इसराइल के साथ औपचारिक संबंध है ही नहीं। सैन्य संबंध तो दूर की बात, राजनयिक संबंध भी नहीं है। लेकिन शामिल होने वाले देशों में जिन देशों का नाम आ रहा है उसमें सऊदी अरब, यूएई अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुका है, वैसे बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, मिस्र के मिलिट्री कमांडर्स इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में सऊदी हूती संघर्ष, मध्य पूर्व में तेल और गैस की सुरक्षित आयात और निर्यात, सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे बेहद गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन ईरान यह मानता है कि इस बैठक में ईरान के खिलाफ एक बड़े साझा हमले की रणनीति पर चर्चा हुई है और इसीलिए ईरान ने अब कोड 100 जारी कर दिया है। इस मीटिंग के बीच जो हलचल ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स राफ एयरफोर्ट बेस से आ रही है उसको लेकर भी ईरान इस समय चौकन्ना है। कल अमेरिका की वायुसेना के 2 B-1B लैंसर बमवर्षकों ने यूके के इस सैन्य एयरबेस से उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कारण और मिशन के रोटेशन के चलते इस समय फेयरफोर्ट बेस पर लगभग 1 दर्जन B-1B लैंसर बमवर्षक विमान तैनात हैं। इससे पहले मार्च 2026 में ईरान के साथ संघर्ष के शुरुआत में 15 से 21 ये भारी भरकम बमवर्षक इनका

0: का इस्तेमाल करते हुए रनवे से उड़ान भरी। इंजन की जो भयंकर उसके पीछे आग निकल रही थी, जैसा आप मेरे पीछे तस्वीर में देख भी सकते हैं, उस आग को दुनिया ने देखा। अब कोई विमान आफ्टर बर्नर्स के साथ अत्याधुनिक शोर करते हुए जब उड़ता है तो एक संकेत दिया जा रहा है कि विमान अपने सबसे भारी हथियारों के साथ, बमों के फुल पेलोड के साथ टेक ऑफ कर रहा है। इसके अलावा जुलाई 2026 में भी अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों को तबाह करने के लिए विशेष रूप से बंकर बस्टरों से लैस B-1B विमानों को ही भेजा था। स्वदेश में एक बेहद चिंताजनक खबर, खबरें असरदार में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार के जमुई की। एक नाबालिग के साथ सरेराह छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर महिला के साथ दुर्व्यवहार करते, उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो बिहार सरकार की चौतरफा फजीहत हुई। पुलिस ने अब 3 आरोपियों को तो हिरासत में ले लिया है। जमुई मामले में 3 आरोपियों को बिहार पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए हम आपको ये तस्वीरें पूरी तरह से दिखा नहीं रहे। ये बच्चे पढ़कर लौट रहे थे और तब मॉरल पुलिसिंग करने वाले कुछ लोगों ने न केवल इनको रोका बल्कि सरेराह उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हमले को लेकर एक बहुत बड़े धर्म संकट में इस समय फंसे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करके हूथियों पर अमेरिकी हवाई हमले करने का जोरदार आग्रह किया था। शुरुआत में तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार हमलों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के फोन कॉल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदलते हुए पेंटागन को हूथियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की तैयारी करने का आदेश दिया। अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने हमलों के लिए टारगेट तय कर लिए, युद्ध पोतों के साथ लड़ाकू विमानों पर भी बम लोड कर लिए गए और जैसे ही विमान फुल लोड के साथ रनवे की तरफ निकले, अचानक हमले से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला एक बार फिर बदल दिया और एयर स्ट्राइक को फिलहाल टाल दिया गया है। इस पूरे वाक्य ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के भीतर हूथी विद्रोहियों से निपटने को लेकर चल रही गहरी दुविधा को एक बार फिर जग जाहिर कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर करीबी सलाहकार हूथियों के खिलाफ सऊदी अरब की लड़ाई में अमेरिका के सीधे कूदने के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि हूथियों ने अब तक अमेरिका के जहाजों को बाबल मंदब के आसपास निशाना नहीं बनाया है और यह रास्ता अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी मजबूत सुरक्षा के लिए चाहिए। हालांकि ईरान के साथ चल रहे व्यापक तनाव में अमेरिका को सऊदी अरब के सहयोग की भी सख्त जरूरत है और सऊदी अधिकारियों ने इस बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका पर दबाव बनाना तेज कर दिया है। इसके पहले भी सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी हवाई क्षेत्र और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल से रोककर अमेरिकी योजनाओं को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। अब अमेरिका के पास विकल्प कम है। इस बीच एक और बड़ी खबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के जो आंतरिक सुरक्षा के मंत्री हैं मोहसिन नकवी, वो इस समय ईरान की यात्रा पर है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी है। ईरान के दौरे पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी निकल पड़े हैं क्या अमेरिका का एक और संदेश लेकर वो जा रहे हैं, ऐसे समय में जब ईरान को अंदेशा है कि अमेरिका के बमवर्षक विमान किसी भी समय ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। क्या ये शांति का एक और प्रयास है, क्या ये प्रयास किया जा रहा है? और खासतौर पर पाकिस्तान भी इस समय फंसा हुआ है। मक्का अग्रीमेंट पर उसने हस्ताक्षर तो कर दिया लेकिन सऊदी अरब की वो मदद करने के लिए सामने नहीं आ पा रहा है। ईरान ने सुलह की 7 शर्तें रखी हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
9: मैडी, I need to open a savings account.
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
9: स्मॉल बैंक?
10: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
9: Okay.
10: Oh, Jeevan, nothing small about us.
11: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahin?
12: Ye pillar kabhi nahin tootega. Roongta steel TMT se bana.
13: Roongta nahin, to ghar strong nahin. Roongta steel TMT bar, ekdam solid.
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
16: इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: In association with
3: Anmol Biscuits, Swad jo banaye har pal Anmol, Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
4: There is a very famous quote ki history repeat itself.
5: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
6: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
5: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: एसपी बीएसपी ने बढ़ाया परिवारवाद, कांग्रेस ने दिया जातिवाद, बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद प्रथम। गठबंधन पर अखिलेश यादव की ओवैसी को दो टूक, कहा जो पहले था वही रहेगा। मायावती पर भी कसा तंज, किसी के रथ का लाल रंग नहीं दिख रहा। राजस्थान मेयर चुनाव में बीजेपी की बंपर विजय, 5 में से 4 सीटों पर कब्जा, कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से करना पड़ा संतोष। आईआईटी मुंबई सुइसाइड केस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, डीन पद से हटाए गए प्रोफेसर दुल्ला, कैंपस में छात्रों का आज भी प्रदर्शन, पुराने बयान पर भी प्रशासन ने मांगी माफी। लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड में 8 साल बाद सजा, यूपी पुलिस के सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की कैद, 2018 में हुई थी हत्या।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

भीषण हो गया रूस यूक्रेन के बीच घमासान। मॉस्को में पहले यूक्रेन ने मचाया कोहराम, फिर रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों का किया काम तमाम। मिसाइल और ड्रोन हमलों में कईयों ने गंवाई जान। ताबड़तोड़ हमलों से रूस की सप्लाई चेन पर बड़ा असर। यूक्रेन को सताने लगा है सर्दियों में तबाही का डर। क्या ट्रंप करेंगे बीज बचाव, ज़ेलेंस्की से होगी मुलाकात। मुलाकात में बनेगी बात या मिसाइलों से जारी रहेगा आघात। तेल डिपो से लेकर रिहायशी इलाकों तक बमों की बौछार से अब किसी का भी बचना नामुमकिन है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया है और भयंकर।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। कहते हैं युद्ध केवल विनाश और विनाश ही लेकर आता है। इस वक्त दुनिया में दो महायुद्ध चल रहे हैं और दुनिया भर के आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर जबरदस्त हलचल है इन युद्ध की वजह से। हर दिन विनाशकारी लीला हम देख रहे हैं और अलग अलग विनाश लीला हम अलग अलग युद्ध की आपको दिखा रहे हैं, और इसी वजह से देश के आपसी रिश्ते बदल रहे हैं, भविष्य की रणनीति बदल रही है, दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं और तेजी से बदलती तकनीक की वजह से युद्ध बदल रहा है। सैकड़ों मील दूर से एक ड्रोन, एक रॉकेट या एक मिसाइल आते हैं और पल भर में किसी भी देश के बड़े बड़े ठिकाने, चाहे वो बाजार हो या युद्ध के ठिकाने, वो ध्वस्त हो जाते हैं। रणभूमि के इस भाग में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, जो वैसे ये युद्ध चल रहा है फरवरी 2022 से, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये बहुत विकराल रूप ले चुका है। दो दिन पहले यूक्रेन ने मॉस्को की तेल रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया था और ये एक लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक था। इसका बदला लेने के लिए रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों और ड्रोन से इतने बम बरसाए कि पूरे यूक्रेन में समय तबाही ही तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जरा आप कल्पना कीजिए कि युद्ध अब सरहदों पर नहीं चल रहा है, युद्ध अब शहरों में, आपके गली मोहल्ले में इस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। किसी भी ठिकाने पर लोग सुरक्षित नहीं हैं। जहां वो बचने के लिए छिपते हैं, चाहे वो बाजार हो, मॉल हो, बेसमेंट हो, वहीं पर बम गिरा जाते हैं। और वॉर जोन का यही दुर्भाग्य है, यही बेबसी है कि बेकसूरों की जान जा रही है दोनों ही देशों में और पिछले 4 वर्ष से ज्यादा से। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अब यह कह रहे हैं कि रूस रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है और जल्द ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं ताकि शांति स्थापित की जा सके। अच्छा, इस युद्ध की तो हम बात करेंगे ही, दूसरी तरफ पाकिस्तान, माफ कीजिएगा आतंकिस्तान, इस समय कंटेनरिस्तान बन रहा है और एक बार फिर आतंकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। जी हां, आज सवेरे 3 से 4 बजे के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सिविलियन इलाकों पर बम बरसाए। कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, कई परिवार अभी भी लापता है और हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहर इस समय तबाह हो गए हैं। रूस ने ये हमले मॉस्को हमले के जवाब में किए हैं और जो जवाबी कार्रवाई की है वो यूक्रेन के बहुत ही संवेदनशील शहरों पर की है, जैसे ज़ेपोरोजिया, ओडेसा, खार्किव, कीव, कई जगहों पर बमबारी की गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर कहा है कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के लॉजिस्टिक सेंटर, पोर्ट और वेयरहाउस को काफी नुकसान पहुंचाया है। ओडेसा बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है यूक्रेन के लिए, दुनिया भर में अपना सामान लाने ले जाने के लिए उसके पास ये एकमात्र एक बंदरगाह बचा है। ओडेसा पोर्ट पर एक शिप को उड़ाने का रूस ने दावा किया, कहा यह कि यहां पर हथियार आ रहे थे यूक्रेन के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा किया है कि जल्द उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हो गई है और दोनों ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मिलने की सहमति बना ली है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक से काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं और यूक्रेन की प्राथमिकता अब युद्ध को खत्म करना होगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन अब बड़ी संख्या में, मात्रा में अमेरिका और यूरोप दोनों से लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है, क्योंकि अपनी हवाई सुरक्षा करना उसके लिए अब लगभग असंभव हो गया है। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रतिदिन रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। हालात ऐसे कि एक दिन यूक्रेन हमला करता है तो अगले दिन रूस पलटवार करता है, ऐसा जबरदस्त प्रहार करता है कि न केवल यूक्रेन के सिपाही बल्कि कई नागरिक भी अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये क्रम बदस्तूर चलता आ रहा है, इमारतें धू धू कर जल रही हैं, मार्केट खाक हो रहे हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम की कमी बहुत है इस समय यूक्रेन में, और इसकी वजह से यूक्रेन रूस के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रहा है और वो मदद की गुहार लगा रहा है, यूरोप से कह रहा है कि अगर जल्द उसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिला तो रूस को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।
1: मॉस्को हमले से गुस्साए रूस का पलटवार, यूक्रेनी नागरिकों पर रूस का जबरदस्त प्रहार, यूक्रेन के कई इलाकों में मचा हाहाकार, तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क इलाके की हैं। सरहद के आसपास जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो कई लोग खार्किव जैसे कुछ सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी के लिए इस सेंटर में इकट्ठा हो रहे थे कि रूस ने इस पर हमला कर दिया। धमाके के बाद ही इसमें आग लग गई और लोग फंस गए। काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा था और आग की लपटें पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी। बचाव दल कई घंटों तक हालात को काबू करने के लिए जूझता रहा। कई घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। रात भर यूक्रेन के आसमान में रूस की मिसाइलें और ड्रोन की आवाजें गूंजती रहीं। कई अलग अलग शहरों में रूस ने हमले किए हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर शॉपिंग मॉल तक पर बम बरसाए गए जिससे भारी नुकसान हुआ है। जेपोरिजिया में दो अलग अलग शॉपिंग सेंटरों को निशाना बनाया गया। इन पर हमलों के लिए गेरान 2 और गेरान 4 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और कैप ग्लाइड बम बरसाए गए। 6 ड्रोन से एयर स्ट्राइक होने से तमाम ठिकानों पर धमाकों के साथ आग लग गई। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4.5 साल से चल रहा युद्ध और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन ने 2 दिन पहले ही मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया था। हमला इतना विनाशकारी था कि यूक्रेन ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। इस हमले को जंग के दौरान यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसके लिए यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। चुनाव की बयार में डूबे हुए मॉस्को में हुए इस हमले से हड़कंप मच गया था। कई किलोमीटर दूर से धुएं का ये गुबार दिख रहा था। पूरा मॉस्को इन धमाकों की गूंज से थर्रा उठा था। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस हमले की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की और अपनी सेना की पीठ थपथपाई। यूक्रेन के इस बड़े हमले से चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन लगातार हमले करता रहा है। उसकी कोशिश रूस की ऑयल सप्लाई चेन को प्रभावित करने की है। आज तक ब्यूरो।
0: यूक्रेन ने रूस के जिस ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, दरअसल ये जो ऑयल रिफाइनरी थी ये उसकी सेना को हथियार सप्लाई ऑयल सप्लाई करती थी। तो यूक्रेन का कहना है कि वो रूस की सेना का आगे बढ़ना रोक रहा है, लेकिन पलटवार जिस तरह रूस ने किया है। अब आप इस मानचित्र पर देखिए कितने संवेदनशील इलाके हैं जिनको निशाना बनाया गया है। सबसे पहले ओडेसा, ये एक बंदरगाह है, बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है यूक्रेन का, इसे निशाना बनाया। फिर खरसोन, खरसोन एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्रीमिया वैसे अब रूस के कब्जे में है, लेकिन यहां पर जो हमले हुए हैं वो उन इलाकों में जहां पर अभी भी यूक्रेन पलटवार करने की स्थिति में है। ज़ेपोरोजिया, ज़ेपोरोजिया की अगर आप बात करें तो ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन का, और युद्ध का साजो सामान यहां। अच्छा, डोनेस्क और लुहांस्क रूस के पास है। डोनेस्क और लुहांस्क पर यूक्रेन हमला कर रहा है एक के बाद एक, ताकि उसकी कोशिश यह है कि यहां पर रूस की पकड़ कमजोर किए जाए। फिर खार्कीव और सूमी के इलाके यहां पर सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। तो एक तरफ ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेन हमला कर रहा है और ये वो इलाके हैं जहां पर रूस हमला कर रहा है। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही तरफ से कितने जबरदस्त वार और पलटवार इस समय यहां पर इस युद्ध के मैदान में हो रहे हैं। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि रूस इस समय अपनी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ा रहा है। ज़ेपोरोजिया में जो एयर स्ट्राइक्स हुई, इनमें 9 मंजिलों की एक इमारत ध्वस्त हो गई, यूनिवर्सिटी की एक फैसिलिटी ध्वस्त हो गई, शॉपिंग मॉल और एक बॉयलर हाउस। आप सोचिए, हाड़ कपा देने वाली सर्दी में अगर ऊर्जा ना मिल सके तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए अब इन शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। हम आपको एक एक करके बताएंगे वो कौन कौन से इलाके हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है और क्यों। ज़ेपोरोजिया में 5 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, लोजोवा में 1 की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबर इस समय सामने आ रही है। यूक्रेन भी रूस पर लगातार युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहा है और रात भर में यूक्रेन के 10 रीजन में, आप ये सोचिए, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लगभग पूरे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वो भी कहां, जहां जहां उनके सैन्य ठिकाने हैं या ईंधन के क्षेत्र या जहां से भी उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने रूस पर युद्ध को और आगे भड़काने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर हमले के नुकसान की तस्वीरें साझा की हैं। जानकारी यह दी है कि खार्कीव में 1 महिला की मौत हो गई। उनका आरोप यह है कि रूस लगातार बेकसूरों की जान ले रहा है। उनका दावा यह है कि यूनाइटेड नेशंस की बैठक में शांति के तमाम विकल्प तलाशे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के तेल के ठिकानों को निशाना बनाया है, वेयरहाउसेस को निशाना बनाया है, अब रूस पलटवार में भी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के सभी केंद्रों को एक एक कर ध्वस्त कर रहा है। एक और बड़ी खबर, एक और जगह जहां पर युद्ध भड़क रहा है, बात अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांत में पाकिस्तान की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक आज सवेरे की। कुनार में हुए हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग इस समय लापता है, कई लोग घायल है। पक्तिया में भी भारी नुकसान की खबर है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह हमला आज सवेरे 4 बजे हुआ। पाकिस्तान जहां दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान में आतंक के ठिकानों पर हमला किया जिसमें 20 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, वहीं तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, उसने कहा कि कुनार में 3 नागरिकों की मौत हुई, 4 नागरिक घायल हुए। तालिबान सरकार के जो प्रवक्ता है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बताया कि कुनार में एक घर पर हुए हमले में 1 महिला और 2 पुरुष मारे गए। पाक्तिका प्रांत के बरमल जिले में भी 2 जगहों पर बमबारी हुई। यहां पर एक घर और एक दुकान को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन यहां पर किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान इस हमले का पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक हालिया बयान ने देश में सियासी गलियारों में एक नया विवाद छेड़ दिया है। हामिद अंसारी ने दावा किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के लिए असली खतरा कम्युनिज्म यानी वामपंथ से नहीं बल्कि या साम्यवाद से नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता का है। राइट विंग हिंदू से उनको खतरा था, कम्युनलिज्म से उनको खतरा था, ऐसा उन्होंने दावा किया। हामिद अंसारी के इस बयान पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर है।
2: देखिए, हामिद अंसारी आजादी के वक्त किसने क्या कोट किया था उसको आज कोट कर रहे हैं। हामिद अंसारी मुस्लिम समाज में पैदा हुए और देश के उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद भी इस तरह की भाषा है, किस तरह की जुबान बोल रहे हैं। इससे उनके बयान से मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 سالوں میں جتنا مسلمانوں نے ترقی کی ہے نریندر مودی کی حکومت میں اتنی ترقی کہیں نہیں ہوئی ہے. سروے کرا کر دیکھ لیں کہ مسلم سماج کے لوگ پڑھائی لکھائی میں آگے آ رہے ہیں, وہ یو پی ایس سی کے ایگزام میں ان کا ریزلٹ اچھا ہوا ہے, مسلم سماج کے لوگوں کو دنگا مکت شاشن دیا ہے. کانگریس کے راج میں دنگے ہوتے تھے, ہزاروں مسلمان مار دیے جاتے تھے, قتل ہو جاتا تھا. آج 12 سال سے کوئی دنگا نہیں ہے, فساد نہیں ہے, کہیں کرفیو نہیں لگا ہے, پھر بھی اس طرح کی بھاشا جس طرح حامد انصاری نے بولا ہے یہ درباگپورن ہے. ان کو اس طرح کی بھاشا کے لیے معافی مانگنی چاہیے.
0: اس خبر پر رہے گی نظر, لیکن فی الحال وقت ایک بریک کا. دیش اور دنیا کی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک.
3: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹوتھ پیسٹ کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ ان ایسوسیشن ود
4: بھارت کی اپنی الیکٹرک سواری سوکوڈو.
5: جو نیتا پرتیپکش ہیں لوک سبھا میں راہل گاندھی جی, وہ ایک کارکرم لیتے ہیں, چھاتروں کے بیچ جاتے ہیں. نام تو انہوں نے چھاتروں کی گونج دیا ہے, لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں, اپمان کرتے ہیں, بھارتیہ سنسکرتی کا بھی اپمان کرتے ہیں, اور جو شریشٹھ نیتا ہیں ان کا بھی اپمان کرتے ہیں. جو شریشٹھ ہمارے اس دیش کے لیے جنہوں نے پورا اپنا سرو شریشٹھ دیا ان کا بھی وہ اپمان کرتے ہیں.
6: بھارتیہ جن مانس میں ماں کا جو استھان ہے وہ سروچ ہے, اور جب بھی جو ان کے اس چھوی کو کھنڈت کرنے کی کوشش کوئی بھی ویکتی کرے تو پھر اسے جنتا قطعی سویکار نہیں کرتی ہے. اور یہ سیلف گول انیک اوسروں پر راہل جی کر چکے ہیں, الگ الگ طریقے سے بڑے بڑے ابھیان, خود کے دوارا چلائے جا رہے ابھیان کی ہوا نکالنے میں انہیں مہارت حاصل ہے, انہیں کسی شترو کی ضرورت نہیں ہے.

0: önce dediğim bir yapar değil ben de.
1: Et çima bir cümle var iyi galiba. Bir bağıtla bir cümle var.
2: 7 सितंबर को गुलजार सिंह
1: मेरी बहुत अजमे बार है
3: 30 बार की चाहिए उसने
1: मैं चिट्टे बारे से बात करता हूं
4: 20 सितंबर को जगसीर सिंह दोनों मामले एक जैसे हैं
0: एक्शन चिट्टे दिए मीडिया पार्टी दी मैंने चले मैंने सामान चले बैंक के नाम मैं जाते हैं डिलीट करवा दिया
4: गुलजार ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई और अंत में आत्महत्या करनी पड़ी जगसीर सिंह ने भी ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई और जहर खाकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है, नेता नगरी के लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना बुहाल हो गया है। जगसीर सिंह का मामला भी ऐसा ही है। जगसीर सिंह पंजाब के संगरूर में रहते हैं। रविवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि ड्रग सिंडिकेट के लोग धमकाते हैं। जगसीर सिंह ड्रग सिंडिकेट के निशाने पर इसलिए आए क्योंकि ड्रग्स बेचते हुए कुछ लोग उनके घर के सीसीटीवी में कैद हो गए। जगसीर ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ड्रग्स माफिया ने जगसीर के घर पर हमला कर दिया, उसका सीसीटीवी तोड़ दिया, सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट करने के लिए धमकाया गया, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद जगसीर ने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की। पंजाब में नशा तस्करी गंभीर विषय है। गुलजार सिंह ने भी नशे का मुद्दा पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था और फिर दबाव और धमकियों की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे, उनका बेटा नशे की लत में था, पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गईं, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है उसकी वानगी संगरूर की एक घटना है। गुलजार की जान चली गई और जगसीर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: पश्चिमी यूपी से सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा वार, एसपी बीएसपी ने बढ़ाया परिवारवाद, कांग्रेस ने दिया जातिवाद, बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद प्रथम। गठबंधन पर अखिलेश यादव की ओवैसी की को दो टुक, कहा जो पहले था वही रहेगा। मायावती पर भी कसा तंज, किसी को रथ का लाल रंग नहीं दिख रहा। राजस्थान मेयर चुनाव में बीजेपी की बंपर विजय, 5 में से 4 सीटों पर कब्जा, कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से करना पड़ा संतोष। बिहार के जमुई में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में एसआईटी का गठन, 3 गिरफ्तार, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया छिटपुट घटना, राहुल बोले वीडियो बेचैन करने वाला। आईआईटी मुंबई में सुसाइड केस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, डीन पद से हटाए गए प्रोफेसर तुल्ला, कैंपस में छात्रों का आज भी प्रदर्शन, पुराने बयान पर भी प्रशासन ने मांगी माफी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली के वोटर लिस्ट में नए सिरदर्द और नए सरप्राइज पर है। दर्द यह है कि दिल्ली के 33 लाख से ज्यादा वोटर्स को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है, जो अपना दस्तावेज सुधारने के चक्कर में फंस गए हैं। सरप्राइज यह है कि खुद चुनाव आयुक्त से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक, जगदीप धनखड़ से लेकर एस जयशंकर तक, न जाने कितने वीवीआईपी है जिन्हें चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है। किसी के फॉर्म में तार्किक विसंगति पाई गई है तो किसी की मैपिंग नहीं हो पा रही है। अब ये लोग अपने दस्तावेज लेकर नाम, पहचान, लिंग, पता, उम्र सब वेरीफाई करा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वोट चोरी के लिए बीजेपी का ये फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर है, जिसके चक्कर में खुद अब बीजेपी वाले फंस गए हैं। तो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि जिन 47 लाख से अधिक लोगों के नाम कटे हैं, उसका कोई खुलासा सार्वजनिक मंच पर नहीं किया गया है, न तो उसका कारण बताया गया है, न उनके नाम का ब्यौरा दिया गया है। उधर एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को अपारदर्शी और सॉफ्टवेयर की ओर से तार्किक विसंगति बता देने को लेकर चुनाव आयोग से सफाई मांगी गई है। दिल्ली के एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो ये भी है कि एक ही एसआईआर की प्रक्रिया, एक ही तार्किक विसंगति वाले सवाल एक जगह बंगाल में उन्हें एडजुडिकेशन में डालकर वोट नहीं देने दिया जाता है और अपीलेट ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया जाता है, और उधर दिल्ली में उसी कैटेगरी के वोटर्स का निपटारा ईआरओ के दफ्तर में ही हो रहा है। ऐसा क्यों? दूसरा यह है कि बंगाल में अपील में जाने वाले 93% वोटर सही पाए जा रहे हैं, तो क्या एसआईआर के कारण बंगाल के चुनाव नतीजों पर पक्षपाती असर पड़ा है और ये जो आरोप है क्या वो सही है? ऐसे और भी सियासी सवाल है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए।
1: चुनाव आयुक्त एस एस संधु, पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे, पूर्व सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद, पूर्व एलजी नजीब जंग, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, लुटियंस दिल्ली में न जाने कितने ऐसे वीआईपी हैं जिनका नाम, पहचान, पता, ठिकाना चुनाव आयोग को नहीं मिला है, लिहाजा नोटिस जारी करना पड़ा। दिल्ली में चले एसआईआर प्रक्रिया में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद पता चला कि 1,45,00,000 में से 47,56,000 नाम यानी 32.78% नाम हट गए, बचे केवल 97,50,000। इसमें भी 33,13,000 से अधिक लोगों को नोटिस मिल गया है। इसमें 19,33,000 से ज्यादा लोगों के फॉर्म में सॉफ्टवेयर ने 11 तरह की तार्किक विसंगतियां पकड़ी हैं और बाकी 13,79,785 लोगों के नामों की मैपिंग नहीं होने पर नोटिस मिला है।
2: नोटिस तो ठीक ही तो है ना, अगर किसी की मैपिंग नहीं हुई तो उसकी नोटिस जाना ही चाहिए, ये तो खूबसूरती है एसआईआर की।
3: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत है यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, मैच भी कर दिया, दस्तखत के साइन भी हो गए बीएलओ के, फिर भी नोटिस दे दिया। What kind of special intensive revision? It is special intensive deletion. Why should you call it special intensive revision? Special intensive deletion and special intensive addition. Delete valid votes, add invalid votes.
4: ऐसा रद्द होना चाहिए। पारदर्शिता क्या है? ये सबसे बड़ा घोटाला है, फ्रॉड है हमारे देश का।
1: दिल्ली के ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जब खुद चुनाव आयुक्त को नोटिस हो गया तो सवाल उठे कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया गड़बड़ है। आयोग ने साफ किया कि नोटिस तार्किक विसंगतियों के कारण मिले हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर ने किसी के नाम की स्पेलिंग में अंतर, उसके पिता पति के नाम में अंतर, माता पिता की उम्र से बेहद कम अंतर, दादा पोती की उम्र में बेहद कम अंतर, 6 से अधिक संतानें, संतानों के बीच असंभव अंतर, नाम के लिंग में अंतर, अस्वाभाविक उम्र, अपलोड की गई तस्वीर का अंतर, मकान नंबर की विसंगति, जमा दस्तावेजों में विसंगति पकड़ी है और उसका मिलान डेटाबेस से नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि दस्तावेज मिलान सही पाए जाने के बाद नाम जोड़ दिए जाएंगे।
2: अमीर और गरीब का इसमें कोई है? मान लीजिए अगर आप बाहर थे पहले, आप दिल्ली से बाहर कहीं थे और आपकी वोट बाद में बनी है, तो आपको उसमें मैपिंग करा के देनी पड़ेगी।
5: ये फार्म बीएलओ भर के इनका वोट बनवा देंगे। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जो आपने एक तिहाई वोट काट दिए, उनके वोट कैसे बनेंगे? उनके यहाँ तो बीएलओ भी नहीं जा रहा है।
1: सवाल सियासी भी है और कानूनी भी। सियासी सवालों की फहरिस्त वोट चोरी से शुरू होती है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि एसआईआर केवल भाजपा द्वारा वोट चोरी व लोकतंत्र को खत्म करने का औजार ही नहीं है, बल्कि ये फ्लॉड प्रोसेस और एक फ्रॉन्स्टीन मॉन्स्टर जिसने अब उसी के लोगों को फंसा दिया है। वैसे एसआईआर को वोट चोरी करार देने की सियासत बिहार से ही शुरू हो गई थी, जब पहली बार एसआईआर रोल हुआ। बंगाल में तो विचाराधीन मतदाताओं की तादाद ऐसी है कि लाखों लाख वाजिब वोटर वोट नहीं दे पाए, और अब दिल्ली में 32% से ज्यादा नाम काट दिए गए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिना साफ कारण बताए अपारदर्शी तरीके से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं, जिससे जायज वोटर्स के अधिकार खतरे में है। हटाए गए 47,56,000 नाम और नोटिस पाने वाले 33,13,000 लोगों के नाम और कारण वेबसाइट पर नहीं है। याचिका में मांग की गई है कि सॉफ्टवेयर में तार्किक विसंगतियां और नो मैपिंग का क्या पैमाना है, क्या एल्गोरिदम और क्या नियम है, ये बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर फौरन सुनवाई हो रही है, क्योंकि अभी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। बंगाल में एसआईआर से पहले घुसपैठिए पर सियासत हुई, एसआईआर के वक्त डिलीशन पर सियासत हुई, और अब एडजुडिकेशन पर सियासत हो रही है।
6: सारी एक्सरसाइज घुसपैठियों के नाम से शुरू की थी बिहार में, कितने पकड़े घुसपैठिए आज तक क्यों नहीं बताया? अब तक हम लोग बेवकूफ थोड़ी थे, हम क्या करते थे, प्यूरिफिकेशन ही तो करते थे 75 साल से। 2002 के इंटेंसिव रिविजन के बाद इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त की जो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी जैसे आज की है, उसने ये फैसला किया कि आगे से हम इंटेंसिव रिविजन की जरूरत नहीं, अब हम सिर्फ समरी रिविजन करेंगे, क्योंकि वोटर रोल तो कंप्यूटराइज हो गए।
1: दरअसल बंगाल में एसआईआर हुआ, चुनाव भी हो गया, बीजेपी की सरकार भी आ गई, लेकिन अभी तक 38 लाख लोगों को इंसाफ नहीं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि अदालत के आदेश पर बनाए गए 19 ट्रिब्यूनल्स में से कुल 38,31,000 अपीलें दायर हुई थी, जिसमें 22,21,000 अपीलें नाम जुड़वाने के लिए और 16,10,000 अपीलें दूसरों के नाम हटाने के लिए दर्ज की गई। आयोग ने बताया कि पिछले 5 महीनों में कुल 1,26,194 अपीलों का निपटारा हुआ है और 37,05,000 से अधिक मामले लंबित हैं। ये खुलासा भी हुआ कि निपटाए गए 1,26,000 मामलों में 1,13,943 यानी 93% मामले सही पाए गए। अपील निपटान में हो रही देरी का जिक्र करते हुए आयोग ने ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से बढ़ाकर 42 करने का प्रस्ताव भी दिया है। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यह बड़ी दिलचस्प बात है कि दिल्ली के भीतर अगर इन 31,67,000 वोटर्स के नाम भी अगर कट जाते हैं तो दिल्ली में एसआईआर के बाद वोटर्स कटने का प्रतिशत करीब 50% से भी ऊपर चला जाएगा। शायद इसीलिए कपिल सिब्बल इसे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नहीं तो स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह महज दिल्ली के वोटर्स का सवाल है या पूरे देश भर में, जबकि 6.18 करोड़ वोटर्स काट दिए गए अब तक जहां पर एसआईआर हुआ है, उन सभी का इस पे सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी चर्चा में शामिल होंगे, प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और सत्य प्रकाश मिश्रा ये भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। दरअसल एसवाई कुरेशी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया इसलिए की जा रही थी कि घुसपैठिए ढूंढे जाए, कितने घुसपैठिए ढूंढे गए इसका आंकड़ा अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जाहिर नहीं किया गया है। कई सवाल है, 3 सवाल हम इस पैनल के सामने रखेंगे। पहला सवाल, क्या दिल्ली में वीआईपी को नोटिस से एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी साबित होती है? क्योंकि यह कहना बीजेपी का है कि देखिए पहले तो गरीबों को का नाम काटा जा रहा है यह कहा जाता था, अब तो देखिए वीवीआईपी के नाम भी कट रहे हैं। दूसरा सवाल, तार्किक विसंगति पर बंगाल में ट्रिब्यूनल, दिल्ली में ईआरओ से निपटना, ऐसा क्यों है? दो अलग अलग प्रदेश, दो अलग अलग पैमाने क्यों लगाए जा रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या बंगाल में वाजिब वोटर्स को वोटिंग से रोकने से चुनाव प्रभावित किया गया है? क्योंकि एक अंदाजा लगाया जा रहा है उसके तहत 12 साल लग सकते हैं अगर ट्रिब्यूनल्स में उन सभी वोटर्स की सुनवाई की जाएगी जिन्हें तार्किक विसंगति के नाम पर वोटर लिस्ट से दूर रखा गया था। तो प्रदीप भंडारी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, क्योंकि अब तो चलिए बड़े बड़े वीआईपीज के भी नाम आने लग गए हैं, इसमें एक नाम तो भारत रत्न भी है, लालकृष्ण आडवाणी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं उनका भी नाम है, चुनाव आयुक्त है SS संधु उनका भी नाम है, अलग अलग तरीके के, किसी का नाम नहीं जुड़ रहा है, किसी का मैपिंग नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इसको मानकर चले कि भाई अब तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ठीक ठाक है, मतलब इसमें कोई बायस्ड तरीका नहीं है जो पहले आरोप लगाया जा रहा था कि भाई सिर्फ गरीब वोटर्स के नाम कट रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोटर्स के नाम कट रहे हैं, या फिर अब बड़ी गंभीरता से इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिमाग हटाकर किसी मशीन के जरिए, एआई के जरिए यह पूरी प्रक्रिया इस्तेमाल की जा रही है, जिसके वजह से किसी का भी नाम कटा जा रहा है, किसी को भी नोटिस जा रहा है, इसमें से कौन सा मतलब निकाला जाए? पहले प्रदीप भंडारी, उसके बाद अजय उपाध्याय जवाब देंगे।
7: देखिए साहिल जी, आज सच में अगर कांग्रेस पार्टी में 1% भी सच्चाई है साहिल जी, मैं 99% की सच्चाई की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1% भी सच्चाई है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता को हाथ जोड़कर आज तक के 5 बजे के शो पे साहिल जोशी के सामने देश की जनता से राहुल गांधी के बिहाफ में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तमाम समय पे ये कहा करते थे कि सिर्फ ऑपोजिशन के वोटर्स को चुन चुन कर, मैं कोट करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के वोटर्स और गरीबों को चुन चुन कर एसआईआर से हटाया जा रहा है। आप याद करिए जब वो बिहार के अंदर गए थे, तो आज ये साबित हो गया है कि ये झूठ था। एसआईआर एक प्रोफेशनल एक्सरसाइज है। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक केस पे। ये जो स्पेसिफिक केस की आप बात कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात हुई है और तमाम और बाकी लोगों की बात हुई है, क्या रहा उसमें? उसमें एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी रही, कंसेप्ट क्या रहा? उसके बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में, क्योंकि कुछ फाइलिंग में हो सकता है कभी कभी गलती हो जाए, उसके बाद में जाकर वहां पे बीएलओ आया, बीएलओ ने वेरीफाई किया और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि भाई वो वैलिडेट हो गया और मेन रोल के अंदर आ जाएगा। इसीलिए साहिल जी, अब आप इसको कोरिलेट करिए बंगाल से। बंगाल में टोटल 37 लाख नाम हटे गए थे, अपील कितनी हुई? सिर्फ 1,26,000। तो 3%, 97% प्लस एक्यूरेसी रिकॉर्ड रहा बंगाल के अंदर भी। एक बार अपनी बात कंप्लीट,
0: क्लैरिफिकेशन, प्रदीप भंडारी क्लैरिफिकेशन जी, गलत कोर्ट नहीं जाना चाहिए।
7: बोलिए,
0: 36 लाख अपील हुई है ट्रिब्यूनल के सामने, उसमें से सुनवाई केवल 1,26,000 की हो चुकी है, 38,31,000 की अपील हो चुकी है। और ये देखिए, ये डेटा हम लोग यहां पर चला रहे हैं, ठीक है, सिर्फ महज 1,26,000 अब तक सुनवाई हो पाई है अप्रैल महीने से। ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए।
7: तो मैं भी कह रहा हूं, पर अगर टोटल आप परसेंटेजेस निकालेंगे तो दैट परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी राइट नाउ फॉल्स टू मोर देन 90%। अब ये मेरी बात आप मानोगे नहीं, मुझे पता है, तो आपको मैं एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, और ये स्टेटमेंट है मैथ्यू कजगलंकन का, जो कांग्रेस के एमएलए है, और उन्होंने कहा कि हम एसआईआर का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि केरला के अंदर एसआईआर के वजह से इतने फर्जी नाम हटे जिस जो कम्युनिस्टों को वोट डाला करते थे। मैं तो नहीं कह रहा है, कांग्रेस कह रही है। तो आज मुझे लगता है साहिल जी, हम सबको जितना हम लोग ने एसआईआर के ऊपर चिंता व्यक्त करी, आज मुझे आपको और देश के हर व्यक्ति को और साथ में पैनल पे जो लोग बैठे उनको आज कहना चाहिए कि एसआईआर पे जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि बीजेपी का एजेंडा है, वो झूठ साबित हुआ है। तो पहले कांग्रेस का प्रवक्ता माफी मांगे, फिर आगे की बात होगी। भाई
0: आप जिनको नोटिस मिला है उन सभी को ईआरओ के सामने दस्तावेज लेके जाना पड़ेगा, यानी लालकृष्ण आडवाणी भी अपना मैपिंग की पूरी कागजात लेके जाएंगे, वो दिखाएंगे ईआरओ को, बताएंगे कि भाई देखिए मैं सचमुच में यहाँ का वोटर हूँ, मेरी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी वोटर रही है और उनकी पोती भी यहाँ पर वोटर रही है, हमारा सबका मैपिंग 2002 से जुड़ सकता है, ये उनको, मैं 2002 में भी यहाँ का वोटर था। ये ईआरओ के सामने सुनवाई होगी ना इस पूरे मामले की? अभी
7: सुनिए, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पहली बात जा सकता है, पॉइंट नंबर वन। यहां पे तो आपको रेखा गुप्ता जी का केस लेते हैं ना, स्पेसिफिक केस को लेते हैं हम, अभी जो केस इन पॉइंट है जिसपे निवारण हो चुका है। ये केस इन पॉइंट में क्या हुआ, एक ड्राफ्ट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से ड्राफ्ट में नहीं आया, उसके बाद बीएलओ ने विजिट किया और फिर ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि इट विल बी वैलिडेटेड एंड पुट इन द फाइनल इलेक्टोरल रोल विच विल बी पब्लिश्ड फॉर ऑन नवंबर 4, 2026। तो साहिल जी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी।
0: इन 37 लाख वोटर्स को जिनको नोटिस गया है, इन सभी को एक मौका है। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, अब बताइए, अब तक तो यह माना जा रहा था कि भाई उन सिर्फ गरीब तबके के लोग या फिर स्पेसिफिक किसी समुदाय से जुड़े हुए लोग, उन्हीं को इस तरीके के नोटिस जा रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के। अब देखिए, सभी लोग एक बराबर हो गए, रेखा गुप्ता से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री, भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से लेकर SS संधू तक, जो खुद चुनाव आयुक्त है, सभी लोगों को नोटिस गया है। तो जो यहाँ पर प्रदीप भंडारी मांग कर रहे हैं, आप बताइए उस पर आपका क्या कहना है?
7: माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मेरा अजय भाई आप बोल दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आज अजय भाई
8: पहले बीच में बोलना बंद करें,
7: माफी मांग लो।
8: ये बीच में नाटक नहीं, बीच में नाटक नहीं,
7: सच्चाई बोल रहा हूं।
8: पहले इनको
7: जनता की बात नाटक करती है,
8: नाटक वाला आपका एक कॉमेडी यहाँ करने आए हैं।
7: कॉमेडी राहुल गांधी ने करी थी,
8: कॉमेडी करने राहुल गांधी ने करी थी, सरकार ने बना दिया है। साहिल जी ऐसे नहीं होगी,
0: चलिए कोई
8: आगे डिबेट नहीं करेंगे।
0: अजय
8: कॉमेडी प्रदीप भंडारी रोज करते हैं। अब बात रखें, बात बहुत गंभीर है, लोगों के मताधिकार का मामला है। पहली बात साहिल जी, जिस तरह से ये पूरी तरह से सरकार की ये स्ट्रेटजी, मैं समझ रहा हूं कि वोट काटने का है, चुनाव चोरी का है, लोकतंत्र की हत्या का है, समझ में आता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ आम मतदाताओं के साथ जिस तरह ट्रेजडी हो रही है, जिस तरह उनके अधिकार को ही खत्म करने का काम, संवैधानिक प्रदत्त अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं कुटराघात करने का काम ये सरकार कर रही है, इसके लिए वाकई भाजपा और देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग तो बेशर्म हो गया है, और चुनाव आयोग का समर्थन करने वाले बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां बेशर्मी से जिस तरह बात कर रहे हैं, और जिस तरह से कॉमेडी बना दिया, पूरे सर्कस बना दिया है पूरे SIR को, ये पूरा देश देख लिया। बताइए आप ही, VIP में 50 एवरेज 50 लोगों की मैं मान लू, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विदेश मंत्री से लेकर के पूर्व और वर्तमान इनके, इन लोगों के लिए एक अलग कैटेगोरी बना दी गई सुनवाई के लिए। क्या ये वन वोट का वैल्यू, संवैधानिक जो अधिकार है कि आम जन मतदाता और VIP अलग अलग होते हैं क्या? ये इससे बड़ा मजाक संवैधानिक क्या हो सकता है? क्या इस पर क्षमा मांगेंगे चुनाव आयोग के जो यहाँ प्रवक्ता भाजपा वाले बैठे हैं,
7: जवाब
8: जो इनके बहनों ही हैं?
0: नहीं, जरा इलेबोरेट करिए अजय उपाध्याय जी।
8: क्या राजनीतिक अधिकार का इस
0: तरह इलेबोरेट करिए, मुझे इस बात को थोड़ा इलेबोरेट करिए कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि VVIP मतदाता और सामान्य, जरा वो बताइए।
8: प्रेस रिलीज आई है अभी, चुनाव आयोग के प्रेस रिलीज को जरा पढ़ा जाए, आप उसको दिखाइए लोगों के बीच कि कहा गया है कि जो इस तरह के लोग हैं।
0: चलिए दिखा देते हैं,
8: अलग से ट्रीटमेंट,
0: जरा दिखा दीजिए, फुल स्क्रीन दिखा दीजिएगा।
8: समान मतदाता,
0: दिल्ली के CEO का बयान आया हुआ है, जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की दिल्ली वासियों के लिए, खास करके सभी वोटर के लिए समान नियम है। अशोक कुमार है, CEO है, जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा। CEO है अशोक कुमार, उनका बयान है, दिल्ली के CEO अशोक कुमार का यह बयान है कि सभी के लिए एक समान नियम है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह बात कही है। नोटिस जिनको मिला हुआ है उन सभी को ऑनलाइन वो अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, किसी को खुद होकर ERO के सामने जाने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा, यह भी उन्होंने कहा है। सुनवाई के दौरान खुद उपस्थित रहना होगा, सभी वोटर के लिए नियम समान है। प्रदीप भंडारी, रिकॉर्ड सही रखने के लिए नोटिस दिया गया है, अब अशोक कुमार कह रहे हैं कि खुद ही उपस्थित रहना पड़ेगा।
7: साहिल जी चलिए, ये तो मेरे से भी ज्यादा हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी और मोरालिटी है, इसके लिए तो हम सबको स्वागत करना चाहिए।
0: बहुत ज्यादा इंटेग्रिटी हो गई है। अजय उपाध्याय जी आपकी बात खत्म करिए।
7: अच्छा चलिए,
0: एक सेकंड, नहीं एक मिनट, अजय उपाध्याय
8: मेरी बात खत्म करिए। नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, सच पूछिए तो। हम शुरू से कह रहे थे, जब से ये बिहार में SIR का चोरी शुरू किया चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश जी का आदेश जिस तरह चला, वहां भी लगभग 64 लाख लोगों के वोटों के साथ घपला हुआ। बंगाल में आया तो सबने देख लिया, आपने दिखा भी दिया कि 93% जिन लोगों ने सुनवाई हुई है उसमें सही माना गया। 12 साल सुनवाई होगी ट्रिब्यूनल में, तब जाकर के वो 38 लाख लोगों का वोट का अधिकार उनको मिलेगा। तब तक तो चुनाव इन लोगों ने लूट लिया, तो जनता के अधिकार को कैसे लूटने का काम इन लोगों ने किया? क्यों नहीं वो चुनाव रद्द होना चाहिए पश्चिम बंगाल का, और फिर से चुनाव होना चाहिए? दूसरी बात, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के लिए जिस तरह से ये एक तरह से उनके अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, 47 लाख लोगों का वोट आप काट देंगे,
7: लगभग
8: एक तिहाई, अब तो 50% की बात आ रही है, ये कैसा चुनाव और कैसा लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? तो ये हत्यारे हैं लोकतंत्र के।
0: प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए,
8: इनसे मिला हुआ है।
0: पहले 47 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं, 1 करोड़ 45 लाख मतदाताओं में से 47 लाख वोटर्स के नाम काटे जाते हैं। किसी भी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह नहीं बताया जाता कि किस वजह से ये नाम काटे गए, एक ओवरऑल एक प्रेस रिलीज दिया जाता है कि भाई इतने इतने लाख इसके वजह से कट गए, इतने इतने लाख इसके वजह से कट गए, अब सबको नोटिस दिया जाता है।
7: चलिए
0: तो भाई ये ट्रांसपेरेंसी की भी डिमांड कहीं ना कहीं हो रही है ना प्रदीप जी।
7: साहिल जी एक एक कर एड्रेस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं करेंगे। पहला इन्होंने बात करी चोरी की,
0: बिल्कुल
7: अरे अब अजय जी बीच में मत करिए, गंभीर मुद्दा है, कॉमेडी मत करिए, गंभीर मुद्दा है। अब मैंने इनको सुना साहिल जी, मुझे प्लीज
0: साहिल जी मुझे इनको सवाल पूछा है, जवाब दे दीजिए अपने अपने समय पर।
7: मैं इनको
0: अजय जी अपने अपने समय पर
7: मैंने इनको सुना,
0: अजय जी अपने अपने समय पर, ऐसा नहीं होगा
7: फिर वरना
0: नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज,
8: इनको भी
0: अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पर, अजय जी प्लीज नहीं, मैंने उनको सवाल पूछा, मैंने उनको सवाल पूछा है, मैंने उनको सवाल पूछा, मैंने उनको सवाल पूछा,
8: इनके लिए
0: सुनिए प्लीज,
8: ये एक
0: सभी के लिए लागू होगी, उनको सवाल पूछा है
7: जनता का समय में,
0: उनको सवाल पूछा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं अजय जी,
8: ये जो मजाक कर रहे हैं,
0: आपको पूरा मौका दिया गया, स्वयं प्रकाश पुरोहित भी इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लीज
7: प्लीज
8: नहीं
0: प्लीज
7: जवाब
8: बोल दीजिए
0: प्रदीप भंडारी प्लीज, आपकी आपकी बात रखिए, मैंने आपको सवाल पूछा,
8: दूसरे के बीच
7: यार इनको शांत कराइए ना आप प्लीज, मैं वरना फिर डिबेट खराब हो जाएगी, मैं भी बोलूंगा ये भी बोलेंगे, क्या अजय जी यार रो रहे हैं आप, रिलैक्स करिए,
0: चलिए हो गया
7: एक एक
0: प्रदीप भंडारी बात रखिए आपकी,
7: एक एक करके ये देखिए, मैं एक छोटी सी मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, ये चोरी वोरी इधर उधर की बात कर रहे थे, अगर इधर उधर की बात करेंगे तो 1980 के समय में सोनिया गांधी बिना हिंदुस्तान के सिटीजन बने वोट कैसे डाला था, सबसे बड़ी देश की वोट चोरी सोनिया गांधी ने करी थी, जिसपे अभी तक कांग्रेस पार्टी ने जवाब नहीं दिया, और जो केस जो अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, पॉइंट नंबर वन। अब मैं स्पेसिफिक पे आता हूं, इन्होंने बिहार की बात करी, पहले एक निर्णय कर लेते साहिल जी, क्या कांग्रेस एसआईआर के साथ में है या एसआईआर के विरुद्ध में है, पहले कांग्रेस ये बताए क्या है, अगर कांग्रेस या एसआईआर का विरोध कर रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी को केरला में अपनी सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि केरला के अंदर भले वो शशि थरूर हो गए जो बोले कि एसआईआर ने मदद करी हमको वोटर्स कर...

0: उन्होंने कहा कि एसआईआर ने केरला में मदद करी इलीगल डेड वोटर को हटाने में, तो पहले निर्णय कर लो। तो अगर मान लो कि एसआईआर के विरुद्ध है तो अपनी केरला में सरकार भंग कर दो। अब स्पेसिफिक केसेस पे आते हैं एक एक कर। इन्होंने बिहार की बात करी, मेरे पास बिहार का जब फाइनल रोल पब्लिश हुआ था उसका यह डेटा है, और उसमें सिर्फ 128 अपील हुई थी, जो 128 अपील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने करी थी, जीरो अपील कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट जो 17,549 है बीएलए उनने करी थी। तो कांग्रेस पार्टी ना तथ्य पे नहीं आती है, अब इस केस पे आ जाते हैं। साहिल जी, ये तो आपको और मुझे स्वागत करना चाहिए कि ये वीवीआईपी कल्चर नहीं है। कोई वीवीआईपी हो, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे हो या नॉर्मल आदमी हो, सबको वही फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है।
1: इस बात को मानता हूं,
0: बड़ा देश की लोकतंत्र।
1: चलिए, हमने अगर इस बात को मान भी लिया, प्रदीप भंडारी जी, अगर इस बात को मान भी लिया कि बड़े से बड़े वीवीआईपीस को भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन एक बात अभी भी इस पूरे मामले में, इसीलिए स्वयं प्रकाश पुरोहित इस पूरे डिबेट में आएंगे, एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपको एक प्रेडिक्शन देना चाहता हूं। मान लीजिए बंगाल की तरह दिल्ली के भीतर भी एक महीने के भीतर अगर चुनाव हो रहा होता तो देखिए क्या हो गया होता। आप सोचिए क्या हो गया होता। रेखा गुप्ता जी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सभी लोग वोटिंग से वंचित हो जाते, क्योंकि सभी को ट्रिब्यूनल भेज दिया गया होता। बंगाल के भीतर तो यही हुआ था ना, तभी तो सवाल उठाया जा रहा है कि भाई बंगाल में आप ट्रिब्यूनल को भेज देते हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर आप कहते हैं कि भाई ट्रिब्यूनल के सामने जाना होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है, यहां तो ईआरओ निपटारा कर देगा।
0: एक सेकंड,
1: ये तो फर्क पड़ जाएगा ना उसमें। स्वयं प्रकाश जी, यही बात सही है ना। उसके बाद प्रदीप भंडारी उसका जवाब दे लेंगे, पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित।
0: मैं दे दूंगा, बोलिए स्वयं जी, बोलिए।
2: पूरा देश देख रहा है।
1: स्वयं जी आप म्यूट पर है, आप ये बोलिए।
2: अभी सुन रहे मेरी आवाज? देखिए, चुनाव आयोग के बंगले अपने अपने ही देश के नागरिकों को मनमाने तरीके से भेजकर उनकी गरिमा और मर्यादा का खतरा कर दिया। बंगाल में एसआईआर ट्रिब्यूनल में 12 साल लग जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपील में जाने में 37 लाख लोग अपील में गए। बोल रहा है ये कौन बोल रहा है, किस कोर्ट में बोला जा रहा है? अभी तक कितनी सुनवाई हुई है? 37 लाख में 1 लाख समझी की अभी तक सुनवाई हुई है। चुनाव के पहले इन्होंने बहुत ढिंढोरा बजा था, घुसपैठिए 41 डिटेंशन सेंटर बनाए थे, 2623 डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को पकड़ कर रखा गया, उसमें करीब 2533 को आपने डिपोर्ट किया, और आपके मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बोलते थे 1.5 करोड़ रोहित के आगे। इसके मुद्दे पर आपने चुनाव किया, बंगाल का किया, बिहार का किया, और बंगालियों को अन्य प्रदेशों का बांग्लादेशी बोल करके, बंगाली भाषा बोलने वालों को बांग्लादेशी बोल करके उनको जेल में डाला जा रहा है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे जैसे भी लोग हो, चाहे लाल की कटवाली अटल बिहारी वाजपेयी तो चले गए, लाल की कटवाली भी है, उन्होंने बंगाल में चुनाव नहीं करवाया था क्या? एसआईआर, देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर ही सवाल है कि ज्ञानेश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रहरी बनकर काम किया है, उनके इशारों पर काम करते हैं। एसआईआर में जो नाम एडमिशन भी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के लोग उसमें नाम ऐड करवाते हैं, अपने अन्य प्रदेशों के लोग हैं जो चले जाएंगे अन्य प्रदेशों।
1: सवाल है प्रदीप भंडारी यहाँ पर,
2: हाँ
1: स्पेसिफिक सवाल है प्रदीप भंडारी यहां पर, बंगाल के भीतर 47 लाख वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे कटते हैं तो उनको एडजुडिकेशन में भेज दिया जाता है, यहां पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वालों को नोटिस देकर वक्त दिया जा रहा है ईआरओ के सामने जाके आप अपना निपटारा कर लीजिएगा, ये फर्क क्यों है?
0: चलिए एक एक कर हम जवाब देंगे।
1: कागज तो उनके पास भी थे, 93% जिनका एडजुडिकेशन में सुनवाई हो पाई है, 93% वोटर्स वापस आ गए, ये बदल क्यों है, ये अलग अलग पैमाने क्यों लगाए गए?
0: देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 97% कहना गलत है, पॉइंट अभी टोटल जितने हटे हैं उसमें से अगर आप निकाल के देखेंगे सो इट इज जस्ट एंड जस्ट 3%, सो देयर इज अ 97% सक्सेस रेशो, पॉइंट नंबर वन।
1: क्योंकि सुनवाई उतनी हो पाई है ना सर
0: प्रदीप जी, अगर आपको प्रोसेस ऑफ लॉ में विश्वास नहीं रखना तो हम कहेंगे कि एक केस है वो केस 20 साल तक चल रहा
1: है ना सर, लेकिन 12 साल
0: तो ऐसे
1: ये, अभी ये नंबर्स देखिए, ये
0: साहिल जी, साहिल
1: नहीं,
0: जी
1: बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स है, आप नंबर्स देखिए ना, देखिए सबसे ज्यादा वोटर कटे थे मुर्शिदाबाद में 7,47,000 और उसमें से सुनवाई कितनी हो पाई अपील की, महज 534, बाकी लोग क्या करेंगे, और उन 534 में से 93% अगर वापस आ रहे हैं तो आप देख लीजिए ना कैसे हो रहा है।
0: साहिल जी अब दो प्लाट में आपके आर्ग्यूमेंट को स्प्लिट करते हैं, पहला आपका आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि भाई एक केस में इतने सारे लोग

0: को सुनवाई रहती है, तो हम तो इसके पक्ष में ही है कि भाई और कोर्ट, तभी हम भारतीय न्याय संहिता लेके आए, टाइम बाउंड ट्रायल हो और कोर्ट होने चाहिए और चीज होनी चाहिए। आपका एक जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर सवाल है जो एक लार्जर प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल है जो हर केस में होता है। आप कहेंगे कि भाई एक केस के अंदर, मर्डर केस के अंदर कोई एक्यूज्ड है उसको सजा मिलने का जो पूरा का पूरा प्रावधान है वो इतना समय लगता है, तो ये जुडिशियल प्रोसेस का आपका सवाल है जो आपको लार्जर करना चाहिए। पर इस वक्त
1: तो ये बात कर रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आपको ईआरओ के सामने जाना पड़ेगा।
0: साहिल जी
1: इस पर बताइए ना, दिल्ली में
0: मार्जिन को एक्सीड करी थी 49 सीट्स के अंदर, उसमें से मेजोरिटी सीट्स कौन जीता, 49 में से 26 बीजेपी जीती। तो अगर मैं आपका आर्ग्यूमेंट लेके भी चलूं कि भाई अगर ऐसा बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो वो तो डिलीटेड मार्जिन वाले केस में भी नहीं दिख रहा, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसका
1: रिपोर्ट के अंदर हमने शो किया। अब आ जाते हैं दूसरी, कोशिश कर रहा हूं
0: अब स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। ये जो स्पेसिफिक आप मामला कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक मामले के अंदर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो कोर्ट से आप, कोर्ट के ऊपर आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ना। इट इज ऑन दी विजडम ऑफ द जज विल टेक प्लेस।
1: नहीं प्रदीप जी, आप समझिए मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं। आशुतोष जी, अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, मेरा इस पूरे मामले पर एक स्पेसिफिक सवाल इस तरीके से है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बंगाल के भीतर इंट्रोड्यूस की गई, बंगाल के भीतर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को एडजुडिकेशन में भेज दिया गया, लेकिन दिल्ली के भीतर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को सुनवाई का मौका ईआरओ के सामने दिया जा रहा है। ये दो भेद क्यों किया जा रहा है? मैं तो कॉन्स्पिरेसी का आरोप ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या चुनाव आयोग ने बंगाल के उदाहरण पर दिल्ली में कुछ नहीं सीखा, या अगर सीखा और अब ईआरओ के पास भेज रहे हैं तो मान तो लीजिए बंगाल के भीतर गलती हो गई।
0: कैसे?
1: दोनों में से कुछ एक चीज ठीक हो सकती है।
0: कैसे?
1: सही है ना आशुतोष जी,
0: बंगाल में कैसे,
1: समझ रहे मेरी बात को,
0: बंगाल में कैसे गलती हो गई बताइए।
1: मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ,
0: बताइए पहले
1: आशुतोष जी को बोलने दीजिए, मैं आता हूँ आप, उस पर भी आता
0: हूँ। वर्डिक के ऊपर कलर मत लगाइए
1: आशुतोष जी,
0: वर्डिक के ऊपर कलर मत लगाइए, इट्स अ स्वीपिंग मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल।
2: तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ,
1: आई एम नॉट मेकिंग, सिर्फ प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूँ आशुतोष जी।
2: मुझे तीन बातें कहनी है लेकिन मुझे इस बात को लेकर बड़ी हैरानी है कि अगर चुनाव आयोग अगर कोई मेस क्रिएट करता है तो सारी राजनीतिक पार्टियों को उसका विरोध करना चाहिए जम के, बीजेपी क्यों इतनी मजबूती से उसको डिफेंड करती है, मुझे इसको लेकर थोड़ी हैरानी करने इस बार बात बाकी। पहली बात,
0: बात लोकतंत्र की,
2: क्या चुनाव आयोग 93% लोगों से माफी मांगेगा जिनका वोटिंग, जिनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, जिनका वोटिंग राइट सीज कर दिया गया और वोट नहीं दे पाए, क्या चुनाव आयोग उनसे माफी मांगेगा? सारे एलिजिबल वोटर्स थे और आपने जबरदस्ती लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी निकाल के उनको वोट देने से मना कर दिया। दूसरी बात, क्या इस देश के अंदर दो तरीके का कानून होगा, बंगाल के लिए अलग कानून होगा, दिल्ली के लिए अलग कानून होगा?
3: अगर बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए अगर आप ट्राइब्यूनल बनाते हैं तो दिल्ली के अंदर ट्राइब्यूनल क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते भाई? ये डबल स्टैंडर्ड कैसे काम हो सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप बंगाल के वोटर को जानबूझकर डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहते थे, किसी को फायदा पहुंचाना चाहते थे, अन्यथा दिल्ली के अंदर भी एस एस संधू जो चुनाव आयुक्त हैं वो खुद जाएं ईआरओ के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो, अपने सारे कागजात दिखाएं वहां पे और लाइन में लगे, रेखा गुप्ता लाइन में लगे, अरविंद केजरीवाल लाइन में लगे, सब लोग लाइन में लगे, साबित करें अपने आप को कि वो इस देश के नागरिक है। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर, तीसरा प्रश्न इस बात को लेकर,
1: तो बोल रहे हैं कि सीईओ बोल रहे हैं कि ईआरओ के पास तो जाना पड़ेगा, बट मुझे पता है कि उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। बंगाल के भीतर मैं भी गया हूं, लंबी कतारें वहां पर लगी हुई थी ईआरओ के सामने, बीएलओ के सामने।
3: साहिल, बंगाल के गरीब लोगों को आप एक ट्राइब्यूनल से दूसरे ट्राइब्यूनल आप धक्का खिलवाएंगे, गरीबों को, दलितों को धक्का खिलवाएंगे, और यहाँ के जो इलीट वर्ग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो मुख्यमंत्री, उनके लिए ऑनलाइन होगा। इस देश के अंदर दो तरीके का कानून कैसे हो सकता है? तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ,
1: सत्य प्रकाश मिश्रा
3: चुनाव आयुक्त कौन था? अगर वो चुनाव, अगर इसका मतलब दो ही हो सकता है, या तो ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग सही काम कर रहा है या राजीव कुमार का चुनाव आयोग सही काम कर रहा है।
0: अरे भैया, कोर्ट ने बनाया, राजीव कुमार का कोर्ट ने सही काम, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे उन्नीस ट्रिब्यूनल बंगाल के अंदर बने थे,
1: क्यों बनाया इतने बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ना, क्यों बनाया,
0: ये तो क्यों बनाया सुप्रीम कोर्ट ने,
1: क्यों बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं क्यों, मैं बता रहा हूं ना आपको क्यों बनाया, क्योंकि चुनाव से एन पहले अचानक ये कह दिया गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर 37 लाख वोटर्स को हम एडजुडिकेशन में भेज दे रहे हैं, तभी तो जाकर सुप्रीम कोर्ट पर दरवाजा खटखटाना पड़ा कि भाई हमने तो पेपर्स दिए हुए हैं ईआरओ के सामने, बीएलओ के सामने, फिर भी हमारा नाम क्यों काट रहे हैं।
0: इससे तो आपको
1: क्योंकि कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिल रही है। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वही स्वागत करने का मौका दिल्ली में क्यों नहीं दिया जा रहा है? सत्यप्रकाश मिश्रा,
0: इट इज अबाउट दी अर्जेंसी।
1: दोनों मापदंड नहीं है, मुझे भी उठा रहे हैं यहाँ पर।
3: नहीं नहीं साहिल, साहिल
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही सवाल है प्रदीप जी। जब अगर दिल्ली के भीतर चुनाव होता तो सारे बड़े लोग, सारे वीवीआईपी जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, उन सभी को मतदान के अधिकार से वंचित रहना पड़ता। यही सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। सत्यप्रकाश मिश्रा,
4: सत्यप्रकाश मिश्रा बीच में रुके कोई, तब तो बोले हम। शाहिल जोशी जी
1: बोलिए, बोलिए सत्यप्रकाश जी बोलिए।
4: आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी कि अगर काट दिए जाएं, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो आपने लिया, तो चुनाव में आधे से अधिक वोटर कट जाएंगे दिल्ली। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? उसने कहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये नोटिस लीजिए, आपका 2002 के मुताबिक मैपिंग नहीं हो रहा है, मैपिंग मिलान नहीं हो रहा है, वो मिलान कराइए, वोटर आईडी लीजिए, घर जाइए। इतनी साधारण सी बात है, उसको आप मिर्च मसाला लगा के जितने लोग जितना प्रस्तुत करना है करें। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल ट्रीटमेंट रिवीजन नहीं है कि वीवीआईपी के घर उठ के चुनाव आयोग चला जाएगा। अच्छा हुआ कि चुनाव आयोग के आयुक्त को ही नोटिस मिला है, अच्छा हुआ ऐसे लोगों को नोटिस मिला है। अगर ये विसंगतियां दूर करने के लिए एक आयोग और प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या राहुल जी और ममता जी के घर से चलेगा एसआईआर? उनके घर से वोटिंग लिस्ट बनेगा इस देश में? कोई प्रक्रिया तो होगी और उस प्रक्रिया का सम्मान सभी को करना पड़ेगा, उसमें कुछ एरर हो सकता है, उस एरर को सुधारने की जिम्मेदारी
1: मेरे आपने आपने एकदम सिंपल आपने मुझे आपने एकदम सिंपल मैं आपको सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ।
4: अच्छा एक लाइन पूछिए, एक लाइन सिंपल जवाब दूंगा जी। मेरा लाइन है कि जो
1: बंगाल एक लाइन कह दीजिए आपकी,
4: बंगाल में डिलीशन हो गया था, उन्होंने कहा हम वोटर हैं, तो कहा एडजुडिकेट करा लेते हैं, उस पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया, जज साहिबा को ही घेर लिया। वो तमाशा सबने देखा है कि एक महिला हाईकोर्ट की जज को घेर कर मारने की साजिश चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में रात में जगा हुआ था, होल्ड ऑन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसके तत्वावधान में सारे पिटीशन पे सुनवाई करते हुए बंगाल में ये प्रक्रिया जारी रही और बिहार में पहली बार हुआ इस सीजन में, और बिहार में भी सारे वोटर जो
1: प्रकाश जी आपको एक बार फिर मैं आंकड़ा बताता हूं,
4: बहुत साफ है,
1: 38 लाख एप्लीकेशंस, सत्यप्रकाश जी 38 लाख एप्लीकेशंस ट्रिब्यूनल के सामने आए हुए हैं, उसमें से 22 लाख एप्लीकेशंस नाम जोड़ने के लिए आए हुए हैं, 16 लाख एप्लीकेशंस नाम हटाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। नंबर एक, नंबर दो, बड़ी दिलचस्प बात है,
4: नहीं
1: आपका जवाब ही लेना है, लेकिन जरा
0: गलत है, गलत
1: क्या बात कर रहे हैं,
0: बिल्कुल टोटल
1: कैसे गलत है,
0: 2700
1: ये नंबर है
0: साहिल जी, जो आप इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन की बात कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस को अपनी हेडलाइन चेंज करनी पड़ी थी।
1: हलफनामे का नंबर बता रहा हूं, प्रदीप भंडारी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दायर किया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप?
0: 100%
1: सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया हुआ है
0: साहिल जी,
1: उस हलफनामे का नंबर बता रहा हूं मैं अपना नंबर नहीं बता रहा हूं
0: मैं आपको, 38,10,620 अपील्स थी, जिसमें से 27,28,500 अपील्स जो थी वो नॉन एलिजिबल पाई गई थी, बचे में से टोटल जो नाम एडजुडिकेशन के थे 82,782, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 75,000 नाम के ऊपर जो है एलिजिबल हुआ, तो 75,000 को जब आप 27 लाख से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1% से नीचे का नंबर आएगा, तो 99%
1: बाकी एप्लीकेशंस की सुनवाई नहीं हो पाई है। अजय उपाध्याय आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय
0: उपाध्याय
1: मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, जरा बताइए।
5: चुनाव आयोग के प्रवक्ता जो यहाँ बोल रहे हैं, ये महज इत्तेफाक हो सकता है क्या कि भाजपा और सत्ता पक्ष के लोगों के पेट में दर्द नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? यहाँ झूठा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा का आईटी सेल यहाँ पे आकर के जो है जो बोलता है वो आपको भी झुठला रहे हैं। आज तक के एक गंभीर एंकर साहिल जोशी को ये झुठला रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल है उसको ये लोग झुठला रहे हैं। आप समझिए कि किस लेवल पर जा रहे हैं, ये लगभग 1,22,000 लोगों को जो अपील में अपील में गए उनका 93% रिजल्ट पॉजिटिव है। मैं ये बात इसका नहीं है, चुनाव आयोग इतना गुंडागर्दी क्यों कर रहा है किसके इशारे पर? अरे भाई क्यों इतना गुंडागर्दी कर रहा है? क्यों इस देश के 50-100 लोगों जो बड़े लोग हैं उनका तो हो गया मान लीजिए।
0: अरे भाई
5: ग्रामीण लोग क्या वो इतने टेक्निकली साउंड है? अरे भाई गरीबों को जो वंचित किया है चुनाव आयोग ने, इसके लिए
0: केरला के अंदर आप वेलकम कर रहे हो गरीबों को,
5: सुप्रीम कोर्ट को क्या इस पे इंटरफेयर?
0: अरे तो ऐसे की केरला में क्यों वेलकम कर दिया आपने?
5: हर चीज को तोड़ा है भाजपा के लोगों ने।
0: केरला में क्या सोशल आता है
1: दूसरे के बीच में?
0: मुख्यमंत्री
1: अपने समय पे सत्यप्रकाश
5: लोकतंत्र को हाईजैक करके
1: उपाध्याय जी आपकी बात पहुंच गई है। सत्यप्रकाश मिश्रा इसका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जो आपने सिंपल बात कही थी ना सत्यप्रकाश जी, मेरा आपसे सिंपल सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सिंपल सवाल यह था, उसके बाद आशुतोष भी बोलेंगे। सत्यप्रकाश जी मेरा सिंपल सवाल यह था कि बंगाल के भीतर प्रोसेस कैसे हुआ? बंगाल के भीतर पहले इन्यूमरेशन फॉर्म गए, इन्यूमरेशन फॉर्म भर के लोगों ने, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, लेकिन पहले इन्यूमरेशन फॉर्म गए, इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दिए बंगाल के वोटर्स ने, वो इन्यूमरेशन फॉर्म जिन्होंने भर के दिए उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के भीतर आ गया, उसमें से जिनके बारे में शंका थी उनको कहा गया कि भाई बीएलओ के सामने जाइए, आप अपनी बात रखिएगा। बीएलओ के सामने जाकर वो पेपर्स अपने लेकर गए, उसके बाद फाइनल लिस्ट आ गई, इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी। वो फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर एक एडजुडिकेशन में 37 लाख वोटर्स को नोटिस थमा दिया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके कहा गया कि भाई ट्रिब्यूनल्स लगाइए इनका, इनकी सुनवाई करने के लिए, तब जाकर वहां पर ट्रिब्यूनल्स की सुनवाई हुई है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी यही बात दिल्ली के भीतर क्यों नहीं हो पा रही है? दिल्ली में उनको ईआरओ के सामने जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन बंगाल के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उनको ट्रिब्यूनल के सामने जाने का मौका मिला, ये फर्क क्यों है? ये मुझे जरा समझाइए सत्यप्रकाश जी, उसके बाद आशुतोष बात करेंगे।
4: महोदय सारी प्रक्रियाओं में बंगाल में सारे पायदान पर उनको एक मौका मिला कि आप बताइए कि आप वोटर हैं, आपके पास जायज कागज हैं। आप जो इन्यूमरेशन से लेकर बीएलओ तक की बात कर रहे हैं, ऐसे यार ये बीच में करेंगे तो कैसे हो पाएगा? ये तीनों कूद गए। आप देखिए
1: अजय उपाध्याय जी, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, अपने अपने समय पे बोलिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा प्लीज। अजय प्लीज,
4: जिन वोटरों का नाम
1: सत्यप्रकाश जी को सवाल पूछा है वो बोलेंगे, उसके बाद स्वयं प्रकाश पुरोहित को भी अपनी बात रखनी है। अपने अपने समय पे बोलिए वरना किसी की बात सुनाई नहीं देगी। सत्यप्रकाश
4: जिनका नाम हटा बंगाल की लिस्ट से, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माना ना कि ये वोटर लिस्ट अभी के चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग ने बनाया है वो वैध है, उसको वैध वोटर लिस्ट मान करके चुनाव हो रहा। वहां अभी दिल्ली में भी अगर प्रक्रिया में समय है, अभी 30 सितंबर तक समय है, सारे चीज देंगे, फिर नवंबर में लिस्ट आएगी, और यही प्रक्रिया बिहार में हुई। इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है जो आप कह रहे हैं। सबको हर पायदान पर अपने तो वोटर बनाने
1: कि बंगाल में इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी?
4: जल्दबाजी नहीं
1: थी, जल्दबाजी की? स्वयं प्रकाश पुरोहित जवाब दीजिए।
4: नहीं, जल्दबाजी नहीं थी,
1: जवाब दीजिए।
2: हमने तो कहा था कि आप देखिए पूरे देश के अंदर में ये देश चलता है संविधान से, और चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो लाल रंग की जैकेट पहना हो चाहे हरे रंग की पहना हो, हर व्यक्ति को वोट एक ऐसी ताकत है जिससे सबको समानता मिलती है। वहां पे सब समान पायदान पर खड़े रहते हैं, उस वोट के अधिकार को छीना है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोगों को वोट के अधिकार से छीना गया। 37 लाख लोग जो आज पूरे देश के अंदर खड़े हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 12 साल लग जाएंगे। 1 लाख लोग नाम अभी तक जुड़े हैं। हमने भी तो यही कहा था, एफआईआर की प्रक्रिया जब हुई थी हमने कहा था कि आप इनके नाम जिसको इनको थोड़ा समय दीजिए।
1: ठीक है,
2: इतनी हड़बड़ी करके
1: आशुतोष
2: किसी के नाम
1: कुल मिलाकर एक बात समझ में यहाँ पर आ रही है जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर बंगाल प्रदीप भंडारी आपके पास, आशुतोष बोलेंगे उसके बाद जवाब आप ही से लेना है मुझे, लेकिन मुझे एक बात यहां पर समझ में आ रही है, अगर बंगाल की तरह जल्दबाजी में एसआईआर की प्रक्रिया दिल्ली में भी कराई जाती और 1 महीने के भीतर दिल्ली में चुनाव होता तो ये सारे बड़े नाम वोटर लिस्ट से बाहर होते, ये बात तो सही मानकर चले ना हम, या उनको मौका मिल जाता उसमें?
3: देखिए साहिल, आप मुझे लगता है आप थोड़ा सा ना प्रदीप भंडारी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप उनको मान के चल रहे कि इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता, वो इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं है। तो मैं थोड़ा एक बात कहना चाहता हूं। देखिए जो बिहार के अंदर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों नहीं थी,
0: प्रवक्ता नहीं है ये वो भी मान के ना चले।
3: प्रदीप एक मिनट प्रदीप थोड़े थोड़ा थोड़ा शांत रखो।
0: बोलिए बोलिए।
3: बिहार के अंदर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है, आपने देखा ना बिहार में कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिली, इसका मतलब बिहार के अंदर सब कुछ सही था। ऐसे संधु जो हैं इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयुक्त तो वो अपना पेपर ठीक नहीं रख सकते थे, लेकिन बिहार का गरीब गुरबा बहुत इंटेलिजेंट था, जीनियस था, और वहां पे कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद बिहार के अंदर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आ जाती है और उसके बाद आप ट्राइब्यूनल को भेज देते हैं। जब आप दिल्ली में आते हैं तो आप यहां लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, लेकिन यहां ट्राइब्यूनल को नहीं भेजते हैं। अरे ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा या चुनाव आयोग की मनमानी से चलेगा? ये खुली गुंडागर्दी है भाई, ये सीधी तौर पर मैं कहता हूँ
0: जवाब दे दूं,
3: ये खुली गुंडागर्दी है। और मैं तो ये सवाल बार बार पूछता हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी मजबूती के साथ डिफेंड कर रही है इलेक्शन कमीशन को?
0: मैं कह रहा हूँ आज आपकी डिबेट में पहली बार ऐसा हुआ, आशुतोष जी तमाम वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं कांग्रेस और विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू को, पर आज पहली बार ये कंफ्यूज लगे। डिबेट के शुरुआत में इन्होंने बोलना शुरू करा कि भाई एसआईआर का जो प्रोसेस है वो एसआईआर का प्रोसेस है, वो उसमें वीवीआईपीज्म होना चाहिए। फिर जब आपने न्यूज ब्रेक करी और बोली कि सब लोग को जाना पड़ेगा तो उनने वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। अब इनने बोला कि बीजेपी क्यों ईसी को डिफेंड कर रही है, पर ये भूल गए कि केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर को वेलकम किया। अभी कर्नाटका में एसआईआर हो रही है तो वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाके अगर जो एसआईआर के अंदर नहीं भरेगा उससे हम वोटर उससे बेनिफिट जो है सरकार का छीन लेंगे। तो पहले निर्णय करो एस कांग्रेस की एसआईआर के पक्ष में हो कि घुसबैठियों के पक्ष में हो। ऐसा नहीं हो सकता सोमवार को एसआईआर के पक्ष में बोलो मंगलवार को पक्ष में नहीं बोलो। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट रही, जब बंगाल में एसआईआर चल रहा था तो खुद इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि कैसे घुसबैठिए एक एक कर हकीमपुर बॉर्डर छोड़कर जा रहे थे, सबने देखा। अब बात करते हैं तीसरे
1: नंबर।
0: हाँ, अब नंबर पे आता हूं।
1: एसवाई कुरेशी कह रहे हैं नंबर्स बताइए।
0: सुनिए सुनिए, टोटल बात करिए, टोटल 27 लाख वोटर्स इनएलिजिबल पाए गए, 82,782 जो अपील्स डिस्पोज हुई, 75,000 एड, मतलब 99% लोग जिनके नाम हटे उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। अरे मैं कह रहा हूँ
3: इलेक्शन कमीशन को
0: बीजेपियों का सम्मान करना बंद करो। एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, इसी की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ट्रिब्यूनल बनाया, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
3: क्यों डिफेंड कर रही है भाई?
0: सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? आशुतोष जी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाया, किसी ने ट्रिब्यूनल बनाया बताओ?
3: इलेक्शन कमीशन को नहीं डिफेंड करता,
0: ट्रिब्यूनल किसने बनाया? ट्रिब्यूनल किसने बनाया?
1: एक मुद्दा रखेंगे, चलिए ठीक है। आज की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सामने एसआईआर को लेकर बात चल रही है, यह बात तो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का एसआईआर की प्रक्रिया करने का, चलिए मान लेते हैं, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है और ना उस सवाल में भी मैं जाना चाहता हूं। लेकिन कम से कम यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि जब से बिहार के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया इस देश में शुरू हुई है, कम से कम 10 से 12 बार इस पूरी प्रक्रिया के नियम बदल दिए गए हैं और हर बार सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उसके निष्कर्ष बदलने की कोशिश हुई है। जैसे आधार कार्ड को मान लेना, उसके बाद एडजुडिकेशन में गए मामलों पर ट्रिब्यूनल की नियुक्ति करना, कई बार इसमें बदलाव किए गए। तो क्या आज की स्थिति में हम ये मानकर चले कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के पहले ठीक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाने की जरूरत थी, ठीक तरीके से इस प्रोसेस को लागू करने की जरूरत थी जो नहीं हुआ है, और इसी के वजह से आज यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं? पहले अजय उपाध्याय और उसके बाद प्रदीप भंडारी बोलेंगे।
5: देखिये साहिल जी, ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना होगा। चुनाव आयोग बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज करता रहा और भाजपा और सरकार के लोग चुनाव आयोग का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो स्वायत्त संस्था है, तो उसकी स्वायत्तता है तो सबके लिए होनी चाहिए, सभी पार्टियां उसमें आपत्ति दर्ज कर सकती है। हम तो भाजपा को भी कह रहे हैं, क्या उनका कहीं वोटर नहीं कट रहा है? इसका मतलब उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है? वो जो 93% लोग सही पाए गए जिनका चुनाव मतदान का अधिकार नहीं मिला, क्या वो भाजपा के वोटर नहीं थे? तो स्पष्ट हो गया, तभी ये सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो चुनाव आयोग से ये भी मांग करते। चुनाव आयोग ये बताओ भाई 50% लोगों का वोट कट जाएगा।
0: अजय जी ने जो बोला
5: अडवाणी जी का,
0: देखिए बात चुनाव आयोग और नॉन चुनाव आयोग की नहीं है, बात है देश के लोकतंत्र में घुसपैठियों को हटाने की और एसआईआर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। ये कर्नाटक का कांग्रेस कर्नाटक की सरकार ने एक सर्वे कंडक्ट किया, जिस सर्वे के अंदर 85% लोगों ने कर्नाटक के अंदर जो सर्वे कर्नाटक कांग्रेस ने किया बोला कि वो ईवीएम में चुनाव प्रणाली के अंदर विश्वास रखते हैं। बात है प्रणाली के अंदर विश्वास रखने की, और अगर चीजें चेंज हुई तो स्वागत करना चाहिए कि फीडबैक के हिसाब से जनता की सहूलियत के लिए और बेहतर चीज हो रही है। आपके बीएलए में दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत है? अरे आपके 1,00,000 से ज्यादा बीएलए है कि नहीं है इन सब राज्यों के अंदर? उनको दिक्कत नहीं हुई तो फिर कैसे हुआ? केरला के अंदर बीएलए को दिक्कत नहीं हुई तो फिर कैसे हो गया? वहां पे आपकी सरकार बन गई तो चुप हो गए? तेलंगाना के अंदर कोई बीएलए को दिक्कत नहीं हुआ, चुप हो गए? कर्नाटक में बीएलए को दिक्कत नहीं हुआ, चुप हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। मीठा मीठा गपगा।
1: लेकिन आज भी एक साल एसआईआर की प्रक्रिया इस देश में शुरू होने के बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर डिबेट, चर्चा और इसी तरीके के सवाल अभी भी जारी है। बिहार चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया दरअसल इस देश में शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार जिस किसी राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया की जाती है कई सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी भूमिका साफ तरीके से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आखिरकार इस प्रक्रिया को क्यों लागू किया जा रहा है और अगर यह प्रक्रिया सही है तो क्या इसके नियम पहली बार सोचकर ठीक तरीके से बनाए गए या नहीं बनाए गए? चलिए इस पर बात होती रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: यार लोन भूल गया मैरी।
9: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
10: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
10: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
11: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
12: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature finest silver elaichi, a premium product from Dilbar Group.
14: आगे आगे।
15: अरे उधर
14: उधर यार।
15: करेक्ट करेक्ट।
16: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: और वही कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
19: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
20: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
21: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
20: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन वे हिंट, एक हिंट तो देते।
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी।
4: There is a very famous quote ki history repeat itself.
5: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
6: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर। उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
5: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है। जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर। सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।

0: पानी के बिना जिंदगी कैसी होगी, क्या कभी सोचा है? इसी देश में ऐसे गांव भी हैं जहां पानी भरने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज उसी गांव में बस टोटे घुमाइए और पानी बहने लगता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आजादी के 79 साल बाद लहुरिया द में हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंच चुका है। विंध्य की पहाड़ियों पर बसे करीब 1500 लोगों का ये गांव कभी पानी के लिए जंगल और पहाड़ नापता था, कभी रात रात भर लाइन लगानी पड़ती थी।
1: जेकर दिन करा तो दिन कठोले न रात भर झीना में पावड़ी भाई टोटी आज तब लगे न पावे लगा न झीना में बसे डारी।
0: गर्मी में हालात इतने खराब हो जाते थे कि टैंकर से हर परिवार को सिर्फ 15 लीटर पानी मिलता था, लेकिन जल जीवन मिशन की हर घर नल योजना के तहत 31 अगस्त 2023 को पहली बार इस गांव में नल से पानी पहुंचा।
2: हम लोग पानी के दरी जाते हैं, झिन्ना जाते हैं, फिर मैसे उड़ जाते हैं, ले आते तो पीते हैं। 3 साल से पानी आवा थी, अब घरे टोटी चालू को भरी थी।
0: पानी पहुंचने से सबसे ज्यादा राहत गांव की महिलाओं को मिली। क्षमा देवी बताती हैं कि
3: अब हो गया सही है, पानी वानी आ रहा है।
0: दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के गांवों में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन लगाए गए। मार्च 2025 तक यूपी में 2,36,00,000 से ज्यादा घरों तक नल वाला पानी पहुंच चुका है। राज्य भर में करीब 5,07,479 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। जो गांव कभी प्यास की पहचान था, आज वहां हर घर में पानी की आवाज सुनाई देती है।
4: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधू, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत मिला है, और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें SIR प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है? दरअसल दिल्ली में SIR के बाद 97,00,000 से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले SIR की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। SIR प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
5: ये BLO को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और BLO के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया? मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
4: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि SIR की प्रक्रिया BJP के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग के इस बयान के बाद भी सियासत तेज होती जा रही है। SIR प्रक्रिया के बीच दिग्गजों को नोटिस पर नई लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो जहां दिल्ली में एसआईआर पर बवाल है, वहां उत्तर प्रदेश के भीतर पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी के एक बयान पर बवाल चल रहा है। योगी आदित्यनाथ उस पर क्या कह रहे थे, उस पर चर्चा होगी हल्ला बोल में। देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स टंकी मतलब
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा वार। एसपी बीएसएफ ने बढ़ाया परिवारवाद। एसपी बीएसपी ने बढ़ाया परिवारवाद। कांग्रेस ने दिया जातिवाद। बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद प्रथम। गठबंधन पर अखिलेश यादव की ओवैसी को दो टूक। कहा जो पहले था वही रहेगा। मायावती पर भी कसा तंज। किसी को रथ का लाल रंग नहीं दिख रहा। राजस्थान मेयर चुनाव में बीजेपी की बंपर विजय। 5 में से 4 सीटों पर कब्जा। कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से करना पड़ा संतोष। बिहार के जमुई में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में एसआईटी का गठन। 3 गिरफ्तार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। डीजीपी को एफआईआर के निर्देश। और आईआईटी बॉम्बे में डीन से हटाए गए प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में प्रदर्शन। फैकल्टी ने दिखाई एकजुटता। छात्र की खुदकुशी के बाद हुई थी कार्रवाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट। कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: डेंजर टू इंडिया। मार्क यू, इट इज नॉट कम्युनिज्म, इट इज हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म।
3: सचमुच डरावने वक्तव्य है। भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए।
4: सांप्रदायिकता तो सांप्रदायिकता है, वो देश के लिए खतरनाक है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। बर्बाद हो गया सांप्रदायिक होकर के।
5: बिल्कुल, मैं कम्युनलिज्म में मानता हूँ कि कम्युनल है। क्या कम्युनलिज्म नहीं है क्या?
6: कुर्सी दो माँ।
7: कांग्रेस जिस नीचाई पे है 140 साल में कभी इससे नीचे नहीं गई।
0: राहुल गांधी की विचारधारा और उनकी राजनीति आज फिर बीजेपी के निशाने पर आई है। वजह एक नहीं है, दो मुद्दे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पंडित नेहरू के हवाले से हिंदू सांप्रदायिकता को ज्यादा बड़ा खतरा कहा। हालांकि उन्होंने कोर्ट पढ़ा है ये, और हम आपको बताएंगे विस्तार से। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहां से ये कोर्ट निकाला, कैसे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के हवाले से कहा कि भारत को खतरा वामपंथ से नहीं हिंदू सांप्रदायिकता से है, तो आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या ये बवाल है पूरा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को हिंदुओं का अपमान बता दिया। बीजेपी कह रही है हामिद अंसारी ने कांग्रेस की खानदानी सोच उजागर कर दी। बीजेपी कांग्रेस को माओवादी मुस्लिम लीगी बता रही है। कांग्रेस के नेता हामिद अंसारी के बयान का ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि बीजेपी की वजह से देश का माहौल बिगड़ा है। उधर राहुल गांधी के मन से प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के लिए कॉमेडी के नाम पर मातृशक्ति के अपमान का आरोप लग रहा है। सवाल यह है कि क्या सियासी विरोध के नाम पर अब निजी जंग छिड़ रही है? क्या हामिद अंसारी के बयान में हिंदुओं के अपमान का आरोप सही है? योगी ने क्यों कहा हामिद अंसारी के विचार डरावने हैं? योगी वर्सेस हामिद अंसारी, एक लड़ाई छिड़ गई है। हिंदू सांप्रदायिकता पर बयान, राहुल गांधी पर घमासान, यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें।
2: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन।
0: विचारधारा की लड़ाई और सियासी मतभेदों पर किसी न किसी बहाने बीजेपी और राहुल गांधी की आर पार की जंग छिड़ ही जाती है। ताजा मामले में एक और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान के आधार पर हंगामा मचा है, तो दूसरी ओर मुद्दा बना है राहुल गांधी के मंच से कॉमेडी के नाम पर हुआ सियासी प्रहार।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हैरेसमेंट, गलगोटिया।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो माँ।
0: बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी ने इस पर प्रतिक्रिया में कहा था, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, पार्टी इसे कांग्रेस का पतन करार दे रही है।
7: वास्तविक सृजनात्मकता और दृष्टि के अभाव में कांग्रेस पार्टी लाफ्टर शो से, स्टैंडअप कमेटी और स्टैंडअप कमेडी से वल्गरिटी की तरफ आकर सेटल हो गई है और मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए।
0: बीजेपी ने राहुल गांधी की कांग्रेस पर हमले के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान को भी मुद्दा बनाया है। पहले सुनिए हामिद अंसारी ने क्या कहा था।
2: जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स, द डेंजर टू इंडिया, मार्क यू, इट इज नॉट कम्युनिज्म, इट इज हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म।
0: इस बयान के आधार पर सबसे पहला हमला योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुआ।
3: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है।
0: योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी है। हामिद अंसारी के बयान से ये अब बिल्कुल साफ है। पार्टी के मुताबिक कांग्रेस की ऐसी राजनीति खानदानी है।
7: कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। कम्युनिज्म यानी वामपंथ एक खतरा था, नेहरू ये मानते थे और नेहरू का संदर्भ वो लेके आए। और इससे यह भी साफ हो गया है कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बातों में जो कुछ दिखाई पड़ता है, इसकी कहानी खानदानी है, ये कोई अकेले अभी की बात नहीं है।
0: हामिद अंसारी के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, तो हामिद अंसारी के बचाव में राहुल गांधी की पार्टी भी आई।
10: पहली चीज तो हामिद अंसारी का बयान नहीं है, पहली चीज तो भाजपा ये जो झूठा नैरेटिव बना रही है कि वो बयान है। भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि किसी की कविता अगर कोई पढ़ दे तो कविता बयान नहीं हो जाती, किसी की किताब कोई कोट कर दे तो वो बयान नहीं हो जाता, तो ये झूठा नैरेटिव बनाना बंद करे।
5: बिल्कुल, मैं कम्युनिज्म में मानता हूँ कि कम्युनल है और ये क्या जो नैरेटिव इस समय बन रहा, मैं यहाँ तक जब मानता हूँ ये कल्चर एक वाइड रेंज होता है।
0: करियर डिप्लोमेट और माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे हामिद अंसारी यूपीए सरकार के दौरान उपराष्ट्रपति बने थे। 2014 में मोदी सरकार आई तो सत्ता का दृष्टिकोण बदल गया। हामिद अंसारी के साथ विचारधारा के टकराव का असर भी दिखा। उपराष्ट्रपति पद से हामिद अंसारी के विदाई भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसके मायने आज भी तलाशे जाते हैं।
11: वहां से रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान संविधान संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया।
0: बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से राष्ट्रवाद का मुद्दा अहम रहा है, लेकिन उसकी नीतियों को विपक्ष सांप्रदायिकरण से जोड़ता रहा है। हामिद अंसारी के बयान की सारी सियासत इसी बात पर है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अतुल औंडे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता के तौर पर जुड़ रहे हैं। अमितोष पारिक हमारे साथ प्रवक्ता वीएचपी के। शुक्ला जी, ये क्यों कह रही है बीजेपी की अल्ट्रा लेफ्ट हो चुका है, हो चुकी है कांग्रेस पार्टी? इसी के मतलब देखिए, एक तो किताब है एजी नूरानी की किताब जिसमें वाईडी गुंडेविया जो कि पूर्व सिविल सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं, उनके उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी ने ऐसा कहा था, तो नेहरू जी के बयान को सेकेंडरी तौर पर इस किताब से कोट कर रहे हैं हामिद अंसारी। अब इस कोट के जरिए आप सीधा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर हैं
12: जी,
0: जरा समझाइए क्यों।
12: देखिए, हामिद अंसारी जो है कांग्रेस के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जिनकी पुस्तक का वो उद्धरण दे रहे हैं, उस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहां कहा, कब ये संदर्भ उन्होंने दिया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो भी वक्तृत्व हैं, जो भी उनका लेख है, जो भी उनके वक्तृत्व हैं, उनको उनकी जवाहरलाल नेहरू के जो है संग्रह है उसे संग्रहित करने का कार्य हुआ है, लेकिन ये कहां पर है ये स्पष्ट नहीं है। एक बात मान लीजिए कि उनकी बात को हम मान भी ले कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा, तो यह तो स्पष्ट हो गया कि साम्यवादी जो है वो कम्युनिस्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में इस देश के लिए खतरा थे। और 1962 के युद्ध में जब चीन से भारत का युद्ध हुआ, तो चीन से भारत के युद्ध के समय जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चीन की लाल सेना के स्वागत के लिए दिल्ली में टकटकी लगाकर खड़े थे, और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का उस समय समर्थन करने वाले मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो कालांतर में कांग्रेसी बने, उन लोगों ने भी चीन की लाल सेना के लिए रक्तदान करने का जिस तरह से आह्वान किया, वो इस बात को सिद्ध करता है कि जवाहरलाल नेहरू जो कह रहे थे कि दक्षिणपंथी जो है वो हिंदू राइटिस्ट जो है वो खतरा है, उसकी तुलना में साम्यवादी खतरा सिद्ध हुए, क्योंकि साम्यवादी जो है वो पूरी तरह से चीन के साथ खड़े हो गए, और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसे दक्षिणपंथी कह रहे थे, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में निमंत्रण दिया और उन्होंने उसका जो है प्रशंसा की। तो जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल में ही यह सिद्ध हो गया कि कम्युनिस्ट जो है खतरा है, और जिसको वो दक्षिणपंथी हिंदूवाद कह रहे हैं वो खतरा नहीं है देश के लिए। ये तो जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल का ही सत्य सबके सामने। और जवाहरलाल नेहरू जी 1962 में चीन युद्ध के बाद किस तरह के अवसाद में गए, ये इतिहास में जो है सबके सामने, इसमें कुछ छिपी हुई बात नहीं है। एक बात, दूसरी बात, स्वयं राहुल गांधी जिस तरह से खड़े होकर वो अल्ट्रा लेफ्ट की तरह ही जिस तरह से वो लश्करे तोयबा तक का समर्थन करने को तैयार है, वो विकिपीडिया में विकिलीक्स ने जो विकिलीक्स ने
0: विकिलीक्स की सारी बात माननी है ना,
12: राजदूत के सामने
0: विकिलीक्स की सारी बात माननी है ना प्रेम शुक्ला जी।
12: हाँ, विकिलीक्स
0: में एक से एक बातें आई हैं,
12: तो राहुल गांधी
0: सारी बातें माननी है
12: उसका। राहुल गांधी ने खंडन करना चाहिए था ना, अंजना जी, राहुल गांधी ने खंडन करना चाहिए था कि विकिलीक्स झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का खंडन आज दिन तक नहीं आया। अब अतुल लोंडे पाटिल ही खंडन कर दे कि विकिलीक्स झूठ बोल रहा, राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा।
0: ठीक है, चलिए,
12: राहुल गांधी को खंडन करने का तो पूरा
0: अतुल लोंडे पाटिल साहब जवाब दीजिए।
12: राहुल गांधी को किसी ने रोका नहीं था। और दूसरा, मुस्लिम लीग के बारे में जो उन्होंने कहा, और मुस्लिम लीग से जिस तरह से केरल में आज भी उनका गठबंधन, आज भी केरल की सतीशन की सरकार में पूरी तरह से 5 मंत्री मुस्लिम लीग के बैठे हुए हैं, 22 विधायकों का समर्थन है, और ये वही मुस्लिम लीग है जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी। मोहम्मद इस्माइल 1949 में इस मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला, उसे कायदे मिल्लत की उपाधि, जिसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल थे, और मोहम्मद इस्माइल ने इस मुस्लिम लीग की स्थापना की है। ये तो इतिहास सबके सामने है ना।
0: ठीक है, चलिए, जवाब दीजिए अतुल लोंडे पाटिल साहब। और अगर हामिद अंसारी ने, ठीक है, अब रुकिए शुक्ला जी, रुकिए अतुल जी, अगर हामिद अंसारी साहब ने कोट किया है और इस किताब के जरिए वो पंडित नेहरू को कहकर कोट कर रहे हैं कि भाई भारत के लिए साम्य मतलब वामपंथ नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता ज्यादा बड़ा खतरा है, क्या कहना चाह रहे हैं वो?
13: इसका मतलब सीधा सीधा हिंदू महासभा और आरएसएस से था। और ये बात केवल नेहरू जी नहीं कह रहे थे, ये बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, ये बात लाल बहादुर शास्त्री कह रहे थे, ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे थे, ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे। मेरे पास यहाँ पर खत है गोलवलकर जी को लिखा हुआ नेहरू जी ने, गोलवलकर जी को लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मैं अभी पढ़ के ही बता देता हूँ, किसी को अपने गले में अपने पैर डालना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने आरएसएस नेताओं के भाषणों को कम्युनल पॉइजन से भरा हुआ बताया और कहा कि इस वातावरण के परिणाम स्वरूप देश को गांधी के जीवन का बलिदान देना पड़ा। यह पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं पटेल गृहमंत्री थे और आरएसएस पर प्रतिबंध के प्रशासक निर्णय से सीधा जुड़े हुए थे। आरएसएस पर फिर पटेल ने आरएसएस को स्थायी रूप से समाप्त करने के पक्ष में थे। आरएसएस पर प्रतिबंध के बाद गोलवलकर ने सरकार से संवाद किया, उन्होंने संवाद किया, माफी मांगी, ये सबको पता है।
0: कौन सी किताब कोट कर रहे हैं ये भी बता दीजिए।
13: ये पत्र है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा हुआ पत्र है 19 सितंबर 1948 का। अब देखिए ऐसे कई सारे पत्र मेरे सामने पड़े हैं, मैंने इसका स्टडी किया कि ये जो बात चल रही है इनकी कि ये हिंदू महासभा जो मुस्लिम लीग वगैरह जो कहते हैं, तो मैं एक बात बिल्कुल सिरे से बता दूं, 1948 में 47 में सबको मौका था कि जिसको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाए, जिसने भारत को रहना भारत में रहना जाए वो भारत में रहे। और आपकी जानकारी के लिए प्रेम शुक्ला जी, इसी मुस्लिम लीग के साथ आपके नितिन गडकरी ने नागपुर महानगर पालिका में 2012 में ये किया था, गठबंधन किया था। मैं नागपुर में रहता हूं, जाके पूछ लेना, कागज पे है वो गठबंधन कागज पे है, तो झूठ बोलने का सवाल नहीं आता। दूसरी बात, उसी फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके आइडियोलॉग बैठते हैं, कौन थे वो फजलुल हक, जिन्होंने 1940 में मार्च में लाहौर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में पाकिस्तान का ठहराव रखा और उस पाकिस्तान के ठहराव रखने वाले व्यक्ति के उप प्रधानमंत्री जो है बंगाल के वो फजलुल हक थे। तो आपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सिंध में उनके साथ सरकारें बनाई, उनकी मांग थी पाकिस्तान बने और हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे सावरकर, मैं बीच में बोला नहीं, आपने बहुत
0: मुस्लिम लीग गलत बात है, गठबंधन बीच में बोला नहीं। शुक्ला जी गलत बात है, देखिए उनको पूरा करने दीजिए। ना मिस्टर शुक्ला, वेट फॉर योर टर्न प्लीज, फिर ऑडियो बंद कर दूंगी।
13: स्पेसिफिक फजलुल हक का उल्लेख किया, फिर बाद में इन्होंने और दो जगह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सिंध में सरकार बनाई, उनका मानना था पृथक पाकिस्तान होना चाहिए। हिंदू महासभा के प्लेटफॉर्म से 1937 में अहमदाबाद के अधिवेशन में सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी रखी और कहा मुस्लिम अलग राष्ट्र है और हिंदू जो है अलग राष्ट्र है। तो इस देश में सांप्रदायिकता जहर फैलाने वाले कौन है इस देश को अच्छी तरह से मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरएसएस को विषैला पेड़ कहा था। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए क्योंकि मुझे आज के संदर्भ में अगर इतिहास में जाओगे तो बहुत मुखी खाओगे, क्योंकि ये सारे हिंदू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू थे, सारे हिंदू थे, लाल बहादुर शास्त्री हिंदू थे, सारे रिपोर्ट्स आज भी पड़े हुए हैं।
0: प्रेम शुक्ला का एक जवाब लेते हैं, इस पे जवाब दीजिए तो, क्या जितने लोगों ने संघ के खिलाफ बोला ये सब लेफ्टिस्ट थे?
12: देखिए
0: ये लेफ्टिस्ट थे आपकी नजर में, सरदार पटेल से लेकर सारे लोग?
12: नहीं, किसी ने नहीं, देखिए पहली बात तो फजलुल हक के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब सरकार बनाई थी तब वो मुस्लिम लीग के खिलाफ बंगाल में बनी सरकार थी, कृषक पार्टी की सरकार थी वो। तो कृपा करके कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ प्रचार करना बंद कर दें। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का नेता था, मोहम्मद अली कांग्रेस का नेता था, शौकत अली कांग्रेस का नेता था। कांग्रेस के नेताओं ने ही कालांतर में मुस्लिम लीग में जाकर, और मुस्लिम लीग का किसी जमाने में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कांग्रेस के मंच से हुआ करता था, कांग्रेस का ही बगल बच्चा मुस्लिम लीग था और आज कांग्रेस के गठबंधन का साथी मुस्लिम लीग है। आज भी कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के साथ केरल में समझौता करती है और राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है। जिस मुस्लिम लीग ने इस देश का बंटवारा किया भाई, आपने जो है इस देश के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इस देश के बंटवारे पर हस्ताक्षर वीर सावरकर के साथ नहीं किया, आपने मुस्लिम लीग के साथ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या हिंदू महासभा के साथ जो है बंटवारे का हस्ताक्षर किया था? बंटवारे पर हस्ताक्षर करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किया, और मोहम्मद अली जिन्ना जिस वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे और जिन छह छंदों का विरोध कर रहे थे उन्हीं छह छंदों का विरोध आज कांग्रेस कर रही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी उस मुस्लिम लीग के साथ आज अगर कायांतर करके कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी है। आपके असम में सिर्फ मुस्लिम विधायक चुनकर आते हैं, बंगाल में सिर्फ मुस्लिम विधायक चुनकर आते हैं, केरल में आप जो है वी सतीशन पूरी तरह से जमीते इस्लामी का समर्थन लेकर खड़े होते हैं। सतीशन जो है जमीते इस्लामी का समर्थन मांगते हैं, वो जमीते इस्लामी सेकुलर संगठन है। आपके जो है आप जाकिर नाइक से चंदा लेते हैं, जाकिर नाइक तो बड़ा सेकुलर व्यक्ति है भाई, जाकिर नाइक के लिए दिग्विजय सिंह
0: के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ तो आप लोग सरकार चला ही रहे केरल में
13: 2012 में उनके साथ गठबंधन किया था। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ इस देश के मुस्लिम इस देश के नागरिक है, उनके पास मौका था, उन्होंने भारत देश को चुना। भारत देश का जो राष्ट्रवाद है वो नागरिकता का राष्ट्रवाद है। भारत का राष्ट्रवाद संविधान से आता है, किसी धर्म से नहीं आता है। तो ये जाके गडकरी से एक बार सवाल पूछ ले। दूसरी बात, फजलुल हक ने पृथक पाकिस्तान का ठहराव रखा था और उनके साथ ये उप प्रधानमंत्री एक साल के बाद ही जाके बैठे थे। इस देश का विभाजन करने में अगर कोई जिम्मेदार था तो पहला जिम्मेदार हिंदू महासभा, दूसरा जिम्मेदार मुस्लिम लीग और तीसरा जिम्मेदार ब्रिटिश थे। और जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ था, उनको मजबूर किया था कांग्रेस ने, क्योंकि आरएसएस और हिंदू महासभा तो कब थी नहीं, वो तो अंग्रेज के साथ थी, वो तो मुखबरी कर रहे थे, वो तो अंग्रेजों को पता रहे थे।
0: एक बार हम लोग जरा 26 पे आ जाते हैं, 26 पे आते हैं,
13: बता रहे थे
0: अतुल जी।
13: नहीं नहीं सुनिए ना,
0: 26
13: में रह रहा ना, 26 की बात जो है इन्होंने जो लेके गए इतिहास में, तो ये बताना जरूरी है।
0: हाँ नहीं ठीक है, आप संक्षेप में इसको समाप्त करें, मैं उनको भी अब नहीं जाने दूंगी इतिहास में, क्योंकि 26 पर बात ही नहीं हो पाई है अभी तक। आप लोग नहीं, अपना अपना जो आप लोग ढो रहे हैं अपनी लेगेसी उसको ढोते रहिए, लेकिन आइए सीधा 2026 पर। आज अगर इस तरह का आरोप लग रहा है तो उस पर भी बोल लीजिएगा थोड़ा सा अतुल जी, जल्दी से।
13: हाँ अंजना जी, मुझे बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है मेरे पार्टी के इतिहास पर, मेरे पार्टी के नेताओं ने दिए हुए बलिदान पर, और देश की स्वाधीनता संग्राम में जो काम किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। इन लोग के पास गर्व कर ले कुछ नहीं है। देखिए आज भी किस तरह का राष्ट्रवाद जो है, एक सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की व्याख्या गढ़ने की कोशिश होती है, लेकिन बार बार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, बार बार स्वाधीनता संग्राम का जो इतिहास है वो आड़े आ जाता है, कर नहीं सकते। अभी देखिए ना, अभी महाराष्ट्र में एक घटना घटी है, एक महिला ने बुर्का पहन के ब्राह्मण गली में जाके मांस डाल दिया, पकड़ी गई, सीसीटीवी फुटेज में पकड़ी गई, वो हिंदू निकली। ऐसे हिंदुओं को खराब करने का ये काम करते हैं। पूरे हिंदू तो अच्छे हैं, उन्होंने भी कम्युनलिज्म नकार दिया है। पर्टिकुलर संगठना की बात होती है, आरएसएस की बात होती है, हिंदू महासभा की बात होती है, और ये बात सबने की है। क्यों कहना पड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विषय लपेट? आज के तारीख में हम 21वीं सदी में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात नेहरू जी करते थे, उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन क्या बात करते हैं? देश के प्रधानमंत्री करते शमशान घाट और कब्रस्तान, इस पे भाषण देते हैं, किसने क्या पहना है, कौन क्या खाएगा, इस पे भाषण देते हैं, और फिर कहते हैं कि 14 साल के ऊपर की गाय आप काट सकते हो, लोगों को मार दिया पहले, फिर कहते हैं वो सुधांशु जी कहते हैं हमारे मित्र मिथुन है मिथुन, फिर यहाँ मम्मी है वहां यम्मी है, किरण रिजिजू क्या कहते हैं, ये आज के विषय हो सकते हैं अंजना जी? आज हमारे विषय शिक्षा के है,
0: पर ये भी तो विषय नहीं हो सकता है ना। सुनिए ना अतुल जी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा तस्वीरें दिखा दीजिए। आप कह रहे थे इतिहास पर गर्व है, अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, ऐसे ऐसे दिग्गज रहे हैं जिन पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन आप बताइए राहुल गांधी के मंच से जो हो रहा है इस पर आपको गर्व है? ये जो वो कर रहे थे माँ का मजाक उड़ाना,
13: नहीं माँ का मजाक नहीं उड़ाया, देश में अगर माँ होने का मजाक किसने उड़ाया, किसी माँ का माता होने का मजाक किसने उड़ाया ना, इस देश के प्रधानमंत्री ने। किसने कहा था जर्सी गाय सोनिया गांधी जी को, किसने कहा था कांग्रेस की विधवा, किसने कहा था हाइब्रिड बछड़ा, ये तो हगलो मसीह जो दिखा रहे थे, किसी के भी गले पड़ जाना, खिकी खिकी करना, ये जो है देश के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को इतना नीचे स्तर पर लाके रखा है, उसका डिपिक्शन वो पुलकित कर रहा था। राहुल गांधी ने आज तक किसी के बारे में भी गलत बयान दिया नहीं है। अंजना जी मैं आपको आह्वान करता हूं, आप तो बड़ी पत्रकार है, आपके पास तो बहुत आर्काइव भी पड़े होंगे, मेरे नेता राहुल गांधी जी का एक भी स्टेटमेंट बताइए कि किसी को इस तरह से बात की जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने की है। क्या सोनिया गांधी देश की मां नहीं है? ये देश श्रावण बाल से जाना जाता है, जिसने कावड़ में बिठा के अपने मां बाप को चार धाम की यात्रा की थी, ये नहीं जाना जाएगा उससे जिसने पैसों के लिए 4,000 रुपए निकालने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी 90 साल की माता जी को लाइन में खड़ा किया था। वो हमारी भी माता जी है, हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं, उनका

0: मृत्यु देहांत हुआ, उन्होंने मुंडन नहीं किया। कैसे सनातनी बनने की बात करते हैं? 3 दिन बैठना पड़ता है घर में, 10 दिन का मॉर्निंग जमना सूतक कहते हैं हमारे मराठी में, करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, आप क्या कहते हैं, झंडा दिखाने गए थे तो
1: जवाब दीजिए,
0: दिखा सकता था।
1: शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए आप। लेकिन सुनिए ना अतुल जी, अतुल जी आपको भी पता है आप इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: माँ का कॉन्टेक्स्ट आया था। नहीं अतुल जी, डोंट, आप झूठ मत बोलिए ना। माँ का कॉन्टेक्स्ट

0: इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं.
1: बिल्कुल,
0: माँ का कॉन्टेक्स्ट आया था. नहीं अतुल जी, डोंट, आप झूठ मत बोलिए ना. माँ का कॉन्टेक्स्ट आया था और प्रधानमंत्री एक रैली में दरअसल एक बहुत ही वृद्ध महिलाएं उनके लिए कुर्सी लगवा रहे थे, उसी की नकल देखते हुए इस व्यक्ति ने जो स्टेज पर राहुल जी के साथ था खुद ना बोले, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मंच देना. माँ माँ करके
1: उसका भी सच बता दो. सुनिए ना अंजना जी,
0: बोलिए.
1: मैंने एसपीजी के साथ काम किया है. जब राहुल गांधी जी की प्रोग्राम, जब एसपीजी थी तो वो प्रोग्राम का अरेंजमेंट एसपीजी वहां के की पॉइंट्स, पार्टी कहती कि ये हमारे लोग जो है ये फ्रंटमैन है, इनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. वीआईपी का टैग लगा हुआ कौन कहां बैठेगा, कितने कितने लोगों का डी होगा, इसका वीआईपी का टैग लगा हुआ व्यक्ति को कुर्सी में ऐसा हो ही नहीं सकता है. हर बात में रिश्तों की राजनीति, भावनाओं की राजनीति करने का काम देश के प्रधानमंत्री कहते हैं.
0: ठीक है मिस्टर शुक्ला, जल्दी से जवाब दीजिए इसका, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा.
2: देखिए अभी अभी मुंडन की बात की थी प्रधानमंत्री के, तो श्रीमान राजीव गांधी का इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद मुंडन वाली तस्वीर तो शायद अभी अतुल लोंढे पाटिल तत्काल दिखा देंगे, या तो मान लेंगे कि राजीव गांधी हिंदू नहीं थे, हिंदू सनातन परंपरा को नहीं मानते थे. राहुल गांधी की भी तस्वीर जो है, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उनकी मुंडन वाली तस्वीर तत्काल दिखा देंगे. अभी अभी आप तत्काल दिखा देंगे ना, अभी आप, मुझे पता, अभी दिखाएंगे आप राजीव गांधी की तस्वीर ले आएंगे. अभी आप, अभी आप इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी की मुंडन वाली तस्वीर अभी अभी अभी अतुल पाटिल देने वाले हैं. अंजना जी इनसे मंगवा लीजिएगा, अभी ये भेज देंगे, इनके पास होगी तस्वीर. गजब बातें करते हैं ये, गजब की बातें करते, क्या तर्क लेकर आते हैं. अरे भाई, एक वृद्धा के लिए अगर कुर्सी मंगवाने की बात की तो गलत हो गया. आप जो है इटली के प्रधानमंत्री
0: अतुल जी,
2: जिस तरह से अपमान राजीव राहुल गांधी करते हैं, इटली आप लगातार बोल रहे हैं क्या हो गया.
0: अरे मैं मौका दूंगी आपको, मौका दे दूंगी.
2: इटली की प्रधानमंत्री,
0: नो नो डोंट डू दिस, अब आप भी वही कर रहे हैं. हाँ,
2: क्या हो गया
0: शुक्ला जी,
2: क्या हो गया भाई
0: शुक्ला जी,
2: पूरा क्यों गए राजीव गांधी की तस्वीर क्या मांग ली आपका, तो बैलेंस ही चला गया. मैंने राजीव गांधी की तस्वीर क्या मांग ली, आप तो नाराज हो गए. राजीव फिर क्या बात कर रहे हैं, राजीव गांधी ने मुंडन कराया था ना, राजीव गांधी ने मुंडन कराया था ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, राजीव गांधी ने मुंडन कराया था ना, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ. इतने पे इतने छिड़ क्यों जा रहे हैं महाराज. राजीव गांधी के मुंडन की तस्वीर तो कांग्रेस के दफ्तर में रखी होगी, मंगवा लीजिए.
0: एक ही बात, 24 रोड से मंगवा लीजिए महाराज, आगे बढ़ते हैं,
2: या जनपद से मंगवा लीजिए.
1: थोड़ा ना, हमने सब, हम सब बराबर
2: नहीं. मेलोनी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया, इटली के प्रधानमंत्री का अपमान, एक महिला का आप इस तरह से अपमान करते हैं. अभी कर दे चैलेंज, फिर बोलने लगे बीच में, क्या हो गया भाई, क्यों बैलेंस चला गया.
0: दो लाइन में अभी अभी
2: बैलेंस क्यों चला गया आपका महाराज,
0: जल्दी क्यों चले जा रहे, जल्दी पूरा कीजिए प्रेम शुक्ला
2: जी. नहीं, वो लगातार मेरे बीच में बोलने, वरना तुम अब तक पूरा कर चुका होता. अतुल लोंढे पाटिल जो है वो लगातार बीच में बोले जा रहे हैं, मेलोनी का अपमान राहुल गांधी ने किया कि नहीं किया, एक देश की महिला प्रधानमंत्री का जिससे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसका अपमान करके राहुल गांधी ने क्या हासिल किया, क्या राहुल गांधी किस तरह से अपमान करो.
0: श्रीमती का इंतजार किया
2: जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से गालियां प्रधानमंत्री जी की माता जी का किया, वो कौन बोल सकता है.
0: अतुल जी एक जवाब दीजिए, फिर मैं एकदम हटा दीजिएगा विवेक जी. और
1: राजीव गांधी जी को सर पर बाली नहीं थे, पूरे दुनिया को मालूम है, लेकिन ये ऐसा है ना, इतना झूठ बोलेंगे ये लोग. उन्होंने सूतक पाला, आप देख लो तस्वीरें, सोनिया जी की तस्वीरें देख लो, राहुल जी की तस्वीरें देख लो, प्रियंका जी की तस्वीरें देख लो. बलिदान और शहीदी को अपमान करने वाले ये लोग, हमारे 6 सैनिक जो है शहीद हुए थे, 10 सैनिक, उसके बारे में झूठ बोलने वाले पार्लियामेंट में ये लोग, देश का संरक्षण जो रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं और एक साल बाद एक्सेप्ट करना पड़ता है कि सिंदूर में ये लोग शहीद हुए थे, ये ऐसे लोग शहीदगी और बलिदान के परिवार को अपमानित करने की कोशिश करते हैं. अरे बलिदान दिया था राजीव गांधी ने, अरे बलिदान दिया था इंदिरा जी ने, और उसको उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं
2: सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं.
1: अरे सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ आप बोलते हो, अरे गंजे थे राजीव जी, गंजे थे, क्या आदमी है ये.
0: बस कीजिए, बस कीजिए.
2: शिवराज सिंह चौहान के बेटे
1: आपने आपने तो आपने तो आपने सिंधु ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों का अपमान किया, उनकी शहादत का अपमान किया है.
0: चलिए वापस आइए विवेक, विवेक जी और अमितोष जी को दिखाइए. विवेक जी थोड़ा सा आप लोग गैदर कर लीजिए, ऐसे मुद्दों पर रहिए जिससे जनता का सरोकार है, जो उनको भी समझ में आए, जो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो. जल्दी से विवेक जी आपके पास आ रहे हैं, वामपंथ को लेकर जो उन्होंने कोट किया है कि भाई एजी नूरानी की किताब से, वहां से लेते हुए पूरी बात यहां पर पहुंच गई है कि

0: कांग्रेस भी अल्ट्रा लेफ्ट ही हो गई है।
1: नहीं, कांग्रेस अल्ट्रा लेफ्ट नहीं, कांग्रेस हमेशा सोशलिस्ट थी। अगर आप नेहरू को पढ़ेंगी, अगर आप भगत सिंह को पढ़िए, भगत सिंह ने नेहरू के बारे में लिखा हुआ है दैट वो छद्म राष्ट्रवादी नहीं है, उनका एक इंटरनेशनल विजन है। जो अगर हम भगत सिंह को यहाँ पे जो जितने दर्शक बैठे हैं जाए गूगल पे और चेक करें कि भगत सिंह ने क्या लिखा है नेहरू के बारे में, नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया। ये जो लोग फैलाते हैं कि साहब सरदार पटेल को चुना गया था हिंदुस्तान अंदर, सरदार पटेल 74-75 शब्द वर्ष के थे और जवाहरलाल नेहरू वाज इन अर्ली 50s, एक पिता और पुत्र के जनरेशन का गैप था। सरदार पटेल की तबियत खराब रहती थी और वो आजादी में 1947 के बाद 2.5 साल में उनका इंतकाल हो गया। वी नीडेड अ यंग प्राइम मिनिस्टर जो अंग्रेजों में आंखों में आंख डाल करके बात कर सके, डील कर सके, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हो, दैट वाज नेहरू। एंड नेहरू वाज अ सोशलिस्ट। वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में नेहरू जी शिरकत करते थे इवन एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने जब देश को आजादी मिली तो यू आर वेरी क्लियर, वी वांट अ सोशलिस्ट कंट्री, द इकॉनमी विल बी क्लोज डोर।
0: लेकिन वहां से विवेक जी वो आज की कांग्रेस पर हिट कर रहे हैं ना, तो अब 26 पे आप भी आ जाइए। वो 26 पे हिट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज जो कांग्रेस की तस्वीर है। हाँ
1: जी,
0: राहुल गांधी के लिए कहा है उन्होंने, हामिद अंसारी के विचार भारत के लिए डरावने हैं, ये भारत की छवि खराब करने का एजेंडा है, योगी कह रहे हैं ऐसा दुष्प्रचार भारत विरोधी ताकतें करती हैं, हिंदू परंपरा को अपमानित करने का प्रयास है।
1: देखिए, राहुल गांधी एक सोशलिस्ट है, नेहरूवियन पॉलिसीज पे चल रहे हैं, वेदर इट इज द फॉरेन पॉलिसी टॉक्स ऑफ और इट इज द इकोनॉमिक पॉलिसीज। 2012-13 में भट्टा पारसौ ग्रेटर नोएडा में जब किसानों का एजिटेशन हुआ, अपनी सरकार के खिलाफ जाकर के भूमि अधिग्रहण के बिल राहुल गांधी लेकर के आए, जिससे इस देश का क्रोनी कैपिटलिस्ट, ये बड़े पूंजीवादी, ये सब हिल गए, अमेरिकन मल्टीनेशनल हिल गई और लोगों को लगा कि अगर ये फिर सत्ता में आएंगे कांग्रेस एंड राहुल अगर कमान ले लेंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी।
0: क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि नक्सलवाद ने इस देश में आतंकवाद से भी ज्यादा लोगों की जान ली है ना, लेकिन ये जो तथाकथित हिंदू दक्षिणपंथी विचारधारा जिसे इतना खतरनाक माना गया, उसमें ऐसा क्या हुआ कि मतलब नक्सलवाद ने तो ज्यादा जाने ली ना, आतंकवाद से भी ज्यादा जाने ली इस देश में, लेकिन फिर भी वहां पर कोई खतरा उस विचारधारा में न देखकर हिंदू दक्षिणपंथी विचारधारा इतनी खतरनाक साबित हो, ये किस घटना के आधार पर आप कहेंगे?
1: के मैं आपको कोट करूंगा, when the Russians were USSR, it was a communist country, तो भारत की प्रशंसा होती थी हमारे लोगों की, हमारे नागरिकों की, हमारे समाज की, और कम्युनिस्ट रशियंस कहते थे इफ यू वॉन्ट टू सी द वंडर यू सी द इंडियंस। इतनी डायवर्सिटी, इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने खान पान, और ये इकट्ठे एक रहते हैं और अपने कंट्री की बात करते हैं। जब आप कम्युनलिज्म को लाते हैं, जो नेहरू जी ने कहा और जिसको अंसारी जी ने कोट करा, चाहे वो हिंदू कम्युनलिज्म हो या वो इस्लामिक कम्युनलिज्म हो, आपका समाज बढ़ता है। आप सोशल मीडिया पे आप जाइए, देखिए दलित वर्सेस सवर्ण कैसे हो रहा है, किस किस तरह की भाषा का बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से हम समाज में विघटन कर रहे हैं। इज इट नॉट अ डेंजर टू द कंट्री? कम से कम नक्सलवाद में द एनिमी इज डिफाइंड, उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी इज डिफाइंड, वी नो हु द एनिमी इज, बट हियर हु इज द एनिमी? हम खुद लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, आज कौन नहीं लड़ रहा है? मुसलमान कह रहे हैं मेरी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, 17 सितंबर को था, आपने परमिशन नहीं दी। दलित और बनाम सवर्ण चल रहा है, करनी सेना एक तरफ खड़ी है, हमारे जो है दलित समाज के लोग एक तरफ खड़े हैं, और आप भाषा देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कैसे इसी देश के नागरिक एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। इस सरकार ने, इस पार्टी ने, और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने
0: हाल के दिनों में तो गाली गलौज की भाषा को बड़ा महिमा मंडित किया गया था, जहां तक मुझे याद है विवेक जी, कुछ ही दिनों पहले आप भी कर रहे थे मेरे शो पर आकर, मुझे समझाते थे कि भाई जो कहा जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पर वो तो महान बातें हैं, बड़ी क्रांतिकारी बातें हो रही है, तो गालियों की भी अब मतलब विचारधारा होने लगी है क्या?
1: मैं 10 सेकंड बोल लेता
0: हूं। विवेक जी, जो गलत होता है वो सबके लिए गलत होता है, कोई भी अभद्र भाषा बोले।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, 10 सेकंड सिर्फ लूंगा मैं आपके। शराब पीना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है, गालियां देना भी बुरी बात है, लड़का करे तो सब जायज, और जंतर मंतर पे खड़ी होकर के लड़की ने अगर बोल दिया तो यहाँ सारे सेक्सिस्ट कमेंट और पूरा देश और इनके संगठन जितने हैं हिंदूवादी उतर आएंगे उसकी ट्रॉलिंग करने के लिए, उसके घर में पहुंच जाएंगे, उसके माँ बाप को धमकाएंगे, FIR करने की कोशिश करेंगे। आमिन, ये जेंडर बायस क्यों है मैडम? आइए, जेंडर बायस किस लिए?
0: चालाकी से पूरी बहस को एक अलग दिशा दे दी, लेकिन अपशब्द और गलत भाषा कोई भी इस्तेमाल करे वो उतना ही अपमानजनक होता है और उससे बचना ही, मतलब अगर हमको अपने देश को अपनी भाषा को बचाना है तो समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अमितोष जी वो ये कह रहे हैं कि आज सवाल इस बात का है कि ये दक्षिण जो हिंदू दक्षिणपंथी विचारधारा जिसकी बात जिसको कोट भी किया है, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता उन्होंने जो कहा कम्युनलिज्म, उनका ये कहना है कि देखिए वो ऐसा है कि आज वो देश में ही आपस में लोगों को लड़ा रहा है, तो ये तो खुद ही साबित हो रहा है कि वो खतरनाक है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। देखिए मैंने एक सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की डिबेट सुन ली जो इस पार्ट का डिबेट का पार्ट ही नहीं था, मैंने भीमराव अंबेडकर सरदार पटेल के लेटर पढ़ लिए जो इस डिबेट का पार्ट ही नहीं था, लेकिन इस डिबेट का मूल पार्ट था जो ये लोग हमेशा से चलते आए हैं, जो इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है, हिंदू को आतंकवाद और सांप्रदायिक और कम्युनल और डेंजर कहो तो उसके अलावा की सारी डिबेट कर लो, उसको एक्सेप्ट सेव कर लो, ये इनका सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हो गई। अंजना जी आज के सेक्युलर की डेफिनेशन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश पे थोपा था 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के बाद, वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है डिफेम, मॉक, टारगेट एंड विक्टिम। ये चार चीजें अगर आ जाएगी तो आप सेक्युलर है, आप डिफेम कर दो सनातन को, मॉक कर दो सनातन ने भगवान को, और आप टारगेट कर दो हिंदू को, और आप टेररिस्ट कर दो हिंदू को, मतलब आप सेक्युलर के डेफिनेशन में आ गए। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। हामिद अंसारी का लगातार तरीके से बयान इस देश के विरुद्ध रहा है, संविधान के विरुद्ध रहा है, और आज वो कह रहे हैं कि हम सेक्युलर है और हमने सही बात करी। 2017 में हामिद अंसारी जी कहते हैं पूरे देश में शरिया कोर्ट आ जाना चाहिए, तो क्या वो संविधान के विरुद्ध है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये सीपीआईएम उसको प्रोटेक्ट करेंगी? दूसरी बात, हामिद अंसारी कहते हैं कि रिलीजन सेज नेशनलिज्म एंड रिलीजन आर डेंजर देन पेंडेमिक, क्या ये उसको सपोर्ट करेंगे? यही हामिद अंसारी आईएमएफ के कार्यक्रम में जाते हैं और पीएफआई के कार्यक्रम में जाते हैं, उनसे पूछा जाता है पीएफआई क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसने केरला के अंदर में प्रोफेसर के हाथ काट दिए गए थे क्योंकि मोहम्मद के लिए कुछ कह दिया था, ये कहते हैं मुझे पता ही नहीं, और वहां पर जाके भारत के विरुद्ध और सनातन के विरुद्ध बात करते हैं। यही हामिद अंसारी एमयू के अंदर में जिन्ना की लगी पोर्ट्रेट के लिए बोल देते हैं कि क्या गलत है अगर जिन्ना की पोर्ट्रेट लगे, 2016 के अंदर में मेजोरिटी को क्लेम करते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं। यही हामिद अंसारी लॉ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और एनकी सूद उसके ऊपर में बात करते हैं, मुझे लगता है। और यही हामिद अंसारी जो अपनी किताब में कहते हैं कि मुसलमान या रह नहीं सकते, सुरक्षित नहीं है, और गजनबी को हिंदू इंडियन कह देते हैं। दिक्कत इस बात से है अंजना जी कि देश में बहुत ही सौहार्द हो गया है और देश में कंफर्टेबल हो गया है कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद हिंदुओं को आतंकवादी कह दो। 2010 में पी चिदंबरम कहते हैं जेएनयू में जाके वी विल नॉट आस्क नक्सल टू सरेंडर।
0: का करना क्या है? हामिद अंसारी मौजूदा वक्त पर उपराष्ट्रपति वो रह चुके हैं, किसी पद पर तो है नहीं। तो ये जो आपने पूरी उनकी लिस्ट बता दी, तो क्या करना है इसका?
2: This is what about the ideology, अंजना जी? Ideology है कि मंच पे खड़े होके हिंदुओं को आतंकवादी और सांप्रदायिक बता दो, और लगातार तरीके से देश में मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मुरादाबाद दंगे, दिल्ली दंगे, जहांगीरपुरी दंगे, नागपुर दंगे, संभल दंगे, करौली दंगे, छबड़ा दंगे, एक भी हिंदू का क्लेम बता दीजिए, तौकीर अज़ा खान का स्टेटमेंट बता
1: दीजिए,
2: बिजोई मैथ्यू मैसेकर बता दीजिए, मरी छिपी मैसेकर बता दीजिए, एक भी इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जहां पे तारीख जमात उल हिंद, आपके तौकीर रजा खान, आपके दारुल उलूम देवबंद, इनको क्लेम करा गया कि दे हैव क्रिएटेड कम्युनल वायलिज्म इन इंडिया, नहीं करा गया। लेकिन वही कांग्रेस के नेहरू थे जो सोमनाथ को नेहरू हिंदू रिवाइवलिज्म कह देते थे, यही थे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आकर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते उसको सपोर्ट कर लिया, यही थे जो नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट लेके आते हैं और हिंदू जब माइनॉरिटी होते हैं उसके बच्चों को जाते हैं, यही थे जिन्होंने सरदार पटेल ने जब 1948 में लिखा था कि वांट आरएसएस टू बी पार्ट ऑफ कांग्रेस, क्यों चुप हो जाते हैं? और इन्हीं लोगों ने हिंदू महासभा को जब टारगेट किया तो एन चंद्र चटर्जी को जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट का जज बना दिया। मुझे लगता है इट्स वेरी इजी टू कॉल हिंदू अ टेररिस्ट, बट इट्स वेरी इजी टू कॉल अ टेररिस्ट नॉट अ मुस्लिम।
0: अतुल जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं आ रही हूं प्रेम शुक्ला जी।
3: ये बहुत सफाई से हिंदू को कहा, हिंदू को नहीं, आरएसएस और हिंदू महासभा को कहा है।
0: नहीं लेकिन इसमें
3: नहीं सुनो ना, एक मिनट अंजना जी,
0: यशवंत शिंदे
3: है
0: भारत के लिए साम्यवाद या जैसे भी आप इसको कहें वामपंथ, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता।
3: मैं हामिद अंसारी ना कभी कांग्रेस के मेंबर थे, वो कभी हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं थे, उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में को जो कहा है उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं। मैं आपको अभी यशवंत शिंदे का अभी हाल ही बयान दिया है, उन्होंने नांदेड़ कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है, वो जो 25 साल तक इनके स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे जम्मू कश्मीर में, वो क्या कहते हैं वो सुन लीजिए, नहीं सुनाई दिया तो मैं अभी आपको पोस्ट कर देता हूं। वो क्लेम करते हैं कि जितने पूर्णा, परभनी, हैदराबाद, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, सारे के सारे जो है वो इंद्रेश कुमार, क्या अपने ये मोहन भागवत जी, मिलिंद परांडे, सबके नाम ले रहे वो कोई दूसरा कोई संगठन का व्यक्ति नहीं है वो, ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति आरएसएस का पूर्णकालीन प्रचारक रहा है, कहा जम्मू कश्मीर में।
0: जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी बोलिए अमितोष।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक्विटल हुए हुए लोगों को ये वर्डिक्ट नहीं मानते, जजमेंट नहीं मानते, लेकिन एक व्यक्ति का कोर्ट करते हुए
4: आपका ही वो
2: आप मेरे को बात बताइए, तबलीगी जमात कहता है कि कोरोना वायरस वॉज अल्लाह कॉज फॉर काफिर, जमात उलमा हिंद कहती है हिंदू विल बी वाइप्ड आउट इफ इलीगल रोहिंग्या इमिग्रेंट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, यही दारुल उलूम देवबंद कहती है, यही सैयद सरवर चिश्ती कहता है, लेकिन इस सब सेक्युलर है अंजना जी, क्यों सेक्युलर है? मुस्लिम अपीसमेंट करते रहो, हिंदू को गाली देते रहो, सर तन से जुदा तो होना नहीं है, सर तन पे लगा रहेगा, क्लेम करते रहेंगे, अपीसमेंट करते रहेंगे, सेक्युलर कहलाते रहेंगे, इस चीज को समझना पड़ेगा। द आइडियोलॉजी शैल बी क्रिएटेड कि हिंदू के विरुद्ध खड़े होने वाले लोग आज भी हिंदू को आतंकवादी कह रहे हैं और मानने पे मजबूर है।
3: अंजना जी
0: बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए अतुल जी जल्दी।
3: कोई किसी को जिसने भी गलत कहा होगा वो गलत गलत ही है। ये यशवंत शिंदे है ना, ये हमारा आदमी नहीं है, ये तुम्हारा आदमी है। 25 साल तक जिसने अपने जीवन दिया, ये आपका
0: ये यशवंत शिंदे जो है इनको इनको कोर्ट से ऊपर मानना है क्या पाटिल साहब?
3: इन्होंने इन्होंने अपील इन्होंने एफिडेविट दिया है, मैं था खुद यशवंत शिंदे थे, उन्होंने कहा पूर्णा परभनी मालेगांव समझौता एक्सप्रेस हैदराबाद का बॉम्ब ब्लास्ट पूरा का पूरा इन्होंने किया है और वो कहां बनाया गया इसका सारा कुछ वो बोल रहे।
0: समझ नहीं पा रही अतुल जी, जो कोर्ट से जहां क्विटल हुआ है वहां पर दोषी करार देने में आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इतना दिल क्यों लगा? अरे कौन है ये?
3: खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है यशवंत सिंह, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोलता मैं था वहां पर, सुनवाई तो हो, चाहे वो चाहे कोई मुस्लिम संगठन हो चाहे कोई हिंदू संगठन हो, जो सांप्रदायिक है वो सांप्रदायिक है, जिसने देश के एकता के अखंडता के खिलाफ काम किया है किया है, वो सब दोषी है। लेकिन ये कह देना कि तुष्टिकरण कोई तुष्टिकरण वगैरह कुछ नहीं है, इन्होंने बताया नहीं ढंग से,
0: कोई तुष्टिकरण नहीं है। प्रेम शुक्ला जी
3: जल्दी से बोलिए। और हिंदू महासभा दोनों का खंडन किया था और दोनों का कहा था कि
5: ये के कार्तिकेय समिति की रिपोर्ट अब सुन लीजिए।
0: ठीक है अब शुक्ला जी को बोलने
5: लोंडे जी अब सुन लीजिए, लोंडे जी हो गए अब सुन लीजिए। डीके कार्तिकेय समिति की रिपोर्ट बताती है कि श्रीमान राजीव गांधी की हत्या में कांग्रेस ही शामिल थे, कार्तिकेयन समिति की का गठन कांग्रेस की सरकार ने किया था और कार्तिकेयन समिति की रिपोर्ट कहती है कि श्रीमान राजीव गांधी की हत्या में कांग्रेस ही शामिल थे। इसका मतलब कांग्रेस जो है वो आतंकवादी संगठन है, ये कहना चाह रहे हैं आप? रज्जी जो है मोहम्मद रज्जी वो कांग्रेस का सदस्य था, याकूब मेमन उसको मोहल्ला समिति में कांग्रेस ने, याकूब मेमन जिसको फांसी चढ़ाई गई ना उसको जो है मोहल्ला समिति का सदस्य जो है कांग्रेस ने बनाया था, और टाइगर मेमन का पासपोर्ट कांग्रेस के सांसद के रिकमेंडेशन से बना था, तो कांग्रेस को क्या कहा जाए? आतंकवादी संगठन मान लिया जाए? टाइगर मेमन जिसने 12 मार्च 1993 को मुंबई का बम कांड किया उसका पासपोर्ट बाकायदा कांग्रेस के एक सांसद के रिकमेंडेशन से बनाया गया, उस सांसद को कालांतर में मंत्री बनाया गया, और एचकेएल भगत किस तरह से हत्याएं उन्होंने की थी, नरसंहार किया था सबको पता, और सज्जन कुमार बेचारे जेल में जाकर उनके प्राण चले गए, उनको आपने सांसद बनाया था, जगदीश टाइटलर सिख नरसंहार करने वाले मंत्री बने पड़े थे, तो कांग्रेस इस आधार पर आतंकवादी संगठन माना जाए कांग्रेस को? जरा बताइए आप, डीके कार्तिकेयन से लेकर एचके की रिपोर्ट से लेकर एचकेएल भगत तक आपके लोग जो है नरसंहार में शामिल लोगों को क्या कहा जाए? इस आधार पर कांग्रेस को नरसंहार करने वाला संगठन माना जाए?
0: एक सेकंड, एक सवाल है मेरा शुक्ला जी से, उसके बाद मैं आ रही हूं अतुल जी। शुक्ला जी, कार्तिकेयन कमिटी की रिपोर्ट ने किस कांग्रेस नेता को, क्योंकि हम लोग जितना जानते हैं एलटीटी का हाथ था है ना राजीव गांधी जी की हत्या में, कौन कौन सा कांग्रेस नेता?
5: कांग्रेस के सदस्य कार्तिकेयन समिति की रिपोर्ट में बाकायदा तमिलनाडु कांग्रेस के पदाधिकारियों का नाम है, तमिलनाडु कांग्रेस के पदाधिकारियों का बाकायदा नाम है।
0: अरे बाकायदा तो मैंने सुन लिया, कौन किसका नाम, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर
5: फैक्ट चेक कर ले, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उसका नाम मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन वो आप कार्तिकेय समिति की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं, फिर चुनौती फैक्ट चेक की जाए।
0: ठीक है,
3: ये जो पासिंग कमेंट्स करके चले जाते हैं ना, इनको मैं याद दिला दूं,
0: इसीलिए मैंने इसको इसमें इन डेप्थ और मैंने अपनी रिसर्च टीम से भी मांगा है, क्योंकि मुझे ऑफ हैंड नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कोई भी नेता का नाम है तो आप फटाफट मुझे उसका नेता का नाम, अब वो कह रहे हैं कि उनको नेता का नाम याद नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, रिसर्च टीम मुझे जानकारी दे रही है।
3: ये अगर ज्यादा इतिहास में घुसेंगे ना तो मुखे बलि गिरेंगे। इन्होंने आरएसएस ने क्या किया था, गोल्डन टेम्पल की प्रतिकृति जलाई थी, आरएसएस का कितना बड़ा हाथ था, आरएसएस का कितना बड़ा हाथ था, ये सारे दुनिया को पता है। हिंदू वर्सेस सिख कैसे किया गया, कैसे दंगल की गई, ये सबको पता है। पूरा इतिहास जो है वो रंगा हुआ है। यशवंत शिंदे के बारे में जवाब नहीं देना है, वो खुद कह रहा है, जिंदा है, बोल रहा है, मैं था इन्वॉल्व, नाम ले रहा है, लेकिन इंक्वायरी नहीं करना है, पासिंग रिमार्क्स पास करने हैं। अरे वो तो छोड़ो, वो तो गांधी फैमिली पे आप उंगली रखते हो, तो गांधी फैमिली तो वो है कि उन्होंने जिसने किया ये सब उनको तक उन्होंने माफ कर दिया। ये है राहुल जी और ये प्रियंका जी है और तुम्हारी तुम्हारी पार्टी।
0: अब एक सेकंड, जो जानकारी मेरी टीम मुझे दे रही है एक बार दर्शकों को बता दें ताकि कोई भी गलत बात इस मंच से ना जाए। बात जो सामने आई थी वो ये थी कि डीआर कार्तिकेयन जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे थे ये पता लगाने के लिए कि राजीव गांधी के हत्या के पीछे कौन कौन लोग थे, उन्होंने कई चुनौतियों की बात की थी जांच के दौरान एक इंटरव्यू में। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ओन लॉयलिस्ट यानी उनके कुछ करीबी लोग थे जो डिरेल और मैनिपुलेट करना चाहते थे हत्या की इस जांच को। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हत्या या जांच के पीछे वो थे, जांच को डिरेल करने का आरोप जरूर इन्होंने निकाल जो लगाया है
5: वहां पर हत्यारा पहुंचा।
3: मैं
0: शुक्ला जी जो ऑन रिकॉर्ड है वही है, वरना आगे से इस तरह की गंभीर बात बोलिए। देखिए ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है, कुछ भी जब इतना संजीदा हो प्लीज कम आउट विथ फैक्ट्स और कोर्ट कीजिए आप लोग कहां से बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जिसमें आप खुद ही मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने देखा था, इस तरह की बात ना करें। मैं सिर्फ बचने के लिए कह रही हूं, जो मेरी रिसर्च टीम ने कहा मैंने बता दिया है।
3: जी, ये लोग देश के लिए बलिदान देना, देश के लिए काम करना, जान न्योछावर करना, इनसे इनका कोई संबंध नहीं है।
0: लेकिन पाटिल साहब आपकी भी तो जल्दबाजी है ना, जिन लोगों को जिन केसेस में कोर्ट से एक्विटल मिल गया आप जबरदस्ती लगे हुए कि उनका एक्स आदमी जिसने कर्नाटका में कंप्लेन कर दिया है जो चाहता है कि आरएसएस और ऐसे को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, आप उसको कोर्ट कर करके बार बार वही केसेस बता रहे हैं, ये भी तो गलत है ना अतुल जी।
3: नहीं मैं अंजना जी मैं कभी गलत कोर्ट नहीं करता, मेरे पास अगर स्टडी है, मेरे पास अगर कागजात है तो।
0: कोर्ट से एक्विटल है हाँ या ना?
3: सुनिए सुनिए सुनिए, मैं यशवंत शिंदे ने जो एफिडेविट दिया
0: कोर्ट से एक्विटल है हाँ या ना?
3: नहीं नहीं नहीं, वो मालेगांव के केस में कोर्ट से एक्विटल मिला है। और सुनिए सुनिए एक मिनट, और उसमें भी जो सुलीवन नाम की वकील थी उसको किस तरह से अफसर ने कहा था गो स्लो, ये भी कॉन्ट्रोवर्सी हमने सुनी है। बात वो मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि यशवंत शिंदे जो कह रहा है, जो 25 साल तक इनका प्रचारक था, उसका कहना है कि बॉम्ब बनाना, बॉम्ब हमने कहां बनाया, सिंहगढ़ के नीचे जो है एक जगह था वहां पर उन्होंने बॉम्ब बनाना सीखा, इसे अप्रोच किया गया, ये लोग थे, ये वो खुद कह रहा है, क्या उसकी जांच की?
0: हाँ तो ये इंटरव्यू में बैठ के और पॉडकास्ट करते रहना अलग चीज होती है, अगर इतना ही बड़ा विसल ब्लोअर है ही शुड गो टू कोर्ट। मामले की देखिए, मामले का हल तो देखिए, न्याय तो कोर्ट से मिलेगा ना, ना आपके 6 बजे के शो में कहने से मिलेगा ना मेरे कहने से, ठीक है? किसी का नहीं हो सकता, यहाँ पे जस्टिस थोड़ी होगा, हम लोग तो बातें ही रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट का क्विटल मायने रखता है। जल्दी से एक एक कमेंट, नहीं वक्त इतने की इजाजत देता है मुझे बताया जा रहा है। विवेक जी और अमितोष जी आपका धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद अतुल जी और प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बताएंगे आईआईटी बॉम्बे के छात्र ने जान क्यों दी, इसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों अब ट्रंप के लिए हूती सगे हो गए और उन्होंने सऊदी को ही दगा दे दिए। आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया, देखते रहिए।

0: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: एक को एक
6: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
9: Oof! ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
11: Maddie, I need to open a savings account.
12: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
11: स्मॉल बैंक?
12: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
11: ओके
12: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
13: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
14: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
13: असली शहद, असली स्वाद।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: In association with
19: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: चौल में घर छोटे होते थे, बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
12: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
2: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके लोगों के घर टूटते हुए देखे हैं, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
8: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
11: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
8: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bichara cover mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग।
5: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान ने सियासी बहस को गर्मा दिया है। एजे नूरानी मेमोरियल लेक्चर में अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था।
4: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
5: इसके बाद बीजेपी ने अंसारी के बयान पर मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इस बयान के जरिए सनातन और हिंदू परंपरा को निशाना बनाया गया है।
6: और सचमुच डरावने वक्तव्य है, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
5: वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े मौलाना साजिद राशिदी ने भी हामिद अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
7: जब आप पद पर थे, आप मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते थे, उस वक्त तो आपने किया नहीं। अब आपको कोई पूछ नहीं रहा है तो जानबूझकर आप अपने आप को जनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी अभी जिंदा हूं, मैं भी अभी हयात हूं, मेरे बारे में भी सोचो।
5: उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी अंसारी के बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हामिद अंसारी के बयान के बाद शुरू हुआ सियासी विवाद अब सांप्रदायिकता, सनातन परंपरा और धर्म निरपेक्षता के मुद्दे तक पहुंच गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की प्रतिक्रियाओं के बीच अंसारी के बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
8: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं। नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं। जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए, जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उनका भी वो अपमान करते हैं।
9: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। और ये सेल्फ गोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से, बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।
10: हामिद अंसारी ने एक किताब को कोट करते हुए नेहरू जी को कोट किया और उस बयान के बाद जबरदस्त जंग छिड़ गई है, हामिद अंसारी वर्सेस योगी आदित्यनाथ। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में आज चर्चा। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए 7 तक मारिया के साथ।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की न्यू एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, मायावती पर भी तंज। लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी ने जोड़ तोड़ पर मारी बाजी, अजमेर पाली में बढ़त के बाद भी हारी कांग्रेस, 7 में से 6 नगर निगम में कमल का कब्जा। नाबालिग से छेड़छाड़ केस में 3 आरोपी अरेस्ट, जमुई केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन, मामले में नेशनल वुमेन कमीशन की नजर। स्टूडेंट सुइसाइड केस में डीन के समर्थन में प्रदर्शन, प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में आई फैकल्टी, छात्रों के विरोध के बाद पद से हटाए गए थे डीन। शो की शुरुआत यूपी के चुनावी राजनीति से करते हैं। मिशन 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बेहद अहम है। आज नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे, जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है, तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर, यही 2 इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है, मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
1: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
1: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं तो दूसरी ओर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुलाकात हुई है। इसके साथ ही सियासी क्यासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री एवं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दिल्ली से लेकर अमरोहा तक राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल यूपी चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार राजनीति हलचल तेज हो गई है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। अब आरएलडी कह रही है कि अगर मोहम्मद शमी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है।
5: मोहम्मद शमी और माननीय जयंत चौधरी जी की मुलाकात को लेकर कई अटकलें चल रही हैं, परंतु मोहम्मद शमी जी स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने भारत के परिश्रम को विश्व स्तर पे लहराने का काम किया और माननीय जयंत चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मोहम्मद शमी जी के गृह जनपद में माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी सांसद निधि से 1.5 करोड़ रुपये से स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप करने का काम किया है और माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी 100% निधि को खेल के लिए डेडिकेट किया हुआ है। मोहम्मद शमी जी उसी के लिए धन्यवाद करने आए थे माननीय जयंत चौधरी जी का, परंतु उसके राजनीतिक मायने निकालना ये मुझे लगता है कि गलत है। परंतु मोहम्मद शमी जी भी भारत के नागरिक हैं, अगर वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं तो इसके अंदर लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, तकलीफ क्यों हो रही है, ये हमें समझ के परे।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिम यूपी से लेकर पूरी यूपी में दिख रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
6: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
7: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं। हम
8: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
6: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए SP सीधे सीधे निशाने पर है।
8: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
6: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
9: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
6: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात बिहार की, जहां जमुई की एक नाबालिग के साथ सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है। जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं।
10: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
11: पुलिस के द्वारा तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं।
10: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
12: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे।
10: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों, आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
13: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रहेगा।
10: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है, उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
14: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों तत्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
10: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
15: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
10: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुलजार सिंह की खुदकुशी के बाद आज नया केस सामने आया है, जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि बाद में मालूम चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
1: वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम जगसीर सिंह जग्गा है। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी। जिससे तंग आकर उसने रविवार को संगरूर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जग्गा सिंह की यह तस्वीर सबसे पहले कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की थी। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
16: आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है, बर्गर पिज्जा से भी ज्यादा फास्ट डिलीवरी ड्रग्स की हो गई है और होम डिलीवरी हो गई है।
17: नशे रोकण वास्ते विल पावर चाहिए, लत्तां विच जान चाहिए है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिए है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चाहिए है, जेड़े के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं है।
1: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
18: भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की वीर भूमि को आज उड़ता पंजाब, ड्रग्स वाला पंजाब बना दिया है।
1: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही नया खुलासा हो गया। खुलासा ये कि जग्गा तो पहले से आपराधिक किस्म का आदमी है, 9 केस पहले से दर्ज हैं, जिसमें रेप जैसा संगीन आरोप भी है, 4 मामलों में दोषी भी साबित हो चुका है।
19: उना ते ऑलरेडी 9 FIRs दर्ज ने, इना विचों 4 दे विचों कन्विक्टेड ने, जिदे विच वक वक थाणियां दे केसेस ने, एक्साइज दे केसेस ने, चीमा थाने दे 3 जिदे विचों कन्विक्टेड ने, अते एक NDPS दा केस, सदर पटियाले दा केस है, जिदे विचों कन्विक्टेड ने।
1: जग्गा को ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, ये तो जांच का विषय है। मगर इतना जरूर है कि जग्गा पहला ऐसा आदमी नहीं है जिसने ये आरोप लगाया है। इसके पहले गुलजार सिंह नाम के शख्स ने इसी संगरूर में खुदकुशी कर ली थी। कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।
0: ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, IIT बॉम्बे में हॉस्टल के कमरों में दीवारों पर पंखे लगाए जा रहे हैं। सीलिंग फैन की जगह अब दीवारों पर पंखे लगेंगे। छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटना के बाद अब मैनेजमेंट ने ये कॉल लिया है कि हॉस्टल के दीवारों में पंखे लगाए जाएंगे। हालांकि IIT बॉम्बे प्रशासन ने दीवारों पर लगाए जाने वाले पंखे को लेकर 2 साल से काम कर रहे थे। ये इत्तेफाक की बात है कि अब इस पर काम तेज हो गया है। अब बात शेयर बाजार की, जहां देखते हैं कि क्या रहा आज सोने चांदी का कीमत।
10: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 564 अंक चढ़कर 74,859 और निफ्टी 68 अंक की बढ़त के साथ 23,414 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी निवेश और ग्लोबल बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों से बाजार को सपोर्ट मिला। ब्रेंट क्रूड 2.36% गिरकर $101.40 प्रति बैरल पर आ गया, जिससे निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपया भी मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत होकर ₹95.81 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू शेयर बाजार में तेजी से रुपए को सपोर्ट मिला। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी से भी रुपए को सहारा मिला। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट रही और सोना ₹671 गिरकर ₹1,53,056 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी ₹2,346 गिरकर ₹2,34,562 प्रति किलो पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में नरमी और मुनाफा वसूली के चलते घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट देखने को मिली है। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध और भीषण होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक दिन यूक्रेन हमला करता है तो दूसरे दिन रूस इतना जबरदस्त प्रहार करता है कि कई लोगों की अपनी जान भी चली जाती है।
10: तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क इलाके की हैं। सरहद के आसपास जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो कई लोग खारकीव जैसे कुछ सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी के लिए इस सेंटर में इकट्ठा हो रहे थे कि रूस ने इस पर हमला कर दिया। धमाके के बाद ही इसमें आग लग गई और लोग फंस गए। काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा था और आग की लपटें पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी। बचाव दल कई घंटों तक हालात को काबू करने के लिए जूझता रहा। कई घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। रात भर यूक्रेन के आसमान में रूस की मिसाइलें और ड्रोन की आवाजें गूंजती रहीं। कई अलग अलग शहरों में रूस ने हमले किए हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर शॉपिंग मॉल तक पर बम बरसाए गए जिससे भारी नुकसान हुआ है। जेपोरिजिया में दो अलग अलग शॉपिंग सेंटरों को निशाना बनाया गया। इन पर हमलों के लिए गेरान 2 और गेरान 4 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और कैब ग्लाइड बम बरसाए गए। 6 ड्रोन से एयर स्ट्राइक होने से तमाम ठिकानों पर धमाकों के साथ आग लग गई। यूक्रेन ने दो दिन पहले ही मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया था। हमला इतना विनाशकारी था कि यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन लगातार हमले करता रहा है। उसकी कोशिश रूस की ऑयल सप्लाई चेन को प्रभावित करने की है। आज तक ब्यूरो।
0: जापान में चल रहे एशियन गेम्स का आज तीसरा दिन है। भारतीय पुरुष और महिला टीम कई इवेंट्स में अपना दम दिखा रही हैं। भारत ने दूसरे दिन शूटिंग में मिले 2 सिल्वर मेडल के साथ अपना खाता खोल दिया। अब तीसरे दिन शूटिंग के साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट में भी मेडल आ चुका है जिसके पदकों की अब संख्या 6 हो चुकी है।
10: शूटरों ने फिर बढ़ाया देश का मान। मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक सुचिका के नाम। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शूटिंग में सोमवार को भी पदकों पर भारतीय शूटरों ने निशाना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिमांशु ढिल्लो ने सिल्वर और रुद्रांश पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा पुरुष टीम ने भी 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। उधर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत की सुचिका ने कांस्य मेडल जीता है। इसके अलावा हॉकी में भारतीय महिला टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से रौंद कर अपना विजय अभियान जारी रखा है। कल सुबह भारत की महिला क्रिकेट टीम फाइनल में श्रीलंका का सामना करेगी। पिछली बार गोल्ड मेडल जीतने वाली हिंदुस्तान की बेटियों से इस बार भी सोने पर कब्जा करने की ही उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
0: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: आगे आगे
23: अरे उधर
22: उधर
23: करेक्ट करेक्ट
24: मिल गया। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओले, ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
6: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
7: ओले बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।

0: సోకుడు.
1: मिल गया.
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: Papa!
4: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ओला ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: वो चार्ज हुआ यार।
6: ओला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: ओ नो, बहुत बोर लग रहा है।
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
10: लायन डेट नट बाइट्स।
11: एक तो एक
12: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx, JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी.
1: असली शहद, असली स्वाद.
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ. कपीवा डायबिटीज जूस.
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
8: यार लोन भूल गया. मैरी

टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल। दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नबीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। नाबालिग से छेड़छाड़ केस में 3 आरोपी अरेस्ट, जमुई केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन, मामले पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की नजर। स्टूडेंट सुसाइड केस में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में आई फैकल्टी, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। ट्रंप ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की, जताई इच्छा, लेकिन साथ में दी चेतावनी, अगर व्यवहार नहीं बदला तो जल्द हो सकता है बड़ा कार्रवाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी, सोकुडो।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की सुइसाइड का सच क्या है, आज विशेष में इसी की बात करेंगे। ये मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में साइलेंट मार्च भी निकाला गया है और ये सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली।
1: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
2: भारतीय जनता पार्टी
1: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेंच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर, वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें यह भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहां तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे यह भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यहीं नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़ ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
3: IIT के एक हॉस्टल में बीटेक सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट करने की एक घटना हुई थी। इसी घटना के संबंध में जो डिसीज स्टूडेंट है उनके पिताजी की कंप्लेंट पे पवई पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन पवई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
4: सर, ये मामला किन लोगों पर दर्ज किया है और क्या सेक्शंस लगाए गए हैं
3: इसमें? ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
4: सर, क्या एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया इसमें?
3: जिस तरीके की FIR है उसको जो जो सेक्शंस अप्लाई होते हैं वो सभी अप्लाई किए गए हैं।
1: लेकिन तब तक तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं। उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
5: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
6: बोल रहे हैं ना?
5: हम रिजाइन करने वाले हैं। जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
6: बोल रहे हैं ना?
5: हम रिजाइन करने।
1: लेकिन आज फिर आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान एआई यूज करने की बात कही गई थी। अब आईआईटी बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद आईआईटी बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला आईआईटी बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।
0: मामला हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी का है। मतलब आईआईटी के छात्र ऐसे दिन रात प्रदर्शन करें आईआईटी की फैकल्टी पर दलित होने की वजह से किसी छात्र को प्रताड़ित किया जाए, इस पर भी यकीन करना मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर इससे आईआईटी नाम के ब्रांड की छवि पर भी असर पड़ता है और राजनीति तो इस मुद्दे को जिंदा रख रही है।
1: आईआईटी बॉम्बे इस वक्त प्रदर्शनों का गढ़ बना हुआ है। अलग अलग प्रदर्शन चल रहे हैं। कॉलेज के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है, बाहर दूसरे संगठनों और अब आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें आईआईटी बॉम्बे के अंदर की हैं। ये साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च है जो प्रोफेसर सूर्यनारायण के समर्थन में निकाला जा रहा है। तमाम प्रोफेसर इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। इस बीच साहिल की नानी भी सामने आई है। उनका दावा है कि मृतक साहिल लगातार अपने माता पिता को बताता था कि उसके साथ कॉलेज में शोषण होता है। 8 दिन पहले भी उसने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई थी,
7: क्योंकि 8 दिन के पहले उनके मम्मी पापा जब मिलने के लिए गए थे तो उनके मम्मी पापा को साहिल ने बताया था कि यहाँ कॉलेज में मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता है, मुझ पर अन्याय हो रहा है। तो साहिल के मम्मी पापा ने बोला, आपको ये पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, बाकी चीजों पर ध्यान मत दे, तू सिर्फ ये पढ़ाई कर, ऐसे बोला था। हाँ, 8 दिन के पहले उनके माँ बाप जाके मिल के आए तो माँ बाप को बताया था कि ये कॉलेज में ऐसा हो रहा, तो माँ बाप ने समझाया, बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो।
1: साहिल के दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने अचानक से इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। जिन छात्रों के साथ साहिल कैंपस में रहता था वही बता रहे हैं कि उन्हें साहिल कभी दुखी नहीं लगा। वो साहिल के साथ भेदभाव की बात से भी इनकार कर रहे हैं।
8: काफी स्टूडेंट्स हर्ट है, ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छा, हम सबका बहुत अच्छा दोस्त था वो, और वो बहुत ऐसा, मुझे तो प्रोसेस नहीं हुआ जब वो ऐसा हुआ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, बहुत खुश था वो, मतलब मैंने उसको देखा है, मैंने कभी उसको से दुख होते हुए
6: जो भी हुआ वो 18 सितंबर मिड सेमेस्टर एग्जाम जब उसको पकड़ा गया और उसके बाद जब वो रूम पे गया उसमें हुआ।
8: यही है जो चल रहा है अभी, मतलब वही रीजन मुझे भी वही लगता है, अदरवाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन आई डोंट थिंक वो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से
6: बिल्कुल। लेकिन एक इन जनरल क्योंकि अब कहा जा रहा है 3 सुसाइड कैंपस पे इस साल हो चुकी है, उसको लेकर के भी जो कदम उठाने चाहिए थे कॉलेज कहीं ना कहीं उसको फेल हुआ है।
8: सर स्टेप्स लिए जाते हैं, स्टूडेंट वेलनेस सेंटर है के बारे में, बट हाँ मतलब और बेटर कर सकते हैं उसको, अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छे से समझे और उनका प्रॉब्लम्स को एक पोर्टल हो जाते हैं आप यू नो, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात करते जाते हैं तो बहुत लोग जज करते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन।
1: अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये कैंपस राजनीति का अखाड़ा भी बना हुआ है। कैंपस के अंदर ही छात्रों के आंदोलन गुटों में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गुट के खिलाफ कैंपस में ही नारेबाजी हो रही है, लेफ्ट के तमाम स्टूडेंट नेता सक्रिय हो गए।
6: क्या डिमांड है उन्हें बेसिकली क्या चाहिए, मतलब साहिल का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद अंदर लगातार आईआईटी में कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका डिमांड क्या है, व्हाट शुड
9: बी? मेरा डिमांड इज रेजिग्नेशन, हमें जितने भी प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं सबके रेजिग्नेशन चाहिए, जो डायरेक्टर है जो डीन है उनके रेजिग्नेशन चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि आपने ऐसा किया है, आपने क्या ऐसा किया है कि 3 दलित स्टूडेंट्स ने पिछले एक साल में सुसाइड कर लिया, आपके यहाँ पर ऐसा क्या अरेंजमेंट है अकेडमिया का कि लोग इतना प्रेशर में है, इतने प्रेशर में कि लोग ये सारे इतने ट्रैजिक और इतने इररिवर्सिबल चॉइसेस कर रहे हैं। तो हमारा सबसे इमीडिएट रेजिग्नेशन ही हमारा गोल है, एंड उसके बाद देयर नीड्स टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी अंडर जो विच टॉक्स अबाउट द स्टूडेंट विच टॉक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ के लिए, किसी को यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा बिकॉज
1: तमाम दलित संगठन भी दलित छात्र की आत्महत्या के बाद सक्रिय है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक धड़ा अब आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।
10: मैं महाराष्ट्र सरकार के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से मांग करता हूं कि आत्महत्या फ्राइडे को हुए, अभी 3 दिन हुए, आज मंडे है, तभी भी इसके ऊपर प्राध्यापक सूर्य नारायण डुल्ला के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और आज बॉम्बे आईआईटी ने प्राध्यापक सूर्य नारायण डुल्ला को निलंबित किया है ये खबर मिली है। लेकिन सिर्फ निलंबन नहीं चाहिए, हमारी मांग है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खराब पार्टी की मांग है, जल्द से जल्द प्राध्यापक सूर्य नारायण डुल्ला को हिरासत में ले लो, उसके ऊपर एट्रोसिटी के तहत केस करो, जल्द से जल्द मनुष्यवध का गुना दाखिल करो और उसको गिरफ्तार करो, ये मांग हम करते हैं।
1: राजनीतिक दलों की खासियत ही ये होती है कि वो राजनीति भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
11: अब पुलिस जांच कर रही है पर दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है, कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता, किसी परिवार का बच्चा यदि इस प्रकार से ईश्वर के घर जाता है तो उसकी मौत पर भी राजनीति ओछी करे।
12: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है।
0: विशेष में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: यार लोन भूल गया। मैरी
4: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
5: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
5: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
6: There's nothing small about
7: it. Ujjivan, nothing small about us.
8: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
9: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
10: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधू, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिला है और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में एसआईआर के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
1: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
0: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग के इस बयान के बाद भी सियासत तेज होती जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच दिग्गजों को नोटिस पर नई लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।
2: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है। मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करी।
3: ये झूठ की गुंज चारों तरफ चल रही थी। आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में। और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मंच शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।
4: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही। आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है, माया पर भी तंज। नाबालिग से छेड़छाड़ केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, जमुई केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन, मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नजर। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी मामले में डीन पद से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज की बुलंद, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। ट्रंप ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की जताई इच्छा, लेकिन साथ में दी चेतावनी, अगर व्यवहार नहीं बदला तो जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबसे पहले बात तेल की कीमत में आ रहे उस उबाल की, जिससे हम सबको खबरदार रहना जरूरी है। कच्चे तेल का आयात वो कमजोर नस है जिसके दबने भर से देश में महंगाई का तूफान खड़ा हो सकता है। दुर्भाग्य यह है कि कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर बने हुए हैं। इसकी वजह से भारत का आयात बिल बढ़ रहा है, लेकिन चुनौती इतनी भर नहीं है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ से लेकर पश्चिम एशिया में दोबारा जंग शुरू होने का खतरा कच्चे तेल के दाम में अप्रत्याशित उछाल ला सकता है।

0: दुनिया में चौतरफा मचा घमासान क्या तेल के दामों में आग लगाने जा रहा है, क्योंकि रूस की रिफाइनरी चल रही है। ईरान का अमेरिका की तरफ से दोबारा हमले की आशंका बढ़ रही है। ईरान कह चुका है कि हमले की सूरत में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद दूसरा अहम समुद्री रास्ता भी बंद कर देगा। भारत की टेंशन यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का हथियार ट्रंप को सौंपा जा चुका है।
1: The war's gonna end soon, and when it ends, your gas prices are gonna drop to a level that they were before, maybe even lower.
0: मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर किसी को भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो बिल्कुल उनकी बात का उल्टा है। ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के जंग की तरफ लौटने के दावे हो रहे हैं। जिस तरह से वो वीकेंड की छुट्टी बीच में छोड़कर व्हाइट हाउस लौटे, पश्चिम एशिया में अमेरिकी राजनयिक मिशनों के लिए अलर्ट जारी किया गया, ईरान की तरफ से भी खबर दी गई। ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ईरान को जानकारी मिली है कि अमेरिका कुछ क्षेत्रीय देशों के समर्थन से ईरान के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ईरान ने ट्रंप के सामने युद्ध खत्म करने की शर्त रखी है, जिस तरह मांग पूरी न होने पर निर्णायक युद्ध की धमकी दी है, उसने पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है।
2: لقد أعلنا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمدة، وثانيا أن يعلنوا إنهاء الحرب على جميع الجبهات من لبنان إلى سائر الجبهات، وأن ينهوا الحرب، كذلك أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لإيران، وأن لا يتعاونوا مع المعارضين لثورتنا، وأن يوقفوا أي نوع من الاعتداء على الأراضي الإيرانية، حتى لو كان بواسطة طائرات مسيرة، وألا يواصلوا اعتداءاتهم وأن يرفعوا الحصار البحري. هذه هي الشروط التي ذكرناها مرارا، وقد تم إبلاغهم بها رسميا عبر دولتي قطر وباكستان.
0: أمريكا وإيران के बीच अब निर्णायक लड़ाई हो सकती है। IRGC लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो ये भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक खबर होगी।
3: دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
0: کچے تیل کے دام کو لے کر چنتا کتنی زیادہ ہے، اب آپ اسے سمجھنے کے لیے PPAC یعنی پیٹرولیم پلاننگ اینڈ انالیسس سیل کا یہ آنکڑا دیکھیے، जिसमें भारतीय क्रूड बास्केट के औसत आंकड़े हैं, जो अप्रैल में $114 प्रति बैरल, मई में $106 प्रति बैरल, जून और जुलाई में $83 और $82 प्रति बैरल, लेकिन पिछले दो महीने में इसमें बड़ी उछाल आई है। अगस्त में भारतीय क्रूड बास्केट का औसत 90 और सितंबर में $114.62 प्रति बैरल हो गया। मतलब जो अप्रैल में भाव थे वो न सिर्फ लौट आए हैं और अब दोबारा जंग होने की सूरत में और भी ऊपर जा सकते हैं, और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि 18 तारीख को भारतीय क्रूड ऑयल बास्केट का रेट $123.83 प्रति बैरल था। ये तब है जब जंग अभी दोबारा शुरू नहीं हुई है।
1: Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. If we don't hit them with the B-2 bombers, they right now would have a nuclear weapon. And if they had it, it would be a matter of days.
0: पश्चिम एशिया में दोबारा जंग शुरू होने से भारत के आयात बिल का बिगड़ना तय है, क्योंकि भारत के लिए तेल का आयात लगातार महंगा होता जा रहा है। पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल की डेटा में इसका खुलासा हुआ है, जो कहता है कि अप्रैल अगस्त के दौरान भारत का कच्चा तेल आयात बिल 48% बढ़कर $74.8 अरब हो गया। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालातों की वजह से पिछले 18 से ज्यादा दिनों में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। मतलब भारत के लिए तेल को लेकर परीक्षा खत्म नहीं हुई है, जबकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से इसमें आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
4: पश्चिम एशिया संकट और रूसी प्रतिबंधों का ही असर है कि अब भारत को कच्चे तेल के आयात पर पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ा है। आयात बिल बढ़ने के साथ साथ डॉलर पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, और सवाल ये उठ रहा है कि भारत इस दबाव को कितने दिन तक सह सकता है।
1: The Russia plants are being hit by Ukraine, and I've asked President Zelensky not to hit the diesel plants, refineries.
5: Is it potentially that Ukraine war could end? Is it potential that
1: yes, diesel is being driven up by the fact that it's having a hard time coming out of Russia, and that's a case that hurts the world. We got to stop.

0: डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद जेलेंस्की ने रविवार को रूस की एक और बड़ी रिफाइनरी को निशाना बनाया। 2024 से अब तक यूक्रेन की तरफ से रूस की कम से कम 24 से 26 प्रमुख तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जो रूस की कुल रिफाइनरियों का 75% है। रूस की रिफाइनरी क्षमता कमजोर होने का सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ा है, खासकर डीजल पर, जिसके दाम में तेजी ने भारत जैसे देशों को चिंता में डाल दिया। लेकिन भारत की चिंता रूस को लेकर इतना ही नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास रूस से तेल खरीदने वालों पर 100% टैरिफ लगाने का हथियार आ चुका है। भारत रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष देशों में शुमार है, इसलिए ट्रंप की तरफ से नया खतरा भारत पर मंडरा रहा है, जो भारत को महंगा तेल खरीदने को मजबूर कर सकता है।
1: कि हम लगभग 89% तेल हम आयात करते हैं, तो जो आज जो हमारे पास तेल आ रहा है उसकी कीमत जो है $120 के आसपास पड़ रही है। हमको हेडलाइन फिगर 103 दिखा रही है आज की तारीख में, लेकिन हमारे को जो पड़ रही है भारत में, क्योंकि मैंने जैसे गिनाया आपको कहां कहां सब कुछ महंगा है, तो वो हमको $120 पर बैरल पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि हमारी कंपनियों ने, चाहे वो सरकारी हैं, ज्यादातर सरकारी ही कंपनियां हैं, उन्होंने आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल यह सबकी कीमत पेट्रोल पंप पे नहीं बढ़ाई है।
0: भारत की मुश्किल ये है कि अगर वो 100% अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बावजूद रूस से तेल खरीदने का फैसला करता है, तो इसका खामियाजा उसे अमेरिका को होने वाले निर्यात में, जो भारत की तरफ झुका हुआ है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए ट्रंप क्या करेंगे इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया तो फिर नए सप्लायर से उसे रूस के मुकाबले तेल महंगा पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर अमेरिका ईरान में दोबारा जंग शुरू हुई तो फिर तेल के दाम में उछाल आने से रोकना मुश्किल होगा।
1: यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के तेल के ऊपर, और दूसरी तरफ जो है भारी मात्रा में जो चल रहा है वो खाड़ी के देशों में, जो तेल की दुनिया में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन तेल की कीमतें इसलिए ज्यादा है कि वो तेल जहां जहां जहां जहां होता है, जहां जहां उसका उत्पादन होता है और जहां उसकी मांग है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। क्योंकि अमेरिका इस सब के बावजूद कि पूरी दुनिया को परेशानी है, वो लगातार जो है वो हमले भी कर रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो जब तक ये युद्ध को खत्म नहीं किया जाता, जब तक जो है ये डिस्ट्रप्शन खासतौर से खाड़ी के देशों का, ये तो सुधरता भी नजर नहीं आता।
0: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही युद्ध की वजह से बंद है। मुसीबत यह है कि ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने हूतियों पर हमला किया तो बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा। अब आप ही सोचिए, रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दे रहा है ईरान। ऐसी परिस्थिति में अगर भारत अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद या कम करता है, तब उसके विकल्प के तौर पर जिस भी देश से तेल खरीदेगा वहां से भारत लाना अपने आप में चुनौती होगी, क्योंकि दुनिया के दो अहम समुद्री रास्ते जंग के साए में होंगे। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़े तो फिर सरकार कितने दिन कीमतों को बढ़ने से रोक पाएगी।
1: अब $120 इंडियन बास्केट की आज कीमत है, उसके बावजूद कंपनियां नहीं बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो घाटों को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब 130 की जगह जो है, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $110 या 115 हो जाए, और इंडियन बास्केट की कीमत जो है अभी $125 या $130 बीच बीच में गई है, $130 भी थी अभी उसी दिन, तो ये अब ऐसा फैसला है जो कंपनियों को लेना होगा या सरकार को लेना होगा।
2: अब बात राजस्थान निकाय चुनाव की, जिसमें सत्ताधारी दल बीजेपी का बोलबाला रहा। राजस्थान की 7 नगर निगमों में से 6 पर बीजेपी का नियंत्रण हो गया। आज 5 निगमों में मेयर पद के चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 में बीजेपी जीत गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, बीजेपी को चुनाव नतीजों में 56 निकाय में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन आज हुए चुनाव में वो 200 निकाय में बहुमत का इंतजाम करने में कामयाब हो गई। कांग्रेस को 45 में बहुमत मिला था, उसकी गाड़ी 96 तक पहुंच पाई। आम आदमी पार्टी 12 में अब पार्टी का सभापति है, लेकिन असल सवाल कांग्रेस को लेकर है, जिसके अजमेर और पाली में बीजेपी से ज्यादा पार्षद थे, लेकिन फिर भी वहां पर वो पिछड़ गई।

0: जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में हो रहा यह जश्न निकाय चुनाव में उस बंपर बढ़त का है जिसने कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। राजस्थान निकाय चुनाव में 301 चेयरपर्सन के नतीजे घोषित हुए हैं। इसमें बीजेपी के खाते में 199 और कांग्रेस को 94 निकाय में जीत मिली है। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच 105 निकायों का अंतर है जबकि 8 निकायों के नतीजे बाकी हैं।
1: मैं जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से हम आगे भी विधानसभा लोकसभा ये सभी सीटें हम जीतेंगे ताकि हमारा देश मजबूत हो सके, नरेंद्र भाई मोदी जी मजबूत हो सके, भजन लाल जी मजबूत हो सके। इस प्रकार की हम अपेक्षा लेकर के हमारा संगठन, हमारे संगठन महामंत्री जी वो भी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। पूरे संगठन को हमने व्यवस्थित रूप से किया है, चार चौबंद हम करेंगे। जो कुछ भी थोड़ी बहुत इसमें कहीं कमी रह गई कि हम 309 में से 309 जीतना चाहते थे, उसमें जहाँ कमी रह गई हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और हम ऐसा सुधारवादी काम करेंगे।
0: हैरान करने वाली बात यह है कि जिन जगहों पर कांग्रेस आसानी से जीत सकती थी वहां भी बीजेपी ही जीत गई। 7 नगर निगमों में से सिर्फ एक ही जगह कांग्रेस अपना मेयर बनवा पाई है जबकि बाकी जगह बीजेपी जीती।
2: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कहा था कि राजस्थान में अपने स्टेट वाले इलेक्शन लेकर के आएंगे। आपके सामने हो रहा है, निकाय का चुनाव हो गया, पंचायत का आने वाला है, कितना पैसा बच रहा है ये आपको देखना है। लगातार 5 साल तक चुनाव चलते रहे, 3 महीने बाद आदर्श संहिता लगती रही, इनको कुर्सी का डर था, लगातार हर 3 महीने चुनाव कराते थे। आज कह रहे हैं सरकार दुरुपयोग, सरकार ये, अरे आपने क्या किया वो आप अपने घरे बांध में झांक करके देखिए। हमने जो संता ने जो हमें दिया है उसे हमने स्वीकार किया है।
0: राजस्थान के कुल 10 नगर निगमों में से अब तक 7 के परिणाम घोषित हुए हैं। इनमें बीजेपी ने 6 नगर निगमों में वोट बनाया है जबकि कांग्रेस के खाते में 1 नगर निगम आया है। 3 नगर निगमों के परिणाम अभी बाकी हैं। इस तरह राजस्थान में भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर और अलवर में बीजेपी का मेयर है। बड़ी बात यह रही कि जहां पर कांग्रेस मजबूत थी वहां भी बीजेपी आगे निकल गई। मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस को अजमेर और पाली के मेयर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अजमेर में बीजेपी की अनामिका शर्मा को 43 वोट मिले जबकि यहां बीजेपी के 32 पार्षद जीते थे। पाली में बीजेपी की मिता बुबकिया को 33 वोट मिले हैं जबकि बीजेपी के 21 और कांग्रेस के 29 सांसद थे। कांग्रेस सिर्फ बीकानेर में अपना मेयर बना पाई जहां से वसुंधरा राजे के बेटे सांसद हैं। नतीजों से पहले ही बीजेपी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कई पार्षद पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे थे लेकिन नतीजों ने कांग्रेस को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा झटका दिया क्योंकि पार्टी जहां मजबूत थी वहीं हार गई। बीजेपी 199 बोर्ड में नगर निगम, 31 नगर परिषद और 162 नगर पालिकाओं में काबिज हो गई। वहीं कांग्रेस को 94 बोर्ड में 1 नगर निगम, 13 नगर परिषद और 80 नगर पालिका से संतोष करना पड़ा। राजस्थान में हुए निकाय चुनाव के फाइनल चरण में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को करारी मात दी, कांग्रेस को उसके बढ़त वाले शहरों में चित किया, उसे कांग्रेस में गुटबाजी बताया जा रहा है। बीजेपी इसे अपनी डबल इंजन की सरकार की नीतियों की जीत बता रही है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने अपनी सत्ता का बेजा इस्तेमाल कर कामयाबी पाई।
3: पहली बार के मुख्यमंत्री होते हुए भी भजन लाल शर्मा ने रणनीतिक कौशल का परिचय दिया है। 309 निकायों में से 200 से ऊपर का आंकड़ा छूते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि कांग्रेस बेहतरीन करते हुए भी बुरी तरह से निकाय प्रमुख बनाने में चूकी है और इसीलिए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे हैं जहां पर मंथन किया जा रहा है आखिर बिखरी हुई कांग्रेस ने इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया है।
4: निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद समीक्षा बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महासचिव कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल जयपुर में कांग्रेस दफ्तर में इस समय ये बैठक कर रहे हैं। अब पंजाब की खबर आपको दिखाते हैं। नशे का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसके खिलाफ आवाज उठाने के बाद गुलजार सिंह नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस ने अब आरोप लगाया है कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह नाम के व्यक्ति ने भी खुदकुशी की कोशिश की।
0: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर
2: सिंह।
0: पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा।
4: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
0: जग्गा सिंह की यह तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
5: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
6: नशे रोकण वास्ते विल पावर चाहिए, लत्तां विच जान चाहिए है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिए है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चाहिए है, जेड़े के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं।
0: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
7: आज मैं कहना चाहता हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को? जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे नशा, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा। डेडलाइन दी थी, डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिबारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
0: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी, जिस पर 9 केस दर्ज हैं, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी है।
8: ऑलरेडी 9 FIR दर्ज ने, इना विचों 4 दे विचों कन्विक्टेड ने, जिदे विच वक वक थाने दे केसेस ने, एक्साइज दे केसेस ने, चीमा थाने दे 3 जिदे विचों कन्विक्टेड ने, अते एक NDPS दा केस, सदर पटियाले दा केस है जिदे विचों कन्विक्टेड ने।
0: जग्गा को ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे। उनके बेटे के नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, उसकी वानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
9: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए शाम तक चुप बोले।
0: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।
4: और अब दिल्ली, जहां 33 लाख से ज्यादा वोटर्स को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है जो अपना दस्तावेज सुधारने के चक्कर में फंसे हैं। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयुक्त से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक, जगदीप धनखड़ से लेकर एस जयशंकर तक, न जाने कितने वीवीआईपी हैं जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला है।
0: चुनाव आयुक्त एस एस संधू, पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे, पूर्व सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद, पूर्व एलजी नजीब जंग, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। लुटियंस दिल्ली में न जाने कितने ऐसे वीआईपी हैं जिनका नाम, पहचान, पता, ठिकाना

0: बेटा पति के नाम में अंतर, माता पिता की उम्र से बेहद कम अंतर, दादा पोते की उम्र में बेहद कम अंतर, 6 से अधिक संतानें, संतानों के बीच असंभव अंतर, नाम के लिंग में अंतर, अस्वाभाविक उम्र, अपलोड की गई तस्वीर का अंतर, मकान नंबर की विसंगति, जमा दस्तावेजों में विसंगति पकड़ी है और उसका मिलान डेटाबेस से नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि दस्तावेज मिलान सही पाए जाने के बाद नाम जोड़ दिए जाएंगे।
1: अमीर और गरीब का इसमें कोई है? मान लीजिए अगर आप बाहर थे पहले, आप दिल्ली से बाहर कहीं थे और आपकी वोट बाद में बनी है, तो आपको इसमें मैपिंग करा के देनी पड़ेगी।
2: के फार्म बीएलओ भर के इनका वोट बनवा देंगे। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जो आपने एक तिहाई वोट काट दिए, उनके वोट कैसे बनेंगे? उनके यहाँ तो बीएलओ भी नहीं जा रहा है।
0: सवाल सियासी भी है और कानूनी भी। सियासी सवालों की फहरिस्त वोट चोरी से शुरू होती है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि एसआईआर केवल भाजपा द्वारा वोट चोरी व लोकतंत्र को खत्म करने का औजार ही नहीं है, बल्कि ये फ्लॉड प्रोसेस और एक फ्रॉन्स्टीन मॉन्स्टर जिसने अब उसी के लोगों को फंसा दिया है। वैसे एसआईआर को वोट चोरी करार देने की सियासत बिहार से ही शुरू हो गई थी, जब पहली बार एसआईआर रोल हुआ। बंगाल में तो विचाराधीन मतदाताओं की तादाद ऐसी है कि लाखों लाख वाजिब वोटर वोट नहीं दे पाए, और अब दिल्ली में 32% से ज्यादा नाम काट दिए गए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिना साफ कारण बताए अपारदर्शी तरीके से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं, जिससे जायज वोटर्स के अधिकार खतरे में है। हटाए गए 47,56,000 नाम और नोटिस पाने वाले 33,13,000 लोगों के नाम और कारण वेबसाइट पर नहीं है। याचिका में मांग की गई है कि सॉफ्टवेयर में तार्किक विसंगतियां और नो मैपिंग का क्या पैमाना है, क्या एल्गोरिदम और क्या नियम है, ये बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर फौरन सुनवाई हो रही है, क्योंकि अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। बंगाल में एसआईआर से पहले घुसपैठिए पर सियासत हुई, एसआईआर के वक्त डिलीशन पर सियासत हुई और अब एडजुडिकेशन पर सियासत हो रही है।
3: सारी एक्सरसाइज घुसपैठियों के नाम से शुरू की थी बिहार में, कितने पकड़े घुसपैठिए आज तक क्यों नहीं बताया? अब तक हम लोग बेवकूफ थोड़ी थे, हम क्या करते थे, प्यूरिफिकेशन ही तो करते थे 75 साल से। 2002 के इंटेंसिव रिविजन के बाद इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त की जो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी जैसे आज की है, उसने ये फैसला किया कि आगे से हम इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत नहीं, अब हम सिर्फ समरी रिवीजन करेंगे, क्योंकि वोटर रोल तो कंप्यूटराइज हो गए।
0: दरअसल बंगाल में एसआईआर हुआ, चुनाव भी हो गया, बीजेपी की सरकार भी आ गई, लेकिन अभी तक 38 लाख लोगों को इंसाफ नहीं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि अदालत के आदेश पर बनाए गए 19 ट्रिब्यूनल्स में से कुल 38,31,000 अपीलें दायर हुई थी, जिसमें 22,21,000 अपीलें नाम जुड़वाने के लिए और 16,10,000 अपीलें दूसरों के नाम हटाने के लिए दर्ज की गई। आयोग ने बताया है कि पिछले 5 महीनों में कुल 1,26,194 अपीलों का निपटारा हुआ है और 37,05,000 से अधिक मामले लंबित हैं। ये खुलासा भी हुआ कि निपटाए गए 1,26,000 मामलों में 1,13,943 यानी 93% मामले सही पाए गए। अपील निपटान में हो रही देरी का जिक्र करते हुए आयोग ने ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से बढ़ाकर 42 करने का प्रस्ताव भी दिया है। दिल्ली से अनिक्षा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले ने आज देश को झकझोर दिया। ये घटना 2 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं।
5: कानून व्यवस्था को आप अपना स्ट्रेंथ बताते हैं, ये कहा जाता है कि अब जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल क्राइम सब तरह के अपराध के लिए बिहार में है।
6: आज तक के पंचायत बिहार कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कानून व्यवस्था को लेकर जब सीधा सवाल हुआ, तब मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा था,
7: कार्रवाई लगातार होते रहनी चाहिए, सुशासन तभी स्थापित होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, अपराधी को सजा दिलाया जाए और यदि कोई जघन अपराध है उस पर तुरंत अपराध पर कार्रवाई हो और उसको सजा एक टाइम फ्रेम में हो।
6: उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार के जमुई में बेटी के साथ जिन लोगों ने सरेआम ये सब किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी, एक मिसाल कायम होगी ताकि बिहार में किसी बेटी को दोबारा ये दिन ना देखना पड़े। बिहार की इन तस्वीरों ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के दोनों पीड़ित नाबालिग हैं और 10वीं के छात्र हैं। शनिवार को दोनों जमुई के बड़वा पहाड़ घूमने गए थे।
8: जमुई के वायरल वीडियो मामले में जो

0: जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों युवक और युवती एक कोचिंग में पढ़ाई करते थे। शनिवार का दिन था, लिहाजा छुट्टी होने के बाद वो घूमने के लिए जमुई के मड़वा पहाड़ इलाके में चले गए और यहीं पर मनचलों ने उन्हें निशाना बनाया। स्कूटी सवार युवक और युवती को वहां रोका गया और उनके साथ जिस घटना को अंजाम दिया गया वह वाकई शर्मसार करने वाला है।
1: जमुई में लड़की के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। जमुई पुलिस ने सबसे पहले दोनों पीड़ित छात्र और छात्रा से संपर्क किया और FIR दर्ज कर ली।
2: पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकता है।
1: इस वारदात की वजह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में कानून का इकबाल कहाँ है? क्या बेटियों का बाहर निकलना मना है? क्यों लड़का और लड़की एक साथ बाहर नहीं घूम सकते? जमुई की इस घटना के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर है।
3: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही।
1: विपक्ष के इन सवालों के जवाब में बीजेपी और JDU ने सरकार का बचाव किया और दावा किया कि सम्राट चौधरी की सरकार में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा।
4: ट्राइंग टू आउटरेज द मोलेस्टी जैसे संज्ञेय अपराधों में इस पे कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी हैं बहुत जल्द कानून की सलाखों के पीछे होंगे और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आगे से इस तरह की शर्मसार घटना किसी के जहन में भी नहीं आए।
5: बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है और बिहार में मॉब जस्टिस नहीं चलता है। जो भी लोग कानून हाथ में लेते हैं उन पर कानून अपना हाथ डालती है। यह वीडियो प्रकाश में आया है, पुलिस मामले की त्वरित जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: बिहार के जमुई की इस घटना में ये दरिंदे न सिर्फ एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े बल्कि बीच सड़क पर इतनी घिनौनी हरकत की। इनकी हिम्मत तो देखिए कि नीचता भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं, जो बताता है कि बिहार के अपराधियों में खौफ सिर्फ दावे करके तो नहीं होगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
6: मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। 9 मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल और 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को PPP मोड पर चलाने की तैयारी है, लेकिन केवल PPP का सवाल नहीं है, सवाल है कि सरकार ने जिन संस्थानों को खड़ा किया उनमें निजी भागीदारी का मॉडल क्या होगा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा के वादे को निभाने का कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा।
7: तो कई तरह की सौगात नीमच को मिली है, मेडिकल कॉलेज की सौगात मैं बधाई देता हूँ नीमच वाले भाई बहनों को। जिले भर के लिए है, हमारे बच्चे अब यहीं MBBS करेंगे, यहीं से डॉक्टर निकलेंगे, यहीं बेहतर इलाज होगा।
8: 3 साल पहले मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने जिस मेडिकल कॉलेज को नीमच शहर के लिए सौगात बताया, जनता को सस्ते इलाज और छात्रों को अच्छी पढ़ाई के लिए जो सपने दिखाए वो अब कैसे पूरे होंगे, क्योंकि हजारों करोड़ में बने नीमच जैसे 9 मेडिकल कॉलेज जल्द ही निजी हाथों में चले जाएंगे। MP के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने की तैयारी है। इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों को कौन सी निजी कंपनी चलाएगी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने PPP का पूरा मॉडल तैयार करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जरूर जारी कर दिया है और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस की सरकार ने जिन संस्थानों को खड़ा किया उनमें निजी भागीदारी का मॉडल क्या होगा, सरकारी फैकल्टी और कर्मचारियों का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल मरीज और मेडिकल छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं इस सूची में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। नीमच, सिंगरौली, शिवपुर, बुधनी, छतरपुर, दमोह, मंडला और राजगढ़ समेत कुल 9 मेडिकल कॉलेजों को सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। लेकिन मामला सिर्फ मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं है, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC भी PPP प्रक्रिया में शामिल बताए गए हैं। यानी मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं तक सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में निजी भागीदारी का दायरा बढ़ाने की तैयारी दिखाई दे रही है। इन सब के बीच अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जो है VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। दरअसल PPP प्रोजेक्ट आर्थिक तौर पर पूरी तरह व्यवहारिक ना होने के बावजूद सामाजिक रूप से जरूरी हो तो उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए VGF का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा चिंता मेडिकल कॉलेजों के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग और मशीनें नहीं है, यहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर, नर्सिंग स्टाफ है, कर्मचारी है और हजारों मेडिकल छात्र। आज तक ने जब मेडिकल कॉलेज में काम करने वालों और पढ़ने वालों से बात की तो निजी भागीदारी को लेकर कई सवाल उनके मन में थे। उन्हें इसका जवाब चाहिए था कि अगर संचालन में निजी भागीदारी आती है तो पहले से काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की भूमिका क्या होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या रहेंगी, फैकल्टी की नियुक्ति और वेतन का ढांचा क्या होगा और मेडिकल छात्रों की फीस और ट्रेनिंग व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा।
9: जो स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर सरकारी फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कम होती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये फीस कई गुना ज़्यादा होती है, तो हमारे जो 300 विद्यार्थी है ये सरकारी फीस पर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये अत्यंत गरीब फैमिली से अधिकतर लोग बिलोंग करते हैं। कई लोगों को सरकार स्कॉलरशिप देती है, तो अगर ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट कंपनी को ये हस्तांतरण होता है कॉलेज, तो इन विद्यार्थियों का किस सिस्टम के द्वारा इनका आगे का भविष्य तय होगा।
8: मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी डर सता रहा है कि कॉलेज प्राइवेट हाथों में गया तो फीस से लेकर तमाम दूसरे खर्चों की मार छात्रों पर पड़ सकती है।
10: जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं किया जाना चाहिए और इसको गवर्नमेंट ही रहने देना चाहिए, मतलब ताकि जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट अप्रूव सारी जो फैसिलिटीज है सेटअप की वो सब बच्चों को मिल सके, क्योंकि है तो आखिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही।
11: फीस को लेकर कितना अंतर समझते हैं?
10: फीस को लेकर इतना अंतर समझ सकते हैं क्योंकि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी ईयरली जो MPK अगर हम लेके चले तो 1 लाख फीस होती है, और अगर वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 15 से 20 लाख की फीस होती है, प्लस ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस होती है, प्लस इसके अलावा उनमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि कैंडिडेट को खुद ही करने पड़ते हैं।
12: जो एक गोल था, जिस गोल से कॉलेज को चालू किया था, मेडिकल एजुकेशन फॉर ऑल, तो वो भी फिर कायम नहीं होगा अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे मेडिकल कॉलेजेस का, और फिर मेडिकल कॉलेज का फिर खुलने का मतलब नहीं रहा अगर प्राइवेटाइजेशन हो भी गया मेडिकल कॉलेज का, और फीस में भी फिर बहुत अंतर आएगा।
8: हालांकि सरकार का कहना है कि PPP मॉडल को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और नीति आयोग द्वारा तैयार टेंडर डॉक्यूमेंट को मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सरकार PPP को मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के मॉडल के तौर पर देख रही है।
13: 9 जिले ऐसे हैं जहां पर जमीन तो चिन्हित हो गई है लेकिन मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्ट करने वाले लोग ने रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए अब रणनीति को बदला है और राज्य सरकार के जो टेंडर के डॉक्यूमेंट थे उसके बजाय अब भारत सरकार के जो नीति आयोग से अप्रूव्ड टेंडर डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें उसको VGF मॉडल कहते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल, और उसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग राज्य सरकारों को भारत सरकार सहायता देती है, तो उस मॉडल पे अब हमारी तैयारी है कि जल्दी हम 9 जिलों में जो पहले असफल रहे हैं उसमें टेंडर फ्लोट करें।
8: कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। विपक्ष का सवाल है कि सरकारी पैसे से खड़े किए गए मेडिकल संस्थानों के संचालन में निजी कंपनियों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भाजपा की सरकार सब बेचने पर उतारू है, जैसे बस स्टैंड, सरकारी कॉलेज, सरकारी होटल, मतलब चीजों को सुधारने की बजाय सरकार का ध्यान बेचने और पैसे कमाने पर ज्यादा है।
14: इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल एजुकेशन को जितना चकनाचूर किया है किसी क्षेत्र को नहीं किया। चार चार साल से BSc नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो रही है। कल्पना करिए, गांव से बच्चों को पढ़ाने पेरेंट्स भेजते हैं और चार साल से परीक्षा ना हो, चार साल का कोर्स बच्चे 8 साल में भी पूरा नहीं कर पा रहे। जितने मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन पर कितनी गंभीर टिप्पणी की है उनके मापदंडों को लेके, खुद के स्पेसिफिकेशंस को लेके वो देखोगे तो हैरानी होती है कि किस तरह की शिक्षा ये लोग चला रहे हैं।
8: मध्य प्रदेश में सरकार इसे स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के विस्तार का रास्ता बता रही है। वहीं सवाल उठाने वालों की नजर इस बात पर है कि सरकारी निवेश से तैयार इन संस्थानों में निजी भागीदारी आने के बाद पैसा प्रबंधन, कर्मचारी, फीस और मरीजों की जिम्मेदारी का संतुलन आखिर कैसे तय होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सिर्फ इमारत नहीं होते, ये सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। मंदसौर से अजय और रीवा से विजय के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
6: पंजाब के लगभग 180 एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग शिक्षक और उनके परिवार के लोगों ने चंडीगढ़ में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग साल 2016 में अपनी जो भर्ती हुई थी उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं।
15: एलिमेंट टीचर्स ट्रेनिंग के 180 टीचर्स आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के घर के पास। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सामने नारेबाजी लग रही है। ये सारे पहुंचे हैं और खास तौर पे परिवार के कई जन भी आए हैं। और सीधा बात करते हैं, ये आप बताइए, हरपाल चीमा के घर के बाहर भी आपने प्रोटेस्ट किया था, आज मनीष सिसोदिया के घर के बाहर क्यों आए?
16: पहले हम 22 अगस्त को हरपाल चीमा की कोठी के बाहर आए थे, वहां पे हमारी बहनों की चुनियां घिसटी गई, हमारी पगड़ी उतार दी गई। तब उन्होंने बोला था कि आप आ जाओ। उसके दो दिन बाद हमारी मीटिंग थी 24 अगस्त को कि आपके साथ इंसाफ होगा। फिर उसके बाद जब हम मीटिंग में गए तब सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया गया, साफ स्पष्ट कर दिया गया कि किस क्लर्क की दांधली है, किस क्लर्क ने दांधली की है। हरपाल चीमा ने उन पर एक्शन लेने की बजाय उनकी सपोर्ट की, इसलिए हम इनके जो दिल्ली के जो इनकी,
15: आपको बता दें कि मामला 2016 का है जब अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ,
16: हमारी भर्ती पहले थी लेकिन जो किया, हमारी तनख्वाह आदि की जो भी किया वो सब इन्होंने किया, इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इन्हीं।
15: आप चाहते हैं कि पे पैरिटी हो या रे तनख्वाह में इजाफा भी हो?
16: बिल्कुल मैम, जो हम चाहते हैं, हमारी 2016 की भर्ती है, 2016 से हमें जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए।
17: जब हमें अपना राइट ही नहीं दे रहे हैं, हमारी ट्रांसफर, हमारी जो पे है वो स्केल नहीं दे रहे हैं, हमें मीटिंग दे के बार बार बुलाई जा रहे हैं, तो हमें आना ही पड़ेगा संघर्ष करने के लिए।
6: मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में तो स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की, वेतन भी शिक्षिका का, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति।
18: ये क्या पत्नी आपकी?
8: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जासमीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जासमीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाती है, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति है। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गांव मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक दो महीने नहीं बल्कि पिछले दो साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
19: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
20: वो इनके जासमीन बेटा, मतलब उनके मिस्टर थे।
19: मिस्टर है तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
20: पढ़ाने का अधिकार नहीं,
19: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे, अभी है ना। क्या नाम है उनका?
20: साजिद सिद्दीकी।
19: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
20: ये तो दो साल से पढ़ा रहे हैं।
19: दो साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनके वाइफ भी यही रहती है।
20: दो साल तो नहीं है, मतलब जैसे अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना, हाँ? जब उनको छोड़ने आते हैं तो ये रुक जाते हैं,
19: है ना, और ये बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे।
8: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची तब जासमीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए, लेकिन हमारे सवाल ने मुंह का जायका बिगाड़ दिया।
18: ये क्या पत्नी आपकी? फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब
21: नहीं पढ़ा,
18: कब से है आपकी ऐसी तबीयत वगैरह खराब है?
21: कोरोना
18: के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? क्लिनिक है, डॉक्टर हो।
8: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं। शाहजहांपुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि 2 साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाहजहांपुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जैस्मीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
19: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था सर?
0: उसमें भी हमने जांच कराई है, जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
8: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता थी? क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया?
2: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाहजहांपुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर यह गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
6: और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज रफ्तार थार गाड़ी का कहर दिखा है। थार की टक्कर से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। आरोपी थार सवार मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात की इच्छा जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर ईरान के व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो वो बड़ा कदम उठा सकते हैं।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
4: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक?
5: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
4: ओके।
5: जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: पापा।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
11: वो तो चार्ज हुआ यार।
12: ओले बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: ओए, जाके दे खड़ी की।
14: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है
11: और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
14: क्या
15: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
11: तेरी बागी यार कहीं भी लगा ले।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स द डेंजर टू इंडिया मार्क यू इट इज नॉट कम्युनिज्म इट इज हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म
3: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं भारत के लिए भारतीयता के लिए भारतीय संस्कृति के लिए भारत की परंपरा के लिए और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए हैं।

0: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आईआईटी बॉम्बे के 22 साल के छात्र साहिल वाकोड़े की आत्महत्या ने आज पूरे देश को झकझोर दिया है। एक तरफ आरोप है कि परीक्षा में चैट जीपीटी से नकल करते पकड़े जाने के बाद एक साल के सस्पेंशन और हॉस्टल से निकाले जाने के डर ने साहिल की जान ले ली, तो दूसरी तरफ साहिल के माता पिता का संगीन आरोप है कि प्रोफेसर द्वारा पिछले 3 महीनों से उसका जातिगत उत्पीड़न किया जा रहा था। मामले में बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि IIT के छात्र ने जान क्यों दे दी।
1: टॉर्चर करके, जातिवाद करके उसको आत्महत्या करने को ये करा, उन्होंने क्या करे वो उसकी चौकसी होने को होना।
0: आज आपको एक और गंभीर समस्या के बारे में बताएंगे। देश के सबसे प्रतिष्ठित

प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक। आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में सितंबर 2021 से अब तक 6 छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले इस साल यानी साल 2026 में 3 छात्रों ने खुदकुशी की है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 दशकों में देश भर की सभी आईआईटीज में 171 से ज्यादा छात्रों की अप्राकृतिक मौत हुई। आखिर क्यों ये होनहार बच्चे पढ़ाई, ग्रेड, सामाजिक दबाव के आगे खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? इसके बाद आपको हूती और सऊदी अरब की जंग में ट्रंप के रहस्यमय रुख के बारे में बताएंगे। सऊदी अरब भी सोच में है कि ये दोस्ती है या दगाबाजी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक फोन पर, जो ट्रंप हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक के आदेश पेंटागन को दे चुके थे, बहस 2 दिन के अंदर वही ट्रंप फिर से पलट गए हैं, पीछे हट गए हैं। एक तरफ लाल सागर का लालच, दूसरी तरफ ईरान युद्ध में फंसा अमेरिका। आखिर क्यों ट्रंप के लिए हूती सगा हो गया और सऊदी को दगा मिल गया? इसके बाद आपको बताएंगे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध इतना भीषण कैसे हो गया है। पहले यूक्रेन ने मॉस्को की ओर 1600 से ज्यादा ड्रोन दागकर सीधे पुतिन के किले को दहलाने की कोशिश की। सिर्फ 24 घंटे के भीतर रशिया ने 9 बड़े शहरों को मिसाइलों से छलनी कर दी। रिहायशी इलाके हो या शॉपिंग मॉल, हर तरफ सिर्फ आग, चीख पुकार और तबाही का मंजर है।

और इसके बाद आपको फतेहाल पाकिस्तान की नई चाल दिखाएंगे। भयंकर नाकामी, बेकाबू महंगाई, देश में पनपते गृह युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुबह 4 बजे अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों पर बम बरसाए। और दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी 3 बहनों की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 3 बहनों को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया है। इसके बाद आपको जमुई से आई वो तस्वीर दिखाएंगे जिसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। अपने दोस्त के साथ जा रही एक नाबालिग लड़की को सड़क पर सरेआम 6 से 7 मनचलों ने घेर लिया। उससे बदसलूकी की गई, बेआबरू करने की कोशिश की गई, अश्लील हरकत की गई। हम आपको ये पूरा वीडियो जो है वो मॉर्फ करके दिखा रहे हैं, लेकिन क्या क्या इस लड़की के साथ किया गया है बताना मुश्किल है। हैवानियत का सारा रिकॉर्ड कर दिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया इसको। मतलब एक शख्स वहां वीडियो भी बना रहा था, दहला देने वाला वीडियो है जिसे बिना ब्लर किए दिखाना तक संभव नहीं है।

0: अपनी तीखी बयानबाजी के लिए पहचाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान काफी चर्चाओं में है, जिसमें वो मंच से पतियों को खास सलाह देते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के फुल्के अंदाज में कुछ ऐसा कहा है जिस पर पूरी सभा में तालियां बजने लगी। लोग इसे उनका लव गुरु वाला अंदाज बता रहे हैं। देखिए,
1: सुबह में, दोपहर में और रात में सोने से पहले अपनी बीवी को एक जुमला जरूर बोलना, आंख में आंख डाल के, आई लव यू माय डियर।
0: छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब कफ सिरप की बॉटल्स पर लाल रंग में स्पष्ट चेतावनी छपेगी कि यह दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दी जाए। गलत इस्तेमाल और लापरवाही रोकने के लिए लेबल पर लाल चेतावनी के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की तस्वीर छापने का भी प्रस्ताव है। अगली खबर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा होकर आम लोगों को पर्चे बांट रहा हो, बिना किसी लाओ लश्कर, कोई वीआईपी कल्चर के और हैवी सिक्योरिटी के बिना। जापान से आई एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा एक रेलवे स्टेशन पर आम लोगों को पर्चे बांटते हुए दिखे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक संस्थान की तस्वीर नहीं आती, हमारे सामने आते हैं लाखों सपने। वो सपने जिन्हें लेकर देश के

0: छोटे छोटे शहरों से बच्चे निकलते हैं, वो सपने जिनके लिए कोई बच्चा सालों तक दिन रात पढ़ता है, खाना पीना भूल कर पढ़ता है, सोना तक भूल जाता है, वो सपने जिनके लिए माता पिता अपनी जरूरतें रोक देते हैं, मन मार लेते हैं ताकि पैसा बचाया जाए, बच्चे की पढ़ाई पर खर्च होगा, IIT जब जाएगा, और वो सपने जिनमें एक दिन उनका बेटा या बेटी IIT में पढ़कर देश और दुनिया में उनका नाम रोशन करता है। IIT सिर्फ एक संस्थान नहीं है, लोगों के लिए गर्व की बात है, परिवारों के लिए सर ऊंचा करने की बात है, किसी बाप की नाक है तो किसी माँ के लिए खुशियों के आंसू है। IIT से निकले छात्रों ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। हर माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा एक बार IIT में पहुंच जाए फिर तो बस, और अगर IIT में हो गया एडमिशन तो फिर उस पिता को देखिए चाल ही बदल जाती है, उस माँ के चेहरे के हाव भाव को देखिए आंसू रुकते नहीं है खुशी के, हर किसी को बताती चलती है। यही लगता है सबको कि कुछ ना कुछ हमारा बेटा नया करेगा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएगा, नई तकनीक विकसित करेगा, किसी ने नई दवा पर काम किया, किसी ने प्रदूषण कम करने के तरीके खोजे, किसी ने ट्रैफिक की समस्या सुलझाने की कोशिश की, किसी ने ऐसी कंपनी खड़ा कर दी जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और IIT जैसे संस्थानों की ये वो कहानियां हैं जो हम आपको बार बार दिखाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमें IIT में छात्रों की आत्महत्या पर आपसे बात करनी पड़ रही है। आज हम उन बच्चों की बात करने आए हैं जो IIT में पढ़ते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, और इसी कहानी के बीच एक नाम आता है साहिल वाकोडे का। सोचिए 22 साल की उम्र, जिस उम्र में जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, उस उम्र में साहिल के हिस्से में जिंदगी के सपनों की जगह मौत आ गई। वो मुंबई आया था अपने सपनों के साथ और उसके माता पिता ने उसे IIT भेजा था इस भरोसे के साथ कि उनका बेटा वहां पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा, लेकिन उनके सारे सपने एक झटके में खत्म हो गए। साहिल के मामले में क्या हुआ, इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर दोनों तरह से अलग अलग ढंग से जाति का रंग दिया जा रहा है, अलग एक विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन इस घटना के कारणों को लेकर जितने भी अलग अलग राय हो, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक तथ्य ऐसा है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो तथ्य यह है कि इस घटना में एक 22 साल के छात्र की जान चली गई और उसके साथ सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं हुई, उसकी मौत के साथ कई छात्रों के अंदर ऐसा ज्वार फूटा जो इन तस्वीरों में दिख रहा है। हम चाहते हैं कि आप भी एक बार इन तस्वीरों को देखें और इन आंसुओं से समझें कि साहिल वाकोडे की आत्महत्या ने IIT बॉम्बे में पढ़ने वाले छात्रों, उनके माता पिता को कितना बदहवास कर दिया है। देखिए,
1: पोलीस स्टेशन ला।

0: ये एक ऐसी खबर है जिस पर ज्यादातर लोगों की एक राय या सहमति नहीं है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जब पूरा समाज, पूरा सोशल मीडिया इस खबर को लेकर बटा हुआ है, तब इस खबर का एक एक पहलू, हर बात, पूरी सच्चाई आपके सामने हम रखें और आपको निष्पक्ष रूप से ये बताएं कि आखिर साहिल बोकाडे, जो वाकोडे हैं, साहिल वाकोडे की आत्महत्या का ये पूरा मामला क्या है, इसमें साहिल वाकोडे के परिवार, प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या पक्ष है और इसमें IIT बॉम्बे क्या कह रहा है, ये पूरी घटना देखिए सिलसिलेवार ढंग से समझिए। 18 सितंबर की है जब IIT बॉम्बे में मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी, और उसी दिन परीक्षा के बाद शाम को 22 साल के साहिल वाकोडे ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की खबर आई तो IIT बॉम्बे ने एक बयान जारी किया और उसमें यह बताया गया कि परीक्षा के दौरान साहिल वाकोडे को प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने नकल करते हुए पकड़ा था, और IIT बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने अपना क्वेश्चन पेपर मोबाइल फोन से ChatGPT पर अपलोड किया था। इसके बाद ChatGPT की मदद से परीक्षा में आए सवालों के सही जवाब जानने की कोशिश की थी। जब ये सब कुछ हुआ तब उस दौरान प्रोफेसर सूर्य नारायण दिल्ला क्लासरूम में मौजूद थे, और कारण ये था कि उन्हें इस परीक्षा का इन्विजिलेटर बनाया गया था। इन्विजिलेटर का मतलब टीचर जो परीक्षा के दौरान ये ध्यान रखता है कि छात्र नकल ना करे। अब दावा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान प्रोफेसर सूर्य नारायण दिल्ला ने साहिल वाकोडे को फोन चलाते हुए पकड़ा था और इसके बाद वो उसे वहां से बाहर ले गए थे। IIT बॉम्बे का यह भी कहना है कि इसके बाद इस छात्र को HOD के यानी विभाग के जो प्रमुख टीचर हैं उनके सामने भी पेश किया गया, और इसी के बाद शाम को साहिल ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। दो बड़े आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि जब साहिल को नकल करते हुए पकड़ा गया था तब उसे नियमों के तहत 1 साल के निलंबन और हॉस्टल खाली करने की धमकी दी गई, और अगर ऐसा हो जाता तो साहिल का कोर्स 4 साल से बढ़कर 5 साल का हो जाता, और दावा है किसी डर से उसने अपनी जान दे दी। दूसरा आरोप साहिल के माता पिता ने लगाया, और ये वही आरोप है जिससे इस मामले में जाति सूचक अपमान का मुद्दा उठा है। साहिल के माता पिता का दावा है, उनका ये आरोप है कि प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला पिछले 3 महीनों से उनके बेटे के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, और ऐसा नहीं था कि प्रोफेसर दुल्ला सिर्फ साहिल की परीक्षा के इन्विजिलेटर थे। तथ्य बताते हैं कि प्रोफेसर दुल्ला जो हैं वो साहिल को अच्छी तरह जानते थे, और इसके पीछे एक कारण यही था कि साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग का सेकेंड ईयर का छात्र था और प्रोफेसर साहब जो है वो इसी विभाग में फैकल्टी मेंबर थे। इसके अलावा 18 सितंबर को जिस सब्जेक्ट का एग्जाम था और जिस एग्जाम में साहिल को नकल करते हुए पकड़ने का दावा किया गया, उस सब्जेक्ट के कोर्स इंस्ट्रक्टर भी प्रोफेसर सूर्य नारायण ही थे, और इसी आधार पर साहिल के माता पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे को दलित होने के कारण पिछले 3 महीनों से लगातार परेशान किया जा रहा था, और प्रोफेसर दुल्ला इससे पहले भी कई बार उनके बेटे के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। परिवार का क्या आरोप है, उनका क्या कहना है, सुनिए।
1: उन्होंने टॉर्चर करके, जातिवाद करके उसको आत्महत्या करने को ये करा, उन्होंने क्या करे वो उसकी चौकसी होने को ना, और इसके लिए सरकार को मेरी गुजारिश है, उनको मेरे बच्चे के जैसा न्याय मिलने को ना, उनको टर्मिनेट करने को ना, यही मेरी गुजारिश है, उनको जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त करने की मैं गुजारिश करता हूँ, यही मेरी विनती है सर।
2: नहीं लगता, छोटा बच्चा है, उनको सुसाइड बहुत दूर की बात है, वो टैलेंटेड बंदा था, लगता नहीं वो बच्चा सुसाइड करता होगा। बचपन से उनके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन है ये, उनके सामने एक बड़ा ध्येय था, अब्दुल कलाम जी सर जैसा आदर्श सामने रखने वाला वो बच्चा था, वो कैसा सुसाइड कर सकता है।
3: इसकी वजह है सर, इसकी ये वजह है कि आज तक जिन बच्चों ने सुसाइड किया है वो बच्चे SC ST के ही है, अदर कास्ट के नहीं है। अगर वो अदर कास्ट के होते तो हम ये एक्ट लगाते ही नहीं। हमारे बच्चों पर ही क्यों अन्याय होता जा रहा है? हमारे बच्चे इस देश के देश का भविष्य नहीं है क्या?
4: जब साहिल सुसाइड करने के बाद में हमें पता चला कि वो मोबाइल यूज कर रहा था, तो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में क्या?

0: चल रहा था,
1: यस
0: एग्जामिनेशन लेने वाले क्या कर रहे थे? कौन सा ऐसा बच्चा है, 10वीं का बच्चा थोड़ी है, आईआईटी का बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो खुद मोबाइल लेके जाएगा वो? ये कैसी बात है, समझ में नहीं आ रही है, पूरे फैमिली को समझ में नहीं आ रही है।
1: अब अगर आप इस मामले को एक टाइमलाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दो बातें पता चलेंगी। पहली बात तो यही है कि प्रोफेसर दुल्ला ने जब साहिल को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा, तब यह मामला जातिगत भेदभाव का था नहीं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों या उस वक्त परीक्षा में मौजूद रहे किसी भी छात्र ने यह नहीं कहा कि साहिल ने जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या की। प्रदर्शनकारी छात्र यही कह रहे हैं कि साहिल को 1 साल के सस्पेंशन और हॉस्टल खाली करने की धमकी दी गई थी, जिससे वो मानसिक दबाव में चला गया और उसने अपनी जान दे दी। जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप शक के आधार पर लगाया जा रहा है और ये शक भी साहिल के माता पिता ने जताया है। उनका कहना है कि जब प्रोफेसर सूर्यनारायण दिल्ला पिछले 3 महीनों से उनके बेटे के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब संभव है कि 18 सितंबर को भी उन्होंने साहिल के साथ ऐसा ही किया। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद सामने आएगी। इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि साहिल को जिस तरह नकल करते हुए पकड़ा गया, उस मामले में 1 साल के सस्पेंशन का हॉस्टल खाली करने की धमकी काफी हद तक सही भी हो सकती है और संभव है कि इसी के कारण साहिल मानसिक दबाव में आया, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे इतना बड़ा फैसला नहीं लेता, वो भी अपनी जिंदगी को खत्म करने का। तो आईआईटी बॉम्बे ने जुलाई 2026 में परीक्षा से जुड़े नियमों का एक दस्तावेज जारी किया था और इसमें कहा है कि परीक्षा में अगर नकल और बिना अनुमति वाले सामान या उपकरण इस्तेमाल करने की सजा जो है वो तय कर दी गई है। इसमें लिखा था कि परीक्षा में मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, एआई चश्मे, नकल की पर्ची, किताब, दूसरी चीजें लाने पर छात्रों को FR2 ग्रेड में रखा जाएगा। और यहां FR2 ग्रेड का मतलब कम से कम 1 सेमेस्टर का सस्पेंशन और इस दौरान हॉस्टल को खाली करके वापस जाना था। इस आधार पर जिस तरह साहिल ने नकल के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया, उसमें यह सस्पेंशन नियमों के मुताबिक उस पर लागू हो सकता था। और यही वजह है कि ज्यादातर छात्र आरोप लगा रहे हैं कि साहिल को नकल करते हुए पकड़ने के बाद यही चेतावनी दी गई और इसी वजह से उसने डर के कारण आत्महत्या कर ली। हालांकि यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहिल के साथ जातिगत भेदभाव हुआ था या नहीं हुआ था, यह परिवार का आरोप है और कॉलेज इससे इनकार कर रहा है, लेकिन परिवार का कहना है कि यह जातिगत भेदभाव किस किया जा रहा था, जबकि आईआईटी बॉम्बे इनकार कर रहा है। हमें लगता है कि इस मामले में आपको जांच में सच सामने आने का इंतजार करना चाहिए। अभी मुंबई पुलिस ने साहिल के पिता को की शिकायत के आधार पर प्रोफेसर सूर्य नारायण दिल्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन पर मुख्य रूप से 2 धाराएं लगाई गई है। पहली है भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। दूसरी धाराएं SC ST एक्ट के तहत लगाई गई हैं, यानी इस मामले में प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ जातिगत भेदभाव और अपमान का मामला भी दर्ज किया गया और उन्हें डीन के पद से फिलहाल जांच को देखते हुए हटा दिया गया है, ताकि वो डीन के पद पर अगर रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा मानते हुए उन्हें डीन के पद से हटाया गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस मामले में जातिगत भेदभाव हुआ कैसे होगा और क्या कोई विभागीय लापरवाही इसमें हो सकती है? ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि IIT में छात्रों की जाति को गोपनीय रखा जाता है और इसके बारे में प्रोफेसर्स और टीचर्स को भी कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन साहिल के परिवार का आरोप है कि प्रोफेसर दुल्ला उनके बेटे का उसकी जाति के लिए अपमान कर रहे थे। ये तभी संभव है जब उन्हें साहिल की जाति के बारे में किसी ने या खुद साहिल ने या विभाग की तरफ से क्या उनको जानकारी मिली थी। हालांकि हमने अपने देश में देखा है कि अक्सर लोग एक दूसरे के टाइटल से जाति का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे सरनेम आते हैं जिससे सीधे तौर पर नहीं पता चलता है, तो वो गूगल का भी सहारा लेते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सी जाति के हैं। बहरहाल, इस मामले में IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम यानी शिक्षकों के संगठन ने प्रोफेसर दुल्ला का समर्थन किया है, जबकि IIT बॉम्बे ने खुद अपने सभी पुराने बयानों को बदल दिया है। IIT बॉम्बे ने पहले कहा था कि साहिल को सस्पेंशन की कोई धमकी नहीं दी गई थी, उसे भरोसा दिलाया गया था कि उस घटना से उसका भविष्य खराब नहीं होगा, लेकिन जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तब IIT बॉम्बे का कहना है कि वो अपने पहले बयान को लेकर माफी मांगता है और जांच पूरी होने तक कुछ भी निश्चितता से कहना सही नहीं होगा।

संक्षेप में कहें तो कुछ लोग मानते हैं कि प्रोफेसर जुल्ला सही हैं। अगर उन्होंने साहिल को नकल करते हुए पकड़ा था तो उनका डांटना स्वाभाविक था। दूसरे हिस्से में जो लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं वो हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर जुल्ला साहिल के साथ उसकी जाति के कारण भेदभाव करते थे और जब साहिल नकल करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें भड़ास निकालने का मौका मिल गया। और तीसरा पक्ष लोगों का ये है कि अगर IIT बॉम्बे में जातिगत भेदभाव नहीं होता या वहां मानसिक दबाव नहीं डाला जाता तो वहां छात्रों की आत्महत्याएं बढ़ क्यों रही हैं। सुनिए।

0: हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि अंदर क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ है। तो सस्पेंशन की डिमांड थी, रिजिग्नेशन की डिमांड नहीं थी डीन की। एंड डायरेक्टर की अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं, सारी बातें उन्होंने हमारी सुनी, उनकी तो रिजाइन के मैं ऑपोजिट ही हूँ।
1: काफी स्टूडेंट्स हर्ट है ऑब्वियसली, वो बहुत ही अच्छा, हम सबका बहुत अच्छा दोस्त था वो, और वो बहुत ऐसा, मुझे तो प्रोसेस नहीं हुआ जब वो ऐसा हुआ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, बहुत खुश था वो, मतलब मैंने उसको देखा है, मैंने कभी उसके से दुख होते हुए तो नहीं देखा था, वो बहुत बहुत ही अच्छा इंसान था।
2: आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर शिरीष केदारे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के 18 सूत्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पहली मांग है इस घटना की निष्पक्ष जांच करना, 30 दिन में अंतिम जांच रिपोर्ट छात्रों के लिए बीच पेश करना, दोषी पाए जाने वाले प्रोफेसर और अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना और प्रोफेसर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, ताकि सभी फैकल्टी जो मेंबर्स हैं वो छात्रों की मेंटल हेल्थ के प्रति सेंसिटिव संवेदनशील बने। और ये जरूरी क्यों है वो आप इन आंकड़ों में देखिए। ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के मुताबिक सितंबर 2021 से सितंबर 2026 तक आईआईटी बॉम्बे कैंपस में छह छात्रों ने आत्महत्या की है। अकेले साल 2026 में अब तक आईआईटी बॉम्बे कैंपस में 3 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें साहिल वाकोड़े का नाम शामिल है। अगर साल 2005 से 2024 के बीच 20 सालों की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में कम से कम 10 छात्रों की आत्महत्या हुई है। और यहां बात सिर्फ आईआईटी बॉम्बे की भी नहीं है, साल 2006 से 2026 के बीच देश के सभी 23 आईआईटीज में 171 से ज्यादा छात्रों की आत्महत्या या अप्राकृतिक कारणों से मौत हुई है। सिर्फ पिछले 5 साल में देश के सभी आईआईटीज को मिला लें तो 65 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। अकेले साल 2023-24 में यह ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर भागा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संसद में खुद बताया था कि केवल 2018 से 2023 के बीच 39 आईआईटी छात्रों की आत्महत्या हुई। इनमें ज्यादातर छात्र ऐसे थे जो गरीब कमजोर वर्ग के थे, जो अपने परिवार या पूरे गांव से आईआईटी पहुंचने वाले पहली पीढ़ी के बच्चे होते हैं। उनके ऊपर ना केवल अपना करियर बनाने का एक पूरा प्रेशर होता है, पूरे परिवार को गरीबी या फिर सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकालने का भारी बोझ होता है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। ऐसे में जब वो कैंपस के अंदर भेदभाव या कम ग्रेड का सामना करते हैं, मार्क्स कम आए हैं, ग्रेड्स खराब हो रहे हैं, तो वो इस दबाव को झेल नहीं पाते और खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस करते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे कॉलेजेस में इन समस्याओं से निपटने के लिए, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम एक होना जरूरी है, जिससे अगर उनमें इस तरह की टेंडेंसी है कि वो आत्महत्या तक का फैसला ले सकते हैं तो उनको टाइमली मेंटल सपोर्ट मिल पाए। ऐसा सिस्टम जो छात्रों का आकलन करे और ये बता सके कि उसे मदद की जरूरत है, वो आगे जाकर क्या आत्महत्या जैसा गंभीर कदम भी उठा सकता है। और आखिर में हम यही बात कहेंगे कि चुनौतियां सभी जाति के छात्रों के सामने होती हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रेशर झेलते हैं।

दलित छात्र, ओबीसी छात्र सब कई मुश्किलों का सामना करते हैं। सामान्य श्रेणी के छात्र किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, आर्थिक रूप से जो पीछे है उनके लिए, उन परिवारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ना ये सफर आसान है, ना इसमें जुड़ा हुआ संघर्ष। हमें लगता है कि इस मुद्दे को जाति से ऊपर उठकर आज जरूरी यह है कि अगर

0: ये है कि अगर हमारे बच्चे किसी भी तरह के मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, उसमें वजह कोई भी हो सकती है, क्या जातीय भेदभाव की वजह से उनके साथ ऐसा उनको सामना करना पड़ रहा है, क्या पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्या जिस तरह से एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, मतलब आकलन करना होगा कि हमारे बच्चे आत्महत्या जैसा कदम आखिर क्यों उठा रहे हैं।
1: मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी से, इसकी इंक्वायरी की जाए, सिर्फ छोड़ना नहीं चाहिए, किसी की लापरवाही जिसकी है उसको सजा मिलना चाहिए, किसी की जान चली गई इस लापरवाही की वजह से तो जिसकी भी लापरवाही उसको सजा मिलना चाहिए,
2: वहां जो कुछ हादसा है उसकी मतलब जांच होनी चाहिए। लेकिन बच्चों को भी अगर जो IIT पे आए आगे चल कर बनानी है, वो बच्चे अगर जाति पाति पे करते तो अगर उसकी जांच होनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, ये नहीं चलेगा।
3: पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पढ़ने की क्या आवश्यकता।
0: अब हम मिडिल ईस्ट में खुले युद्ध के नए मोर्चे की बात करेंगे। सऊदी अरब और यमन के हूती के बीच पिछले 2 हफ्ते में जंग चल रही है। यमन में हूती के कब्जे वाले इलाके सऊदी अरब के एक बड़े हिस्से और लाल सागर से जुड़ते हैं और इसी वजह से सऊदी अरब को दोहरी मार पड़ रही है। हूती सऊदी अरब के शहरों पर जबरदस्त बमबारी कर रहे थे और इसके साथ साथ लाल सागर में सऊदी के व्यापारी जहाजों पर भी अटैक किया जा रहा है। देखिए, हूती के ताजा हमले ने सऊदी अरब को झकझोर दिया है। इस बार हूती ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के संवेदनशील इलाकों में मिसाइल और अटैक्स किए हैं। इस हमले ने सऊदी अरब की डिफेंस सिस्टम और सैन्य क्षमता पर गहरे सवाल उठा दिए हैं। इस हमले से जुड़ी तस्वीरों ने रियाद में रहने वाले लोगों के लिए दहशत पैदा कर दी है। हूती ने रियाद में सऊदी अरब के मुख्य एयरपोर्ट को दहलाया। इस हमले के बाद से सऊदी अरब ने पूरे रियाद को अलर्ट पर रखा है। रियाद पर हुए हमले को हूती की ओर से की गई एक बड़ी साजिश के तौर पर बड़ा हमला माना गया है और क्योंकि सऊदी अरब को हूती की इस क्षमता का अंदाजा नहीं था कि वो रियाद तक ऐसा कर सकता है। अब इस हमले से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें एयरपोर्ट से उठ रहा काला धुआं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि मिसाइल और ड्रोन का निशाना रियाद के इस एयरपोर्ट पर मौजूद तेल के टैंक थे। सऊदी अरब और हूती के बीच शुरू हुई इस नई जंग से पहली बार था जब हूती ने रियाद पर हमला किया है। हूती के मुताबिक उनके निशाने पर रियाद के अलावा 22 फरासान द्वीप, ताइफ और यानूब थे। हूती का दावा रियाद में एयरपोर्ट पर हमले के अलावा उन्होंने तेल कंपनी अरामको को के एक ठिकाने पर भी हमला किया है। हूती ने खास रणनीति तैयार की और उसके तहत सऊदी अरब के इन ठिकानों को टारगेट किया है। जैसे 22 सऊदी अरब के आंतरिक लॉजिस्टिक्स का हब है। ये हूती के कब्जे वाले यमन की सीमा के नजदीक भी है और इसका इस्तेमाल लाल सागर में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी के लिए किया जाता है। ताइफ शहर मक्का के करीब है, सऊदी अरब के एयर डिफेंस का एक मजबूत गढ़ है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स का किंग फहद एयरबेस भी यही है। ईरान युद्ध के दौरान इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने भी किया था और ये सऊदी अरब के बड़े सैन्य ठिकानों में से एक है। इसके अलावा फरासान द्वीप लाल सागर के समुद्री मार्गों की निगरानी के लिए अहम ठिकाना है। ये द्वीप लाल सागर में यमन की सीमा के काफी पास है, इसीलिए वहां पर हूती की गतिविधियों, सऊदी जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से इसका रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। जहां तक यानबू की बात है तो ये बंदरगाह शहर सऊदी के आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा रीढ़ की तरह माना जाता है। ये लाल सागर में होने वाले सऊदी अरब के तेल व्यापार का केंद्र है। यहाँ तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल सबके ठिकाने हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद से सऊदी का जो पूरा तेल व्यापार है वो समझिए यानबू से ही हो रहा है। हूती ने एक ही दिन में सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अलावा उसके रणनीतिक और आर्थिक केंद्रों को टारगेट किया और एक संदेश दिया है। सऊदी अरब ने हूती पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया है कि सऊदी अरब की जो एयरफोर्स है उसने 24 घंटे के अंदर यमन के अलग अलग इलाकों में 28 हमले किए हैं और इसका बदला लेने के लिए रियाद और अन्य अहम ठिकानों पर अटैक किया गया।

0: जर्मनी सशस्त्र बलों ने सर्वशक्तिमान अल्लाह की मदद से दो बड़े सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों में बड़ी संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पहले अभियान में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। दूसरे अभियान में यनबू में आरामको कंपनी को निशाना बनाया गया। हमारे दोनों अभियान सफल रहे और निशाना बनाए गए स्थानों पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये कार्रवाई सऊदी अरब द्वारा हमारे लोगों के खिलाफ लगातार किए जा रहे आक्रामक हवाई हमलों के जवाब में की गई। इन हमलों में F-15 और टाइफून लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो खमीस मुशैत और ताइफ के ठिकानों से उड़ान भरते हैं। अब तक 732 हवाई हमले किए जा चुके हैं, जिसमें नागरिकों के मारे जाने और घायल होने के साथ साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।
1: हुती के हमलों ने सऊदी अरब को बड़े खतरे में डाल दिया है। इस खतरे को देखकर सऊदी ने अपने दोस्त अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन खबर यह आ गई कि अमेरिका ने हुती के साथ डील कर ली। डील के मुताबिक हुती लाल सागर में अमेरिका और अन्य देशों के जहाजों को टारगेट नहीं करेगा और इसके बदले में अमेरिका सऊदी की तरफ से हुती पर हमले नहीं करेगा। इस डील ने सऊदी अरब को एक बहुत बुरी स्थिति में फंसा दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसे उम्मीद थी कि वो F-35 की डील और दोस्ती का हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप को हुती पर हमले के लिए आखिरकार मना लेगा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि हुती के हमलों से परेशान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और इस फोन पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से हुती के ठिकानों पर हवाई हमले करने की अपील भी की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि मोहम्मद बिन सलमान से हुई इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप हुती पर हवाई हमले के लिए मान गए थे। उन्होंने पेंटागन के अधिकारियों को हुती के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी करने के लिए बोल भी दिया था। पेंटागन के अधिकारी थोड़ा हैरान थे, क्योंकि इस आदेश के एक दिन पहले ट्रंप ने हुती के खिलाफ जंग में उतरने से इनकार किया था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने फैसला पलट दिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के बाद पेंटागन ने हुती के ठिकानों को की एक पूरी लिस्ट जारी की। हुती के खिलाफ एक बड़े सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की योजना तैयार कर ली। फाइटर जेट्स को हुती के ठिकानों पर हमले के मिसाइल से लोड भी कर दिया गया। सऊदी अरब को भरोसा हो गया कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उससे अब रास्ता निकल गया है। लेकिन फिर इस आदेश के दो दिन बाद ही, यानी रविवार को, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना फैसला पलट दिया। उन्होंने पेंटागन के अधिकारियों को हुती पर हमला करने से रोक दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फिलहाल हुती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स मत करो। डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश ने पेंटागन के अधिकारियों और सऊदी अरब को हैरान कर दिया। अब हुती के खिलाफ मदद करने के बजाय ट्रंप अपने दोस्त से किए गए वादे से ही मुकर गए। सऊदी अरब की मदद करने और हुती पर हमला करने या ना करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक अलग उलझन में है। उनको समझ में नहीं आ रही बात कि सऊदी अरब की तरफ से हुती पर हमला किया जाए या बच लिया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या। डोनाल्ड ट्रंप की उलझन के तीन बड़े कारण हैं। तीनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, उलझे हुए हैं। पहली उलझन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर चल रहा अमेरिका ईरान युद्ध। इसकी वजह से दुनिया का 20% कच्चे तेल का व्यापार प्रभावित है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बहुत परेशानी हो रही है। ईरान ने भी युद्ध के पीछे हटने से इनकार कर दिया है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि इस युद्ध को खत्म किस मोड़ पर किया जाए। यानी वो युद्ध के एक मोर्चे पर पहले में ही से ही फंसे हुए हैं। दूसरी उलझन हुती का बाबल मंदेब और लाल सागर पर प्रभाव। अमेरिका की परेशानी यह है कि अगर हुती के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खुला तो बाबल मंदेब और लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा। इस रास्ते से दुनिया का करीब 12% कच्चे तेल का ही व्यापार होता है। हुती से जंग छिड़ी तो अमेरिका को यहां भी अपनी सेना उतार कर जंग लड़नी पड़ेगी। और तीसरी उलझन ईरान युद्ध में सऊदी से मिलने वाली मदद के बंद होने का खतरा। दरअसल ईरान युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने कई तरह से अमेरिकी सेनाओं की मदद की थी, जिससे वो ईरान पर हमले करने में कामयाब रहे। अब सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी, किंग फहद एयरबेस और प्रिंस सुल्तान एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति दी। अमेरिकी फाइटर जेट्स को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी सऊदी की जमीन से ही दिया गया। और यही नहीं, इराक में ईरान की प्रॉक्सी मिलिशिया के खिलाफ सऊदी ने अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलकर सैन्य ऑपरेशन चलाया। ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान सऊदी अरब अमेरिकी सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी की तरह था। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार इस बात से परेशान है कि अगर वो हुती के खिलाफ सऊदी अरब की मदद नहीं करते हैं तो वो ईरान के खिलाफ उनकी मदद रोक देगा। ऐसी स्थिति में ईरान पर अमेरिका का जो स्थिति है अमेरिका की, वो कमजोर पड़ जाएगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप हूती के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ बाबल मंदेप स्ट्रेट भी उसके लिए युद्ध का मैदान बन जाएगा, जिससे वो लंबे समय तक फंस जाए। इसीलिए ट्रंप फैसला नहीं कर पा रहे और सऊदी अरब की मदद नहीं कर रहे। मिडल ईस्ट के बाद युद्ध 4.5 साल पुराने मोर्चे पर लेकर चलते हैं। युद्ध का ये मोर्चा यूक्रेन और रशिया के बीच है। पिछले 2 दिनों में जानते हैं इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी की है। वैसे अब लोग मानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध में एक दूसरे पर हमला कोई नई खबर नहीं है, लेकिन 19 सितंबर की रात यूक्रेन ने रशिया पर मिसाइल ड्रोन से बड़े हमले किए। रशिया के सैन्य अधिकारियों का दावा है कि यूक्रेन के 1600 से ज्यादा ड्रोन अटैक को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है, जिसमें 450 ड्रोन का टारगेट राजधानी मॉस्को था। अब अधिकारियों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद मॉस्को पर यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। यूक्रेन के इस हमले में कई मिसाइल्स और ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब भी रहे, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इस हमले में मॉस्को और उसके आसपास के ऑयल रिफाइनरीज को भारी नुकसान हुआ है।

यूक्रेन के इस हमले के 24 घंटे के अंदर रशिया ने यूक्रेन पर बहुत भीषण जवाबी हमला किया है। रशिया ने यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स और सैकड़ों मिसाइल्स से हमला कर दिया। रशिया के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के शहरों में हाहाकार है। रशिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के लॉजिस्टिक सेंटर, पोर्ट, वेयरहाउस सबको टारगेट किया है। इसके अलावा एक जहाज को भी डुबो दिया है। रशिया ने यूक्रेन के हमले का बदला लेने के लिए कीव, ज़ापोरोजिया, ओडेसा, खार्किव, दिनोप्रो, पोल्टोवा, विनित्सिया, क्रामाटोर्स्क और ज़ाइटोमीर को अपने निशाने पर लिया है। यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध अब तक एक ऐसे दौर में है जहां रिहायशी इलाकों को भी हमले की जद में रखा जा रहा है। जैसे यूक्रेन के अगर आप देखिए तो क्रामाटोर्स्क की एक तस्वीर आई है जहां रशिया के हमले के बाद बदहवास लोग, बर्बादी, सब कुछ दिख रही है। रशिया ने एक इवैक्यूएशन सेंटर पर हमला किया जिसमें वहां भीषण आग लग गई। इस सेंटर में उन लोगों को रखा गया था जिन्होंने हमलों की वजह से अपना घर जो है उनको छोड़ना पड़ा था। हमले के बाद लोग इस सेंटर में फंस गए लेकिन रेस्क्यू टीम ने जल्दी ही दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। इसी तरह से रशिया ने यूक्रेन में कुछ शॉपिंग मॉल्स को टारगेट किया है। माना जा रहा है कि कुछ शॉपिंग मॉल्स को सेना के लॉजिस्टिक सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ज़ापोरोजिया के एक शॉपिंग की मॉल की तस्वीरें आई हैं जहां रशिया के हमलों के बाद भयानक आग लगी हुई है। इस हमले के लिए रशिया ने गिरान ड्रोन्स का इस्तेमाल किया।

रशिया ने यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर हुए हमलों को बहुत सीरियसली लिया था और यही वजह है कि उसने 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार भी किया। अब रशिया का आरोप है कि यूक्रेन ने मॉस्को को इसलिए टारगेट किया क्योंकि रशिया में चुनाव चल रहे हैं। 18 से 20 सितंबर के बीच रशिया में स्टेट डूमा चुनाव हुए और रशिया के अधिकारियों का आरोप है कि यूक्रेन इस चुनाव को प्रभावित करना चाहता था। स्टेट डूमा रशिया की संसद का निचला सदन है, इसमें 450 सांसद होते हैं। आसान भाषा में आप इसे रशिया की लोकसभा समझ सकते हैं। 450 में से आधी सीटें पार्टी को मिले वोट के आधार पर और आधी सीटें अलग अलग क्षेत्रों में हुए चुनाव के आधार पर ही तय होती है। खबर ये आ रही है कि संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की समर्थक जो यूनाइटेड रशिया पार्टी है उसने जीत हासिल कर ली है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 57.5% वोट के साथ विजयी बढ़त बना ली है। हालांकि अभी आधिकारिक नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन साल 2022 में शुरू हुए रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ये पहला संसदीय चुनाव है। इस चुनाव को यूनाइटेड रशिया पार्टी ने यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे रशिया के सैनिकों के समर्थन से जोड़कर पेश किया था। पिछले चुनाव साल 2021 में हुआ था जिसमें पुतिन समर्थक यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 450 में से 324 सीटें हासिल की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी कई कानूनों और नीतियों के लिए संसद की जरूरत होती है और इसीलिए ये जो स्टेट डूमा है वो पुतिन समर्थक पार्टी का बहुमत होना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी चुनाव के आखिरी दिन मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था और इसके पीछे एक वजह क्राइमिया में चुनाव करवाया जाना भी था। दरअसल यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश क्राइमिया को रशिया का हिस्सा नहीं मानते हैं, वो उसे यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं, जबकि साल 2014 से ही क्राइमिया पर रशिया का कब्जा है। उस साल रशिया ने क्राइमिया में जनमत संग्रह करवाकर उसे अपना हिस्सा बताया था। इस बार रशिया ने क्राइमिया में भी स्टेट डूमा का चुनाव आयोजित कराया और माना जा रहा है कि इसी से भड़के यूक्रेन ने सीधे मॉस्को को टारगेट कर दिया। अब आपको एक दिवालिया होता देश का वो सच दिखाएंगे जिसे छिपाने के लिए उसकी हुकूमत ने पूरी ताकत लगा दी। पाकिस्तान, जहां की जनता आज रोटी, कपड़ा, पेट्रोल के लिए तरस रही है, जहां रात 9 बजे बाजार बंद कराने पड़ रहे हैं, शादियों में एक डिश का फरमान जारी कर दिया गया है, एक ही डिश पकेगा। देखिए,

0: अब ये देखिए कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, अपनी नाकामियां कैसे छिपाई जाए, भयानक महंगाई, गृह युद्ध जैसे हालात कैसे भटकाना है, इसके लिए सुबह 4 बजे अफगानिस्तान पर फाइटर जेट से बमबारी की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीनों बहनों को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों को लेकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। सरकार के पास न तेल खरीदने के लिए पैसे हैं, न जनता के सामने जवाब देने के लिए कुछ बचा है। लेकिन जब सवाल कंगाली का हो तो पाकिस्तान की सरकार पुराना दाव खेलती है, ध्यान भटकाने का। इसके लिए पाकिस्तान की वायुसेना ने सुबह 4 बजे अफगानिस्तान को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में अंधाधुंध एयर स्ट्राइक्स की, 3 आम नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले के बाद तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए आम नागरिकों पर बम बरसा रहा है। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
1: پاکستان جی تو بمبار اور شہیدان جو سلور کسان شدید زخمی جی اسپتال کے پراتے تھے تو پاکستان نہ دا کا سکا لے رہا ماجر سے پاکستان نہ شروع جی

0: पॉइंट वो बताएंगे। ये खबर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने के उस फैसले से जुड़ी है जिसके तहत अब इटली के स्कूलों में बुर्का और नकाब पूरी तरह बैन करने की तैयारी चल रही है। मेलोनी का साफ कहना है कि स्कूल्स में परंपरा के नाम पर चेहरा छिपाना नहीं चलेगा। बिल्कुल अंजना, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि स्कूलों में अब चेहरा ढका हुआ नहीं चलेगा। मेलोनी का कहना है कि स्कूल आने वाले हर बच्चे का चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रोक सिर्फ पूरा चेहरा ढकने वाले नकाब और बुर्का पर होगी, चेहरा खुला रखने वाले हिजाब पर नहीं। इटली में चेहरा ढकने पर एक पुराना कानून है, लेकिन मेलोनी सरकार अब खास तौर पर स्कूलों के लिए एक कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद से पास कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के करीब 24 देशों में चेहरा ढकने पर अलग अलग तरह की रोक पहले से लागू है और यूरोपीय अदालत भी फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में बुर्का बैन को सही ठहरा चुकी है। इटली की सरकार का कहना है कि ये नियम बच्चों को आपस में जोड़ने के लिए है। हालांकि इस फैसले को लेकर विवाद भी हो रहा है।
1: और इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
3: एक को एक
4: ईश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर गया।
4: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints.
12: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक.
2: विमल बोलो जुबां केसरी.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधू, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिला है। और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में एसआईआर के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
1: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
0: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग के इस बयान के बाद भी सियासत तेज होती जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच दिग्गजों को नोटिस पर नई लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।

0: ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और सब्र का फल मीठा तो होता है, लेकिन अक्सर जब मिलता है तो भूख मर चुकी होती है.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

देश में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के विरुद्ध विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी किया अखिलेश ने कटाक्ष। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 गिरफ्तार।

0: बॉम्बे में छात्र आत्महत्या के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज की बुलंद, पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। और ट्रंप ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की इच्छा व्यक्त की, लेकिन साथ में दी चेतावनी, अगर व्यवहार नहीं बदला तो जल्द हो सकती है बहुत बड़ी कार्रवाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक के कैसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक मेरठ पहुंचे। नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी मेरठ और सहारनपुर के दो दिन के दौरे पर हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी ने 2027 की लड़ाई के लिए मेरठ और सहारनपुर को ही क्यों चुना। तो आइए देखते हैं क्यों ऐसा कहते हैं कि सत्ता की चाबी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है।
1: बीजेपी का मिशन 2027 पश्चिमी यूपी से शुरुआत। बीजेपी ने मेरठ और सहारनपुर से ही प्रचार क्यों शुरू किया? युवा वोटरों का कैलकुलेशन, पश्चिमी यूपी में बीजेपी का मिशन। 111 सीटों को साधने निकले नितिन नवीन और सीएम योगी। बीजेपी का शक्ति केंद्र सम्मेलन, बूथ स्तर पर समीक्षा कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी के मेरठ में योगी बुलडोजर मॉडल से स्वागत होता है। बुलडोजर से नितिन नवीन पर फूल बरसाए जाते हैं तो स्वागत के लिए ढोल नगाड़े भी बुलडोजर पर खड़े होकर ही बजाए जाते हैं। ये 2027 की लड़ाई का शंखनाद है जिसे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम योगी और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी से शुरू किया है। आपको बता दें कि नितिन नवीन दो दिन के दौरे पर मेरठ और सहारनपुर आए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि बीजेपी ने 2027 के प्रचार की शुरुआत के लिए इन दोनों ही शहरों को क्यों चुना। पहले आपको दिखाते हैं क्यों यूपी में 2027 की लड़ाई बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की तरफ लौटते हैं, जो बीजेपी यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी वो 33 सीटों पर सिमट जाती है। अखिलेश की पार्टी यूपी में 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीतकर यूपी का तिलिस्म तोड़ दिया। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में मिली बढ़त के चश्मे से देखें तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 217 पर आगे रही। इसमें समाजवादी पार्टी 178 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस 38 सीट पर, जबकि टीएमसी 1 सीट पर। वही यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ गई। एनडीए सिर्फ 181 विधानसभा सीटों पर आगे रही। इसमें बीजेपी 169, आरएलडी 8, अपना दल 4 सीट पर, यानी राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी और योगी की जोड़ी को देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे किया। बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा एकदम ताजा था, यानी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनावों से विधानसभा चुनावों में भी बड़े उलटफेर का संकेत देती है। और बात पश्चिमी यूपी की करें तो पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 19 सीटें मिली थी, तो 2024 में बीजेपी 13 सीटें ही जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी को 2019 में 4 सीटें मिली थी और 2024 में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस का 2019 में खाता भी नहीं खुला था। और इस बार उसने भी सहारनपुर की 1 सीट जीत ली, जबकि आरएलडी भी 2019 के मुकाबले में 0 से 2 सीटों पर पहुंच गई। इसी से समझ में आता है कि क्यों बीजेपी के लिए 2027 की लड़ाई में पश्चिमी यूपी अहम है। और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने मिशन 2027 की शुरुआत इसीलिए पश्चिमी यूपी से कर रही है। जब नितिन नवीन पश्चिमी यूपी के मेरठ पहुंचते हैं तो पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, यानी ये अखिलेश यादव के पीडीए वाले दांव पर सीधा अटैक है।
2: पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। मैं आज आपके सामने पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण था कि आपने इसके अलावा किसी को सम्मान नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भी अगर किसी ने सम्मान दिया और सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया।
1: और नितिन नवीन का ये मेरठ दौरा उस वक्त हुआ है जब मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 16 सितंबर को बुलडोजर चलाया गया। समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई पर सियासत कर रही है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पर यूपी को बांटने का आरोप लगाते हैं।
2: अभी ये लोग जो यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं, उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर फिर से उत्तर प्रदेश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके सामने इसलिए ये बात रख रहा हूं मित्रों, एक बार इनके पूरे कालखंड को देखिए। अंग्रेज चले गए, उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पहले कांग्रेस ने अपनाया और बाद में इन समाजवादियों ने अपनाया है। मित्रों,
1: 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पश्चिमी यूपी सीएम योगी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में योगी सनातन वाली सियासत को ही आगे रखकर 2027 की लड़ाई जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था, लेकिन अब नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह समाप्त करने की इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रहा है और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है और उसकी परिणति हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और जो लोगों के लिए असंभव था वो मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी, हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं, इस सनातन के प्रतीक है।
0: बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक चैलेंज के तौर पर लेकर मैदान में उतरी है, तो बीजेपी का मिशन पश्चिमी यूपी में जेन जी को साधना भी है। मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष शक्ति केंद्र का सम्मेलन भी कर रहे हैं। आइए दिखाएं आपको मेरठ और सहारनपुर पर बीजेपी ने सबसे पहले सबसे अधिक फोकस क्यों किया है।
1: पश्चिमी यूपी की सियासत जहां जाट मुसलमान किसान के फॉर्मूले पर चलती रही है, वहीं इस बार बीजेपी की नजर जेन जी पर भी है। यही वजह है कि नितिन नवीन का कार्यक्रम मेरठ की स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में युवाओं के बीच भी रखा जाता है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी की 111 सीटों की बात करें तो यहां 45 लाख से ज्यादा युवा वोटर हैं। 2024 में मिले वोटों के अनुमान के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के लगभग 39% युवाओं ने बीजेपी को वोट किया। इसमें आरएलडी को जोड़ दिया जाए तो करीब 44-46% युवा वोट एनडीए को मिले थे, जो करीब 18 लाख से 22 लाख होते हैं। और इस बार देखा जाए तो 18 साल वाले 17,63,000 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। ऐसे में सीएम योगी मेरठ से यूपी की पहचान बताते हुए एक सांस में पश्चिमी यूपी के जिले भी गिना देते हैं।
3: अब आपके सामने पहचान का संकट नहीं है, अब आप कहीं जाएंगे तो यूपी वाला कह करके कोई आपको अपमानित नहीं करेगा। अगर आप कहीं जाते हैं कहते हैं कि मैं मेरठ से हूं, मैं मुजफ्फरनगर से हूं, मैं हापुड़ से हूं, गाजियाबाद से हूं, बुलंदशहर से हूं, शामली से हूं, सहारनपुर से हूं, बिजनौर से हूं, अगर आप कहते अपनी पहचान बताते हैं सामने वाला सम्मान की निगाह से देखता है। और अगर आप कहते हैं मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, यूपी से आया हूं, सामने वाला व्यक्ति आपको गले लपक से पकड़ने के लिए तैयार होता है। ये है सम्मान। और पहले तो न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था, हर ओर अराजकता थी, महीनों कर्फ्यू, व्यापार तबाह, नौजवान की नौकरी पर पहले ही डकैती पड़ जाती थी, कोई नौकरी नहीं मिलती थी। बहन और भाइयों, इसीलिए आज कहने के लिए आए हैं, ये पहचान अगर यूपी को वापस कराने में किसी का योगदान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपके परिश्रम का योगदान है।
1: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति का केंद्र बूथ है और इन्हीं बूथों को शक्ति केंद्र के रूप में प्रयोग करने का बीजेपी प्लान तैयार कर रही है। दरअसल बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र बनता है, इसमें पश्चिमी यूपी के करीब 4,800 से 5,000 शक्ति केंद्र संयोजकों और मंडल अध्यक्षों के साथ नितिन नवीन और सीएम योगी बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। मेरठ के बाद 22 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का अगला पड़ाव सहारनपुर है। ये वही सहारनपुर है जहां मस्जिद तोड़ने के बाद तगड़ी सियासत गरमाई हुई है और समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 100 साल पुरानी इस मस्जिद को दोबारा बनवाया जाएगा। और ये वही सहारनपुर है जहां इमरान मसूद ने लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की और अब वो कांग्रेस के सांसद हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने भले ही पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से बीजेपी को पछाड़ा, पश्चिमी यूपी के बारे में बीजेपी सोचने पर मजबूर है।
0: आपने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो देख लिया। बीजेपी के दावों को काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव ने प्लान 27,000 तैयार किया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में हर सीट पर बीजेपी के 27,000 वोट कम करने की रणनीति का चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। ये काम अखिलेश यादव ने किया है। प्लान अखिलेश यादव का यही है कि हर बूथ पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। आखिर अखिलेश के प्लान 27,000 की पूरी एबीसीडी क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं।

0: मुख्य सदस्यता होगी नवरात्र में, दिन जब शुभ होंगे अच्छे होंगे तब।
1: योगी की हैट्रिक पर ब्रेक लगाएंगे अखिलेश, प्रचार वॉर में आर पार की लड़ाई का ऐलान।
0: हम लोग नहीं बनाना चाहते नेगेटिव गाने, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन चल रहा है हम लोग पीछे भी नहीं छूटना चाहते।
1: अखिलेश का चुनाव जिताऊ फॉर्मूला तैयार, हर सीट पर 27,000 वोटर बहाने का लक्ष्य।
0: के 27 में हर विधानसभा में 27,000 वोट बढ़ाने का काम करेंगे।
1: प्लान 27,000 से बीजेपी को हरा पाएंगे अखिलेश। अखिलेश का प्राण जीतेंगे 2027 का राउंड।
0: क्या कहा, क्या डायलॉग था, इसी तरह कुछ डायलॉग था। ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी के लोग न 27 में आएंगे, न 37 में आएंगे, न 47 में आएंगे। तब मैंने ये कहा था कि वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं कि बड़ा होता चला जा रहा है। उस दिन से कहना भूल गए वो।
1: 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2022 में भी एक बार फिर अखिलेश यादव के सपने पर ग्रहण लग गया। 2012 में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीते दो चुनावों में समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली। अखिलेश यादव बीते 10 सालों से विपक्ष में हैं और सीएम इन वेटिंग हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले के आगे चारों खाने चित हो गई। तो क्या बीते चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए अखिलेश यादव 2027 में एक नई रणनीति पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? सवाल यही है कि 2027 का चुनावी रण जीतने के लिए अखिलेश यादव क्या नया प्रयोग कर रहे हैं? तो इसका जवाब खुद अखिलेश यादव की जुबानी सुनिए।
0: आज हम लोग सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों के साथ बैठक थी। हम सब लोगों ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि 27 में हर विधानसभा में 27,000 वोट बढ़ाने का काम करेंगे, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का 27,000 वोट कम करने का काम करेंगे।
1: अखिलेश यादव ने बूथ मैनेजमेंट की कमान खुद संभाल रखी है। पार्टी के नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों को हर बूथ मजबूत करने का मंत्र दिया गया है। ये कैसे होगा, हर सीट पर बीजेपी के 27,000 वोट पर समाजवादी पार्टी सेंध कैसे लगाएगी, इसका पूरा रोड मैप अखिलेश यादव ने समझाया।
0: टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े, लोगों के घर बैठ करके उनको सुनने का, उनकी बात समझने का, या उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, या न्याय दिलाने की बात करनी होगी, सम्मान की बात। हम सब मिलकर के लगातार इस काम को करते रहेंगे। 27 में 27,000 भारतीय जनता पार्टी के वोट कम करके 27,000 समाजवादी पार्टी के वोट बढ़ाने का काम विधानसभा स्तर पर करेंगे।
1: समाजवादी पार्टी का होमवर्क पूरा है। हर विधानसभा सीट की रिपोर्ट तैयार की गई है। हर सीट पर अपने बूथ को मजबूत करने की अलग रणनीति बनाई गई है। इसी कड़ी में अखिलेश ने अपने प्लान 27,000 का पहला चरण शुरू कर दिया है। पहले चरण में उन विधानसभा सीटों को चुना गया है जहां आज तक समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने में नाकाम रही है। यानी ये वो सीटें हैं जिन पर 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव का पूरा फोकस है। ऐसी सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है।
0: आज हम लोग संगठन के उन लोगों से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश की रिजर्व सीटें हैं, जो सीटें समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। यहां सबने बैठकर के संकल्प लिया है कि अभी तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी आने वाले समय में। जमीनी स्तर पे जो काम करना था हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, संगठन के लोगों ने किया है, जो रिपोर्ट जो जानकारी उन्होंने दी है उससे आने वाले समय में पार्टी निर्णय लेगी और फैसला लेगी।
1: प्लान के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, वोटरों को योगी सरकार के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड बताएंगे, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से लेकर कथित घोटालों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे।
0: अयोध्या एक उदाहरण बना कि किस बड़े पैमाने पर इन्होंने जमीन घोटाले किए हैं, जमीनों का घोटाला हुआ है, इलाज के नाम पर दवाई इंतजाम कुछ नहीं, अस्पताल खुद बीमार हैं, अस्पतालों को खुद इलाज की जरूरत है और बिना सद्भावना के बिना भाईचारे के कोई खुशहाली संभव नहीं है।
2: उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी के बाद ऐसे नेताओं के पास हम आपको लिए चलते हैं जो कह रहे हैं कि हम भी हैं इस खेल में, मतलब 2027 विधानसभा चुनाव में हमें इग्नोर मत कीजिएगा। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। ओवैसी ने कानपुर में अपनी रैली के मंच से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को शर्तों के साथ अपना ऑफर भेज दिया है। ऑफर यही है कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। मतलब ओवैसी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, अब गेंद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पाले में है। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी है जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब चार हिस्सों में बटेगा। आखिर राजभर की इस राजनीति और रणनीति का मतलब क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
1: ۔2027 की चुनावी बिसात पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दाम चल दिया है। कानपुर की रैली से ओवैसी ने ऐलान किया कि वो विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। सबसे पहले सुनिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नाम ओवैसी का चुनावी ऑफर क्या है।
3: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूँ कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूँ, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूँ। अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारने की तैयारी पूरी कर चुकी है, लेकिन 2 अक्टूबर तक वो विपक्षी दलों के रुख का इंतजार करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उनकी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार हो गई, तो चुनाव गठबंधन का हिस्सा बनकर लड़ेंगे। इधर ओवैसी ने अपना ऑफर सामने रखा। उधर ओवैसी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन है। कांग्रेस ने ओवैसी की नीति और नियत पर सवाल उठाए तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। अभी टॉप लीडरशिप खामोश है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने ओवैसी का ऑफर ठुकरा दिया है।
4: जब वो हमसे ये बात कहेंगे, हमारी पार्टी से ये बात कहेंगे, तब हम कोई प्रतिक्रिया देंगे।
5: अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि आप अगर आपके अगर, अगर तो आप कंसीडर करेंगे।
4: हम तो हमेशा एक सवाल उनसे पूछते रहे हैं कि वो बहुत दिन तक अलायंस में थे, 2013 में अलायंस छोड़ के गए क्यों थे, बस इस बात का जवाब देंगे, उसके बाद फिर बाकी बातें होंगी।
5: आपको नहीं लगता लेकिन अगर चुनाव लड़ती है MIM, जाहिर है उनका एक वही वोट बैंक है, कॉमन वोट बैंक है जो गठबंधन के पार्टीज के पास है, आपको नहीं लगता है कि उससे एंटी बीजेपी वोट स्प्लिट होने का एक खतरा, जिससे बीजेपी को फायदा होगा?
4: मैं अगर मगर में नहीं जाता हूं, मैं तो जब भी उनके बयान सुनता हूं तो फिर मुझे वो रेवंत रेड्डी को खजूर खिलाते हुए दिखते हैं, तो मैं हंस के टाल देता हूं।
6: ये जो मेहमान बाहर से चल के चुनावी मेहमान आए थे, चूंकि हमें लगता है 2 अक्टूबर की डेडलाइन इसलिए दी है कि 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती है, बैंक बंद रहती है, इनका जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भुगतान आना होगा वो 3 अक्टूबर को आएगा, तो वो डेडलाइन हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी है कि 2 अक्टूबर के बाद, जब 3 अक्टूबर को बैंक खुलेगी तो आपका भुगतान कर देंगे, तो बेशक वो अपना काम करें, समाजवादी पार्टी की चिंता वो न करें।
1: अब देखना यही है कि ओवैसी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से क्या जवाब आता है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए रथ के रंग को लेकर हमला बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है, यूपी के आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हेतु समाजवादी पार्टी प्रमुख का प्रचारित पीडीए रथ सपा के अपने लाल रंग का कम तथा आरएसएस भाजपा के भगवा रंग का ज्यादा है, तो ऐसे में लोगों में चर्चा यही है कि ये सब उनका वोटों के स्वार्थ की खातिर गिरगिट की तरह लगातार रंग बदलना है या फिर मुसलमानों पर से सपा प्रमुख का वोट पाने का भरोसा उठ जाना है। मायावती के कटाक्ष का जवाब अखिलेश यादव ने दिया,
0: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा, और मैं इधर देख रहा हूं किसी को रथ का रंग नहीं दिखाई दे रहा है, लाल रंग उन्हें कोई दूसरा रंग दिखाई दे रहा है, किसी को किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो रथ केवल डीजल भरवाने गया था, अभी से घबरा गए आप।
2: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे युद्ध भयंकर, विश्व युद्ध का अब नंबर, देखते रहिए दस्तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोलर स्पा एट होम। What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: Maddie, I need to open a savings account.
11: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
10: Small bank?
11: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
10: Okay.
11: Ujjivan, nothing small about us.

0: సోకుడు.
1: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: Maddie, I need to open a savings account.
3: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
2: Small bank?
3: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक
2: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: बहुत टाइड हो गई।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: GK Maxx।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: GK Maxx बेस्ट पुट्टी।
16: JK वॉल मैक्स।
14: बेस्ट पेंट।
17: JK Maxx।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: JK Maxx पेंट्स।
18: JK Maxx पेंट्स। खुशियों के रंग।
19: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
1: असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं MIM के, उनका ये कहना है कि हम चुनावों के अंदर बिल्कुल उतरेंगे, पूरी मजबूती से उतरेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गठबंधन हो जाए। आप देंगे उनको न्योता गठबंधन का या फिर आप नहीं चाहेंगे कि वो हिस्सा ना बने?
2: ओवैसी साहब के उतरने से सिर्फ इतना होगा कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने गोल के ऊपर लगी हुई है। बिहार में क्या हुआ, 6 MLA जीत गए, 7 जीत गए, 8 जीत गए, यहाँ 10 जीत जाएंगे। सरकार बीजेपी के बन जाए तो 10 MLA किसी काम के भी नहीं है। बिहार में क्या कर पाए, वो कुछ कर पाए बिहार में क्या?
1: बिहार में भी वो कह रहे थे कि आप गठबंधन कर लीजिए।
2: बिहार में कुछ देखिए, उनके गठबंधन का मतलब दूसरा भी है, मुसलमान मुसलमान से राजनीति नहीं होगी। मोदी जी ने मुसलमानों का मुगालता दूर कर दिया कि तुम्हारे बिना सरकार नहीं बनती, वो तुम्हारे बिना ही सरकार बना रहे हैं, तो इसलिए इस मुगालते को दूर कर दो। हमें दूसरे साथियों को आगे रख करके मुसलमान को खामोशी के साथ पीछे चलना चाहिए। और भैया इनसे मुक्ति पाओ, इनसे मुक्ति नहीं पाएंगे तो हमारी मस्जिदें टूटेंगी, हमारे ही डंडे चलेंगे, हमारी ही गोली लगेंगी। और किस पे तशद्दुद हो रहा है सबसे ज्यादा, तो हम पर होता है, फिर दलितों पर होता है।
3: हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर, और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
4: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है। उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना, और जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और उस पर हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहां एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और इसलिए वहां कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की। बीते 48 घंटों में चर्चा यही है कि ईरान पर अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा हमला किसी भी समय कर सकता है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका एटमी हमले भी कर सकता है, जैसी आशंका तेहरान के डिप्टी मेयर व्यक्त कर चुके हैं। सवाल यही है कि जिस समय ईरानी राष्ट्रपति के अमेरिका जाने की खबरें आईं, ठीक उसी समय ऐसा क्या हुआ कि ईरान को अपनी सेनाओं को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए हाई अलर्ट जारी करना पड़ा? कि अगले कुछ ही घंटों में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंसक हमलों का दौर शुरू हो सकता है? क्या ईरान के विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सबसे बड़े हमले की स्वीकृति दे सकते हैं?

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो,

0: ईरान ने अपनी सेना के लिए कोड 100 नाम का हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें IRGC और सेना को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान में जारी किए गए हाई अलर्ट की टाइमिंग को देखें तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक कैंप डेविड से वापस व्हाइट हाउस लौटा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सैन्य अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग की है, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री ने अभी अपना अमेरिका दौरा छोटा किया है। तो क्या ईरान का सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी करना, अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक व्हाइट हाउस लौटना किसी बड़े हमले का संकेत है? ईरान में हमले का हाई अलर्ट क्यों जारी हुआ? क्या ईरान पर ट्रंप विनाशकारी हमला करेंगे? ट्रंप के नाम ईरान की सबसे बड़ी धमकी क्यों? अमेरिकी लड़ाकू जेट क्यों ईरान बॉर्डर पहुंचे? ईरान और अमेरिका युद्ध में सबसे बड़ा मोड़। अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही बीते कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार के सिलसिले पर ब्रेक लगा है, लेकिन बीते 48 घंटों से अमेरिका और ईरान के अंदर से आ रही खबरें किसी बड़े हमले का संकेत दे रही हैं। ईरान ने महायुद्ध का बिगुल फूंक दिया है, तो अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी खबरों ने ईरान पर सबसे बड़े अमेरिकी हमले की संभावनाओं की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान पर नए हमलों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इसी बीच ईरान ने हुर्मुज में अमेरिकी ड्रोन को बाद गिराने का दावा किया है। दावा यही है कि हुर्मुज में अमेरिकी सेना के ड्रोन को बाद गिराया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका और उनके सहयोगियों के साथ युद्ध के बारे में IRGC का आकलन ये है कि अमेरिका को ऐतिहासिक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनमें स्वीकार करने का साहस नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन वो हुर्मुज का रास्ता खुलवाने में नाकाम रही। हम अमेरिका से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने पहले ही लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर ली है, और अब वो इस तरह के परिदृश्य के लिए और भी ज्यादा तैयार है। अगर कोई नया आक्रमण होता है तो हमारी रक्षा और जवाबी हमले में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। हम निश्चित रूप से युद्ध के भूगोल को बदल देंगे। हम निश्चित रूप से नई क्षमताओं वाले नए हथियार युद्ध के मैदान में लाएंगे, और दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से कोई नया हमला हुआ तो विनाशकारी पलटवार होगा। ईरान अपने ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें अभी तक गुप्त रखा गया है। तो क्या ये कोई विनाशकारी मिसाइल है, या फिर ईरान के पास कोई सीक्रेट हथियार मौजूद है? ईरान की माने तो अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। हम चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी गलती की तो पूरे इलाके में अमेरिका के सभी ठिकानों और हितों को बिना किसी सीमा या विचार के निरंतर प्रभावी और दर्दनाक हमलों का निशाना बनाया जाएगा। मतलब यही है कि ईरान हर हालात से निपटने को तैयार है। बड़ी बात यह है कि ईरान खुद मानता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर यकीन करना असंभव है।
1: एक और मुद्दा है सर, जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं, वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के, उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए, ये असली लीडर्स कौन हैं?
2: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
0: दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार जहर उगलते आए हैं। ये तक कह चुके हैं कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो ईरान झुका और न ही अमेरिकी हमलों के बाद ईरान रुका। हुर्मुज पर नया हमला भी यही बताता है कि ईरान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर ही अमेरिका के साथ कोई बातचीत करेगा। ऐसे में अगर अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी विध्वंसक पलटवार करेगा। आज तक ब्यूरो।
3: हम हमारे संवाददाता सुमित चौधरी के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध और बातचीत दोनों की तैयारी है। सुमित, क्या आपको ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि आगे सच में कोई बड़ा हमला होगा या फिर अब बातचीत की राह निकल चुकी है? सुमित,
4: सही, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक टर्म यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना। इस समय अमेरिका ईरान के साथ वही कर रहा है। देखिए, यूएनजीए की बैठक होने वाली है, लगातार अमेरिका की तरफ से मीटिंगें की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप ईरान को देखते हैं, ईरान के लोगों से बात करते हैं, IRGC के लोगों से बात करते हैं, उनके कमांडर ऑफ चेन में बात करते हैं, तब उनकी तरफ से, मुझे याद है कि 2 महीने पहले जब मैं ईरान में मौजूद था, तब मैंने ईरान के तेहरान से के मेयर से बातचीत की थी, IRGC के कई कमांडर से इंटरव्यू किए थे, उनसे बातचीत की थी, तो उनसे पूछा था कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि अमेरिका तो बार बार इसका डर दिखाता रहता है कि वो दोबारा से नए ऑपरेशंस की शुरुआत करेगा ईरान के खिलाफ। तो उनका कहना था कि अब मैक्सिमम अगर अमेरिका कुछ कर सकता है, यूएस कुछ कर सकता है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ उनके पास न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर ऐसा अमेरिका करता है तो फिर वो दो तरीके से थाली में परोसकर दो एडवांटेज पोजीशन इस समय ईरान को दे देगा। पहली चीज थी, उनको ये लगता था कि अगर वो करता है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ईरान का इलाका बहुत बड़ा है, अगर उनको इस्तेमाल करना हुआ अगर अपने से टेक्टिकल वेपन्स को, तो वो इश्फाहान, नतांज या फोर्दो, जहां पर भी इस्तेमाल करेंगे उससे सिविल पॉपुलेशन बहुत करीब रहती है, तो ऐसे में रेडिएशन का खतरा, दूसरी चीजों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीजें अमेरिका नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका इस्तेमाल करता है तो फिर अमेरिका वो दरवाजे खोल देगा जहां पर ईरान ओपनली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए, उन स्ट्रेटजिकल वेपन्स को बनाने के लिए आगे बढ़ सकता है। उस पर किसी तरीके के सैंक्शन काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले रिटेलिएशन, पहला अटैक अमेरिका की तरफ से होगा। तो आप अगर परिस्थितियों को समझे तो इस समय IRGC हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि ईरान की लीडरशिप हो, वो इस बात को बहुत बखूबी समझ चुकी है कि मैक्सिमम अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वो अमेरिका के इन तमाम दावों को, तमाम बयानों को, तमाम मीटिंगों को एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर देखते हैं, समझते हैं कि देखिए ऐसी बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप तभी क्यों करते हैं जब कोई बड़ी मीटिंग होनी हो, जब निगोशिएशंस की बातचीत चलनी हो, ताकि वो ईरान को कई मुद्दों पर दबा सके। लेकिन वहीं दूसरी बात, जब हम ईरान की बात करते हैं, ईरान को ये चीजें समझ में आती है और ईरान भी अपने आप को जिस तरीके से रिवाइव कर रहा है, अपने आप को, आप कह सकते हैं अपने आप को दोबारा से, उसने अपने रसद हो, साजो सामान हो, उनको रिवाइव किया, उसने प्रॉक्सीज को लगातार जिस तरीके से साजो सामान प्रोवाइड किया है, चाहे वो हूती की बात कर लीजिए, हिजबुल्ला की बात कर लीजिए, वो जरूर एक अमेरिका के साथ साथ उसके आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर, चाहे वो सऊदी और तमाम देशों, उनके लिए चैलेंज बनता जा रहा है, और शायद यही कंसर्न है जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप को भी ज्यादा आपके साथ परेशान कर रहा है।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तेहरान के डिप्टी मेयर हमीद रजा गुलाम जादे ने अमेरिका के परमाणु हमले को लेकर क्या बड़ी बातें कही।
5: Everything. And they could not make any achievements. So they used fighter jets, they used missiles, they used actually ground operation, and they tried to steal the enriched uranium from Iran. In all of them, they failed.
6: Yes.
5: So if they wanted to make any achievements, they would have done it during those 40 days. And they don't have any other options. There remains only one option, which is the nuclear bomb. That even if it is used, it would not stop Iranian people. These people are totally committed to defend their country. And even if a nuclear bomb, even to the extent of the Japan incident, the attacks, Hiroshima and Nagasaki, even if that those levels, Iranians would not fear that and would not stop defending their country. And even if that happens, it would not be considered a defeat for the Iranians. It actually emboldens them more and encourages them more to protect their country and fight for their country. And that is the difference between Iran and many other countries.
3: एक बड़ी खबर इस समय अमेरिका से आ रही है। ट्रंप ने कुछ टीवी न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया था, उन्हें एंट्री नहीं देने के लिए ये निर्णय लिया था, लेकिन अब ट्रंप के इस कार्यक्रम को कवर नहीं करने का पत्रकारों ने फैसला किया है। जिन्हें बैन किया गया था उन लोगों ने कहा है कि अब हम ट्रंप के कार्यक्रम को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस में ट्रंप के खिलाफ CNN के साथ कई सारे न्यूज़ चैनल्स भी आ गए हैं। CNN को भी बैन किया था, 3 चैनल्स थे जिनके रिपोर्टर्स को कहा गया था कि वो अब व्हाइट हाउस में किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद CNN ने तो कहा ही कि हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे चैनल्स भी आ गए हैं जिन्होंने कहा है कि हम ट्रंप को कवर नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे कोई प्रोग्राम करें। और अब खबर युद्ध के मोर्चे की, जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने के बजाय और भीषण हो रहा है और स्थिति यह हो गई है कि इस युद्ध में दोनों देशों को सैन्य उपकरणों से लेकर अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। युद्ध में दोनों तरफ से मारे जाने वाले और घायल सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन पहले यूक्रेन हमला करता है तो अगले दिन रूस भयंकर पलटवार करता है। जी हाँ, पहले यूक्रेन ने मॉस्को में 1000 से अधिक ड्रोन्स दागे, अब रूस ने पलटवार में यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही मचा दी, हाहाकार मचा दिया। दिखाएं आपको कि क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा।

रूस और यूक्रेन के बीच और भीषण हुई जंग। पहले मॉस्को पर ड्रोन अटैक, अब यूक्रेन में कोहराम।

0: ताबड़तोड़ हमलों से रूस की सप्लाई चेन पर पड़ा असर। अब यूक्रेन को सर्दियों में सताने लगा बड़ी तबाही का डर। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की होगी मुलाकात, पुतिन से बनेगी बात। कहते हैं युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाश लेकर आता है। इस वक्त दो महायुद्धों ने दुनिया भर के आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर जबरदस्त हलचल मचा रखी है। हर दिन विनाश लीला देखने को मिल रही है। इसकी वजह से देशों के आपसी रिश्ते बदल रहे हैं, भविष्य की रणनीति बदल रही है और तेजी से बदलती तकनीक की वजह से बदल रहा है युद्ध लड़ने का तरीका। सैकड़ों मील दूर से एक ड्रोन या मिसाइल आते हैं और पल भर में सब कुछ तबाह कर डालते हैं। दो दिन पहले यूक्रेन ने मॉस्को रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया, तो उसका बदला लेने के लिए रूस ने पिछले 24 घंटों में उसके कई शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन से इतने बम बरसाए कि हर तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क इलाके की हैं। सरहद के आसपास जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो कई लोग खार्किव जैसे कुछ सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी के लिए इस सेंटर में इकट्ठा हो रहे थे कि रूस ने इस पर हमला कर दिया। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और लोग फंस गए। काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा था और आग की लपटें पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी। रात भर यूक्रेन के आसमान में रूस की मिसाइलें और ड्रोन की आवाजें गूंजती रहीं। यूक्रेन के कई अलग अलग शहरों में रूस ने हमले किए हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर शॉपिंग मॉल तक पर बम बरसाए गए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। ज़ेपोरिज़्या में दो अलग अलग शॉपिंग सेंटरों को निशाना बनाया गया। इन पर हमलों के लिए गिरान 2 और गिरान 4 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और कैप ग्लाइड बम बरसाए गए। 6 ड्रोन से एयर स्ट्राइक होने से तमाम ठिकानों पर धमाकों के साथ साथ आग लग गई। रूस ने ये हमले मॉस्को हमले के जवाब में किए हैं। ज़ेपोरिज़्या, ओडेसा, खार्किव समेत कई जगह बमबारी की गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि हमारी सेनाओं ने लॉजिस्टिक सेंटर, पोर्ट और वेयरहाउस को काफी नुकसान पहुंचाया है। ओडेसा पोर्ट पर तो एक शिप को भी उड़ाने का दावा किया जा रहा है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि रूस रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है और जल्द ही वो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं ताकि शांति स्थापित की जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा किया है कि उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है और दोनों के बीच न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक से काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं और हमारी प्राथमिकता युद्ध को खत्म करने की होगी। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस लगातार बेकसूरों की जान ले रहा है। उनका कहना है कि यूएन की बैठक में शांति के तमाम विकल्प तलाशे जाएंगे। जो आज तस्वीर यूक्रेन की है, दो दिन पहले मॉस्को भी यूक्रेन के हमलों से धधक रहा था। जी हाँ, यूक्रेन ने मॉस्को पर इतना विनाशकारी हमला किया था, 1000 से ज्यादा ड्रोन मारकर तबाही मचा दी थी। इस हमले को जंग के दौरान यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला माना गया। कहा जा रहा है कि इसके लिए यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। चुनाव के दौरान में मॉस्को में हुए इस हमले से हड़कंप मच गया था। कई किलोमीटर दूर से धुएं का ये गुबार दिख रहा था। पूरा मॉस्को इन धमाकों की गूंज से थर्रा उठा था और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी यूक्रेन को आतंकी देश बता चुके हैं।
1: Зеленский заявил, да, что да, нам да, небезопасно летать.
2: Да, ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе в этой же части...
0: जिस तरह से तकरीबन 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ रही है, अब रूस ये भी आरोप लगा रहा है कि नाटो की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। ऐसे में उस युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की आशंकाएं और बढ़ रही हैं। आज तक ब्यूरो।
3: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: और
6: वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: In association with
15: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
16: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
17: Jawaharlal Nehru's observation in an officers meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words: "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
18: Shriman Hamid Ansari, jo Bharat ke उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए हैं।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: जवाहरलाल नेहरू's ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग।
3: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान ने सियासी बहस को गर्मा दिया है। AJ नूरानी मेमोरियल लेक्चर में अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था।
2: जवाहरलाल नेहरू's ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स द डेंजर to India. Mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism.
3: इसके बाद बीजेपी ने अंसारी के बयान पर मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इस बयान के जरिए सनातन और हिंदू परंपरा को निशाना बनाया गया है।
4: और सचमुच डरावने वक्तव्य है, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और यह वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
3: वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े मौलाना साजिद राशिदी ने भी हामिद अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
5: जब आप पद पर थे, आप मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते थे, उस वक्त तो आपने किया नहीं। अब आपको कोई पूछ नहीं रहा है तो जानबूझकर आप अपने आप को जनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी अभी जिंदा हूं, मैं भी अभी हयात हूं, मेरे बारे में भी सोचो।
3: उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी अंसारी के बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हामिद अंसारी के बयान के बाद शुरू हुआ सियासी विवाद अब सांप्रदायिकता, सनातन परंपरा और धर्म निरपेक्षता के मुद्दे तक पहुंच गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की प्रतिक्रियाओं के बीच अंसारी के बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं। नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं। जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया उनका भी वो अपमान करते हैं।
7: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। और ये सेल्फ गोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से, बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।

0: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नेते नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी ने की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है, साथ माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। ट्रंप ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की इच्छा जताई, लेकिन साथ में दी चेतावनी, अगर व्यवहार नहीं बदला तो जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 18 जून की सुबह पुणे के करीब लौगढ़ की पहाड़ी पर केतन अग्रवाल को सबसे पहले सिया ने अपने दोनों हाथों से धक्का दिया था, जिससे केतन लड़खड़ा कर गिरने लगा, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर इसी बीच चेतन आ गया और उसने अपने एक पांव से केतन को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो खाई में जा गिरा। केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे पुलिस ने 5053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट के मुताबिक सिया और चेतन दिसंबर 2025 में ही शादी कर चुके थे। शादी के 2 महीने बाद यानी फरवरी 2026 में सिया ने केतन से सगाई की। फरवरी 2026 में जब पुणे के एक मशहूर होटल में केतन और सिया की सगाई हो रही थी, तब असल में उससे 2 महीने पहले ही सिया शादी कर चुकी थी। यानी शादीशुदा सिया शादी के 2 महीने बाद केतन से सगाई कर रही थी। सिया ने केतन के साथ सगाई से पहले चेतन से राजस्थान के एक मंदिर में शादी की थी। हालांकि ये शादी और इस शादी की खबर सिर्फ 3 लोगों को ही मालूम थी, सिया, चेतन और चेतन के दोस्त रितेश हांगे। पिछले 3 महीने से इस सवाल का जवाब भी हर कोई जानना चाहता था कि 18 जून की सुबह पुणे के करीब लौगढ़ की पहाड़ी से केतन को धक्का किसने दिया था, सिया ने या फिर चेतन ने। आपको याद होगा इस मामले में पुणे पुलिस ने बाकायदा डमी ट्रायल भी किया था। इस डमी ट्रायल में सिया और चेतन दोनों को अलग अलग दिन बुलाया गया था। अब जो सच्चाई सामने आई वो ये कि केतन को धक्का देने वालों में सिया और चेतन दोनों शामिल थे। सिया ने सबसे पहले चेतन को अपने हाथों से धक्का दिया, इसके बाद चेतन ने केतन को अपने पैर से धक्का दिया। केतन मर्डर केस में डेडलाइन पूरी होने से ठीक 1 दिन पहले 19 सितंबर को पुणे पुलिस ने कुल 5053 पन्नों की चार्जशीट वडगांव मावल सेशंस कोर्ट में दाखिल कर दी। चार्जशीट यानी आरोप पत्र असल में वो कानूनी दस्तावेज है जो एक केस की जांच करने के बाद केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज सबूतों और गवाहों के साथ कहानी की तरह लिखी जाती है। मर्डर केस में पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए कुल 90 दिनों का वक्त होता है। पुणे पुलिस ने केतन मर्डर केस में 89वें दिन ये चार्जशीट दाखिल कर दी। अब इस चार्जशीट पर अदालत में चार्जेस फ्रेम होंगे, यानी आरोप तय होंगे। कौन कौन से आरोप जो चार्जशीट में मौजूद है वो आरोपियों पर लगाए जाएंगे या उनमें से कुछ हटाए जाएंगे, ये अब अदालत तय करेगी। एक बार आरोप तय हो जाने के बाद कायदे से मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। अब ये मुकदमा आम कोर्ट में चलेगा या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसका फैसला आरोप तय होने के बाद ही होगा। 18 जून यानी जिस दिन केतन को लौगढ़ की पहाड़ी से धक्का देकर मारा गया, उसके बाद से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आपने तमाम कहानियां सुनी, लेकिन आज पहली बार केतन मर्डर केस की असली कहानी आप पुलिस की जुबानी सुनेंगे। पुलिस की जुबानी इसलिए क्योंकि चार्जशीट की कहानी पुणे पुलिस ने ही लिखी है। तो पेश है केतन मर्डर केस और उसकी साजिश सारी कहानी। सिया गोयल का भाई क्रिकेट खेलने और क्रिकेट का मैच देखने का शौकीन था। पुणे में जब भी कोई टूर्नामेंट होता वो मैच देखने चला जाता। ऐसे ही टूर्नामेंट के दौरान उसकी मुलाकात चेतन चौधरी से हुई। चेतन के पिता की मसाले की दुकान पुणे में उसी इलाके में है जहाँ सिया के पिता का बिजनेस। भाई के जरिए ही पहली बार 2025 में दिवाली से पहले सिया की चेतन चौधरी से मुलाकात हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। इत्तफाक से ये बात सिया के घर वालों को पता लग गई। हैसियत और रुतबे को देखते हुए सिया का परिवार चेतन से उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं था, पर सिया चेतन के प्यार में पागल थी। इसी दौरान सिया को चेतन से दूर करने के लिए सिया के घर वालों ने सिया के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। ये बात सिया को पता चल गई, पर सिया किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी। दिसंबर 2025 की बात है, सिया और चेतन अपने कुछ दोस्तों के साथ राजस्थान जाने का प्लान करते हैं। उन्होंने पुणे से जयपुर की टिकट भी बुक करा ली, पर इत्तफाक से उस दिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। फिर सिया, चेतन और उसके दोस्त ट्रेन से जयपुर पहुंचे। वहां से सभी खाटू श्याम मंदिर गए। इसी मंदिर में सिया और चेतन ने शादी कर ली। इस शादी की जानकारी पुणे पुलिस को तब लगी जब पुलिस ने सिया और चेतन के डिलीटेड मैसेज और फोटो को रिट्रीव कराने के बाद उन्हें देखा और पढ़ा। सिया और चेतन के मोबाइल में उन्हें एक तस्वीर मिली जिसमें दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हुए नजर आ रहे। चेतन मर्डर केस के एक महीने बाद जुलाई में पुणे पुलिस खाटू श्याम मंदिर भी गई थी, लेकिन वहां से उन्हें सिया या चेतन की सीसीटीवी कैमरे में कैद कोई तस्वीर नहीं मिली। खाटू श्याम मंदिर से सिया, चेतन और उसके दोस्त उसी ट्रेन से वापस पुणे आ गए।
2: तहकीकात के दरमियान पुलिस सिया के घर पहुंची जहां सिया के बेडरूम में से उन्हें एक फोन मिला। ये फोन बरामद होने के बाद सबसे अहम सबूत थे वो सामने आए, क्योंकि फॉरेंसिक जांच हुई जिसमें ये पता चला कि इसी फोन से सिया ने गूगल हो या फिर यूट्यूब हो अलग अलग जगहों पे सर्च किया था। वीडियोस थे, लोहगढ़ के कुछ देखे थे और एग्जैक्टली स्पॉट पर रेकी करने से पहले किस तरीके से वहां जाना है, अंजाम कैसे देना है, इसका प्लानिंग के लिए जितना भी ऑनलाइन मटेरियल था वो इस पर सर्च किया था। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इसी फोन ने जब फॉरेंसिक डिटेल्स इसके सामने आई तो एक फोटो मिला जिस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान दिसंबर महीने में जाने के बाद सिया और चेतन ये दोनों साथ में गए थे और वही इन दोनों के गले में सीधे तौर पर वरमाला दिखाई दे रही है। उसके बाद पुलिस ने जो जांच थी उसे और इंटेंसिफाई किया और फिर पुलिस को लगने लगा कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। जुलाई के दरमियान पुणे के रूरल पुलिस सीधी राजस्थान पहुंची और वहां उन्होंने तहकीकात की कि सच में इन दोनों की शादी हुई है या नहीं हुई है।
1: इधर सिया गोयल के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। इत्तफाक से सिया और केतन का परिवार एक दूसरे को लंबे अरसे से जानता था। दोनों परिवार के एक रिश्तेदार ने पहली बार सिया और केतन के रिश्ते का आइडिया दिया। चूंकि दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। ये बात जनवरी 2026 की है। रिश्ता तय होते ही फरवरी 2026 में सिया और केतन की सगाई कर दी गई। घर वालों के दबाव के चलते सिया इस सगाई के लिए तो राजी हो गई, पर चूंकि वो पहले ही चेतन से शादी कर चुकी थी इसलिए अब केतन से शादी करना नहीं चाहती थी। तब सिया और चेतन का प्लान यही था कि फिलहाल सगाई कर लेते हैं, शादी होने में साल दो साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन होता यह है कि सगाई के फौरन बाद सिया और केतन के घर वाले सगाई के 9 महीने बाद ही यानी नवंबर में शादी की तारीख तय कर देते हैं। यहीं से सारी कहानी बिगड़ जाती है। अब सिया और चेतन चौधरी मिलकर किसी तरह शादी को पहले तो टलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब शादी की तारीख आगे बढ़ाने की बजाय घर वाले राजस्थान में शादी की बुकिंग तक करना शुरू कर देते हैं तब सिया और चेतन घबरा जाते हैं। इस दौरान कई बार सिया केतन से इशारों में शादी तोड़ने की बात भी करती है, शादी की तारीख बढ़ाने के लिए भी कहती है, लेकिन केतन राजी नहीं होता। उल्टा होता यह है कि शादी से 5 महीने पहले जून में केतन बाली में प्री वेडिंग शूट प्लान कर लेता है। इसके लिए केतन, उसकी बहन और सिया और उसके भाई को बाली जाना था। बस यही वो पल था जब सिया और चेतन ने कोई आखिरी फैसला लेने का फैसला किया। अब इस फैसले या प्लान में पहली बार चेतन के दोस्त ऋषभ हांगे की एंट्री होती है एक सलाहकार के तौर पर। उसे यह सलाह देनी थी कि केतन से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब तीनों ने मिलकर प्लान बनाना शुरू किया। इसके लिए इन तीनों ने क्राइम थ्रिलर मूवी देखी, क्राइम के शोज देखे, क्राइम के पॉडकास्ट सुने, पुलिस से बचने के तरीके इंटरनेट पर ढूंढे, फिर ये फैसला लिया कि महाराष्ट्र के बाहर के किसी किलर को हायर कर या तो केतन के हाथ पांव तोड़वा दे या फिर उसे जान से मार दे। लेकिन फिर तीनों को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि कल को किराए का वो कातिल या बदमाश न सिर्फ मुंह खोल सकता है बल्कि उन्हें आगे भी लगातार ब्लैकमेल कर सकता है। इसी के बाद पहली बार ये तय हुआ कि केतन का जो कुछ होगा वो खुद सिया और चेतन करेंगे। अब सवाल था कैसे। इत्तफाक से जब सिया और चेतन की ये प्लानिंग चल रही थी तब देश में सोनम रघुवंशी के किस्से हर एक की जुबान पर थी। सिया और चेतन ने अब सोनम के केस की स्टडी करनी शुरू कर दी। यही वो केस था जिसके बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अगर किसी को किसी सुनसान पहाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाए तो फंसने की गुंजाइश बहुत कम होगी। यानी पहाड़ी से धक्का देने का आइडिया इन्हें सोनम केस से ही आया क्योंकि सोनम और किराए के उसके कातिलों ने राजा रघुवंशी को मेघालय में पहाड़ी से ही धक्का दिया था। कत्ल का ये आइडिया आते ही अब सिया और चेतन ने लोकेशन ढूंढना शुरू कर दिया। इत्तफाक से पुणे में सिया के घर से 40 किलोमीटर दूर ही लोहगढ़ का यह किला था जिसकी ऊंचाई अच्छी खासी थी। अब सबसे पहले सिया और चेतन ने यह पता लगाना शुरू किया कि क्या कभी लोहगढ़ किले से गिरकर किसी की मौत हुई। इत्तफाक से दोनों को पता चला कि मार्च 2025 में एक महिला की लोहगढ़ किले से खाई में गिरकर मौत हो गई थी। ये पता चलते ही अब सिया और चेतन ने किले की रेकी करनी शुरू की। इस रेकी के दौरान वो किले के टाइगर पॉइंट से लेकर उन सारे पॉइंट्स को देखा जहां लोगों की भीड़ कम होती है या लगभग सन्नाटा रहता है और फिर आखिर में फाइनल पॉइंट चुना गया। अब सिया केतन को लोहगढ़ ले जाने की कोशिश में जुटी थी। दो बार दोनों वहां तक गए भी, यहां तक कि 14 जून को सिया ने केतन को उसी जगह से धक्का देने की कोशिश भी की लेकिन बीच में एक पेड़ आ जाने की वजह से केतन खाई में गिरने से बच गया। अब केतन की मौत की अगली तारीख 18 जून तय की गई लेकिन सिया को शक था कि शायद उस दिन केतन उसके साथ लोहगढ़ किले तक नहीं जाएगा। इसके लिए भी उसने एक साजिश रची। उसने अपनी एक जानने वाली लड़की की तस्वीर के साथ एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, फिर केतन को बताया कि ये उसकी अच्छी दोस्त है, फिर खुद ही सिया उसके फेक अकाउंट से केतन से बात करने लगी। इसके बाद सिया की ये वही गुमनाम दोस्त थी जिसके नाम पर केतन को इंस्टा पर मैसेज गया। मैसेज ये कि 18 जून को आप लोहगढ़ किले जरूर चलें, वहां सिया ने आपके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। कहते हैं कि यही वो मैसेज था जिसके बाद केतन किले तक जाने को तैयार हो गया। केतन की मौत के बाद सिया और चेतन ने इंस्टा का ये फेक आईडी डिलीट कर दिया था लेकिन पुणे पुलिस ने फॉरेंसिक लैब की मदद से इसे वापस हासिल कर लिया।
2: केतन अग्रवाल के हत्या मामले की जांच जैसे आगे बढ़ी वैसे एक बात साफ हो गई कि इस पूरे हत्या मामले में सिर्फ सिया और चेतन ही नहीं बल्कि उनका दोस्त रितेश हांगे भी शामिल है। बात यह है कि शुरू में जब बाली का प्लान बन रहा था तब सिया ने केतन अग्रवाल का पासपोर्ट कचरे के डिब्बे में डाल दिया। फुटबॉल पे रुके थे वही उसने एक्टिंग करते हुए ये जताया कि उसके पास पासपोर्ट है ही नहीं। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तभी भी केतन पासपोर्ट ढूंढने लगा, वो मिला नहीं और इसी के वजह से बाली का प्लान कैंसिल हुआ। लेकिन इस पूरे प्लानिंग में और एक बंदा शामिल था जिसका नाम है रितेश हांगे। अब जब पुलिस तहकीकात कर रही है तो और एक बात सामने आई है। 14 तारीख को जब सिया और केतन साथ में गए थे, जब सिया ये मर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाई उसके बाद माही नाम का एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया और इसी अकाउंट से केतन अग्रवाल को यह जताने की कोशिश की गई कि सिया का जो बर्थडे आ रहा है 19 तारीख को उससे पहले हम उसे सरप्राइज देंगे। और माही नाम की उसकी दोस्त केतन के साथ बात कर रही थी और उसी ने जो फेक अकाउंट था वो फेक अकाउंट से उसे कन्विंस किया कि उस 18 तारीख को जाना चाहिए, लोहगढ़ पर जाएंगे, उसे सरप्राइज देंगे और मैं भी साथ में आऊंगी।
1: अब तक केतन के कत्ल की प्लानिंग में सिया और चेतन के साथ हर कदम पर रितेश भी शामिल था। यहाँ तक कि ये भी तय हुआ था कि 18 जून को वो भी लोहगढ़ तिले जाएगा, लेकिन पकड़े जाने के डर से ऐन वक्त पर रितेश पीछे हट गए। पर प्लान के हिसाब से सिया केतन के साथ और चेतन अकेले 18 जून की सुबह लोहगढ़ तिले पहुंच चुके थे। सिया और केतन साथ साथ चल रहे थे, जबकि चेतन हुडी में अपना चेहरा छुपाए पीछे पीछे चल रहा था। क्योंकि दोनों लोकेशन की रेकी पहले ही कर चुके थे और पहले ही आपस में तय भी कर चुके थे, इसीलिए पीछे चल रहे चेतन को पता था कि सिया और केतन कहां पर रुकेंगे। फिर वो फाइनल पॉइंट आया। सिया केतन को बातों बातों में बिल्कुल पहाड़ी के एज यानी किनारे पर ले आए, फिर चुपके से इशारा किया। कुछ मीटर दूरी पर खड़ा चेतन इशारा मिलते ही तेजी से आगे बढ़ा। चेतन के करीब आते ही अब तक बातों में उलझा आई सिया चेतन को दोनों हाथों से अचानक जोर से धक्का देती है। इस धक्के से जैसे ही केतन लड़खड़ा कर संभलने की कोशिश करता है, तब तक चेतन आगे बढ़ता है और अपने एक पांव से उसे जोर का धक्का मारता है। चेतन पहाड़ी से नीचे गिर पड़ता है। चेतन अब सिया को उसी जगह छोड़ तेज कदमों से वापस लौट जाता है। तो ये तो रही चार्जशीट की जुबानी पुलिस की कहानी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानी है या इस कहानी से जुड़े सबूत भी हैं? तो बकौल पुणे पुलिस, इस पूरी कहानी से जुड़े हर सबूत, चाहे वो गवाह की शक्ल में, मोबाइल की शक्ल में, व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियो, मोबाइल डेटा, CDR या फिर CCTV की शक्ल में, वो सब कुछ उनके पास है। पुणे पुलिस को यकीन है कि सबूत इतने पुख्ता है कि सिया और चेतन के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं। वैसे केतन बटर केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या केतन की तरफ से जाने माने वकील उज्जवल निगम इस केस की पैरवी करेंगे। केतन के पिता इस सिलसिले में पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे इस बारे में गुजारिश कर चुके हैं। खुद उज्जवल निगम ने इस बारे में आज तक से बातचीत के दौरान कहा था कि जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तब वो इस केस की पैरवी करने के बारे में सोचेंगे।
3: मैं मुंबई में था, ये इन्होंने कुछ अर्जी दी उनके पास, उसके पिताजी ने, चेतन के,
4: अग्रवाल साहब,
3: केतन के पिता ने
4: जी।
3: तो अर्जी दी तो सीएम साहब का फोन आया, उज्जवल जी इनकी मांग है, आप ऐसा का अभी इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैटर सीएम साहब विश्वास रखते हैं, तो मैंने कहा हाँ करूंगा। तो मैंने एक्सेप्ट मॉरली तो कर दी है, ये केस में मैं चार्जशीट दर्ज होने के बाद अपीयर होऊंगा
4: 3 महीने बाद।
1: फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक इस मुकदमे का ट्रायल शायद शुरू हो जाए। सिया, चेतन और ऋषि तीनों ही इस वक्त पुणे की यरवदा जेल में बंद हैं। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे आज तक। केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे पुलिस की चार्जशीट के बाद केतन के पिता ने पुणे पुलिस पर भरोसा जताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि केतन मर्डर केस में सिर्फ सिया ही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी साजिश में शामिल थे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केतन के पिता ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के साथ साथ जाने माने वकील उज्जवल निगम से इस केस की पैरवी करने की गुजारिश की है।
5: केतन अग्रवाल हत्या मामले में पुणे पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किए। हमारे साथ केतन के पिता है। सर, क्या बताना चाहोगे? न्यायालय में तो पुणे पुलिस ने जो है चार्जशीट दाखिल किए, क्या लगता है आपको कि आपके बेटे को न्याय मिलेगा, आपके फैमिली को न्याय मिलेगा?
6: मुझे चार्जशीट दाखिल किया है बोल के पुलिस ने इंटीमेशन दिया है। मैंने सैटरडे को कोर्ट में माननीय न्यायालय में अर्ज किया है कि मुझे उसकी कॉपी मिले, तो मुझे शायद 1-2 दिनों में वो नया कॉपी प्राप्त हो जाएगी। और न्याय जिस हिसाब से मेरे को पुलिस मुख्यालय या SP साहब और जो SIT के लोग थे उन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये सत्य है कि सिया, चेतन चौधरी और उनके साथीदारों ने मिलके मेरे बेटे का कत्ल किया है।
5: कुछ बातें भी सामने आ रही, जितेन चौधरी हो या फिर सिया गोयल की शादी की बात सामने आ रही, तो आपको लगता है कि उनकी शादी हुई थी?
6: मुझे भी ये कुछ पेपर में पढ़ के पता चला है, पर मुझे सत्य का अभी कोई ज्ञान नहीं है। जैसे ही मेरे पास कुछ चार्जशीट आती है, कुछ होता है, मुझे पता चलता है तो मैं बताऊंगा आपको।
5: लेकिन अभी पुलिस से क्या गुहार है आपकी?
6: मुझे पुलिस से इतनी गुहार है कि वो इसमें जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उसको न्यायालय के सामने पेश करके और मेरे बेटे को न्याय दे दिलाए।
5: सिया और चेतन के अलावा कौन कौन लगता है कि इस मामले में शामिल हो सकते हैं, किस पर आपकी निगाह रहेगी?
6: सिया और चेतन के अलावा सिया के पिताजी प्रवीण बसवेश्वर गोयल, पूजा प्रवीण गोयल, साहिल प्रवीण गोयल, नरेंद्र जगन्नाथ मित्तल और रेणु नरेंद्र मित्तल, ये पांचों भी उतने ही कसूरवार हैं मेरे बेटे की हत्या में जितने ये लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने ही कट रच के उसकी शादी उससे किया। जबकि जब उनको, अगर मेरे पास कुछ ऐसा भी चीज़ें हैं या पुलिसों ने भी ढूंढी हैं कि जिनमें ये पता चलता है कि जैसे अभी ये आपने बताई उनकी शादी का, जब पेपर में आ रही है ये खबर तो कहीं ना कहीं तथ्य होगा ना। जब उसने शादी पहले ही कर ली थी तो फिर ये लड़की को हमारे यहाँ शादी कराने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब वो कहीं तो भी कुछ इंटेंशनली कर रहे थे, ये इसमें पता लगता है।
5: लेकिन पुलिस ने अभी तक उनको हिरासत में नहीं लिया, तो अपील क्या रहेगी पुलिस से?
6: अभी ये तो मैं, अपील तो ये रहेगी कि इनको भी दोषी बनाया जाए, ये उतने ही दोषी हैं। मगर मेरे पास चार्जशीट अभी तक हाथ में आई नहीं है, तो मुझे अभी तक उस पर पता नहीं कि उन्होंने क्या किया है।
5: देखिए, आपकी जो केस है केतन अग्रवाल की, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने वाली थी। तो उज्ज्वल निकम सर है, उनको भी ये केस सौंपने वाले थे ऐसा कहा जा रहा था। आपने एक लेटर भी मुख्यमंत्री जी को लिखा था, तो उसका कुछ जवाब आया है अभी तक?
6: माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मुलाकात लेके उनको एक एप्लीकेशन दिया था, जिसमें हमने मांग की थी कि हमारे को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलॉट किया जाए श्री उज्ज्वल निकम जी, और इस केस को फास्ट ट्रैक में चालू किया जाए। उन्होंने उसी समय उसको एक्सेप्ट किया था और उन पे उनको उन्होंने हमारे इस पे एग्री बोल के भी लिख के दिया था। मगर अभी तक ये 2-2.5 महीने निकल गए हैं, अभी तक मुझे उस बात की कोई भी पुष्टि हुई नहीं है कि माननीय उज्ज्वल निकम सर जी की उनके ऊपर कुछ ये नेमनुक हुई है, नहीं हुई है, या फास्ट ट्रैक का आगे काम कैसे हुआ, या उनको कोई पत्र आया है, ऐसी कोई भी पुष्टि मुझे तक नहीं मिली है।
7: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल। दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर मामले, ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी।

0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पद में पक्ष में प्रदर्शन किया गया। फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की। पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और ट्रंप ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की जताई इच्छा, लेकिन साथ में दी चेतावनी, अगर व्यवहार नहीं बदला तो जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूँ शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है, क्योंकि SC ST एक्ट लगने के बाद इस केस में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन सवाल वही है अपनी जगह कि क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या की थी।
2: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
3: भारतीय जनता पार्टी
2: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर, वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यही नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़े ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में ये भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
4: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
2: लेकिन तब तक तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
3: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
5: बोल रहे ना?
3: हम रिजाइन करने वाले हैं। जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
5: बोल रहे ना?
3: हम रिजाइन करने।
2: लेकिन आज फिर आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान एआई यूज करने की बात कही गई थी। अब आईआईटी बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद आईआईटी बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला आईआईटी बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
6: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स आईआईटी बी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, ये मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: वैसे राजनीतिक दलों की खासियत ये होती है कि वो राजनीति भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
7: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है, कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
8: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है।
0: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में आपको बता दें कि नया मामला सामने आया है, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में 5053 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस के मुताबिक चार्जशीट में लोहगढ़ से मिले फॉरेंसिक और तकनीकी सबूतों के साथ साथ आरोपियों की कथित साजिश और उनकी गतिविधियों से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी शामिल हैं। इस केस में अब तक सिया गोयल, चेतन चौधरी और रितेश हांगे के नाम सामने आ चुके हैं। पुलिस का दावा यह है कि केतन को लोहगढ़ ले जाने और उसकी हत्या की कथित साजिश में तीनों की भूमिका सामने आई है। साथ ही साथ ये भी खबरें हैं कि केतन ने सगाई कर ली थी केतन के साथ सिया ने, लेकिन चेतन के साथ वो पहले ही शादी कर चुकी थी मंदिर में।

0: पुणे के बेहद चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब चार्जशीट के साथ एक अहम मुकाम पर पहुंच गई है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने वडगांव मावल कोर्ट में 5053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लोहगढ़ किले को घटनास्थल के तौर पर रखते हुए फॉरेंसिक और टेक्निकल साक्ष्य को शामिल किया गया है। पुलिस ने 3 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए हैं। इन बयानों को मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन गवाहों ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को केतन अग्रवाल को धक्का देते हुए देखने की बात कही है।
1: जो तीसरा आरोपी है रितेश आंगेहा, जो मुख्य आरोपी है चेतन चौधरी, उसका दोस्त है, उसका कॉलेज का दोस्त है, और चेतन चौधरी और सिया गोयल का आपस में जो रिश्ता था या उनका जो भी ये प्लानिंग चल रही थी, तो पहले दिन से इसको पता थी, क्योंकि उन्होंने रितेश हांगे के साथ ये सारी घटनाक्रम अपने जीवन का और उसके साथ साथ वो क्या करना चाहते थे जो विक्टिम है उसके साथ, वो डिस्कस किया था।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि उनके बेटे केतन का कत्ल सिया और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने मिलकर किया है।
2: चार्जशीट दाखिल किया है बोल के पुलिस ने इंटीमेशन दिया है। मैंने सैटरडे को कोर्ट में माननीय न्यायालय में अर्ज किया है कि मुझे उसकी कॉपी मिले, तो मुझे शायद एक दो दिनों में वो नए कॉपी प्राप्त हो जाएगी। और न्याय जिस हिसाब से मेरे को पुलिस मुख्यालय या एसपी साहब और जो एसआईटी के लोग थे उन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है कि सिया, चेतन चौधरी और उनके साथीदारों ने मिलके मेरे बेटे का कत्ल किया है।
3: तो आपको लगता है कि उनकी शादी हुई थी?
2: मुझे भी ये कुछ पेपर में पढ़ के पता चला है, पर मुझे सत्य का अभी कोई ज्ञान नहीं है। जैसे ही मेरे पास कुछ चार्जशीट आती है, कुछ होता है, मुझे पता चलता है, तो मैं बताऊंगा आपको।
3: लेकिन अभी पुलिस से क्या गुहार है आपकी?
2: मुझे पुलिस से इतनी गुहार है कि वो इसमें जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उसको न्यायालय के सामने पेश करके और मेरे बेटे को न्याय दे।
0: इस मामले में चेतन चौधरी के दोस्त रितेश हांगे को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि रितेश को कथित साजिश की जानकारी थी और वो इस पूरे मामले में शामिल था। 5053 पन्नों की चार्जशीट में लोहगढ़ से मिले फॉरेंसिक और तकनीकी सबूत, 3 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, धारा 164 के तहत दर्ज बयान, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर, व्हाट्सएप और अन्य चैट्स, डिलीट किया गया डिजिटल डेटा, आरोपियों की तस्वीरें और मोबाइल डेटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आरोपियों की गतिविधियों का विश्लेषण, घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट। केतन अग्रवाल हत्याकांड में उनके पिता ने आरोप लगाया है कि सिया गोयल, चेतन चौधरी और सिया के घरवालों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी। ऐसी खबरें आ रही कि दिसंबर 2025 में सिया और उसका दोस्त चेतन चौधरी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में चुपचाप शादी कर चुके थे। हालांकि पुलिस को मंदिर से ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। जांच में दोनों की एक तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें सिया की मांग में सिंदूर और चेतन के गले में फूलों की माला दिखाई दे रही है। पुलिस ने इस तस्वीर को भी चार्जशीट में सबूत के तौर पर शामिल किया है।
4: तहकीकात के दरमियान पुलिस सिया के घर पहुंची, जहां सिया के बेडरूम में से उन्हें एक फोन मिला। ये फोन बरामद होने के बाद सबसे अहम सबूत थे वो सामने आए, क्योंकि फॉरेंसिक जांच हुई जिसमें ये पता चला कि इसी फोन से सिया ने गूगल हो या फिर यूट्यूब हो अलग अलग जगहों पे सर्च किया था, वीडियोस थे, लोहगढ़ के कुछ देखे थे और एग्जैक्टली स्पॉट पर रेकी करने से पहले किस तरीके से वहां जाना है, अंजाम कैसे देना है, इसका प्लानिंग के लिए जितना भी ऑनलाइन मटेरियल था वो इस पर सर्च किया था। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इसी फोन ने जब फॉरेंसिक डिटेल्स इसके सामने आई तो एक फोटो मिला, जिस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान दिसंबर महीने में जाने के बाद सिया और चेतन ये दोनों साथ में गए थे और वही इन दोनों के गले में सीधे तौर पर वरमाला दिखाई दे रही है।
0: पुलिस के मुताबिक 14 जून को लोहगढ़ से लौटने के बाद केतन के परिवार ने 18 जून को दोबारा लोहगढ़ जाने का विरोध किया था। इसके बाद आरोप है कि केतन को लोहगढ़ ले जाने के लिए माही नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। जांच के मुताबिक इस अकाउंट के जरिए केतन से चैट की गई और माही को सिया की दोस्त बताया गया। पुलिस का दावा है कि सिया का जन्मदिन सरप्राइज तरीके से मनाने के बहाने केतन को लोहगढ़ किले में बुलाया गया। इसके बाद उसे कथित तौर पर खाई में धक्का देकर मार दिया गया। अब सिया और चेतन चौधरी के कथित रिश्ते की टाइमलाइन समझिए। अक्टूबर 2025 में कथित तौर पर दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। दिसंबर 2025 में दोनों दोस्तों के साथ राजस्थान गए। 19 फरवरी 2026 को सिया और केतन की सगाई, जून 2026 में केतन की लोहगढ़ किले में हत्या हुई, नवंबर 2026 में केतन सिया की शादी प्रस्तावित थी।
4: तो सिया और चेतन, इन दोनों की लव स्टोरी तो अब तक पहुंच चुकी है, लेकिन अहम बात यह है कि चार्जशीट में जो जो बातें अब सामने आ रही है उससे और खुलासे होंगे। सबसे पहला यह है कि इस पूरे हत्या मामले में सिर्फ दो आरोपी नहीं है बल्कि तीन है, यानी कि इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का करार दिया जा सकता है, क्योंकि रितेश हांगे जो चेतन का बचपन का दोस्त है वो भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। पुलिस का यह कहना है कि सिर्फ सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं बल्कि वो क्राइम कमिट करते हुए ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्हें देखा है, चेतन और सिया वहीं पे मौजूद थे। तो जब ये 80 से 85 जितने भी लोग हैं जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं वो दर्ज हुए हैं, तीन उसमें से ऐसे अहम हैं जिन्होंने क्राइम करते हुए भी देखा है, तो ये जब कोर्ट में सामने आएंगे तो मामला और गंभीर हो जाएगा, क्योंकि ये तो साफ साफ पर दिखाई दे रहा है इट्स अ प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर।
5: कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ मुंबई में जेडब्ल्यू मैरियट मुंबई के एक नामी रेस्टोरेंट में पहुंचे थे खाना खाने के लिए, लेकिन खाना सामने आया और उनकी नजर टेबल पर घूम रहे एक कॉकरोच पर पड़ गई। उसके बाद उन्होंने उसका वीडियो बनाया और अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे को इसमें टैग कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, देखिए डिनर के लिए कौन अचानक से आ गया, रोची, एक छोटा कॉकरोच हमारी टेबल पर था और हम शनिवार रात जेडब्ल्यू मैरियट सहार मुंबई के रोमानो रेस्टोरेंट में हमारे साथ डिनर शेयर करना चाहता था। तुकाराम मुंडे जी इसकी भी जांच कराएं, जिसके बाद रेस्टोरेंट ने इस मामले पर माफी मांगी है। और खास बात यह है कि अगस्त में एफएसएसएआई ने दिल्ली के एरोसिटी में दो फाइव स्टार होटल्स जिनमें जेडब्ल्यू मैरियट भी शामिल था को नोटिस जारी किए थे। जांच में फूड सेफ्टी, साफ सफाई, स्टोरेज और लाइसेंसिंग से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन पाया गया था।
6: डॉक्टर अशोक सेठ जो कि एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के, वो शनिवार की शाम जेडब्ल्यू मैरियट सहार मुंबई पांच सितारा होटल है वहां पर डिनर के लिए आए थे रोमानोस रेस्टोरेंट में। रोमानोस रेस्टोरेंट जेडब्ल्यू मैरियट के अंदर है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं जेडब्ल्यू मैरियट के बाहर, और उनके टेबल पर एक कॉकरोच घूम रहा था। उन्होंने एक वीडियो बनाया और इसे ट्वीट किया और एक्स पर डालकर उन्होंने ये एक सार्केस्टिक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि एक कॉकरोच घूमता हुआ उनके डाइनिंग टेबल पर दिखाई दिया और उन्होंने अथॉरिटीज़ को होटल में बताया, पर फिर भी जो सीनियर अथॉरिटीज़ थे वो वहाँ पर आए नहीं, कोई जूनियर मैनेजर लेवल का बंदा आया और उसने कहा हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने इसको एक्स पर डाला। और तुकाराम मुंडे जो कि एफडीए कमिश्नर हैं, फूड एंड ड्रग सेफ्टी कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के, उन्हें टैग करते हुए ये पोस्ट लिखी कि यहाँ पर एक कॉकरोच दिखाई दिया है। डॉक्टर अशोक सेठ ने आगे ये भी शेयर किया कि जब वो बूफे एरिया में गए थे वहाँ पर भी कॉकरोच दिखा था, पर फिर भी जो सीनियर मैनेजर या कोई इंचार्ज व्यक्ति होटल का आता उन्हें एड्रेस करता, इन कंसर्न को एड्रेस करता, वैसा कोई व्यक्ति नहीं आया। और बॉन जॉय मैरियट ने उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा कि हम आपकी जो कंसर्न है उसमें देखेंगे और आपकी कंप्लेन हमें मिल गई है, इस पर हम ध्यान देंगे। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
5: और अब आप देखिए कि कैसे गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहा है। कहीं बप्पा पंचमुखी स्वरूप में नजर आ रहे हैं तो कहीं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के स्वरूप में गणेश जी पंडाल में विराजमान हैं।
0: बप्पा के भक्त मुंबई में ही नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। 26 साल के घाटकोपर के राजा अपने अलग अलग थीम के लिए मशहूर है। इस बार पशुपतिनाथ मंदिर की थीम की वजह से बप्पा का यह स्वरूप सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। इस पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं को पशुपतिनाथ मंदिर की पौराणिक कथाओं की जानकारी भी दी जा रही है। पशुपतिनाथ मंदिर जंगल के ईश्वर के नाम से भी मशहूर है, इसलिए बप्पा के आसपास कई जानवरों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं।
7: मुंबई में ही आप पशुपतिनाथ महाराज का दर्शन करिए, मेरे साथ तमाम श्रद्धालु भी इस समय मौजूद हैं और अब तस्वीरें सीधे गणपति बप्पा की तरफ मोड़ते हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जी हां, नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ महाराज को मुंबई के घाटकोपर इलाके में बसाया गया है। घाटकोपर का राजा के नाम से ये पंडाल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इस साल अपना 26वां साल मना रहा है पशुपतिनाथ महाराज यानी के जंगल के राजा, और पूरी की पूरी थीम जो है उस पर ही दी गई है। ऊपर से नीचे देखें बप्पा इस समय बहुत ज्यादा सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बारात इन्होंने जानवरों के साथ निकाली है वो देखने लायक बन रही है। और देखिए हर जगह जो जानवरों की तस्वीरें जो जंगलों में रहते हैं यहाँ पर लगा रखी है। और पशुपतिनाथ महाराज की क्या खासियत है क्या डिटेल है वो भी पोस्टर के जरिए यहाँ पर लोगों ने बना रखा है। खास बात ये है कि लोग जो हैं बकायदा जाते हैं और दर्शन करते हैं, इन्हें मौका मिलता है गणपति बप्पा के चरणों को छूने का।
0: मुंबई के परेल इलाके में विद्यार्थी सेवा मंडल इस साल अपना 68वां महोत्सव मना रहा है। श्रद्धालु इस पंडाल के गणपति बप्पा को परेल का विघ्नहर्ता धरती गली नाम से भी बुलाते हैं। इस साल गणेश जी की थीम भव्य दिव्य पंचमुखी हनुमान जी की है। यही वजह है कि 33 फीट ऊंचे बप्पा का दर्शन करने हजारों श्रद्धालु मुंबई के कोने कोने से आ रहे हैं। यहाँ आने वाले गणेश भक्तों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है।
7: मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के परेल इलाके में विद्यार्थी सेवा मंडल में, और यहाँ के गणेश जी के दरबार में आप देखिए किस तरीके से उनकी एक विशाल प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बेहद ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, और जब इनका आगमन हुआ था तो एक बड़ी संख्या में आसपास के जितने भी लोग हैं सेवादार हैं और जो भी गणपति बप्पा को बहुत ज्यादा मानते हैं उन्हें प्यार करते हैं वो लोग मौजूद हो गए थे। एक भव्य सीरत भव्य सूरत बहुत ही ज्यादा विशाल का इस समय गणपति बप्पा यहाँ पर देखे जा रहे हैं। विद्यार्थी सेवा मंडल है और उन्हीं से संबंधित आसपास की भी थीम है, क्या कुछ खास अपडेट है ये भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा तस्वीरों और दृश्यों में देख करके ये चीजें पता चल रही है कहीं ना कहीं श्री राम की लीला यहाँ पर दिखाई जाने वाली है। बप्पा तक हर कोई उनके चरणों तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए पास में ही एक छोटे बप्पा को भी यहाँ पे विराजमान कर दिया जाता है। यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं गणेश भक्त हैं वो यहाँ आकर के उनके चरणों का दर्शन करते हैं और अपनी बातें रखते हैं। ये वो इलाका है जहां पर लालबाग के राजा, चिंचपोकली के राजा, चिंतामणि, तेजुका राय, गणेश गली, परेल का राजा महाराजा, विघ्नहर्ता लंबोदर, तमाम बड़े बड़े पंडाल जिन्होंने पीएमसी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है।
0: पुणे में 7वें दिन गणपति बप्पा का भव्य विसर्जन किया गया। गणपति बप्पा की भक्ति में रंगे विदेशी मेहमानों ने भी डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आकर जय घोष करते हुए दिखाई दिए। हर साल की तरह इस साल भी गणेश भक्तों ने ढोल ताशों की गूंज और डीजे की धुन पर जमकर जश्न मनाते हुए बप्पा को विदाई दी। इधर जालना में गणेशोत्सव के मौके पर चमनचा राजा गणपति मंडल भी चर्चा में है, क्योंकि इस बार इस पंडाल ने राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर की प्रकृति बनाई है। चमनचा राजा गणपति मंडल अपना 35वां उत्सव मना रहा है। यहाँ हर साल अलग अलग धार्मिक स्थलों का स्वरूप बनाने की परंपरा है। आयोजक कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु राजस्थान नहीं जा पाते वो जालना में ही खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं।
5: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: गणेश उत्सव के बीच शाहरुख खान परिवार के साथ लालबाग चौराजा के दर्शनों के लिए पहुंचे थे और शाहरुख खान पत्नी गौरी और बेटी सुहाना के साथ बप्पा के दर्शनों के लिए पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजन किया। इसके लिए उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफें हो रही हैं। शाहरुख खान की पूजा करते हुए तस्वीरें और सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो वायरल है। शाहरुख खान ने गणेश जी के चरणों में फूल भी चढ़ाए, फिर गौरी के साथ बप्पा की आरती में भी वो शामिल हुए। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करी।
3: जो ये झूठ की गुंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मन शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से होगा जो साथ है, माया पर भी तंज। नाबालिग से छेड़छाड़ के केस में तीन आरोपी गिरफ्तार, जमुई केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन, मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नजर। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन पद से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन। मुंबई में आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम का कैंपस मार्च, डीन पद से निलंबित किए गए प्रोफेसर सूर्य नारायण डूला के समर्थन में उतराए शिक्षक, तो पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। आईआईटी बॉम्बे में हॉस्टल के कमरों में से हटाए जा रहे हैं सीलिंग फैन, छात्र आत्महत्याओं के बाद उठाए गए कदम का प्रशासन की सफाई, कहा यह सामान्य रिनोवेशन का हिस्सा है। आईआईटी बॉम्बे में अब सीलिंग फैन की जगह लगाए जा रहे हैं वॉल माउंटेड फैन, एनसीपीएससी ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। यवतमाल में आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल के चाचा की सीबीआई जांच की मांग, पूछा परीक्षा हॉल में क्या हो रहा था और आत्महत्या के पीछे की वजह क्या रही। जातिगत उत्पीड़न और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे, परिवार ने पूछा अब तक जान गंवाने वाले सभी छात्र एससी एसटी समुदाय से ही क्यों हैं। सत्य निकेता मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी महेश गुप्ता और उनके माता पिता को साथ ही अन्य सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन और बढ़ाया। सोनम वांगचुक्पा का देशवासियों से लद्दाख के समर्थन में आने का आह्वान, 23 सितंबर को लेह और ऐतिहासिक शांतिपूर्ण पदयात्रा की मार्च। पिछले साल हुई गोलीबारी में जान गंवाने वालों की याद में सर्वधर्म प्रार्थना, 24 सितंबर को एलबीए करेगी आयोजन, वांगचुक ने की लोगों से जुड़ने की अपील। जेडब्ल्यू मैरियट में डिनर टेबल पर मिला कॉकरोच, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ ने एफडीए कमिश्नर को टैग किया। एमपीएससी परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर समिति की छात्रों से बैठक, परीक्षा व्यवस्था की कमियों में सुधार और मांगों पर सुझाव मांगे। एमपीएससी सुधार समिति करेगी यूपीएससी और दूसरे राज्यों की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन, 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। नागपुर में शहनवाज हुसैन ने अंसारी से मांगी माफी की मांग, बोले सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है देश। हामिद अंसारी के बयान पर शहनवाज हुसैन का पलटवार, बोले टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, मुस्लिम समुदाय के कई लोग आहत हुए। चेतन अग्रवाल हत्याकांड में पिता विशाल अग्रवाल का बड़ा आरोप, सिया और चेतन समेत कई लोगों पर साजिश का दावा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। मेरठ में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, बोले समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीएसपी ने परिवारवाद की बीमारी दी। सीएम योगी बोले नया भारत विरासत पर गर्व करता है, विकास की रफ्तार बढ़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में पहुंची। अखिलेश यादव की 27,000 वोट वाले बयान पर शहनवाज हुसैन का पलटवार, बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो। शहनवाज हुसैन का दावा यूपी में बीजेपी सरकार की वापसी होगी, बोले योगी के नेतृत्व में विकास और कानून व्यवस्था बेहतर। आसनसोल में अन्नपूर्णा योजना का पैसा नहीं मिलने पर महिलाओं का प्रदर्शन, सड़कों को जाम करके राशि की मांग की। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। बांकुरा में पुलिस ने 275 किलो गांजे को बरामद किया, एक गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। हैदराबाद में 10 रुपए के विवाद में ऑटो ड्राइवर को उतारा गया मौत के घाट, इलाज के दौरान दम तोड़ा। ग्वालियर में कोचिंग जा रही छात्रा को बाइक से रोका, छेड़छाड़ के बाद मारपीट, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। सहारनपुर में एटीएम कार्ड बदलने वाला छात्र गिरफ्तार, एटीएम से छेड़छाड़ करके मदद के बहाने एटीएम बदलकर करता था खेल, कई जिलों से 10 से ज्यादा केस दर्ज। महाराष्ट्र के शाहपुर में कोठारे घाट में एसटी बस का भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने की आशंका, 14 यात्री घायल हुए, 5 की हालत गंभीर है। लखनऊ होमगार्ड भर्ती में अभ्यर्थी की मौत का चौंकाने वाला खुलासा, गले में पानी की बोतल फंसने से दम घुटने के बाद 12 जगहों पर चोट के निशान। बीड़ के अंबा जोगाई में बंद मकान में ताला तोड़कर करीब 25 लाख रुपए के गहने और नकदी को पार किया गया, इलाके में दहशत। गोहाना में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, कोर्ट से लौट रहे स्कॉर्पियो सवारों पर हमला, बुलेट प्रूफ गाड़ी ने बचाई 4 की जान। लखीमपुर में प्रेमी ने स्कूल में घुसकर बच्चों के सामने प्रेमिका टीचर को गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, बच्चों में हड़कंप मचा। सहारनपुर में महिला अस्पताल में 12 घंटे पहले बच्चा जन्मा, चोरी किया गया, टीका लगवाने के बहाने महिला बच्चे को लेकर गई थी और फरार हो गई। पाली में बेकाबू ट्रेलर ने डिवाइडर तोड़ा, खेत में जा घुसा, सीसीटीवी में कैद हुआ, खौफनाक हादसा, बड़ा हादसा टला। नागपुर में अस्पताल के सामने रोड डिवाइडर से टकराया था ट्रक, 1 की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इंदौर में तेज डीजे बजाना भारी पड़ गया, पुलिस की कार्रवाई, 6 डीजे संचालकों पर एफआईआर, करीब 15 लाख का सामान भी जब्त।
इंदौर में अचानक से धस गई थी सड़क, बना 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा, निगम ने गड्ढे को किया स्थायी बंद, सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल। तरंग शक्ति 2026 की वापसी, जोधपुर बनेगा एयर वॉरफेयर का केंद्र। भारतीय वायुसेना करेगी मेगा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा साझा युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति 2026 के ग्लोबल एयर फोर्सेस की होगी बड़ी भागीदारी, दुनिया के अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाएंगे ताकत। औली में भारत अमेरिका नौसैनिकों ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास, जंगल से इंडोर फायरिंग रेंज तक बढ़ाया तालमेल। औली की खड़ी चट्टानों पर भारत अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त रैपलिंग अभ्यास, पहाड़ी युद्ध कौशल को किया गया मजबूत। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, पोखरण के ड्रोन का सफल परीक्षण, 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुना, समाधान का आश्वासन दिया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे एडिशन का सीएम योगी ने ऐलान किया, 25 से 29 सितंबर तक नोएडा के इंडिया एक्सपो केंद्र में आयोजन। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी देने की पहल तेज हुई, नौशेरा में रोड बनाने के साथ ही पुलों को जोड़ा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के बाद रौनक लौटी है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। गणेशोत्सव का आज 9वां दिन, देश भर में विधि विधान के साथ गजानन की आराधना जारी। देश के कई पूजा पंडालों में गजानन की प्रतिमा की हुई विदाई, लोगों ने भक्तिभाव और अगले बरस जल्दी आने की गुहार के बीच किया विसर्जन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव में दिखा बप्पा का अनोखा पंडाल, गणपति अलग अलग रूपों में दे रहे हैं जल बचाने और पर्यावरण को रक्षा करने के संदेश। जालना में गणेशोत्सव के मौके पर चमनचा राजा गणपति मंडल ने बनाया है खाटू श्याम बाबा का भव्य दृश्य। मिलाई में धूमधाम से हुआ भगवान गणेश का विवाह, रिद्धि सिद्धि संग वैदिक रीति रिवाज के साथ रचाई गई शादी, निकाली गई भव्य बारात। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां और पंडालों के अनोखे प्रयोग, अंजीर मखाने से बनाई गई 7 फीट की ऊंची प्रतिमा। चंद्रपुर के गणपति पंडाल में अनोखा प्रयोग, सुग्रीव की गुफा में राम रूपी गजानन के हो रहे हैं दर्शन। मुंबई में शिवडीचा राजा का भव्य अवतार, अंडर वाटर द्वारिका की अद्भुत थीम, गणपति पंडाल की शानदार सजावट। शिवडीचा राजा की गणपति पंडाल ने 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लालबागचा राजा के दरबार में हाजिर लगाई, पत्नी ऋतिका सहजेत के साथ बप्पा के दर्शन किए। मुंबई में विशेष रेल 23 से 26 सितंबर तक रात में चलाने का फैसला, गणपति विसर्जन के बाद लौटने वालों की सुविधाओं के लिए किया गया फैसला। सूरत में समुद्र के बीच टापू पर विराजमान हुए अनोखे गणपति बप्पा, दर्शनों के लिए भक्त तय करते हैं 2 किलोमीटर का मुश्किल सफर। मुंबई के घाटकोपर में नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर सजाया बप्पा का पंडाल, घाटकोपर के राजा के नाम से जाना जाता है यह पंडाल। जंगल की थीम पर तैयार किया गया बप्पा का पंडाल, मुख्य प्रतिमा के साथ अन्य जानवरों की प्रतिमाएं भी सजाई गई हैं। मुंबई के गिरिगांव में भी सजा बप्पा के अद्भुत दरबार, यहां स्थापित विघ्नहर्ता की अद्भुत प्रतिमा लोगों को लुभाती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दुर्गा रूप में हो रहे बप्पा के दिव्य दर्शन, राक्षसों का संहार कर बुराई मिटाने का दे रहे हैं संदेश। फिल्म हनुमान अंश की शानदार कमाई, 45 से लगभग 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन। फिल्म हनुमान अंश ने 45वें दिन तक भारत में लगभग 272 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली, दुनिया भर में लगभग 330 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन। मेरी छोटे बजट की फिल्म हनुमान अंश लगभग 2 करोड़ रुपए का बजट था। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु स्टारर मिर्जापुर ने भारत में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा पार किया, 4 सितंबर को रिलीज हुई थी फिल्म। रश्मिका मंदाना का नजर आया एक्शन अवतार मसा का टीजर, देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हुए। 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर्स के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी होगा, करीब 27.5 करोड़ ग्राहकों को प्रक्रिया को पूरा करना होगा। एमडीआर के बाद मध्य प्रदेश में कारोबारी 23 सितंबर को नो यूपीआई डे की तैयारी में, पेट्रोल पंप संचालकों ने भी एमडीआर को लेकर 16 अक्टूबर से यूपीआई भुगतान बंद करने को कहा। गोल्ड लोन की मांग से 80 से 85% तक बढ़ोतरी का अनुमान है, युवा भी सोना गिरवी रखकर जरूरत का पैसा जुटा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 2026 की पहली छमाही में रिटेल शॉप्स की लीजिंग 78% बढ़ी, मॉल में जगह लेने की मांग दोगुनी हुई, जिसमें फैशन, खाने पीने और बड़े स्टोर्स प्रमुख थे। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल से पहले एसबीआई ने ग्राहकों को जरूरी काम निपटाने की सलाह दी है, शाखाओं के साथ कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। एनएलबी सर्विसेज के मुताबिक जुलाई 2026 में 2 से 2.5 लाख मौसमी और गिग नौकरियां बनने का अनुमान है, त्योहारी हायरिंग 15 से 20% बढ़ने का भरोसा। एक साल के बाद जीएसटी दरों में बदलाव का असर कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर कम हुआ है,
कमोडिटी कीमतें बढ़ने से फूड, कंज्यूमर गुड्स और गाड़ियों की कीमतों में फिर से बदलाव आया। अप्रैल से अगस्त 2026 तक के 11 महीनों में ऑटो रिटेल बिक्री करीब 20% से बढ़कर 2.9 करोड़ यूनिट्स पर पहुंच गई। कई वाहनों की बिक्री 22% और दोपहिया वाहनों की बिक्री 20% बढ़ी। एक सर्वे के मुताबिक 69% कंपनियों ने टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हायरिंग 30% से ज्यादा बढ़ने की बात कही है। छोटे शहरों में रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद। प्रोटीन की बढ़ती हुई डिमांड के बीच कैफे और F&B कंपनियां नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्रोटीन बाजार 2031 तक 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। एशियन गेम 2026 का आज तीसरा दिन है। पहले ही दिन भारत के हिस्से में आए थे 2 मेडल, आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत को एशियन गेम 2026 में तीसरा मेडल हुआ है हासिल। मेंस 10 मीटर एयर राइफल से मिला सिल्वर। मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मिला है मेडल। 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में सुचिका तरियाल ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाका। हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत का 10वां स्थान। अब तक भारत के खाते में 6 मेडल्स। मॉस्को पर ड्रोन अटैक के बाद रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। जापोरिजिया में रिहायशी इमारत, यूनिवर्सिटी और एक शॉपिंग मॉल को बनाया गया निशाना। मिसाइल हमले में लगी थी भीषण आग, 5 लोग घायल। रूस ने यूरोप में हमले की अफवाहों को खारिज किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा फ्रांस और यूरोप को रूस से कोई खतरा नहीं। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान जाएंगे अमेरिका। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेंगे। अमेरिका ने पेजिश्कियान और विदेश मंत्री अगार्ची समेत कई ईरानी प्रतिनिधिमंडल को वीजा देने की मंजूरी दी। ईरान में तेहरान स्थित फ्रांसीसी भाषा केंद्र को किया गया सील। केंद्र पर लाइसेंस न होने और अवैध गतिविधियों का आरोप है। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में पाकिस्तान की स्ट्राइक। तालिबान सरकार ने कहा स्ट्राइक में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, हमले का जवाब देंगे। पाकिस्तान का दावा 28 आतंकवादी मारे गए। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा शी की अमेरिकी यात्रा से तय होगी रणनीतिक दिशा। 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे शी जिनपिंग। व्हाइट हाउस में एंट्री बैन पर भड़के सीएनएन और पॉलिटिको। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दायर किया है मुकदमा। ट्रंप प्रशासन ने पत्रकारों को व्हाइट हाउस में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया था। दक्षिण कोरिया के बॉर्डर के पास डीएमजी में ब्लास्ट हुआ। हमले में 3 सैन्य अधिकारी जख्मी हुए। धमाका काफी सुरक्षा वाले इलाके में हुआ जहां लैंडमाइंस लगे थे। चीन में फोशान शहर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर। एक घायल हुआ। हमले के बाद उठा काले धुएं का गुबार। स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेस ने एआई कंपनियों की आलोचना की। कहा एआई इंडस्ट्री खुद को रेगुलेट नहीं कर सकती। नौकरी जाने और गलत खबरों को रोकने के लिए सरकार का नियंत्रण जरूरी है।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। आईआईटी बॉम्बे के 22 साल के छात्र साहिल वाकोड़े की आत्महत्या ने आज पूरे देश को झकझोर दिया है। एक तरफ आरोप है कि परीक्षा में चैट जीपीटी से नकल करते पकड़े जाने के बाद एक साल के सस्पेंशन और हॉस्टल से निकाले जाने के डर ने साहिल की जान ले ली, तो दूसरी तरफ साहिल के माता पिता का संगीन आरोप है कि प्रोफेसर द्वारा पिछले 3 महीनों से उसका जातिगत उत्पीड़न किया जा रहा था। मामले में बीएनएस की धारा 108 और SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि IIT के छात्र ने जान क्यों दे दी।
1: टॉर्चर करके, जातिवाद करके उसको आत्महत्या करने को ये करा, उन्होंने क्या करे वो उसकी चौकसी होने को ना।
0: आज आपको एक और गंभीर समस्या के बारे में बताएंगे। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे के कैंपस में सितंबर 2021 से अब तक 6 छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले इस साल यानी साल 2026 में 3 छात्रों ने खुदकुशी की है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 दशकों में देशभर की सभी IITs में 171 से ज्यादा छात्रों की अप्राकृतिक मौत हुई। आखिर क्यों ये होनहार बच्चे पढ़ाई, ग्रेड, सामाजिक दबाव के आगे खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? इसके बाद आपको हूती और सऊदी अरब की जंग में ट्रंप के रहस्यमय रुख के बारे में बताएंगे। सऊदी अरब भी सोच में है कि ये दोस्ती है या दगाबाजी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक फोन पर, जो ट्रंप हूती विद्रोहियों पर एयरस्ट्राइक के आदेश पेंटागन को दे चुके थे, महज 2 दिन के अंदर वही ट्रंप फिर से पलट गए हैं, पीछे हट गए हैं। एक तरफ लाल सागर का लालच, दूसरी तरफ ईरान युद्ध में फंसा अमेरिका। आखिर क्यों ट्रंप के लिए हूती सगा हो गया और सऊदी को दगा मिल गया? इसके बाद आपको बताएंगे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध इतना भीषण कैसे हो गया है। पहले यूक्रेन ने मॉस्को की ओर 1600 से ज्यादा ड्रोन दागकर सीधे पुतिन के किले को दहलाने की कोशिश की। सिर्फ 24 घंटे के भीतर रशिया ने 9 बड़े शहरों को मिसाइलों से छलनी कर दिया। रिहायशी इलाके हो या शॉपिंग मॉल, हर तरफ सिर्फ आग, चीख पुकार और तबाही का मंजर है।

और इसके बाद आपको फतेहाल पाकिस्तान की नई चाल दिखाएंगे। भयंकर नाकामी, बेकाबू महंगाई, देश में पनपते गृह युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुबह 4 बजे अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों पर बम बरसाए। और दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी 3 बहनों की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 3 बहनों को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया है। इसके बाद आपको जमुई से आई वो तस्वीर दिखाएंगे जिसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। अपने दोस्त के साथ जा रही एक नाबालिग लड़की को सड़क पर सरेआम 6 से 7 मनचलों ने घेर लिया। उससे बदसलूकी की गई, बेआबरू करने की कोशिश की गई, अश्लील हरकत की गई। हम आपको ये पूरा वीडियो जो है वो मॉर्फ करके दिखा रहे हैं, लेकिन क्या क्या इस लड़की के साथ किया गया है बताना मुश्किल है। हैवानियत का सारा रिकॉर्ड कर दिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया इसको। मतलब एक शख्स वहां वीडियो भी बना रहा था, दहला देने वाला वीडियो है जिसे बिना ब्लर किए दिखाना तक संभव नहीं है।

0: अपनी तीखी बयानबाजी के लिए पहचाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान काफी चर्चाओं में है, जिसमें वो मंच से पतियों को खास सलाह देते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के फुल्के अंदाज में कुछ ऐसा कहा है जिस पर पूरी सभा में तालियां बजने लगी। लोग इसे उनका लव गुरु वाला अंदाज बता रहे हैं। देखिए,
1: सुबह में, दोपहर में और रात में सोने से पहले अपनी बीवी को एक जुमला जरूर बोलना, आंख में आंख डाल के, आई लव यू माई डियर।
0: छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब कफ सिरप की बॉटल्स पर लाल रंग में स्पष्ट चेतावनी छपेगी कि यह दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दी जाए। गलत इस्तेमाल और लापरवाही रोकने के लिए लेबल पर लाल चेतावनी के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की तस्वीर छापने का भी प्रस्ताव है। अगली खबर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा होकर आम लोगों को पर्चे बांट रहा हो, बिना किसी लाव लश्कर, कोई वीआईपी कल्चर के और हैवी सिक्योरिटी के बिना। जापान से आई एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा एक रेलवे स्टेशन पर आम लोगों को पर्चे बांटते हुए दिखे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब हम IIT की बात करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक संस्थान की तस्वीर नहीं आती, हमारे सामने आते हैं लाखों सपने। वो सपने जिन्हें लेकर देश के छोटे छोटे शहरों से बच्चे निकलते हैं, वो सपने जिनके लिए कोई बच्चा सालों तक दिन रात पढ़ता है, खाना पीना भूल कर पढ़ता है, सोना तक भूल जाता है, वो सपने जिनके लिए माता पिता अपनी जरूरतें रोक देते हैं, मन मार लेते हैं ताकि पैसा बचाया जाए, बच्चे की पढ़ाई पर खर्च होगा, IIT जब जाएगा, और वो सपने जिनमें एक दिन उनका बेटा या बेटी IIT में पढ़कर देश और दुनिया में उनका नाम रोशन करता है। IIT सिर्फ एक संस्थान नहीं है, लोगों के लिए गर्व की बात है, परिवारों के लिए सर ऊंचा करने की बात है। किसी बाप की नाक है तो किसी मां के लिए खुशियों के आंसू है। IIT से निकले छात्रों ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। हर माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा एक बार IIT में पहुंच जाए फिर तो बस, और अगर IIT में हो गया एडमिशन तो फिर उस पिता को देखिए चाल ही बदल जाती है। उस मां के चेहरे के हाव भाव को देखिए, आंसू रुकते नहीं है खुशी के, हर किसी को बताती चलती है। यही लगता है सबको कि कुछ ना कुछ हमारा बेटा नया करेगा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएगा, नई तकनीक विकसित करेगा, किसी ने नई दवा पर काम किया, किसी ने प्रदूषण कम करने के तरीके खोजे, किसी ने ट्रैफिक की समस्या सुलझाने की कोशिश की, किसी ने ऐसी कंपनी खड़ा कर दी जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और IIT जैसे संस्थानों की ये वो कहानियां हैं जो हम आपको बार बार दिखाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमें IIT में छात्रों की आत्महत्या पर आपसे बात करनी पड़ रही है। आज हम उन बच्चों की बात करने आए हैं जो IIT में पढ़ते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, और इसी कहानी के बीच एक नाम आता है, साहिल वाकोडे का। सोचिए, 22 साल की उम्र, जिस उम्र में जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, उस उम्र में साहिल के हिस्से में जिंदगी के सपनों की जगह मौत आ गई। वो मुंबई आया था अपने सपनों के साथ और उसके माता पिता ने उसे IIT भेजा था इस भरोसे के साथ कि उनका बेटा वहां पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन उनके सारे सपने एक झटके में खत्म हो गए। साहिल के मामले में क्या हुआ, इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर दोनों तरह से अलग अलग ढंग से जाति का रंग दिया जा रहा है, अलग एक विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन इस घटना के कारणों को लेकर जितने भी अलग अलग राय हो, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक तथ्य ऐसा है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो तथ्य यह है कि इस घटना में एक 22 साल के छात्र की जान चली गई और उसके साथ सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं हुई, उसकी मौत के साथ कई छात्रों के अंदर ऐसा ज्वार फूटा जो इन तस्वीरों में दिख रहा है। हम चाहते हैं कि आप भी एक बार इन तस्वीरों को देखें और इन आंसुओं से समझें कि साहिल वाकोडे की आत्महत्या ने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले छात्रों, उनके माता पिता को कितना बदहवास कर दिया है। देखिए,
2: We got it!

0: స్టేషన్ లో అయ్యా, పోలీస్ స్టేషన్
1: లో.
2: ये एक ऐसी खबर है जिस पर ज्यादातर लोगों की एक राय या सहमति नहीं है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जब पूरा समाज, पूरा सोशल मीडिया इस खबर को लेकर बटा हुआ है, तब इस खबर का एक एक पहलू, हर बात, पूरी सच्चाई आपके सामने हम रखें और आपको निष्पक्ष रूप से ये बताएं कि आखिर साहिल बोकाडे, जो वाकोडे हैं, साहिल वाकोडे की आत्महत्या का ये पूरा मामला क्या है, इसमें साहिल वाकोडे के परिवार, प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या पक्ष है, और इसमें IIT बॉम्बे क्या कह रहा है, ये पूरी घटना देखिए सिलसिलेवार ढंग से समझिए। 18 सितंबर की है जब IIT बॉम्बे में मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी, और उसी दिन परीक्षा के बाद शाम को 22 साल के साहिल वाकोडे ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की खबर आई तो IIT बॉम्बे ने एक बयान जारी किया और उसमें यह बताया गया कि परीक्षा के दौरान साहिल वाकोडे को प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने नकल करते हुए पकड़ा था, और IIT बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने अपना क्वेश्चन पेपर मोबाइल फोन से ChatGPT पर अपलोड किया था। इसके बाद ChatGPT की मदद से परीक्षा में आए सवालों के सही जवाब जानने की कोशिश की थी। जब ये सब कुछ हुआ तब उस दौरान प्रोफेसर सूर्य नारायण दिल्ला क्लासरूम में मौजूद थे, और कारण ये था कि उन्हें इस परीक्षा का इन्विजिलेटर बनाया गया था। इन्विजिलेटर का मतलब टीचर जो परीक्षा के दौरान ये ध्यान रखता है कि छात्र नकल ना करे। अब दावा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान प्रोफेसर सूर्य नारायण दिल्ला ने साहिल वाकोडे को फोन चलाते हुए पकड़ा था, और इसके बाद वो उसे वहां से बाहर ले गए थे। IIT बॉम्बे का यह भी कहना है कि इसके बाद इस छात्र को HOD के यानी विभाग के जो प्रमुख टीचर हैं उनके सामने भी पेश किया गया, और इसी के बाद शाम को साहिल ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। दो बड़े आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि जब साहिल को नकल करते हुए पकड़ा गया था तब उसे नियमों के तहत 1 साल के निलंबन और हॉस्टल खाली करने की धमकी दी गई, और अगर ऐसा हो जाता तो साहिल का कोर्स 4 साल से बढ़कर 5 साल का हो जाता, और दावा है किसी डर से उसने अपनी जान दे दी। दूसरा आरोप साहिल के माता पिता ने लगाया, और ये वही आरोप है जिससे इस मामले में जाति सूचक अपमान का मुद्दा उठा है। साहिल के माता पिता का दावा है, उनका ये आरोप है कि प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला पिछले 3 महीनों से उनके बेटे के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, और ऐसा नहीं था कि प्रोफेसर दुल्ला सिर्फ साहिल की परीक्षा के इन्विजिलेटर थे। तथ्य बताते हैं कि प्रोफेसर दुल्ला जो हैं वो साहिल को अच्छी तरह जानते थे, और इसके पीछे एक कारण यही था कि साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग का सेकेंड ईयर का छात्र था, और प्रोफेसर साहब जो है वो इसी विभाग में फैकल्टी मेंबर थे। इसके अलावा 18 सितंबर को जिस सब्जेक्ट का एग्जाम था और जिस एग्जाम में साहिल को नकल करते हुए पकड़ने का दावा किया गया, उस सब्जेक्ट के कोर्स इंस्ट्रक्टर भी प्रोफेसर सूर्य नारायण ही थे, और इसी आधार पर साहिल के माता पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे को दलित होने के कारण पिछले 3 महीनों से लगातार परेशान किया जा रहा था, और प्रोफेसर दुल्ला इससे पहले भी कई बार उनके बेटे के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। परिवार का क्या आरोप है, उनका क्या कहना है, सुनिए।
3: उन्होंने टॉर्चर करके, जातिवाद करके उसको आत्महत्या करने को ये करा, उन्होंने क्या करे वो उसकी चौकसी होने को ना, और इसके लिए सरकार को मेरी गुजारिश है, उनको मेरे बच्चे के जैसा न्याय मिलने को ना, उनको टर्मिनेट करने को ना, यही मेरी गुजारिश है, उनको जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त करने की मैं गुजारिश करता हूँ, यही मेरी विनती है सर।
4: नहीं लगता, छोटा बच्चा है, उनको सुसाइड बहुत दूर की बात है, वो टैलेंटेड बंदा था, लगता नहीं वो बच्चा सुसाइड करता होगा। बचपन से उनके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन है ये, उनके सामने एक बड़ा ध्येय था, अब्दुल कलाम जी सर जैसा आदर्श सामने रखते।

0: वाला वो बच्चा था, वो कैसा सुसाइड कर सकता है?
1: इसकी वजह है सर, इसकी ये वजह है कि आज तक जिन बच्चों ने सुसाइड किया है वो बच्चे SC ST के ही है, अदर कास्ट के नहीं है। अगर वो अदर कास्ट के होते तो हम ये एक्ट लगाते ही नहीं। हमारे बच्चों पर ही क्यों अन्याय होता जा रहा है? हमारे बच्चे इस देश का भविष्य नहीं है क्या?
2: जब साहिल सुसाइड करने के बाद में हमें पता चला कि वो मोबाइल यूज कर रहा था, तो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में क्या चल रहा था? एग्जामिनेशन लेने वाले क्या कर रहे थे? कौन सा ऐसा बच्चा है? 10वीं का बच्चा थोड़ी है, IIT का बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो खुद मोबाइल लेके जाएगा वो? ये कैसे बात है, समझ में नहीं आ रही है, पूरे फैमिली को समझ में नहीं आ रही है।
3: अब अगर आप इस मामले को एक टाइमलाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दो बातें पता चलेंगी। पहली बात तो यही है कि प्रोफेसर दुल्ला ने जब साहिल को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा तब यह मामला जातिगत भेदभाव का था नहीं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों या उस वक्त परीक्षा में मौजूद रहे किसी भी छात्र ने यह नहीं कहा कि साहिल ने जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या की। प्रदर्शनकारी छात्र यही कह रहे हैं कि साहिल को 1 साल के सस्पेंशन और हॉस्टल खाली करने की धमकी दी गई थी, जिससे वो मानसिक दबाव में चला गया और उसने अपनी जान दे दी। जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप शक के आधार पर लगाया जा रहा है और ये शक भी साहिल के माता पिता ने जताया है। उनका कहना है कि जब प्रोफेसर सूर्यनारायण दिल्ला पिछले 3 महीनों से उनके बेटे के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब संभव है कि 18 सितंबर को भी उन्होंने साहिल के साथ ऐसा ही किया। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद सामने आएगी। इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि साहिल को जिस तरह नकल करते हुए पकड़ा गया उस मामले में 1 साल के सस्पेंशन का हॉस्टल खाली करने की धमकी काफी हद तक सही भी हो सकती है और संभव है किसी के कारण साहिल मानसिक दबाव में आया, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे इतना बड़ा फैसला नहीं लेता, वो भी अपनी जिंदगी को खत्म करने का। तो IIT बॉम्बे ने जुलाई 2026 में परीक्षा से जुड़े नियमों का एक दस्तावेज जारी किया था और इसमें कहा है कि परीक्षा में अगर नकल और बिना अनुमति वाले सामान या उपकरण इस्तेमाल करने की सजा जो है वो तय कर दी गई है। इसमें लिखा था कि परीक्षा में मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, AI चश्मे, नकल की पर्ची, किताब, दूसरी चीजें लाने पर छात्रों को FR2 ग्रेड में रखा जाएगा और यहां FR2 ग्रेड का मतलब कम से कम 1 सेमेस्टर का सस्पेंशन और इस दौरान हॉस्टल को खाली करके वापस जाना था। इस आधार पर जिस तरह साहिल ने नकल के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया उसमें यह सस्पेंशन नियमों के मुताबिक उस पर लागू हो सकता था और यही वजह है कि ज्यादातर छात्र आरोप लगा रहे हैं कि साहिल को नकल करते हुए पकड़ने के बाद यही चेतावनी दी गई और इसी वजह से उसने डर के कारण आत्महत्या कर ली। हालांकि यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहिल के साथ जातिगत भेदभाव हुआ था या नहीं हुआ था, यह परिवार का आरोप है और कॉलेज इससे इनकार कर रहा है, लेकिन परिवार का कहना है कि यह जातिगत भेदभाव किस किया जा रहा था, जबकि IIT बॉम्बे इनकार कर रहा है। हमें लगता है कि इस मामले में आपको जांच में सच सामने आने का इंतजार करना चाहिए। अभी मुंबई पुलिस ने साहिल के पिता को की शिकायत के आधार पर प्रोफेसर सूर्य नारायण दिल्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन पर मुख्य रूप से 2 धाराएं लगाई गई है। पहली है भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। दूसरी धाराएं SC ST एक्ट के तहत लगाई गई हैं, यानी इस मामले में प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ जातिगत भेदभाव और अपमान का मामला भी दर्ज किया गया और उन्हें डीन के पद से फिलहाल जांच को देखते हुए हटा दिया गया है, ताकि वो डीन के पद पर अगर रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा मानते हुए उन्हें डीन के पद से हटाया गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस मामले में जातिगत भेदभाव हुआ कैसे होगा और क्या कोई विभागीय लापरवाही इसमें हो सकती है? ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि IIT में छात्रों की जाति को गोपनीय रखा जाता है और इसके बारे में प्रोफेसर्स और टीचर्स को भी कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन साहिल के परिवार का आरोप है कि प्रोफेसर दुल्ला उनके बेटे का उसकी जाति के लिए अपमान कर रहे थे। ये तभी संभव है जब उन्हें साहिल की जाति के बारे में किसी ने या खुद साहिल ने या विभाग की तरफ से क्या उनको जानकारी मिली थी। हालांकि हमने अपने देश में देखा है कि अक्सर लोग एक दूसरे के टाइटल से जाति का पता लगाने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसे सरनेम आते हैं जिससे सीधे तौर पर नहीं पता चलता है तो वो गूगल का भी सहारा लेते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सी जाति के हैं। बहरहाल इस मामले में आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी फोरम यानी शिक्षकों के संगठन ने प्रोफेसर डल्ला का समर्थन किया है, जबकि आईआईटी बॉम्बे ने खुद अपने सभी पुराने बयानों को बदल दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने पहले कहा था कि साहिल को सस्पेंशन की कोई धमकी नहीं दी गई थी, उसे भरोसा दिलाया गया था कि उस घटना से उसका भविष्य खराब नहीं होगा, लेकिन जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तब आईआईटी बॉम्बे का कहना है कि वो अपने पहले बयान को लेकर माफी मांगता है और जांच पूरी होने तक कुछ भी निश्चितता से कहना सही नहीं होगा। संक्षेप में कहें तो कुछ लोग मानते हैं कि प्रोफेसर डुल्ला सही हैं। अगर उन्होंने साहिल को नकल करते हुए पकड़ा था तो उनका डांटना स्वाभाविक था। दूसरे हिस्से में जो लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं वो हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर डुल्ला साहिल के साथ उसकी जाति के कारण भेदभाव करते थे और जब साहिल नकल करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें भड़ास निकालने का मौका मिल गया। और तीसरा पक्ष लोगों का ये है कि अगर आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव नहीं होता या वहां मानसिक दबाव नहीं डाला जाता तो वहां छात्रों की आत्महत्याएं बढ़ क्यों रही हैं। सुनिए।

0: हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि अंदर क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ है। तो सस्पेंशन की डिमांड थी, रेजिग्नेशन की डिमांड नहीं थी डीन ए की। एंड डायरेक्टर के अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं, सारी बातें उन्होंने हमारी सुनी, उनके तो रिजाइन के मैं ऑपोजिट ही हूँ।
1: काफी स्टूडेंट्स हर्ट है ऑब्वियसली, वो बहुत ही अच्छा, हम सबका बहुत अच्छा दोस्त था वो, और वो बहुत ऐसा, मुझे तो प्रोसेस नहीं हुआ जब वो ऐसा हुआ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, बहुत खुश था वो, मतलब मैंने उसको देखा है, मैंने कभी उसके से दुख होते हुए तो नहीं देखा था, वो बहुत बहुत ही अच्छा इंसान था।
2: आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर शिरीष केदारे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के 18 सूत्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पहली मांग है इस घटना की निष्पक्ष जांच करना, 30 दिन में अंतिम जांच रिपोर्ट छात्रों के लिए बीच पेश करना, दोषी पाए जाने वाले प्रोफेसर और अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना और प्रोफेसर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, ताकि सभी फैकल्टी जो मेंबर्स हैं वो छात्रों की मेंटल हेल्थ के प्रति सेंसिटिव संवेदनशील बने। और ये जरूरी क्यों है वो आप इन आंकड़ों में देखिए। ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के मुताबिक सितंबर 2021 से सितंबर 2026 तक आईआईटी बॉम्बे कैंपस में छह छात्रों ने आत्महत्या की है। अकेले साल 2026 में अब तक आईआईटी बॉम्बे कैंपस में 3 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें साहिल वाकोड़े का नाम शामिल है। अगर साल 2005 से 2024 के बीच 20 सालों की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में कम से कम 10 छात्रों की आत्महत्या हुई है। और यहां बात सिर्फ आईआईटी बॉम्बे की भी नहीं है, साल 2006 से 2026 के बीच देश के सभी 23 आईआईटीज में 171 से ज्यादा छात्रों की आत्महत्या या अप्राकृतिक कारणों से मौत हुई है। सिर्फ पिछले 5 साल में देश के सभी आईआईटीज को मिला लें तो 65 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। अकेले साल 2023-24 में ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर भागा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संसद में खुद बताया था कि केवल 2018 से 2023 के बीच 39 आईआईटी छात्रों की आत्महत्या हुई। इनमें ज्यादातर छात्र ऐसे थे जो गरीब कमजोर वर्ग के थे, जो अपने परिवार या पूरे गांव से आईआईटी पहुंचने वाले पहली पीढ़ी के बच्चे होते हैं। उनके ऊपर ना केवल अपना करियर बनाने का एक पूरा प्रेशर होता है, पूरे परिवार को गरीबी या फिर सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकालने का भारी बोझ होता है, बहुत सारी उम्मीदें होती है। ऐसे में जब वो कैंपस के अंदर भेदभाव या कम ग्रेड का सामना करते हैं, मार्क्स कम आए हैं, ग्रेड्स खराब हो रहे हैं, तो वो इस दबाव को झेल नहीं पाते और खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस करते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे कॉलेजेस में इन समस्याओं से निपटने के लिए, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम एक होना जरूरी है, जिससे अगर उनमें इस तरह की टेंडेंसी है कि वो आत्महत्या तक का फैसला ले सकते हैं तो उनको टाइमली मेंटल सपोर्ट मिल पाए। ऐसा सिस्टम जो छात्रों का आकलन करे और ये बता सके कि उसे मदद की जरूरत है, वो आगे जाकर क्या आत्महत्या जैसा गंभीर कदम भी उठा सकता है। और आखिर में हम यही बात कहेंगे कि चुनौतियां सभी जाति के छात्रों के सामने होती हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रेशर जो झेलते हैं, दलित छात्र, ओबीसी छात्र, सब कई मुश्किलों का सामना करते हैं। सामान्य श्रेणी के छात्र किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, आर्थिक रूप से जो पीछे है उनके लिए, उन परिवारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ना ये सफर आसान है, ना इसमें जुड़ा हुआ संघर्ष। हमें लगता है कि इस मुद्दे को जाति से ऊपर उठकर आज जरूरी यह है कि अगर हमारे बच्चे किसी भी तरह के मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, उसमें वजह कोई भी हो सकती है, क्या जातीय भेदभाव की वजह से उनके साथ ऐसा उनको सामना करना पड़ रहा है, क्या पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्या जिस तरह से एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, मतलब आकलन करना होगा कि हमारे बच्चे आत्महत्या जैसा कदम आखिर क्यों उठा रहे हैं।
3: मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी से, इसकी इंक्वायरी की जाए, सिर्फ छोड़ना नहीं चाहिए, किसी की लापरवाही जिसकी है उसको सजा मिलना चाहिए, किसी की जान चली गई इस लापरवाही की वजह से तो जिसकी भी लापरवाही उसको सजा मिलना चाहिए,
4: वहां जो कुछ हादसा है उसकी मतलब जांच होनी चाहिए। लेकिन बच्चों को भी अगर जो आईआईटी पे आए आगे चलकर बनानी है, वो बच्चे अगर जाति पाति पे करते हैं तो अगर उसकी जांच होनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, ये नहीं चलेगा।
5: पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
2: अब हम मिडिल ईस्ट में खुले युद्ध के नए मोर्चे की बात करेंगे। सऊदी अरब और यमन के हूती के बीच पिछले दो हफ्ते में जंग चल रही है। यमन में हूती के कब्जे वाले इलाके सऊदी अरब के एक बड़े हिस्से और लाल सागर से जुड़ते हैं और इसी वजह से सऊदी अरब को दोहरी मार पड़ रही है। हूती सऊदी अरब के शहरों पर जबरदस्त बमबारी कर रहे थे और इसके साथ लाल सागर में सऊदी के व्यापारी जहाजों पर भी अटैक किया जा रहा है। देखिए, हूती के ताजा हमले ने सऊदी अरब को झकझोर दिया है। इस बार हूती ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के संवेदनशील इलाकों में मिसाइल और अटैक्स किए हैं। इस हमले ने सऊदी अरब की डिफेंस सिस्टम और सैन्य क्षमता पर गहरे सवाल उठा दिए हैं। इस हमले से जुड़ी तस्वीरों ने रियाद में रहने वाले लोगों के लिए दहशत पैदा कर दी है। हूती ने रियाद में सऊदी अरब के मुख्य एयरपोर्ट को दहलाया। इस हमले के बाद से सऊदी अरब ने पूरे रियाद को अलर्ट पर रखा है। रियाद पर हुए हमले को हूती की ओर से की गई एक बड़ी साजिश के तौर पर बड़ा हमला माना गया है। और क्योंकि सऊदी अरब को हूती की इस क्षमता का अंदाजा नहीं था कि वो रियाद तक ऐसा कर सकता है। अब इस हमले से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें एयरपोर्ट से उठ रहा काला धुआं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि मिसाइल और ड्रोन का निशाना रियाद के इस एयरपोर्ट पर मौजूद तेल के टैंक थे। सऊदी अरब और हूती के बीच शुरू हुई इस नई जंग से पहली बार था जब हूती ने रियाद पर हमला किया है। हूती के मुताबिक उनके निशाने पर रियाद के अलावा 22 फरासान द्वीप, ताइफ और यानूब थे। हूती का दावा रियाद में एयरपोर्ट पर हमले के अलावा उन्होंने तेल कंपनी अरामको को के एक ठिकाने पर भी हमला किया है। हूती ने खास रणनीति तैयार की और उसके तहत सऊदी अरब के इन ठिकानों को टारगेट किया है। जैसे 22 सऊदी अरब के आंतरिक लॉजिस्टिक्स का हब है। यह हूती के कब्जे वाले यमन की सीमा के नजदीक भी है और इसका इस्तेमाल लाल सागर में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी के लिए किया जाता है। ताइफ शहर मक्का के करीब है, सऊदी अरब के एयर डिफेंस का एक मजबूत गढ़ है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स का किंग फहद एयरबेस भी यही है। ईरान युद्ध के दौरान इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने भी किया था और यह सऊदी अरब के बड़े सैन्य ठिकानों में से एक है। इसके अलावा फरासान द्वीप लाल सागर के समुद्री मार्गों की निगरानी के लिए अहम ठिकाना है। ये द्वीप लाल सागर में यमन की सीमा के काफी पास है, इसीलिए वहां पर हूती की गतिविधियों, सऊदी जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से इसका रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। जहां तक यानबू की बात है तो ये बंदरगाह शहर सऊदी के आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा रीढ़ की तरह माना जाता है। ये लाल सागर में होने वाले सऊदी अरब के तेल व्यापार का केंद्र है। यहाँ तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल सबके ठिकाने हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद से सऊदी का जो पूरा तेल व्यापार है वो समझिए यानबू से ही हो रहा है। हूती ने एक ही दिन में सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अलावा उसके रणनीतिक और आर्थिक केंद्रों को टारगेट किया और एक संदेश दिया है। सऊदी अरब ने हूती पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया है कि सऊदी अरब की जो एयरफोर्स है उसने 24 घंटे के अंदर यमन के अलग अलग इलाकों में 28 हमले किए हैं और इसका बदला लेने के लिए रियाद और अन्य अहम ठिकानों पर अटैक किया गया।

0: जर्मनी सशस्त्र बलों ने सर्वशक्तिमान अल्लाह की मदद से दो बड़े सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों में बड़ी संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पहले अभियान में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। दूसरे अभियान में यनबू में आरामको कंपनी को निशाना बनाया गया। हमारे दोनों अभियान सफल रहे और निशाना बनाए गए स्थानों पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये कार्रवाई सऊदी अरब द्वारा हमारे लोगों के खिलाफ लगातार किए जा रहे आक्रामक हवाई हमलों के जवाब में की गई। इन हमलों में F-15 और टाइफून लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो खमीस मुशैत और ताइफ के ठिकानों से उड़ान भरते हैं। अब तक 732 हवाई हमले किए जा चुके हैं, जिसमें नागरिकों के मारे जाने और घायल होने के साथ साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।
1: हुती के हमलों ने सऊदी अरब को बड़े खतरे में डाल दिया है। इस खतरे को देखकर सऊदी ने अपने दोस्त अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन खबर ये आ गई कि अमेरिका ने हुती के साथ डील कर ली। डील के मुताबिक हुती लाल सागर में अमेरिका और अन्य देशों के जहाजों को टारगेट नहीं करेगा और इसके बदले में अमेरिका सऊदी की तरफ से हुती पर हमले नहीं करेगा। इस डील ने सऊदी अरब को एक बहुत बुरी स्थिति में फंसा दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसे उम्मीद थी कि वो F-35 की डील और दोस्ती का हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप को हुती पर हमले के लिए आखिरकार मना लेगा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि हुती के हमलों से परेशान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और इस फोन पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से हुती के ठिकानों पर हवाई हमले करने की अपील भी की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि मोहम्मद बिन सलमान से हुई इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप हुती पर हवाई हमले के लिए मान गए थे। उन्होंने पेंटागन के अधिकारियों को हुती के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी करने के लिए बोल भी दिया था। पेंटागन के अधिकारी थोड़ा हैरान थे क्योंकि इस आदेश के एक दिन पहले ट्रंप ने हुती के खिलाफ जंग में उतरने से इनकार किया था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने फैसला पलट दिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के बाद पेंटागन ने हुती के ठिकानों को की एक पूरी लिस्ट जारी की। हुती के खिलाफ एक बड़े सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की योजना तैयार कर ली। फाइटर जेट्स को हुती के ठिकानों पर हमले के मिसाइल से लोड भी कर दिया गया। सऊदी अरब को भरोसा हो गया कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उससे अब रास्ता निकल गया है। लेकिन फिर इस आदेश के दो दिन बाद ही यानी रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना फैसला पलट दिया। उन्होंने पेंटागन के अधिकारियों को हुती पर हमला करने से रोक दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फिलहाल हुती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स मत करो। डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश ने पेंटागन के अधिकारियों और सऊदी अरब को हैरान कर दिया। अब हुती के खिलाफ मदद करने के बजाय ट्रंप अपने दोस्त से किए गए वादे से ही मुकर गए। सऊदी अरब की मदद करने और हुती पर हमला करने या ना करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक अलग उलझन में है। उनको समझ में नहीं आ रही बात कि सऊदी अरब की तरफ से हुती पर हमला किया जाए या बच लिया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या। डोनाल्ड ट्रंप की उलझन के तीन बड़े कारण हैं। तीनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, उलझे हुए हैं। पहली उलझन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर चल रहा अमेरिका ईरान युद्ध। इसकी वजह से दुनिया का 20% कच्चे तेल का व्यापार प्रभावित है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बहुत परेशानी हो रही है। ईरान ने भी युद्ध के पीछे हटने से इनकार कर दिया है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि इस युद्ध को खत्म किस मोड़ पर किया जाए। यानी वो युद्ध के एक मोर्चे पर पहले में ही से ही फंसे हुए हैं। दूसरी उलझन हुती का बाबल मंदेब और लाल सागर पर प्रभाव। अमेरिका की परेशानी यह है कि अगर हुती के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खुला तो बाबल मंदेब और लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा। इस रास्ते से दुनिया का करीब 12% कच्चे तेल का ही व्यापार होता है। हुती से जंग छिड़ी तो अमेरिका को यहां भी अपनी सेना उतार कर जंग लड़नी पड़ेगी। और तीसरी उलझन ईरान युद्ध में सऊदी से मिलने वाली मदद के बंद होने का खतरा। दरअसल ईरान युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने कई तरह से अमेरिकी सेनाओं की मदद की थी, जिससे वो ईरान पर हमले करने में कामयाब रहे। अब सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी, किंग फहद एयरबेस और प्रिंस सुल्तान एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति दी। अमेरिकी फाइटर जेट्स को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी सऊदी की जमीन से ही दिया गया। और यही नहीं, इराक में ईरान की प्रॉक्सी मिलिशिया के खिलाफ सऊदी ने अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलकर सैन्य ऑपरेशन चलाया। ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान सऊदी अरब अमेरिकी सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी की तरह था। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार इस बात से परेशान है कि अगर वो हुती के खिलाफ सऊदी अरब की मदद नहीं करते हैं तो वो ईरान के खिलाफ उनकी मदद रोक देगा। ऐसी स्थिति में ईरान पर अमेरिका का जो स्थिति है अमेरिका की वो कमजोर पड़ जाएगी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप हूती के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ बाबल मंदेप स्ट्रेट भी उसके लिए युद्ध का मैदान बन जाएगा, जिससे वो लंबे समय तक फंस जाए। इसीलिए ट्रंप फैसला नहीं कर पा रहे और सऊदी अरब की मदद नहीं कर रहे। मिडल ईस्ट के बाद युद्ध 4.5 साल पुराने मोर्चे पर लेकर चलते हैं। युद्ध का यह मोर्चा यूक्रेन और रशिया के बीच है। पिछले 2 दिनों में जानते हैं इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी की है। वैसे अब लोग मानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध में एक दूसरे पर हमला कोई नई खबर नहीं है, लेकिन 19 सितंबर की रात यूक्रेन ने रशिया पर मिसाइल ड्रोन से बड़े हमले किए। रशिया के सैन्य अधिकारियों का दावा है कि यूक्रेन के 1600 से ज्यादा ड्रोन अटैक को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है, जिसमें 450 ड्रोन का टारगेट राजधानी मॉस्को था। अब अधिकारियों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद मॉस्को पर यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। यूक्रेन के इस हमले में कई मिसाइल्स और ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब भी रहे, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इस हमले में मॉस्को और उसके आसपास के ऑयल रिफाइनरीज को भारी नुकसान हुआ है।

यूक्रेन के इस हमले के 24 घंटे के अंदर रशिया ने यूक्रेन पर बहुत भीषण जवाबी हमला किया है। रशिया ने यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स और सैकड़ों मिसाइल्स से हमला कर दिया। रशिया के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के शहरों में हाहाकार है। रशिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के लॉजिस्टिक सेंटर, पोर्ट, वेयरहाउस सबको टारगेट किया है। इसके अलावा एक जहाज को भी डुबो दिया है। रशिया ने यूक्रेन के हमले का बदला लेने के लिए कीव, ज़ापोरोजिया, ओडेसा, खार्कीव, दिनोप्रो, पोल्टोवा, विनित्सिया, क्रामाटोर्स्क और ज़ाइटोमीर को अपने निशाने पर लिया है। यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध अब तक एक ऐसे दौर में है जहां रिहायशी इलाकों को भी हमले की जद में रखा जा रहा है। जैसे यूक्रेन के अगर आप देखिए तो क्रामाटोर्स्क की एक तस्वीर आई है जहां रशिया के हमले के बाद बदहवास लोग, बर्बादी, सब कुछ दिख रही है। रशिया ने एक इवैक्यूएशन सेंटर पर हमला किया जिसमें वहां भीषण आग लग गई। इस सेंटर में उन लोगों को रखा गया था जिन्होंने हमलों की वजह से अपना घर जो है उनको छोड़ना पड़ा था। हमले के बाद लोग इस सेंटर में फंस गए लेकिन रेस्क्यू टीम ने जल्दी ही दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। इसी तरह से रशिया ने यूक्रेन में कुछ शॉपिंग मॉल्स को टारगेट किया है। माना जा रहा है कि कुछ शॉपिंग मॉल्स को सेना के लॉजिस्टिक सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ज़ापोरोजिया के एक शॉपिंग की मॉल की तस्वीरें आई हैं जहां रशिया के हमलों के बाद भयानक आग लगी हुई है। इस हमले के लिए रशिया ने गिरान ड्रोन्स का इस्तेमाल किया।

रशिया ने यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर हुए हमलों को बहुत सीरियसली लिया था और यही वजह है कि उसने 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार भी किया। अब रशिया का आरोप है कि यूक्रेन ने मॉस्को को इसलिए टारगेट किया क्योंकि रशिया में चुनाव चल रहे हैं। 18 से 20 सितंबर के बीच रशिया में स्टेट डूमा चुनाव हुए और रशिया के अधिकारियों का आरोप है कि यूक्रेन इस चुनाव को प्रभावित करना चाहता था। स्टेट डूमा रशिया की संसद का निचला सदन है, इसमें 450 सांसद होते हैं। आसान भाषा में आप इसे रशिया की लोकसभा समझ सकते हैं। 450 में से आधी सीटें पार्टी को मिले वोट के आधार पर और आधी सीटें अलग अलग क्षेत्रों में हुए चुनाव के आधार पर ही तय होती है। खबर ये आ रही है कि संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की समर्थक जो है यूनाइटेड रशिया पार्टी है उसने जीत हासिल कर ली है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 57.5% वोट के साथ विजयी बढ़त बना ली है। हालांकि अभी आधिकारिक नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन साल 2022 में शुरू हुए रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ये पहला संसदीय चुनाव है। इस चुनाव को यूनाइटेड रशिया पार्टी ने यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे रशिया के सैनिकों के समर्थन से जोड़कर पेश किया था। पिछले चुनाव साल 2021 में हुआ था जिसमें पुतिन समर्थक यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 450 में से 324 सीटें हासिल की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी कई कानूनों और नीतियों के लिए संसद की जरूरत होती है और इसीलिए ये जो स्टेट डूमा है वो पुतिन समर्थक पार्टी का बहुमत होना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी चुनाव के आखिरी दिन मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था और इसके पीछे एक वजह क्राइमिया में चुनाव करवाया जाना भी था। दरअसल यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश क्राइमिया को रशिया का हिस्सा नहीं मानते हैं, वो उसे यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं, जबकि साल 2014 से ही क्राइमिया पर रशिया का कब्जा है। उस साल रशिया ने क्राइमिया में जनमत संग्रह करवाकर उसे अपना हिस्सा बताया था। इस बार रशिया ने क्राइमिया में भी स्टेट डूमा का चुनाव आयोजित कराया और माना जा रहा है कि इसी से भड़के यूक्रेन ने सीधे मॉस्को को टारगेट कर दिया। अब आपको एक दिवालिया होता देश का वो सच दिखाएंगे जिसे छिपाने के लिए उसकी हुकूमत ने पूरी ताकत लगा दी। पाकिस्तान, जहां की जनता आज रोटी, कपड़ा, पेट्रोल के लिए तरस रही है, जहां रात 9 बजे बाजार बंद कराने पड़ रहे हैं, शादियों में एक डिश का फरमान जारी कर दिया गया है, एक ही डिश पकेगा। देखिए,

0: ये देखिए कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, अपनी नाकामियां कैसे छिपाई जाए, भयानक महंगाई, गृह युद्ध जैसे हालात कैसे भटकाना है। इसके लिए सुबह 4 बजे अफगानिस्तान पर फाइटर जेट से बमबारी की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीनों बहनों को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों को लेकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। सरकार के पास न तेल खरीदने के लिए पैसे हैं, न जनता के सामने जवाब देने के लिए कुछ बचा है। लेकिन जब सवाल कंगाली का हो तो पाकिस्तान की सरकार पुराना दाव खेलती है, ध्यान भटकाने का। इसके लिए पाकिस्तान की वायुसेना ने सुबह 4 बजे अफगानिस्तान को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में अंधाधुंध एयर स्ट्राइक्स की, 3 आम नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले के बाद तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा आर्थिक नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए आम नागरिकों पर बम बरसा रहा है। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
1: درې نیمې بجې وې چې دغه د پاکستان جیټو بمبار وکړ، او درې کسان چې یو شهیدان دي او څلور کسان شدید زخمیان دي چې په هسپتال کې پراته دي. د پاکستان نه دغه څه کالې راماجر شوي وې، پاکستان نه راشړلي وو.

पॉइंट वो बताएंगे। ये खबर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने के उस फैसले से जुड़ी है जिसके तहत अब इटली के स्कूलों में बुर्का और नकाब पूरी तरह बैन करने की तैयारी चल रही है। मेलोनी का साफ कहना है कि स्कूल्स में परंपरा के नाम पर चेहरा छिपाना नहीं चलेगा। बिल्कुल अंजना, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि स्कूलों में अब चेहरा ढका हुआ नहीं चलेगा। मेलोनी का कहना है कि स्कूल आने वाले हर बच्चे का चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रोक सिर्फ पूरा चेहरा ढकने वाले नकाब और बुर्का पर होगी, चेहरा खुला रखने वाले हिजाब पर नहीं। इटली में चेहरा ढकने पर एक पुराना कानून है, लेकिन मेलोनी सरकार अब खास तौर पर स्कूलों के लिए एक कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद से पास कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के करीब 24 देशों में चेहरा ढकने पर अलग अलग तरह की रोक पहले से लागू है और यूरोपीय अदालत भी फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में बुर्का बैन को सही ठहरा चुकी है। इटली की सरकार का कहना है कि ये नियम बच्चों को आपस में जोड़ने के लिए है। हालांकि इस फैसले को लेकर विवाद भी हो रहा है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और सब्र का फल मीठा तो होता है, लेकिन अक्सर जब मिलता है तो भूख मर चुकी होती है।

0: मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज्य से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर यही दो इलाके बच गए थे जहाँ सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं, कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
1: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
1: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरे यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
1: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
5: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं। हम
6: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं, कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए एसपी सीधे सीधे निशाने पर है।
6: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
1: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
7: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
1: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
8: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नते कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकता है।
8: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
10: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे।
8: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों, आपको होना भी चाहिए जैसे RJD वाले हैं।
11: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है
12: जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही।
8: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है, उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
13: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों त्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
8: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
14: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
8: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: पंजाब में नशे का मुद्दा गरमाया हुआ है। दावा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नाम के शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि बाद में मालूम यह चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
8: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह। पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स ने पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा।
15: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल, बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
8: जग्गा सिंह की यह तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
16: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
17: नशे रोकने वास्ते विल पावर चाहिए है, लत्तां विच जान चाहिए है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिए है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए है, जेड़े के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं।
8: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
18: आज मैं कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को, क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को? जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे नशा, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा, डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिबारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
8: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी, जिस पर 9 केस दर्ज हैं, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी हैं।
19: उन्होंने ऑलरेडी 9 FIR दर्ज हैं, इन्हों विचों 4 दे विचों कन्विक्टेड ने, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਚੀਮਾ ਥਾਣੇ ਦੇ 3 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਕੇਸ, ਸਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੇ।
20: जग्गा को ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे, उनके बेटे की नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
21: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं इसलिए शाम तक चुप हो जाए।
20: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संत, चंडीगढ़ आज तक।
0: IIT बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है, यह मामला लगातार उलझता जा रहा है, क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब IIT बॉम्बे के अलावा IIT मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि सब अपनी अपनी जगह कायम है, क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी?
22: IIT बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल ChatGPT से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? IIT बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
23: भारतीय जनता पार्टी,
22: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेंच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर, वो IIT बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर ChatGPT पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को IIT बॉम्बे की तरफ से यह बयान एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यह छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए ChatGPT पर अपलोड कर दिया था। इसमें यह भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यही नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ IIT बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता

0: किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है, इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
1: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है, और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
0: लेकिन तब तक तो IIT बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
2: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूँ।
3: बोल रहे ना?
2: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूँ।
3: बोल रहे ना?
0: लेकिन आज फिर IIT बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन IIT बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान AI यूज करने की बात कही गई थी। अब IIT बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद IIT बॉम्बे जांच की बात कर रहा है, और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में IIT बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी IIT बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला IIT बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला IIT बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
4: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स IIT भी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, ये मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
5: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस

0: में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज्य से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर यही दो इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
1: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
1: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
1: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
5: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं।
6: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए एसपी सीधे सीधे निशाने पर है।
6: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
1: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
7: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
1: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
8: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया, इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकता है।
8: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
10: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे?
8: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों। आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
11: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही।
8: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
12: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों तत्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
8: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
13: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
8: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: पंजाब में नशे का मुद्दा गरमाया हुआ है। दावा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नाम के शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि बाद में मालूम यह चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
14: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह। पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स ने पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा।
15: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल, बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
14: जग्गा सिंह की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
16: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
17: नशे रोकण वास्ते विल पावर चाहिए, लत्तां विच जान चाहिए है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिए है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चाहिए है, जेड़े के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं।
14: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
18: आज मैं कहना चाहता हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को, क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को? जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे नशा, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा, डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिवारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
14: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी है, जिस पर 9 केस दर्ज है, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी है।
19: ऑलरेडी 9 FIR दर्ज ने, इन्हां विचों 4 दे विचों कन्विक्टेड ने, जिदे विच वख वख थाणियां दे केसेस ने, एक्साइज दे केसेस ने, चीमा थाने दे 3 जिदे विचों कन्विक्टेड ने, अते एक NDPS दा केस, सदर पटियाले दा केस है जिदे विचों कन्विक्टेड ने।
14: जग्गा को ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा, लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे, उनके बेटे की नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
20: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में, ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए शाम तक चुप बोले।
14: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संत, चंडीगढ़ आज तक।
0: मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की है, वेतन भी शिक्षिका का है, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति। आरोप भी है कि यह खेल 2 सालों से चला आ रहा है, यानी कि जिस शिक्षक की नियुक्ति सरकार ने की क्लासरूम में उसकी जगह कोई और बच्चों को पढ़ाता रहा। इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि 43 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदार आखिर है कौन?
21: ये क्या पत्नी आपकी?
14: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है, उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जैस्मीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जैस्मीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाते हैं, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति हैं। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गाँव मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 1-2 महीने नहीं बल्कि पिछले 2 साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
22: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
23: वो इनके जैस्मिन मीटर मतलब उनके मिस्टर थे।
22: मिस्टर हैं, तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
23: पढ़ाने का अधिकार नहीं है।
22: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे? अभी
23: फिर भी यहाँ पे पढ़ाते
22: हैं, है ना? क्या नाम है उनका?
23: उनका साजिद सिद्दीकी।
22: साजिद सिद्दीकी, कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
23: ये तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं।
22: 2 साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनकी वाइफ भी यही रहती है?
23: 2 साल तो नहीं है, मतलब जैसे अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना,
22: हाँ?
23: जब उनको छोड़ने आते हैं तो नहीं, रुक जाते हैं,
22: है ना? और ये बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे।
14: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची, तब जैस्मीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए, लेकिन हमारे सवाल ने मुंह का जायका बिगाड़ दिया।
22: ये क्या पत्नी है आपकी? फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब
24: नहीं पढ़ा,
22: कब से आपकी ऐसी तबीयत वगैरह खराब है?
24: कोरोना
22: के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो?
24: मेरा तो नहीं, क्लिनिक है।
22: क्लिनिक है, डॉक्टर हो?
14: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं है। शाजापुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि 2 साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं है, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाजापुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जासमीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
2: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
3: उसमें भी हमने जांच कराई है। जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई गई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
14: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता थी? क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया?
4: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाजापुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर ये गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
0: ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका एटमी हमले भी कर सकता है जैसी आशंका तेहरान के डेप्यूटी मेयर जता चुके हैं। सवाल यही है कि जिस वक्त ईरानी राष्ट्रपति के अमेरिका जाने की खबरें आई उसी वक्त ऐसा क्या हो गया कि ईरान को अपनी सेनाओं को बड़े युद्ध के लिए तैयार करने के लिए हाई अलर्ट जारी करना पड़ा?

0: ईरान ने अपनी सेना के लिए कोड 100 नाम का हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें IRGC और सेना को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान में जारी किए गए हाई अलर्ट की टाइमिंग को देखें तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक कैंप डेविड से वापस व्हाइट हाउस लौटा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सैन्य अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग की है, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री ने अभी अपना अमेरिका दौरा छोटा किया है। तो क्या ईरान का सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी करना, अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक व्हाइट हाउस लौटना किसी बड़े हमले का संकेत है? ईरान में हमले का हाई अलर्ट क्यों जारी हुआ? क्या ईरान पर ट्रंप विनाशकारी हमला करेंगे? ट्रंप के नाम ईरान की सबसे बड़ी धमकी क्यों? अमेरिकी लड़ाकू जेट क्यों ईरान बॉर्डर पहुंचे? ईरान और अमेरिका युद्ध में सबसे बड़ा मोड़। अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही बीते कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बार पलटवार के सिलसिले पर ब्रेक लगा है, लेकिन बीते 48 घंटों से अमेरिका और ईरान के अंदर से आ रही खबरें किसी बड़े हमले का संकेत दे रही हैं। ईरान ने महायुद्ध का बिगुल फूंक दिया है, तो अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी खबरों ने ईरान पर सबसे बड़े अमेरिकी हमले की संभावनाओं की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान पर नए हमलों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इसी बीच ईरान ने हुर्मुज में अमेरिकी ड्रोन को बाहर गिराने का दावा किया है। दावा यही है कि हुर्मुज में अमेरिकी सेना के ड्रोन को बाहर गिराया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका और उनके सहयोगियों के साथ युद्ध के बारे में IRGC का आकलन ये है कि अमेरिका को ऐतिहासिक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनमें स्वीकार करने का साहस नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन वो हुर्मुज का रास्ता खुलवाने में नाकाम रही। हम अमेरिका से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने पहले ही लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर ली है, और अब वो इस तरह के परिदृश्य के लिए और भी ज्यादा तैयार है। अगर कोई नया आक्रमण होता है तो हमारी रक्षा और जवाबी हमले में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। हम निश्चित रूप से युद्ध के भूगोल को बदल देंगे। हम निश्चित रूप से नई क्षमताओं वाले नए हथियार युद्ध के मैदान में लाएंगे, और दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से कोई नया हमला हुआ तो विनाशकारी पलटवार होगा। ईरान अपने ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें अभी तक गुप्त रखा गया है। तो क्या ये कोई विनाशकारी मिसाइल है, या फिर ईरान के पास कोई सीक्रेट हथियार मौजूद है? ईरान की माने तो अमेरिकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। हम चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी गलती की तो पूरे इलाके में अमेरिका के सभी ठिकानों और हितों को बिना किसी सीमा या विचार के निरंतर प्रभावी और दर्दनाक हमलों का निशाना बनाया जाएगा। मतलब यही है कि ईरान हर हालात से निपटने को तैयार है। बड़ी बात यह है कि ईरान खुद मानता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर यकीन करना असंभव है।
1: एक और मुद्दा है सर, जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के, उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए, ये असली लीडर्स कौन हैं?
2: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
0: दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार जहर उगलते आए हैं। ये तक कह चुके हैं कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो ईरान झुका और न ही अमेरिकी हमलों के बाद ईरान रुका। हुर्मुज पर नया हमला भी यही बताता है कि ईरान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर ही अमेरिका के साथ कोई बातचीत करेगा। ऐसे में अगर अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी विध्वंसक पलटवार करेगा। आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज्य से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर यही 2 इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
1: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
1: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
1: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
5: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में BJP सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है BJP ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन BJP पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में BJP को रोकने से तैयार हैं। हम
6: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है, और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए SP सीधे सीधे निशाने पर है।
6: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
1: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
7: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
1: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
8: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया, इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है, और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला, और 2 और हो सकते हैं।
8: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
10: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे?
8: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। अगर तब जैसे हालात आज भी हैं, तो शर्मिंदा हों। आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
11: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रहेगा।
8: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है, उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
12: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों तत्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
8: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
13: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
8: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: पंजाब में नशे का मुद्दा गरमाया हुआ है। दावा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नाम के शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि बाद में मालूम यह चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
8: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह। पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स ने पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना
14: पड़ा।
15: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल, बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
8: जग्गा सिंह की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
16: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
17: नशे रोकण वास्ते विल पावर चाहिए, लत्ता विच जान चाहिए है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिए है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए है। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
14: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
18: आज मैं कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को, जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे ना, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा, डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिवारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
14: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी, जिस पर 9 केस दर्ज है, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी है।
19: ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 9 FIR ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਿਕਟਿਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਚੀਮਾ ਥਾਣੇ ਦੇ 3 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਿਕਟਿਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਕੇਸ, ਸਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਿਕਟਿਡ ਨੇ।
14: जग्गा को ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे, उनके बेटे के नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
20: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में, ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं इसलिए आज तक चुप है।
14: पंजाब में चुनाव नजदीक और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संत, चंडीगढ़ आज तक।
0: IIT बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब IIT बॉम्बे के अलावा IIT मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि सब अपनी अपनी जगह कायम है, क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी?
14: IIT बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल ChatGPT से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? IIT बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
21: भारतीय जनता पार्टी,
14: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है, लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है। ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर ली।
2: वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यही नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र वकोड़ ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है, इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
21: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
2: लेकिन तब तक तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
22: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूँ। बोल रहे हैं ना? हम सेंसर जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूँ। बोल रहे हैं
2: ना? हम लेकिन आज फिर आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान AI यूज करने की बात कही गई थी। अब आईआईटी बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद आईआईटी बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला आईआईटी बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
23: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स IIT में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, यह मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की है, वेतन भी शिक्षिका का है, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति। आरोप अब यह है कि यह खेल 2 सालों से चला आ रहा है, यानी कि जिस शिक्षक की नियुक्ति सरकार ने की क्लासरूम में, उसकी जगह कोई और बच्चों को पढ़ाता रहा। इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि 43 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदार आखिर है कौन?
3: ये क्या पत्नी आपकी?
4: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है, उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जैस्मीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जैस्मीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाती है, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति है। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गांव मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 1-2 महीने नहीं बल्कि पिछले 2 साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
5: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे? मिस्टर है, तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
6: पढ़ाने का अधिकार नहीं है।
5: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे, अभी
6: पढ़ा
5: है ना? क्या नाम है उनका?
6: साजिद सिद्दीकी।
5: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
6: ये तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं।
5: 2 साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनकी वाइफ भी यही रहती है।
6: 2 साल तो नहीं है, मतलब जैसे अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना,
5: हाँ,
6: जब उनको छोड़ने आते हैं तो नहीं रुक जाते हैं वो,
5: है ना।

0: मिल गए, लेकिन हमारे सवाल ने मुंह का जायका बिगाड़ दिया।
1: ये क्या पत्नी आपकी?
2: हाँ।
1: फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब
2: नहीं पढ़ा, मैं तो आया था, मैं नहीं, मैं तो अभी अरे छोड़ छोड़ा गया, कल जब बैठ जाता हूँ छोड़ बैठ
1: जाता। कब से आपकी ऐसी तबीयत वगैरह खराब है?
2: कोरोना
1: के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो? क्लिनिक है, डॉक्टर हो?
0: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं। शाहजहांपुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि 2 साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाहजहांपुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जासमीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
3: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
4: उसमें भी हमने जांच कराई है, उस जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ, लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हुआ, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
0: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता था? क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया?
5: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाहजहांपुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर यह गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया।

0: सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
1: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है, तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
0: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
0: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर, यही दो इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
0: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
0: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
5: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
0: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
6: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं। हम
7: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है, और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
0: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक और वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए एसपी सीधे सीधे निशाने पर है।
7: समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
0: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
8: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
0: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
5: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
9: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नते कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
10: पुलिस के द्वारा तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं।
9: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
5: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
11: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे।
9: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों, आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
12: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही।
9: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
13: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों त्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
9: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
14: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
9: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
5: पंजाब में नशे का मुद्दा गरमाया हुआ है। दावा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नाम के शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि बाद में मालूम यह चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
9: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह। पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स ने पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा।
5: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल, बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
9: जग्गा सिंह की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
15: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
16: नशे रोकने वास्ते विल पावर चाहिए है, लत्तां विच जान चाहिए है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिए है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए है, जेड़े के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं।
9: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
17: आज मैं कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को, क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को? जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे नशा, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा, डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिबारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
9: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी, जिस पर 9 केस दर्ज हैं, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी हैं।
18: उन्होंने ऑलरेडी 9 FIRs दर्ज ने, इना विचों 4 दे विचों कन्विक्टेड ने, जिदे विच वख-वख थाने दे केसेस ने, एक्साइज दे केसेस ने, चीमा थाने दे 3 जिदे विचों कन्विक्टेड ने, अते एक NDPS दा केस, सदर पटियाले दा केस है जिदे विचों कन्विक्टेड ने।
9: जग्गा को ड्रग्स सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है।
19: इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे। उनके बेटे के नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
20: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए शाम तक चुप हो जाए।
19: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संधु, चंडीगढ़ आज तक।
5: आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि सब अपनी अपनी जगह कायम है, क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी?
21: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है
22: भारतीय जनता पार्टी,
21: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेंच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर, वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से यह बयान एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें साफ साफ लिखा है कि यह छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें यह भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहां तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यही नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़ ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
1: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
21: लेकिन तब तक तो IIT बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
2: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं। बोल रहे ना? अब रिजाइन करने जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं। बोल रहे ना? अब रिजाइन
21: करने। लेकिन आज फिर IIT बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन IIT बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान AI यूज करने की बात कही गई थी। अब IIT बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद IIT बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में IIT बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी IIT बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला IIT बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला IIT बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
22: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स IIT भी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, ये मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
5: मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की है, वेतन भी शिक्षिका का है, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति। आरोप अब यह है कि यह खेल 2 सालों से चला आ रहा है, यानी कि जिस शिक्षक की नियुक्ति सरकार ने की क्लासरूम में उसकी जगह कोई और बच्चों को पढ़ाता रहा। इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि 43 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदार आखिर है कौन?
23: ये क्या पत्नी आपकी?
24: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जैस्मीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जैस्मीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाती है, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति है। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गांव मुल्ला खेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 1-2 महीने नहीं बल्कि पिछले 2 साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
25: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
3: निष्ठर
23: है तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
3: पढ़ाने का अधिकार नहीं,
23: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे अभी,
3: फिर भी यहाँ पे पढ़ाते
23: हैं, है ना? क्या नाम है उनका?
3: उनका साजिद सिद्दीकी।
23: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
3: ये तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं।
23: 2 साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनके वाइफ भी यही रहती
3: है। 2 साल तो नहीं है, मतलब जैसे ये अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना,
23: हाँ,
3: जब उनको छोड़ने आते हैं तो ये रुक जाते हैं,
23: है ना? और ये बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ।
21: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची, तब जासमीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए, लेकिन हमारे सवाल ने मौका जायका बिगाड़ दिया।
23: ये क्या पत्नी आपकी?
4: हाँ।
23: फिर आप यहाँ पढ़ाते हो मतलब?
4: नहीं पढ़ा, मैं तो आया था, मैं खाई नहीं, मैं तो कभी आगे छोड़ छोड़ा गया, कभी अब बैठ जाता हूँ।
23: कब से है आपकी ऐसी तबीयत वगैरह खराब है?
4: कोरोना
23: के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो? क्लिनिक है, डॉक्टर हो?
21: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं। शाहजापुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि 2 साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाहजापुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जासमीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
23: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
6: उसमें भी हमने जांच कराई है, जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ, लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है, तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
21: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता था? क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया?
7: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाहजापुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर यह गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज्य से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर यही 2 इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
1: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
1: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
1: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
5: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं। हम
6: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है, और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए एसपी सीधे सीधे निशाने पर है।
6: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
1: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
7: एआईएमआईएम भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
1: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
8: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया, इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकता है।
8: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
10: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे?
8: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। अगर तब जैसे हालात आज भी हैं, तो शर्मिंदा हों। आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
11: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रहेगा।
8: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है, उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
12: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों तत्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
8: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
13: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
8: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है? ये मामला लगातार उलझता जा रहा है, क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि सब अपनी अपनी जगह कायम है, क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी?
8: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
14: भारतीय जनता पार्टी,
8: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेंच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है, क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है? ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर, वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
14: इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यही नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ IIT बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र वकोड़ ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है, इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
15: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
14: लेकिन तब तक तो IIT बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
16: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
17: बोल रहे हैं ना?
16: हम रिजाइन करने वाले हैं। जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
17: बोल रहे हैं ना?
16: हम रिजाइन करने।
14: लेकिन आज फिर IIT बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन IIT बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान AI यूज करने की बात कही गई थी। अब IIT बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद IIT बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में IIT बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी IIT बॉम्बे की फैकल्टी है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला IIT बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी है जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला IIT बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
18: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स IIT भी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है यह मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की है, वेतन भी शिक्षिका का है, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति। आरोप अब यह है कि यह खेल 2 सालों से चला आ रहा है, यानी कि जिस शिक्षक की नियुक्ति सरकार ने की क्लासरूम में उसकी जगह कोई और बच्चों को पढ़ाता रहा। इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि 43 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदार आखिर है कौन?
19: ये क्या पत्नी आपकी?
17: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है, उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जैस्मीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जैस्मीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाती है, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति है। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गांव मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक दो महीने नहीं बल्कि पिछले दो साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
19: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
20: मतलब उनके मिस्टर हैं।
19: तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
20: पढ़ाने का अधिकार नहीं,
19: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे अभी।
20: पढ़ाते
19: है ना? क्या नाम है उनका?
20: साजिद सिद्दीकी।
19: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
20: ये तो दो साल से पढ़ा रहे हैं।
19: दो साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनकी वाइफ भी यही रहती है?
20: दो साल तो नहीं है, मतलब जैसे अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना, जब उनको छोड़ने आते हैं तो नहीं रुक जाते हैं,
19: है ना? और ये बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे।
17: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची, तब जैस्मीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए। लेकिन हमारे सवाल ने मौका जायका बिगाड़ दिया।
19: ये क्या पत्नी है आपकी?
20: हाँ।
19: फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब
20: नहीं पढ़ा, मैं तो आया था, मैं नहीं, मैं तो अभी आगे छोड़ छोड़ा गया, कल जब बैठ जाता हूं तो
19: कब से आपकी ऐसी तबीयत वगैरह खराब है?
20: कोरोना
19: के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो? क्लिनिक है, डॉक्टर हो?
17: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं। शाजापुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि दो साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाजापुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी, तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जैस्मीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
19: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
21: उसमें भी हमने जांच कराई है, जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ, लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है, तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
17: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता थी? क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था, इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया?
22: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाजापुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर यह गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
0: ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका एटमी हमले भी कर सकता है, जैसी आशंका तेहरान के डेप्यूटी मेयर जता चुके हैं। सवाल यही है कि जिस वक्त ईरानी राष्ट्रपति के अमेरिका जाने की खबरें आईं, उसी वक्त ऐसा क्या हो गया कि ईरान को अपनी सेनाओं को बड़े युद्ध के लिए तैयार करने के लिए हाई अलर्ट जारी करना पड़ा?

ईरान ने अपनी सेना के लिए कोड 100 नाम का हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें IRGC और सेना को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान में जारी किए गए हाई अलर्ट की टाइमिंग को देखें तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक कैंप डेविड से वापस व्हाइट हाउस लौटा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सैन्य अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग की है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अभी अपना अमेरिका दौरा छोटा किया है। तो क्या ईरान का सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी करना, अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक व्हाइट हाउस लौटना किसी बड़े हमले का संकेत है? ईरान में हमले का हाई अलर्ट क्यों जारी हुआ? क्या ईरान पर ट्रंप विनाशकारी हमला करेंगे? ट्रंप के नाम ईरान की सबसे बड़ी धमकी क्यों? अमेरिकी लड़ाकू जेट क्यों ईरान बॉर्डर पहुंचे? ईरान और अमेरिका युद्ध में सबसे बड़ा मोड़। अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही बीते कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार के सिलसिले पर ब्रेक लगा है, लेकिन बीते 48 घंटों से अमेरिका और ईरान के अंदर से आ रही खबरें किसी बड़े हमले का संकेत दे रही हैं। ईरान ने महायुद्ध का बिगुल फूंक दिया है, तो अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी खबरों ने ईरान पर सबसे बड़े अमेरिकी हमले की संभावनाओं की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान पर नए

0: सहयोगियों के साथ युद्ध के बारे में IRGC का आकलन यह है कि अमेरिका को ऐतिहासिक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनमें स्वीकार करने का साहस नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन वो हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने में नाकाम रही। हम अमेरिका से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने पहले ही लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर ली है और अब वो इस तरह के परिदृश्य के लिए और भी ज्यादा तैयार है। अगर कोई नया आक्रमण होता है तो हमारी रक्षा और जवाबी हमले में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। हम निश्चित रूप से युद्ध के भूगोल को बदल देंगे। हम निश्चित रूप से नई क्षमताओं वाले नए हथियार युद्ध के मैदान में लाएंगे और दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से कोई नया हमला हुआ तो विनाशकारी पलटवार होगा। ईरान अपने ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें अभी तक गुप्त रखा गया है। तो क्या ये कोई विनाशकारी मिसाइल है या फिर ईरान के पास कोई सीक्रेट हथियार मौजूद है? ईरान की माने तो अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। हम चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी गलती की तो पूरे इलाके में अमेरिका के सभी ठिकानों और हितों को बिना किसी सीमा या विचार के निरंतर प्रभावी और दर्दनाक हमलों का निशाना बनाया जाएगा। मतलब यही है कि ईरान हर हालात से निपटने को तैयार है। बड़ी बात यह है कि ईरान खुद मानता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर यकीन करना असंभव है।
1: एक और मुद्दा है सर, जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए ये असली लीडर्स कौन हैं?
2: एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
0: दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार जहर उगलते आए हैं। ये तक कह चुके हैं कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो ईरान झुका और न ही अमेरिकी हमलों के बाद ईरान रुका। हॉर्मुज पर नया हमला भी यही बताता है कि ईरान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर ही अमेरिका के साथ कोई बातचीत करेगा। ऐसे में अगर अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी विध्वंसक पलटवार करेगा। आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के दो दिवसीय दौरे

0: के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
1: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है, तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
0: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
0: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर, यही दो इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है, मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
0: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
0: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
5: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
0: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
6: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं।
7: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है, और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
0: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए एसपी सीधे सीधे निशाने पर है।
7: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
0: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
8: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
0: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
5: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
9: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
10: पुलिस के द्वारा तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं।
9: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
5: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
11: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे।
9: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों। आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
12: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रहेगा।
9: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
13: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों त्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
9: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
14: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
9: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
5: पंजाब में नशे का मुद्दा गरमाया हुआ है। दावा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नाम के शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि बाद में मालूम यह चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
9: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह। पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा।
15: सरपंच तक ही ना भाई
16: सुखी बोणी आई
15: तो दोनों की अपना बन गया कितना कदम करे की कहो ना
16: बोणी आई जासला तक होना थी रात में बड़ी।
5: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पे उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
9: जग्गा सिंह की यह तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
17: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
18: नशे रोकने वास्ते विल पावर चाहिदी है, लत्तां विच जान चाहिदी है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिदी है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिदे है, जेडे के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं।
9: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
19: आज मैं कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को, क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को? जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे ना, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा, डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिवारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
9: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी, जिस पर 9 केस दर्ज हैं, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी है।
20: उन्हां ते ऑलरेडी 9 FIR दर्ज ने, इन्हां विचों 4 दे विचों कन्विक्टेड ने, जिदे विच वख-वख थाणियां दे केसेस ने, एक्साइज दे केसेस ने, चीमा थाने दे 3 जिदे विचों कन्विक्टेड ने, अते एक NDPS दा केस, सदर पटियाले दा केस है जिदे विचों कन्विक्टेड ने।
1: जग्गा कोट ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे, उनके बेटे के नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
21: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए शाम तक चुप हो जाए।
1: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संत, चंडीगढ़ आज तक।
5: आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि सब अपनी अपनी जगह कायम है, क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी?
22: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
23: भारतीय जनता पार्टी
22: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेंच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर ली। वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यहीं नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़ ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है, इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
2: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है, और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
22: लेकिन तब तक तो IIT बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
3: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
4: बोल रहे हैं ना?
3: आप रिजाइन करने वाले? जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
4: बोल रहे हैं ना?
3: आप रिजाइन करने?
22: लेकिन आज फिर IIT बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन IIT बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान AI यूज करने की बात कही गई थी। अब IIT बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद IIT बॉम्बे जांच की बात कर रहा है, और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में IIT बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी IIT बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला IIT बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला IIT बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
23: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स IIT भी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, यह मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
5: मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की है, वेतन भी शिक्षिका का है, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति। आरोप भी है कि यह खेल 2 सालों से चला आ रहा है, यानी कि जिस शिक्षक की नियुक्ति सरकार ने की क्लासरूम में उसकी जगह कोई और बच्चों को पढ़ाता रहा। इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि 43 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदार आखिर है कौन?
24: ये क्या पत्नी आपकी?
25: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है, उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जासमीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जासमीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाती है, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजार शाजापुर के गांव मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक दो महीने नहीं बल्कि पिछले दो साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
0: यहाँ पर एक भाई साहब जो जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
4: वो
0: उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ?
4: पढ़ाने का अधिकार नहीं,
0: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे। अभी है ना, क्या नाम है उनका?
4: साजिद सिद्दीकी।
0: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
4: ये तो दो साल से पढ़ा रहे हैं।
0: दो साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनके वाइफ भी यही रहती है?
4: दो साल तो नहीं है, मतलब जैसे अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना,
0: हाँ,
4: जब उनको छोड़ने आते हैं तो नहीं रुक जाते हैं,
0: है ना, और ये बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों
25: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची, तब जासमीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए। लेकिन हमारे सवाल ने मुंह का जायका बिगाड़ दिया।
24: ये क्या पत्नी आपकी?
4: हाँ।
24: फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब
4: नहीं पढ़ा, मैं तो आया था,
24: कब से आपकी ऐसी तबीयत वगैरह खराब है?
4: कोरोना
24: के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो?
4: मेरा तो नहीं, क्लिनिक
24: है, डॉक्टर हो।
25: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं। शाजापुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि दो साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं है, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाजापुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जासमीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
0: कलेक्टर मैडम रजिस्ट्रेशन के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
6: उसमें भी हमने जांच कराई है, जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई गई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है, तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
25: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता थी? क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया?
7: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाजापुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर ये गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज्य से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर, यही 2 इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
1: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
1: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
1: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
5: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में BJP सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है BJP ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन BJP पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में BJP को रोकने से तैयार हैं हम।
6: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है, और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए SP सीधे सीधे निशाने पर है।
6: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
1: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
7: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
1: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
8: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया, इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है, और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला, और 2 और हो सकते हैं।
8: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि सब अपनी अपनी जगह कायम है, क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी?
8: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
10: भारतीय जनता पार्टी,
8: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है, तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर ली। वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यही नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़ ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में ये भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है, इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
11: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
8: लेकिन तब तक तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
12: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
13: बोल रहे हैं ना?
12: आप रिजाइन करने वाले? जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
13: बोल रहे हैं ना?
12: आप रिजाइन करने?
8: लेकिन आज फिर आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को
10: पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान एआई यूज करने की बात कही गई थी। अब आईआईटी बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद आईआईटी बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला आईआईटी बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
13: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स आईआईटी बी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए, इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, यह मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 9 मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल और 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल पर चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पीपीपी का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि सरकार ने जिन संस्थानों को खड़ा किया उनमें निजी भागीदारी का मॉडल क्या होगा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा के वादे को निभाने का कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा।
14: तो कई तरह की सौगात नीमच को मिली है, मेडिकल कॉलेज की सौगात मैं बधाई देता हूँ नीमच वाले भाई बहनों को। जिले भर के लिए है, हमारे बच्चे अब यहीं MBBS करेंगे, यहीं से डॉक्टर निकलेंगे, यहीं बेहतर इलाज होगा।
15: 3 साल पहले मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने जिस मेडिकल कॉलेज को नीमच शहर के लिए सौगात बताया, जनता को सस्ते इलाज और छात्रों को अच्छी पढ़ाई के लिए जो सपने दिखाए वो अब कैसे पूरे होंगे, क्योंकि हजारों करोड़ में बने नीमच जैसे 9 मेडिकल कॉलेज जल्द ही निजी हाथों में चले जाएंगे। MP के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने की तैयारी है। इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों को कौन सी निजी कंपनी चलाएगी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने पीपीपी का पूरा मॉडल तैयार करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जरूर जारी कर दिया है और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस की सरकार ने जिन संस्थानों को खड़ा किया उनमें निजी भागीदारी का मॉडल क्या होगा, सरकारी फैकल्टी और कर्मचारियों का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल मरीज और मेडिकल छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं इस सूची में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। नीमच, सिंगरौली, शिवपुर, बुधनी, छतरपुर, दमोह, मंडला और राजगढ़ समेत कुल 9 मेडिकल कॉलेजों को सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। लेकिन मामला सिर्फ मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं है, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC भी PPP प्रक्रिया में शामिल बताए गए हैं। यानी मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं तक सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में निजी भागीदारी का दायरा बढ़ाने की तैयारी दिखाई दे रही है। इन सब के बीच अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जो है VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। दरअसल PPP प्रोजेक्ट आर्थिक तौर पर पूरी तरह व्यवहारिक ना होने के बावजूद सामाजिक रूप से जरूरी हो तो उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए VGF का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा चिंता मेडिकल कॉलेजों के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग और मशीनें नहीं है, यहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर, नर्सिंग स्टाफ है, कर्मचारी है और हजारों मेडिकल छात्र। आज तक ने जब मेडिकल कॉलेज में काम करने वालों और पढ़ने वालों से बात की तो निजी भागीदारी को लेकर कई सवाल उनके मन में थे। उन्हें इसका जवाब चाहिए था कि अगर संचालन में निजी भागीदारी आती है तो पहले से काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की भूमिका क्या होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या रहेंगी, फैकल्टी की नियुक्ति और वेतन का ढांचा क्या होगा और मेडिकल छात्रों की फीस और ट्रेनिंग व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा।
16: जो स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर सरकारी फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कम होती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये फीस कई गुना ज्यादा होती है, तो हमारे जो 300 विद्यार्थी है ये सरकारी फीस पर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये अत्यंत गरीब फैमिली से अधिकतर लोग बिलोंग करते हैं। कई लोगों को सरकार स्कॉलरशिप देती है, तो अगर ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट कंपनी को ये हस्तांतरण होता है कॉलेज, तो इन विद्यार्थियों का किस सिस्टम के द्वारा इनका आगे का भविष्य तय होगा।
15: मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी डर सता रहा है कि कॉलेज प्राइवेट हाथों में गया तो फीस से लेकर तमाम दूसरे खर्चों की मार छात्रों पर पड़ सकती है।
17: जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं किया जाना चाहिए और इसको गवर्नमेंट ही रहने देना चाहिए, मतलब ताकि जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट अप्रूव सारी जो फैसिलिटीज है सेटअप की वो सब बच्चों को मिल सके, क्योंकि है तो आखिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही।
18: फीस को लेकर कितना अंतर समझते हैं?
17: फीस को लेकर इतना अंतर समझ सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी ईयरली जो एमपी की अगर हम लेके चले तो 1 लाख फीस होती है, और अगर वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 15 से 20 लाख की फीस होती है, प्लस ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस होती है, प्लस इसके अलावा उनमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि कैंडिडेट को खुद ही करने पड़ते हैं।
19: जो एक गोल था, जिस गोल से कॉलेज को चालू किया था, मेडिकल एजुकेशन फॉर ऑल, तो वो भी फिर कायम नहीं होगा अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे मेडिकल कॉलेजेस का, और फिर मेडिकल कॉलेज का फिर खोलने का मतलब नहीं रहा अगर प्राइवेटाइजेशन हो भी गया मेडिकल कॉलेज का, और फीस में भी फिर बहुत अंतर आएगा।
15: हालांकि सरकार का कहना है कि पीपीपी मॉडल को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और नीति आयोग द्वारा तैयार टेंडर डॉक्यूमेंट को मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सरकार पीपीपी को मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के मॉडल के तौर पर देख रही है।
20: 9 जिले ऐसे हैं जहां पर जमीन तो चिन्हित हो गई है लेकिन मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्ट करने वाले लोग ने रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए अब रणनीति को बदला है और राज्य सरकार के जो टेंडर के डॉक्यूमेंट थे उसके बजाय अब भारत सरकार के जो नीति आयोग से अप्रूव्ड टेंडर डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें उसको VGF मॉडल कहते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल, और उसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के टेंडर की प्रक्रिया पूरे होने के बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग राज्य सरकारों को भारत सरकार सहायता देती है, तो उस मॉडल पर अब हमारी तैयारी है कि जल्दी हम 9 जिलों में जो पहले असफल रहे हैं उसमें टेंडर फ्लोट करें।
15: कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। विपक्ष का सवाल है कि सरकारी पैसे से खड़े किए गए मेडिकल संस्थानों के संचालन में निजी कंपनियों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भाजपा की सरकार सब बेचने पर उतारू है, जैसे बस स्टैंड, सरकारी कॉलेज, सरकारी होटल, मतलब चीजों को सुधारने की बजाय सरकार का ध्यान बेचने और पैसे कमाने पर ज्यादा है।
21: इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल एजुकेशन को जितना चकनाचूर किया है किसी क्षेत्र को नहीं किया। 4-4 साल से BSc नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो रही है, कल्पना करिए, गांव से बच्चों को पढ़ाने पेरेंट्स भेजते हैं और 4 साल से परीक्षा ना हो, 4 साल का कोर्स बच्चे 8 साल में भी पूरा नहीं कर पा रहे। जितने मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन पर कितनी गंभीर टिप्पणी की है उनके मापदंडों को लेके, उनके स्पेसिफिकेशंस को लेके, वो देखोगे तो हैरानी होती है कि किस तरह की शिक्षा ये लोग चला रहे हैं।
15: मध्य प्रदेश में सरकार इसे स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के विस्तार का रास्ता बता रही है। वो इस सवाल उठाने वालों की नजर इस बात पर है कि सरकारी निवेश से तैयार इन संस्थानों में निजी भागीदारी आने के बाद पैसा, प्रबंधन, कर्मचारी, फीस और मरीजों की जिम्मेदारी का संतुलन आखिर कैसे तय होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सिर्फ इमारत नहीं होते, ये सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। मंदसौर से अजय और दीवा से विजय के साथ रवीश पाल सिंह।
2: भोपाल आज तक।
0: ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका एटमी हमले भी कर सकता है, जैसी आशंका तेहरान के डेप्यूटी मेयर जता चुके हैं। सवाल यही है कि जिस वक्त ईरानी राष्ट्रपति के अमेरिका जाने की खबरें आईं, उसी वक्त ऐसा क्या हो गया कि ईरान को अपनी सेनाओं को बड़े युद्ध के लिए तैयार करने के लिए हाई अलर्ट जारी करना पड़ा।

ईरान ने अपनी सेना के लिए कोड 100 नाम का हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें IRGC और सेना को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान में जारी किए गए हाई अलर्ट की टाइमिंग को देखें तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक कैंप डेविड से वापस व्हाइट हाउस लौटा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सैन्य अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग की है, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री ने अभी अपना अमेरिका दौरा छोटा किया है। तो क्या ईरान का सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी करना, अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक व्हाइट हाउस लौटना किसी बड़े हमले का संकेत है? ईरान

0: निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया। अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन। फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की। पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा। यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत। संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती। 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है, और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे, जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज्य से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है, तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बता।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है, और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
1: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं। समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
4: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं।
5: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं। अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है, और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए SP सीधे सीधे निशाने पर है।
5: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
1: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
6: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
1: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा। अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
7: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
8: पुलिस के द्वारा तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं।
7: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे?
7: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों, आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
10: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रहेगा।
7: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
11: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों त्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
7: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
12: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
7: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है? ये मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि सब अपनी अपनी जगह कायम है, क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी?
7: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
13: भारतीय जनता पार्टी,
7: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेंच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर, वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यहीं नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़ ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
14: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
7: लेकिन तब तक तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
15: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
16: आप रिजाइन करने वाले?
15: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
16: बोल रहे ना? आप रिजाइन करने?
7: लेकिन आज फिर आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई।
13: ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान एआई यूज करने की बात कही गई थी। अब आईआईटी बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। यह घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद आईआईटी बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला आईआईटी बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
17: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स आईआईटी बी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, यह मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की है, वेतन भी शिक्षिका का है, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति। आरोप अब यह है कि यह खेल 2 सालों से चला आ रहा है, यानी कि जिस शिक्षक की नियुक्ति सरकार ने की क्लासरूम में उसकी जगह कोई और बच्चों को पढ़ाता रहा। इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि 43 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदार आखिर है कौन?
18: ये क्या पत्नी आपकी?
19: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है, उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जैस्मीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जैस्मीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाते हैं, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गांव मुल्ला खेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 1-2 महीने नहीं बल्कि पिछले 2 साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
20: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
21: वो इनके जैस्मिन मेटम, मतलब उनके मिस्टर थे।
20: मिस्टर है, तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
21: पढ़ाने का अधिकार नहीं,
20: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे। अभी
21: यहाँ पे पढ़ाते
20: हैं, है ना? क्या नाम है उनका?
21: साजिद सिद्दीकी।
20: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
21: ये तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं।
20: 2 साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनके वाइफ भी यही रहती है।
21: 2 साल तो नहीं है, मतलब जैसे अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना,
20: हाँ,
21: जब इनको छोड़ने आते हैं तो नहीं रुक जाते हैं,
20: है ना? और ये बच्चों को पढ़ाते हैं।
19: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची, तब जैस्मीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए। लेकिन हमारे सवाल ने मुंह का जायका बिगाड़ दिया।
18: ये क्या पत्नी आपकी? फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब कब से है आपकी तबीयत वगैरह खराब है? कोरोना के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो?
22: मेरा तो नहीं, क्लिनिक
18: है, डॉक्टर हो।
19: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं। शाजापुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है, क्योंकि 2 साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है। लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाहजापुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी, तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जैस्मीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
20: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
2: उसमें भी हमने जांच कराई है, जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ, लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है, तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
19: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता थी, क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था, इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया।
3: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाहजहांपुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर ये गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
0: ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका एटमी हमले भी कर सकता है, जैसी आशंका तेहरान के डेप्यूटी मेयर जता चुके हैं। सवाल यही है कि जिस वक्त ईरानी राष्ट्रपति के अमेरिका जाने की खबरें आईं, उसी वक्त ऐसा क्या हो गया कि ईरान को अपनी सेनाओं को बड़े युद्ध के लिए तैयार करने के लिए हाई अलर्ट जारी करना पड़ा?

यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा

0: ईरान ने अपनी सेना के लिए कोड 100 नाम का हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें IRGC और सेना को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान में जारी किए गए हाई अलर्ट की टाइमिंग को देखें तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक कैंप डेविड से वापस व्हाइट हाउस लौटा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सैन्य अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग की है, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री ने अभी अपना अमेरिका दौरा छोटा किया है। तो क्या ईरान का सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी करना, अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक व्हाइट हाउस लौटना किसी बड़े हमले का संकेत है? ईरान में हमले का हाई अलर्ट क्यों जारी हुआ? क्या ईरान पर ट्रंप विनाशकारी हमला करेंगे? ट्रंप के नाम ईरान की सबसे बड़ी धमकी क्यों? अमेरिकी लड़ाकू जेट क्यों ईरान बॉर्डर पहुंचे? ईरान और अमेरिका युद्ध में सबसे बड़ा मोड़। अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही बीते कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार के सिलसिले पर ब्रेक लगा है, लेकिन बीते 48 घंटों से अमेरिका और ईरान के अंदर से आ रही खबरें किसी बड़े हमले का संकेत दे रही हैं। ईरान ने महायुद्ध का बिगुल फूंक दिया है, तो अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी खबरों ने ईरान पर सबसे बड़े अमेरिकी हमले की संभावनाओं की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान पर नए हमलों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इसी बीच ईरान ने हुर्मुज में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। दावा यही है कि हुर्मुज में अमेरिकी सेना के ड्रोन को मार गिराया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका और उनके सहयोगियों के साथ युद्ध के बारे में IRGC का आकलन ये है कि अमेरिका को ऐतिहासिक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनमें स्वीकार करने का साहस नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन वो हुर्मुज का रास्ता खुलवाने में नाकाम रही। हम अमेरिका से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने पहले ही लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर ली है, और अब वो इस तरह के परिदृश्य के लिए और भी ज्यादा तैयार है। अगर कोई नया आक्रमण होता है तो हमारी रक्षा और जवाबी हमले में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। हम निश्चित रूप से युद्ध के भूगोल को बदल देंगे। हम निश्चित रूप से नई क्षमताओं वाले नए हथियार युद्ध के मैदान में लाएंगे, और दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से कोई नया हमला हुआ तो विनाशकारी पलटवार होगा। ईरान अपने ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें अभी तक गुप्त रखा गया है। तो क्या ये कोई विनाशकारी मिसाइल है, या फिर ईरान के पास कोई सीक्रेट हथियार मौजूद है? ईरान की माने तो अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। हम चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी गलती की तो पूरे इलाके में अमेरिका के सभी ठिकानों और हितों को बिना किसी सीमा या विचार के निरंतर प्रभावी और दर्दनाक हमलों का निशाना बनाया जाएगा। मतलब यही है कि ईरान हर हालात से निपटने को तैयार है। बड़ी बात यह है कि ईरान खुद मानता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर यकीन करना असंभव है।
1: एक और मुद्दा है सर, जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के, उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए, ये असली लीडर्स कौन हैं?
2: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन कुछ न कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
0: दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार जहर उगलते आए हैं। ये तक कह चुके हैं कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो ईरान झुका और न ही अमेरिकी हमलों के बाद ईरान रुका। हुर्मुज पर नया हमला भी यही बताता है कि ईरान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर ही अमेरिका के साथ कोई बातचीत करेगा। ऐसे में अगर अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी विध्वंसक पलटवार करेगा। आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत संसद की, 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है, तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
2: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
3: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर, यही 2 इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
2: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
3: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको यालुम है, मैं स्वयं आता हूं, कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
1: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
4: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
1: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
1: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
5: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं। हम
6: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है, और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए SP सीधे सीधे निशाने पर है।
6: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
1: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
7: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
1: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
8: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया, इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है, और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला, और 2 और हो सकता है।
8: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
10: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे?
8: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों। आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
11: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही।
8: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है, उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
12: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों त्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
8: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
13: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
8: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: पंजाब में नशे का मुद्दा गरमाया हुआ है, दावा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नाम के शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि बाद में मालूम यह चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
8: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह। पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स ने पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा।
14: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल, बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
8: जग्गा सिंह की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
15: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
16: नशे रोकने वास्ते विल पावर चाहिदी है, लत्तां विच जान चाहिदी है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिदी है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिदे है। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
17: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
18: आज मैं कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को, जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे ना, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा, डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिवारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
17: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी है, जिस पर 9 केस दर्ज है, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी है।
19: ऑलरेडी 9 FIR दर्ज ने, इन्हां विचों 4 दे विचों कन्विक्टेड ने, जिदे विच वख वख थाणियां दे केसेस ने, एक्साइज दे केसेस ने, चीमा थाने दे 3 जिदे विचों कन्विक्टेड ने, अते एक NDPS दा केस, सदर पटियाले दा केस है जिदे विचों कन्विक्टेड ने।
17: जग्गा को ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे, उनके बेटे के नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
20: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में, ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं इसलिए शाम तक चुप हो जाए।
17: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संधु, चंडीगढ़ आज तक।
0: मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की है, वेतन भी शिक्षिका का है, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति। आरोप अब यह है कि यह खेल 2 सालों से चला आ रहा है, यानी कि जिस शिक्षक की नियुक्ति सरकार ने की क्लासरूम में उसकी जगह कोई और बच्चों को पढ़ाता रहा। इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि 43 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदार आखिर है कौन?
16: ये क्या पत्नी आपकी?
17: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जासमीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जासमीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाती है, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति हैं। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गाँव मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 1-2 महीने नहीं बल्कि पिछले 2 साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
21: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
22: वो इनके जासमीन बेटा, मतलब उनके मिस्टर थे।
21: मिस्टर है, तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
22: पढ़ाने का अधिकार नहीं है।
21: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे अभी?
22: फिर भी यहाँ पे पढ़ाते हैं,
21: है ना? क्या नाम है उनका?
22: उनका साजिद सिद्दीकी।
21: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
22: ये तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं।
21: 2 साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनके वाइफ भी यही रहती
22: मतलब
21: है।
22: 2 साल तो नहीं है, मतलब जैसे ये अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना,
21: हाँ।
22: जब इनको छोड़ने आते हैं तो नहीं रुक जाते हैं,
21: है ना, और ये बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों
17: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची, तब जासमीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए, लेकिन हमारे सवाल ने मौका जायका बिगाड़ दिया।
21: ये क्या पत्नी आपकी?
2: हाँ।
21: फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब
2: नहीं पढ़ा, मैं तो आया था, मैं नहीं, मैं तो अभी आगे छोड़ छोड़ा गया, कर जब बैठ जाता हूँ।
21: कब से है आपकी तबीयत वगैरह खराब?
2: ये कोरोना के बाद,
21: कोरोना के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो?
2: मेरा तो नहीं, क्लिनिक
21: है, डॉक्टर हो।
17: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं। शाहजहाँपुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि 2 साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाहजहाँपुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी, तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जासमीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
21: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
3: उसमें भी हमने जांच कराई है, जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ, लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है, तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
17: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता थी? क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था, इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया?
4: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाहजहाँपुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर यह गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
0: ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका एटमी हमले भी कर सकता है, जैसी आशंका तेहरान के डेप्यूटी मेयर जता चुके हैं। सवाल यही है कि जिस वक्त ईरानी राष्ट्रपति के अमेरिका जाने की खबरें आईं, उसी वक्त ऐसा क्या हो गया कि ईरान को अपनी सेनाओं को बड़े युद्ध के लिए तैयार करने के लिए हाई अलर्ट जारी करना पड़ा?

0: ईरान ने अपनी सेना के लिए कोड 100 नाम का हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें IRGC और सेना को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान में जारी किए गए हाई अलर्ट की टाइमिंग को देखें तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक कैंप डेविड से वापस व्हाइट हाउस लौटा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सैन्य अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग की है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अभी अपना अमेरिका दौरा छोटा किया है। तो क्या ईरान का सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी करना, अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक व्हाइट हाउस लौटना किसी बड़े हमले का संकेत है? ईरान में हमले का हाई अलर्ट क्यों जारी हुआ? क्या ईरान पर ट्रंप विनाशकारी हमला करेंगे? ट्रंप के नाम ईरान की सबसे बड़ी धमकी क्यों? अमेरिकी लड़ाकू जेट क्यों ईरान बॉर्डर पहुंचे? ईरान और अमेरिका युद्ध में सबसे बड़ा मोड़। अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही बीते कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार के सिलसिले पर ब्रेक लगा है, लेकिन बीते 48 घंटों से अमेरिका और ईरान के अंदर से आ रही खबरें किसी बड़े हमले का संकेत दे रही हैं। ईरान ने महायुद्ध का बिगुल फूंक दिया है, तो अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी खबरों ने ईरान पर सबसे बड़े अमेरिकी हमले की संभावनाओं की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान पर नए हमलों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इसी बीच ईरान ने हुर्मुज में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। दावा यही है कि हुर्मुज में अमेरिकी सेना के ड्रोन को मार गिराया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका और उनके सहयोगियों के साथ युद्ध के बारे में IRGC का आकलन ये है कि अमेरिका को ऐतिहासिक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनमें स्वीकार करने का साहस नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन वो हुर्मुज का रास्ता खुलवाने में नाकाम रही। हम अमेरिका से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने पहले ही लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर ली है, और अब वो इस तरह के परिदृश्य के लिए और भी ज्यादा तैयार है। अगर कोई नया आक्रमण होता है तो हमारी रक्षा और जवाबी हमले में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। हम निश्चित रूप से युद्ध के भूगोल को बदल देंगे। हम निश्चित रूप से नई क्षमताओं वाले नए हथियार युद्ध के मैदान में लाएंगे, और दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से कोई नया हमला हुआ तो विनाशकारी पलटवार होगा। ईरान अपने ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें अभी तक गुप्त रखा गया है। तो क्या ये कोई विनाशकारी मिसाइल है, या फिर ईरान के पास कोई सीक्रेट हथियार मौजूद है? ईरान की माने तो अमेरिकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। हम चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी गलती की तो पूरे इलाके में अमेरिका के सभी ठिकानों और हितों को बिना किसी सीमा या विचार के निरंतर प्रभावी और दर्दनाक हमलों का निशाना बनाया जाएगा। मतलब यही है कि ईरान हर हालात से निपटने को तैयार है। बड़ी बात यह है कि ईरान खुद मानता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर यकीन करना असंभव है।
1: एक और मुद्दा है सर, जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के, उनसे बात कर रहे हैं अटैक के बाद। लीडरशिप

इस समस्या के समाधान के लिए हनुमान जी को बूंदी अर्पित करनी चाहिए। मंगल की कौन सी समस्या लाल फल अर्पित करने से दूर हो जाती है और मंगल की किस समस्या के समाधान के लिए गुड़ का दान करना बड़ा शुभ होता है? कौन से हैं मंगल के दान और कैसे होगा इनसे समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी के मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज बुलंद की, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत संसद की, 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान। मिशन यूपी 2027 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा बड़ा अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे जहां से उन्होंने समाजवादी